ओम शांति। स्वयं भगवान ने इस संसार के खेल को एक सुंदर नाटक कहा है। सचमुच ये विशाल ड्रामा कितना सुंदर है, इसकी ब्यूटी को तो जरा देखें। कैसे ये सब संसार रचा गया, सूरज चांद तारे आकाश और अनेक ग्रह इसमें निर्मित हुए। कैसे हर आत्मा अपना अपना पार्ट इस विश्व के नाटक में बजा रही है। जो एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से, जो एक पल का पार्ट न मिले दूसरे पल से, सब कुछ बदलता जा रहा है। फिर भी मनुष्य पास्ट की बहुत चिंता करता है, फिर भी मनुष्य भविष्य की बहुत चिंता करता है, जबकि मालूम होना चाहिए भविष्य पूर्व निश्चित है। होगा वही जो ड्रामा में निश्चित है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि हम अपना पुरुषार्थ छोड़ दें और ड्रामा में जो होगा उसको केवल देखें, ऐसा भी नहीं। हमें पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है और निश्चित भावी पर निश्चिंत भी रहना है। देखिए कितना सुंदर ये नाटक है। 5000 साल में ही रिपीट होता है। जो घटना एक बार हो गई उसको पुनः आने में 5000 वर्ष लग जाएंगे। इसलिए कल तक आपके साथ जो कुछ बीत गया है वो पूरा हो गया। अब उसकी चिंता से, उसके चिंतन से, उसको याद करके परेशान होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस सीन को न तो अब बदला जा सकेगा और न वो सीन जल्दी जल्दी रिपीट होगा। वो उसको तो 5000 वर्ष चाहिए रिपीट होने में। इसलिए हम पास्ट को बार बार खोल कर न देखा करें। जैसे कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, अर्थात पास्ट का चिंतन करना, उन्हें याद दिलाना, उन्हें याद करना। अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो मुर्दों से क्या आएगी हमें? बहुत ज़्यादा बदबू। पुरानी बातों में यदि बदबू

है तो उसे वर्तमान की सुंदर बातों की सुगंध से समाप्त कर दें। देखिए कितना सुंदर नाटक है। हर आत्मा यहाँ अपना अपना भाग्य लेकर आई है। हर एक को उनकी योग्यता और शक्तियों के अनुसार पार्ट मिल गया है। लोग सोचते हैं भगवान ने इसको ये पार्ट क्यों दिया, ये क्यों दिया। भगवान ने किसी को ऐसे ही नहीं दे दिया। जैसे कोई डायरेक्टर भी एक्टर्स का सिलेक्शन करता है तो उसकी योग्यताओं के अनुसार ही उसे पार्ट दिया जाता है। इस ड्रामा में भी कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना पवित्र है, कौन कितना सद्गुणों से भरपूर है और किसके पास कितनी आत्मविश्वास और आत्मबल है, कौन निर्णय लेने में परफेक्ट है, किसके पास परखने की शक्ति है, कौन अपने कार्यों को चुस्ती के साथ करता है, ये सब मापदंड हैं किसी के भी पार्ट के निश्चित होने के। किसके पास कितनी बुद्धि है, बुद्धि की श्रेष्ठता भी मनुष्य के पार्ट को निश्चित करती है। किसके पास धर्म का बल है, किसके पास कवित्व है, किसके पास गायन शक्ति है, किसके पास लेखन शक्ति है, ये योग्यताएं भी मनुष्य के पार्ट को निश्चित करती हैं। तो आइए हम इस ड्रामा के खेल को साक्षी होकर देखें और याद किया करें कितना सुंदर खेल चल रहा है। कई लोग सोचते हैं क्या भगवान इस नाटक को बदल नहीं सकता, क्या हमारे पार्ट को बदल नहीं सकता, बदले क्यों, ये तो सब एक्यूरेट चल रहा है। जो हो रहा है वो परफेक्ट है, वही सत्य है, वही होना चाहिए। बदलने की मार्जिन तो वहाँ होती है जहाँ कुछ गड़बड़ हो। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो पूर्णतया साक्षी हो जाएं और अपने को ड्रामा का हीरो एक्टर जानते हुए, मानते हुए अपने पार्ट को एंजॉय करें। तो आज का हम स्वमान रखेंगे, मैं इस विशाल ड्रामा का हीरो एक्टर हूँ। मेरे पार्ट को सारा संसार देखता है। एक एक क्षण का मेरा पार्ट बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। मुझे फॉलो करने वाले करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं। अपने को ऐसा जिम्मेदार समझते हुए आज इस स्मृति में रहेंगे और अभ्यास करेंगे बाबा की परम धाम से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और सारा दिन इसका आनंद लेंगे। ओम श्याम।

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। कई बार हम यह सोचने लगते हैं कि आज हमारे लिए कोई अवसर ही नहीं बचा है कुछ करने के लिए, सफलता पाने के लिए। लेकिन यह गलत सोच है, एक निराशावादी सोच है। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा। काम का अवसर मनुष्य के समक्ष हर समय उपस्थित रहता है। अवसर कभी भी समाप्त नहीं होते। जब भी कभी कुछ समाप्त होता है तो वह होता है उत्साह, दृढ़ इच्छा शक्ति और काम करने की भावना। यदि आपके मन में उत्साह है, दृढ़ इच्छा शक्ति व कार्य करने की भावना है, तो फिर क्या है? अवसर तो आपके सामने बिछा हुआ पड़ा है। आज के युग में जितने अधिक अवसर नव युवकों को आगे बढ़ने के लिए मिल रहे हैं, पहले तो कभी भी नहीं मिले। जरा सोचो, इस समय एक डॉक्टर या वकील, उनको जो फीस मिल रही है, इतनी फीस तो इन लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। और इन इंजीनियरों के वेतन को देखो, उन्हें कल्पना से भी कहीं अधिक वेतन मिल रहा है। आज कारोबार में जितना लाभ व्यापारी लोग कमा रहे हैं, इससे पहले तो इतना अधिक लाभ कभी नहीं होता था। आज आप लोगों के सामने मनोरंजन के कितने ही साधन सुलभ है। हवाई जहाजों में सीट नहीं मिलती, रेलगाड़ियों की उच्च श्रेणी फुल है, कारों की लंबी लाइनें सड़कों पर एक सड़क बनाती हुई नजर आ रही हैं। यह सब कुछ क्या है? ये सब खेल तो धन के ही हैं। इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि लोगों के पास इतना अधिक धन आ चुका है कि वे मौज मस्ती की दुनिया में खो गए हैं? सिनेमा घरों पर हाउसफुल के बोर्ड, बहुमंजिला इमारतें। अब भी आप यदि कह रहे हैं कि अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस समय आपकी ही बुद्धि की कमी कही जाएगी। सच्चाई यह है कि इस समय प्रत्येक युवक के आगे बढ़ने के पूरे पूरे चांस हैं। हर एक के लिए अवसर उपलब्ध हैं। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि नव युवकों की उन्नति के अवसर समाप्त हो चुके हैं? यह बात कहकर आप बड़ी भूल कर रहे हैं। हो सकता है ऐसी बात कहकर आप अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हों। अवसरों की कमी नहीं है, कमी है केवल योग्यता की। तो आइए अपनी योग्यताओं को इतना योग्य बनाएं कि अवसर स्वयं चल के अपने पास आए। इतना ही नहीं, बल्कि हम स्वयं अवसर का निर्माण कर लें, उसकी प्रतीक्षा नहीं करें।

इसमें कोई संदेह नहीं कि बेकारों की संख्या अधिक होती जा रही है, परंतु हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इस बेकारी का सबसे बड़ा कारण उनकी अपनी ही अयोग्यता है। उनके पास बुद्धि की कमी है, शिक्षा की कमी है और ज्ञान की कमी है योग्यता की, सबसे बड़ी कमी है आत्मविश्वास की। आप अपने ही जैसे भाइयों को काम करते देख रहे हैं, धन कमाते देख रहे हैं, जरा सोचो तो क्या ये लोग धन और जीवन के अच्छे साधनों को पैदा होते हुए साथ ले आए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके पास जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह सब इनकी अपनी बुद्धि का ही कमाल है। इन्होंने अवसरों की तलाश का रोना नहीं रोया, इन्हें तो सब कुछ मिलता चला गया क्योंकि इन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम ये सब कुछ पाकर ही रहेंगे। वे लोग आदमियों की भीड़ में गुम नहीं हुए, बल्कि अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे खूब ध्यान से देखते रहे। उन्हें अपने लक्ष्य का अच्छी तरह पता था। यही सोचकर वे आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अवसर मिले या न मिले, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने अपना काम जारी रखा और देखते ही देखते वे सफल हो गए। अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही उन्होंने चैन की सांस ली। अवसर उनके लिए उतना जरूरी नहीं था जितना कि मंजिल पर पहुंचना। उन्हें अपने आप पर दृढ़ विश्वास था कि वह एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच कर रहेंगे। जो लोग निराश हैं, आशा का दामन छोड़ चुके हैं, वे अपनी मंजिल तक कहां पहुंच पाएंगे? अच्छे पढ़े लिखे ज्ञान रखने वाले युवकों के लिए तो सारे द्वार खुले हैं। पहले अपनी कमजोरियों को दूर करें, फिर किसी दूसरे से शिकवा करें। दृढ़ निश्चय से ही भावनाओं की पूर्ति होती है। जीवन का रोना रोते रहोगे तो कोई पास भी नहीं आकर खड़ा रहेगा।

0: This mool mantra, as defined by Guru Nanak, the founder of Sikhism, states that there is but one God. His name is True. He is the Creator. He is free from fear and enmity. He is beyond time. He is immortal, unborn, formless and self-existent. He can be realized by the grace of the Guru.
1: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
2: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God, and friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर नो वी डोंट फियर गॉड देन देयर इज अ सेकंड गुड रीजन व्हाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड बिकॉज फ्रेंड्स मोर देन 80% ऑफ द वॉर दैट इज फॉट टुडे इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वॉर हो अमेरिका इराक वॉर हो जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो गुजरात प्रॉब्लम हो दिल्ली ब्लास्ट हो हैव वी रियली अंडरस्टूड गॉड किसी ने क्या खूब कहा है काबा है घर रहीम का काशी है घर राम का दोनों ही बात तो एक है झगड़ा है बस नाम का वी आर फाइटिंग इन द नेम ऑफ गॉड एंड वी कॉल आवरसेल्व्स इंटेलेक्चुअल्स फ्रेंड्स लेट्स अंडरस्टैंड द नेम वेरी क्लियरली हिंदूस मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं अरे दिवाली में है अली ALI तो रमजान में है राम RAM दिवाली में है अली रमजान में है राम दिवाली में है दिल DIL तो रमजान में है जान ZAN अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान सिख व प्रेम से याद करना है ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है वो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट वी कैन एस्टैब्लिश विद द ऑलमाइटी गॉड एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है और जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय सुखमय और शांतिमय बन जाता है तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए

ऐसे लोगों के लिए सफलता के द्वार सदैव खुले रहते हैं जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार हैं, जिनके पास निराशा नाम की कोई चीज नहीं है, केवल आगे बढ़ने की दृढ़ भावना है। यही भावना आपको सफलता के द्वार पर ले जाएगी। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, आपका दृढ़ आत्मविश्वास। जिस सफलता को आप बाहर तलाश करते हैं, वह सफलता तो आपके अंदर छिपी हुई है। आपकी सफलता आपके व्यक्तित्व और चरित्र पर ही आधारित है। आपकी सफलता उसी प्रकार आपकी आत्मशक्ति में छिपी हुई है, जिस प्रकार वट का विशाल वृक्ष वट के एक छोटे से बीज के अंदर छुपा रहता है। पहले अपना विकास कीजिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए, ताकि कोई आपकी इस कमजोरी को न पकड़ पाए, ताकि आप स्वयं को किसी से कमजोर महसूस न करें। यह बात याद रखें कि इंसान अपनी कमजोरी के कारण ही बहुत पीछे रह जाता है। अपनी कमजोरी को कभी भी दूसरों के आगे उजागर न होने दें, नहीं उसे अपने मन में महसूस करें। कहीं भी जाएं, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ यह समझ लें कि मुझ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, मैं हर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ, मैं हर परीक्षा में सफल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ, मैं हजारों लाखों लोगों के सामने भाषण करके उनकी भावनाओं को जागृत करने की शक्ति रखता हूँ या रखती हूँ। बस फिर क्या है, आप सफल ही सफल हैं। आपका दृढ़ विश्वास ही आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएगा। अपने मस्तिष्क पर बेकार का बोझ मत डालिए, उसे खुला छोड़ दें। जो अपने मस्तिष्क पर बेकार की चिंताओं का बोझ डाले रखते हैं, उनके आगे बढ़ने के द्वार करीब करीब बंद ही हो जाते हैं। इसीलिए मस्तिष्क पर चिंताओं का बोझ मत डालो, उसे हल्का रहने दो। जितना हल्का आपका मन होगा, उतने अच्छे विचार आप अपने मन में भर पाएंगे, और जितने अच्छे आपके विचार होंगे, उतना ही आपका लक्ष्य आपके करीब होगा।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

इस समय आधुनिक युग चल रहा है। विज्ञान के बढ़ते चरण मानव को ऐसे ऐसे विचित्र आविष्कारों से परिचित करवा रहे हैं जिन पर हमारी बुद्धि विश्वास करने के लिए भी तैयार नहीं। इसे कुछ लोग विलक्षण साहस का युग भी कहते हैं। इस युग का यही प्रयत्न है कि हम ऊंचा उठें, मानव जाति अपनी उन्नति की सारी सीमाओं को पार कर ले। जिन सीढ़ियों से चढ़कर आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचना है वह आपसे दूर नहीं है। इस पूरे संसार को ही योग्य और बुद्धिमान व्यक्तियों की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति जो दृढ़ आत्मविश्वास के मालिक हों, जो आगे बढ़ने की बात ही मुख्य उद्देश्य समझे, जिनके मन में सदैव ऊंचा उठने की बात ही आती हो। ऐसे लोगों की तो हर जगह जरूरत है, उनके लिए हर और अवसर ही अवसर हैं, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका साहस, आपकी इच्छा शक्ति, आपका विश्वास आपको आगे ले जाएंगे। इस नए दौर में लोग अवसर को नहीं योग्यता को पसंद करते हैं। उच्च कुल में जन्म लेने से ही लोग महान नहीं बन जाते, महान वही बनते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, जो परिश्रम है, जो मानवता के बारे में सोचते हैं, जो स्वार्थी नहीं होते। आज के युग में मानव जाति के लिए उन्नति के जितने द्वार खुले हैं उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि जो लोग इनका लाभ नहीं उठा सकते वे सब के सब बेकार हैं, अभागे हैं। आज वह समय आ गया है कि बुद्धिमानों की हर स्थान पर जरूरत है। विज्ञान ने हमें जितना ऊंचा उठा दिया है उतनी अधिक भागदौड़ हमें करनी पड़ेगी। आगे बढ़ने की भावनाएं सबसे अधिक इस समय उन उद्योगपतियों में नजर आ रही हैं जो विज्ञान के इस युग का पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं। ऐसे ही लोगों को तलाश रहती है उन योग्य व्यक्तियों की जो उनकी भावनाओं के अनुकूल काम कर सके। प्रत्येक देश को जरूरत है शासन को चलाने वाले केवल कुछ योग्य व्यक्तियों की, जो देश के हित को सामने रखकर परिश्रम करने वाले हों। तो आइए हम भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को उतना योग्य बनाएं, उतना मेहनती बनाएं, उतना परिश्रमी बनाएं, जो हम भी खुद ऊंचे उठे और अपने देश को भी ऊंचा उठा लें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। दोस्तों, जब भी हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही चीज समझ में आती है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। कभी कभार हम ये जरूर कह देते हैं कि मौसम की वजह से ऐसा हुआ, या फिर हमारे घर में ये बीमारी परंपरा से चली आ रही है कि वह हमारे घर के सदस्यों को थी, पूर्वजों को थी, इसलिए हमें भी है। ये चीजें कभी कभार तो समझ में आती हैं, मगर जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी मोटी चीजें जो हम देखते हैं, गड़बड़ियां होती हुई नजर आती हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी कभार लोग ये बात भी कह देते हैं, अरे शायद ये चीज पहले पता होती तो मैं ये गलती करता ही नहीं। ये भी चीज सुनने को मिलती है। अब रेडियो मधुबन पर यही कोशिश की जा रही है कि ऐसी गलतियां जो प्रायः हम करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को बीमार करते हैं, उनसे तो कम से कम बचने के लिए हम अपने प्रयास करते रहें और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करें। सहज स्वास्थ्य में स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हमें इस विषय पर राय देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये कहते हैं कि सही जानकारी के अभाव में मनुष्य गलतियां कर लेता है और जब उन गलतियों का दंड उसे भुगतना पड़ता है या उसका फल जब उसे खाना पड़ता है, तब वो व्यक्ति समझता है, अरे मुझे अगर इस बात की सही पहचान होती है, सही समझ होती, तो शायद मैं ये गलती करता ही नहीं। अब ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के बारे में सही जानकारी लेने की जब बात कही जाती है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल सी बात है, इन सब चीजों के बारे में हमें तो पता ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद ही होती है, ऐसे भी कई लोग कहते हैं। और वही कुछ लोग ये भी बात कहते हैं कि पारंपरिक रूप से हम पीढ़ी दर पीढ़ी इन स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को लेते आए हैं और सिर्फ अभी ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में यूं कहें कि लोग उस जानकारी को दरकिनार करते आए हैं और इसकी वजह से भी स्वास्थ्य में गड़बड़ियां हो रही हैं और ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, ऐसा कहा जाता है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं?
1: जानकारी जीवन में बहुत जरूरी है, सही जानकारी और भी जरूरी है, मगर सबसे जरूरी बात जो है कि जो जानकारी आपको मिली है उस जानकारी का प्रयोग आप अपने जीवन में कर पाए। जैसे बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि छोटे बच्चे को कहा जाता है ना, प्लग में उंगली मत डालो, करंट लग जाएगा। तो ये जानकारी उस बच्चे के पास है कि अगर हम प्लग में उंगली डालेंगे तो करंट लग जाएगा, मगर तब भी कुछ बदमाश बच्चे उंगली जरूर डालते हैं और तेजी से करंट लगता है। या माता पिता अपने छोटे बच्चे कहते हैं, अरे आग से दूर रहो, जल जाओगे, मगर अब मानने को तो कहते नहीं है, बाल मन है, मानेगा तो है नहीं। तो एक इंग्लिश में कहा जाता है, नॉलेज इज पावर। तो उस पावर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। भैया, जो चीज परंपरागत तरीके से परिवारों में चली आ रही है वो आरोग्य की कुंजी है। जो आपकी दादी नानी, जो आपके चौके में भोजन बना रही थी, जो आपके दादा नाना आपको खिला रहे थे, वो बहुत ही जरूरी था। खासकर भारतीय परिवेश में मैं ये कहूंगा, विदेशी परिवेश में हो सकता है जो वो खा रहे थे और जिस चीज का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया वो आगे चल के मालूम चला कि बहुत हानिकारक है, मगर आप अगर भारतीय परिवेश में देखिए तो जो भी हमारे पूर्वजों ने खाया पिया, हिले डुले, व्यायाम किया, वह उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला। अभी बड़ा एक अजीब सा वाक्य मेरे सामने हुआ कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जिम में मुझे बुलाया गया और जब मैं वहां प्रवेश कर रहा था तो मेरे पीछे से एक करीब 65 साल के एक बुजुर्ग आए और उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या यहाँ पे मिट्टी है जिसमें हम कुश्ती लड़ सकते हैं? तो जिम वाले का, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुश्ती नहीं है, यहाँ मशीन से आप अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्या लकड़े का बल्लम है? अच्छा मुझे भी इस बात का ये नहीं था। बोला अरे उससे उठा के वर्जिश की जाती है। और उस 60 साल का बच्चा मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि उस 60 साल के व्यक्ति ने जो जिम में जो जानकारी दे रहे थे उसने कहा जरा चलो आओ हमारे साथ दंड मार के दिखाओ। और जो जिम के ट्रेनर साहब थे वो उतना दंड नहीं मार पाए जितना उस 55-60 साल के उस व्यक्ति ने दंड मार दी। आज लोग बॉडी बनाने की बात करते हैं, भोजन बनाने की बात करते हैं। मैं सबको कहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं या जो मजदूर आपके अगल बगल काम कर रहे हैं या जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, आप उनकी बॉडी देख लीजिए, एकदम सिक्स पैक, वेरी गुड एब्स, वेरी गुड शोल्डर देख लीजिए। आप उनका भोजन देखिए भैया, वो रोटी के साथ या तो चना या गुड़ या वो सब्जी जो खा रहे हैं उसके बाद वो स्वीट्स मिठाई की जगह गुड़ खाते हुए दिखेंगे। वो जब अपने काम का ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी लें। आज हम और आप बोल रहे हैं कि अंकुर चना खाना चाहिए, वो एक अपने कहते हैं पोटली में चना बांध कर मूंगफली बांध के लाते हैं। और कहते ना लोग महंगा महंगा प्रोटीन खरीद रहे हैं, महंगा महंगा वो खा रहे हैं, वो बेसिक न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोटीन जो है वो मूंगफली से और चने से ले रहे हैं, और एक्सरसाइज उनका काम है उसकी वजह से ले रहे हैं, और वो बहुत अच्छे फिट हैं भैया, बहुत अच्छे फिट हैं। तो आपको जो जानकारी मिली है अपने घर में वो जान, और स्पेशली भारतीय परिवेश में फिर बोलूंगा, वो जानकारी बहुत अच्छी है, आपके लिए बड़ी अच्छी है, और उसका प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर करिए।
0: जब इन बातों को सुनते हैं तो बहुत सारे लोग जो अपने घर में जो पारंपरिक रूप से जो जानकारी वो सुनते आए हैं, जिन चीजों का उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जो ज्ञान मिला है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आज जब हम इन सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो बीमार पड़ना और आसान होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे और आप ये कह रहे थे कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सिर से लेकर पैर के नोक तक हर एक अंग को प्रभावित करता है। आपने आंखों का उदाहरण दिया था कि आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है जिसकी वजह से व्यक्ति आंखों से अंधा हो सकता है अगर वो डायबिटीज की सही जांच न करवाए और इसका इलाज न करवाए। वैसे ही आपने ये कहा था कि किडनी और अलग अलग अंगों पर इसका असर होता है, वैसा आपने बताया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये हमारे शरीर के दूसरे दूसरे अंगों पर प्रभाव डालने के लिए इसको कोई लंबा समय चाहिए या कभी भी हो सकता है, और शरीर के अंगों पर प्रभाव डालता है तो ये कब डालता है, ये भी लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है।
1: श्री भैया, मैं अपने श्रोताओं को एक और बात बोलना चाहूंगा आज की, हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो आपको सजग बनाने के लिए दे रहे हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं। और अगर आप सजग रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और यदि आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप उसको कैसे बढ़ने न दिया जाए और कैसे आपके परिवार के लोग उससे बच पाए, इसकी जानकारी देना चाह रहे हैं। डायबिटीज की जो हमने बात की उसमें जिन चार अंगों के बारे में कल हमने बात की कि आंख के बारे में हृदय, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी मतलब हृदय पर, और डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब नसों पर। और महिलाओं में एक चीज और बोलना चाहूंगा या पुरुषों में भी कि एक कंधा जाम हो जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था अपने पुराने लेक्चर में कि डायबिटीज कुछ करता नहीं है, वो चोरों के जो झुंड है उसका सबसे छोटा चोर है जो सिर्फ ताला तोड़ना जानता है, और वो ताला तोड़ के आपके शरीर में, अगर वो ताला तोड़ता है तो जैसे कोई चोर ने दुकान का ताला तोड़ दिया है और जो चाहे उसके अंदर घुस जाए, इसी तरीके से डायबिटीज वो चोर है जो आपके शरीर का जो है वो ताला तोड़ देता है और जो बीमारी चाहे उसके अंदर घुस जाए, वो इस तरह से आपके शरीर को नुकसान करता है। कब हुई ये अगर हमको नहीं मालूम चला तो थोड़े दिनों बाद जब वो किसी न किसी अंग को परेशान करने लगता है तब उस अंग के डॉक्टर के पास या उस बीमारी को हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग को मालूम चलता अरे हमको डायबिटीज हो गई होगी। तीन जो सबसे तो कॉमन लक्षण है या जो सबसे साधारण लक्षण है वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। ये तीन चीज जो तीन सिम्टम सबसे ज्यादा कॉमनली मरीज को मिलते हैं, पहला कि उसको पेशाब बहुत होने लगती है, उसको बार बार जो है वो पेशाब करने या यूरिनेशन करने के लिए जाना पड़ता है और उसकी रात की नींद भी है वो भी डिस्टर्ब होती है और उसको रात में भी पेशाब करने जाना पड़ता है। कभी कभार उसको सडन जो है वो मतलब वो कहीं बैठा होता है तो सडनली एक बड़ी तेज पेशाब आती है, वो जैसे कहता है भागो नहीं तो पैंट में हो जाएगी, इस तरह की अर्जेंसी उसको होने लगती है। दूसरा कि जब आपको बहुत पेशाब होगी तो आपको बहुत ज्यादा पानी की जो है वो जरूरत महसूस होगी, तो आप हद से ज्यादा पानी पीने लगेंगे, आप बहुत ही पिएंगे और आप बहुत ज्यादा पेशाब करेंगे। और तीसरा जो आप परेशान होंगे वो होगा कि आप इतना पेशाब कर रहे हैं, इतना पानी पी रहे हैं और वो जो चीनी है वो आपके कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पा रही है, तो आपकी जो कोशिकाएं हैं उनको थकान लगेगी, तो वो बार बार कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है तो बार बार वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि भाई हमको तो भोजन ही नहीं मिल रहा है, भोजन ही नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति ज्यादा खाना खाने लगता है। और एक लक्षण और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं खा बहुत रहा हूं पर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है और मुझे बहुत पेशाब आ रही है और मुझे बहुत ज्यादा पानी पीने का मन कर रहा है। तो यदि ऐसा कोई भी लक्षण जिसमें बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, आप बहुत ज्यादा पेशाब कर रहे हो, आपका बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही हो, बहुत ज्यादा भोजन करने के बाद भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा हो, आपके चश्मे का नंबर बार बार बढ़ रहा हो, आपके कंधे जाम होते चले जा रहे हो, बहुत दर्द हो रहा हो, तो कृपा करके हो सकता है कि ये डायबिटीज हो, तुरंत आपको जाकर एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना जो रक्त की जांच होती है शुगर के लिए, चीनी के लिए, उसको तुरंत कराना चाहिए। जहां तक हम लोग ने चार बीमारियों की कल बात की और उसके पहले के एपिसोड में बोला था कि ये सर से लेके पैर तक सब चीज को असर अपना दिखा सकता है, तो ये आपको सर के ऊपर आपको भयंकर डैंड्रफ आपके बालों में कर सकता है, आपको ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। अच्छा, बेहोश क्यों होंगे? क्योंकि हमारा दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से चलता है, हमारे दिमाग को कोई और भोजन नहीं चाहिए, वो सिर्फ ग्लूकोज को ही अपना भोजन मानता है। और जब हमारे को इंसुलिन कम होने लगता है तो हमारे जो दिमाग की कोशिकाएं हैं उसके अंदर ये ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है, और जब वो ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है तो जो व्यक्ति है उसके दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो भी मरने लगती हैं। और क्योंकि वो हमारे दिमाग को भैया दो चीजें हमेशा चाहिए, एक ऑक्सीजन और दूसरा ग्लूकोज, तो ये दोनों चीजें में से अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन या ग्लूकोज हमारे दिमाग को नहीं मिलेगा तो ये तुरंत अपना असर दिखाने लगेगा। आप देखिए कि अगर आदमी सांस पानी के अंदर नहीं ले पाता है और जैसे ही वो अगर स्विमिंग पूल या समुंदर में जाता है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो छटपटाने लगता है, तुरंत बाहर आता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलती है वो परेशान हो जाता है और सिग्नल देता है भाई तुरंत बाहर निकलो, सांस लो। तो आप नोटिस भी किए होंगे भैया कि हम लोग जब तरन ताल में या स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं तो एक बार बड़ी गहरी सी सांस लेते हैं करके, क्योंकि वो जो हवा है वो तुरंत हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन देती है, और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन के बाद जो चीज चाहिए वो शुगर है, और जहां शुगर हमारे बॉडी में गड़बड़ाता है तो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं मरने लगती हैं और हमारे ब्रेन में स्ट्रोक भी हो सकता है। मैंने बताया बहुत प्यास लग सकती है, आंख की आपको बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपकी जो पसीना है वो भी महकने लगता है और वो एक अलग सा महक आपको महसूस होती है और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके अगल बगल वाले बोलते हैं अरे तुम कुछ अलग तरह से महक रहे हो, एक अजीब सी महक आ रही है तुम्हारे में। तो सोचिए वो शुगर जो शरीर में नहीं जा पा रहा है वो भी हमारे शरीर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है और हमारी इवन हमारा जो स्वेट है पसीना है वो भी अलग तरह से महकने लगता है। हमारा हृदय की मैंने बात की कि हमारे हार्ट डिजीजेस के हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं, हमें त्वचा रोग हो सकता है, हमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमारी शरीर में कोई जिस इन्फेक्शन का नाम लीजिए वो हमें हो सकता है क्योंकि खूब सारा भोजन है बैक्टीरिया वायरस फंगस के लिए तो वो खूब अच्छे से घूम टहल रहे होते हैं। हमको बहुत थकान लग सकती है। अब लोग पूछेंगे भाई चीनी तो है ही है, तब थकान क्यों लग रही है? क्योंकि वो चीनी या जो शुगर हमारे रक्त संचार में चल रहा है वो कोशिकाएं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। तो हाई ब्लड शुगर एंड लो इंट्रा सेलुलर शुगर हो जाता है, मतलब खून में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, कोशिकाओं में चीनी की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा थकान होने लगती है।
0: डॉक्टर जब आप इस बात को बताते हैं कि खून के अंदर तो चीनी की मात्रा है मगर कोशिकाएं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं या वो कोशिकाओं के अंदर वो चीज जा नहीं रही है, तो प्रश्न उठता है कि जब चीनी है और वो खून के अंदर है और वो कोशिका के अंदर नहीं जा रही है तो फिर उस चीनी का होता क्या है? क्योंकि वो चीनी इस्तेमाल नहीं हो रही है, कोशिकाएं उसका उपयोग नहीं कर रही है, तो वो चीनी होगा क्या उसका?
1: वो चीनी हमारे शरीर में किसी काम की नहीं रहती है। और आप ये व्यथा समझ लीजिए कि आप समुन्द्र में आपकी नाव चल रही है और आप पानी से घिरे हुए हैं मगर आप उस पानी को पी नहीं सकते, तो जो कोशिकाएं हैं वो चीनी से घिरी हुई हैं मगर इंसुलिन नहीं है तो वो कोशिका के अंदर नहीं जा पा रहा है। अब अंदर नहीं जा पा रहा है तो वो रक्त में बढ़ता चला जाएगा, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो जगह जगह से बाहर निकलना शुरू करेगा और सबसे कॉमनली वो हमारे पेशाब के रास्ते वो बाहर निकलता है। ये करीब 30-35-40 साल पहले जब ब्लड शुगर की जांचें बहुत कॉमन नहीं थी और बहुत जगह पे जब मेडिकल फैसिलिटी पहुंची नहीं थी तो डायबिटीज की डायग्नोसिस करने के लिए एक ये बात बोली जाती थी कि जहां आप पेशाब करते हैं वहां पे चींटी या कीड़े तो नहीं आ जाते हैं, इतना शुगर हमारी बॉडी के बाहर निकलने लगता है। और जब ये शुगर बाहर निकलता है सोचिए कि वो इतना ज्यादा हो गया है कि वो यूरिन के रास्ते आपके बाहर निकल रहा है और वो बाहर जो कीड़े मकोड़े चींटियां हैं उनको बुला रहा है, तो आपके शरीर के अंदर जो होंगे कितने बैक्टीरिया कितने वायरस कितने फंगस घूम रहे हैं उनको कितना अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड देगा जिससे वो भयंकर मल्टीप्लाई करके आपको बीमार कर दे। तो शुगर की बीमारी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अकेली ऐसी बीमारी है जो सारे के सारे अंगों को असर करती है। एक और बड़ी बात है कि इसको कहा जाता था कि जब मेडिकल में पढ़ाई कराई जाती थी पहले तो दो तरह की बीमारियों में सारी बीमारी बांटी गई थी, एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, मतलब जो एक छुआछूत से होगी और दूसरी जो आप छू भी दीजिए तो नहीं होगी। आप सोचिए कि पहले जो अगर मेरे श्रोतागण सुन रहे होंगे कि पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता अरे इसको कोढ़ है इससे दूर रहो, या इसको टीबी हो गई है इसको बाहर दूर भेजना है। अब आप ये देखिए कि कहीं कोई कोढ़ या लेप्रोसी उसकी बात ही नहीं कर रहा है, इवन ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, या वो मेडिकल लोग बात कर रहे हैं मगर आप कॉमनली आम जनमानस में इसकी बात नहीं हो रही है। हम बात क्या कर रहे हैं? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और अस्थमा, चारों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चारों जो आपको हो सकती हैं और चारों जो आपके शरीर को खराब कर सकती। और पहले हम सारा यही दिमाग, कोविड सबको याद होगा कितनी बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज आई थी, एक से दूसरे को हो सकता है, चलो सबको बंद कर दो, कोई नहीं बाहर निकलेगा, कोई कुछ नहीं होगा। भैया कोविड ने लोगों को बहुत बीमार किया मगर उस समय लोगों ने अच्छा खाया क्योंकि ऋतु के अनुसार आप ट्रांसपोर्टेशन बंद था तो लोकली फ्रूट वेजिटेबल मिल रहे थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, तो पोल्यूशन कम हो गया था और आदमी घर पे बैठा हुआ था, खाली था, तो एक्सरसाइज कर रहा था, वर्जिश कर रहा था, ठीक कर रहा था, अपने आप को ज्यादा अच्छा ठीक रख रहा था और टेंशन बहुत कम हो गया था क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे, आदमी लोग के ऑफिस बंद हो गए थे, तो लोग अपने घर में थे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो समस्याएं थी वो कम होने लग गई थी। तो अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे से रहेंगे और अच्छा एक्सरसाइज करेंगे तो हो हमारी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें भी हमको आराम मिल जाएगा।
0: ये बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आ रही है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी जो छुआछूत से नहीं फैलने वाली बीमारियां हैं, इसके बारे में अगर हम थोड़ी जागरूकता रखते हैं तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज आवश्यकता है कि हम सजग बने अपने स्वास्थ्य के प्रति और जो बीमारियां हो रही हैं उसके कारण को समझें और उसके लिए स्वास्थ्य की तरफ कदम बढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए कुछ करें। आज समय को देखते हैं रुकना होगा, मगर आज डायबिटीज के विषय में बहुत ही पुख्ता जानकारी आज हासिल हुई है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी डायबिटीज के चिन्हों के ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप अधिक मात्रा में पानी पी रहे हैं या बार बार पेशाब के लिए जा रहे हैं, जहां पेशाब करते हैं वहां पर अगर चींटियां या मकोड़े आते हैं, जो ये बताता है कि आपके पेशाब के रास्ते बहुत सारी चीनी निकल रही है अपने शरीर से, तो आप डायबिटीज के मरीज हो सकते हैं और आपको तुरंत इलाज के लिए या डायबिटीज के इस बीमारी का पता करने के लिए खून पेशाब की जांच करवानी चाहिए और डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। आज के सेहत स्वास्थ्य में यही रुकते हैं। आज आप सभी श्रोता मित्रों को इतनी नई जानकारियां डॉक्टर मोदी जी ने दी, इसके लिए आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही। जो जानकारी सुनी है उस पर अमल करना जरूरी है। ध्यान देना शुरू करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो, मेरा नाम दीपक है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। विचार हमारे मन में ही उपजते हैं। कौन से वो विचार होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, और कुछ विचार ऐसे हैं जो हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि जो विचार हमें गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं या फिर नेगेटिव हैं, उन्हें एक मोड़ पर या जब एहसास हो तभी एक अलग राह पर लेकर मोड़ देना चाहिए और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का सहारा लेना चाहिए। ऐसे में मेडिटेशन काम आती है, क्योंकि यही विचार, यही जो थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हमारे पास हैं, ये हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। तो आज एक बार फिर इसी बात पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से अपने विचारों को मोड़ने का ये सफर हम तय कर सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम पीछे देखें तो आपने कहा था कि जो विचार कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं, उन्हें मोड़ना जरूरी है।
2: तो अनावश्यक भी है, सिर्फ नेगेटिव ना भी हो, अनावश्यक है उसे भी मोड़ना।
1: हाँ, जो जरूरी ही नहीं है, जो
2: वेस्ट है।
1: और हम ये भी कहते हैं कि एक मिनट में अगर हमने लगाम नहीं लगाई तो विचार जो हैं वो एक मिनट में 25 से 30 विचार जो आ जाते हैं, तो मतलब अगर हम देखें तो दिन में जागते हुए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से ये बात आती है, सोते वक्त भी विचार आते हैं?
2: स्वप्नों में आते ही है ना।
1: हाँ, तो सोते हुए भी विचार, उनको भी क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं?
2: वो भी कर सकते हैं। जैसे बहुत ही अच्छी बात है कि क्या करना चाहिए, भी किसी ने कभी स्वप्न आते हैं, चलो स्वप्न आते कोई बात नहीं, परंतु इतने सजग हो जाओ, हम जागृति की भी बात कर रहे थे कि भी इतनी अवेयरनेस आ जाए, बल आप सो रहे लेकिन अगर जागृति के साथ सो रहे तो ये भी आपको पता चल जाए कि ये स्वप्न आ रहा है, तो भी आपका कल्याण हो गया।
1: बहुत अच्छा।
2: ये पता ही नहीं होता कि भी मुझे स्वप्न आ रहा है।
1: बहुत, मतलब अपने ऊपर काम करना कितना इंटरेस्टिंग है। हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि हम मैथमेटिक्स के जो सवाल हैं वो करते हैं, कितनी मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं,
3: क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करते हैं,
1: और कितना इंटरेस्टिंग होता है, कितना मजा आता है। तो ये खुद को सॉल्व कर रहे हैं, जो मैं एक पहेली हूँ उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो विचारों को चेंज करने की बात है, वो भी एक टेक्निक है। आपने पिछली बार कहा था कि 5 स्टेप्स पे काम करके, जैसे स्टेप्स, जिसको मैथमेटिक्स का बहुत इंटरेस्ट है, हर स्टेप जो है वो सही होना चाहिए, तभी आंसर सही निकलेगा। तो 5 स्टेप्स इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वो ये थे, विचारों को अगर हमें मोड़ना है, पहला सजग हो जाना, अवेयर होना कि विचार हैं या कौन सा विचार चल रहा है। सेकेंड होता है उन्हें कैच करना कि क्या वो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो थर्ड पॉइंट आता है अंडरलाइन करना उनका वो एहसास, उसे बता देना, वो शब्द भी हो सकता है आपने कहा था। और फोर्थ होता है

0: स्टॉप करना, उस विचार को रोकना, एंड देन फिफ्थ इज ट्रांसफॉर्मेशन.
1: वेरी गुड.
0: तो चलिए ये तो मुझे याद रहा. लेकिन अवेयरनेस, जो सजगता की बात है, कि हमने कोशिश ये की थी कि सजग कैसे होना है. एक एक्सरसाइज ये भी थी कि सिर्फ वॉच करना है, वो अभी भी उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. सजग नहीं हो पा रहे हैं हम. तो कुछ और ज्यादा डिटेल में बताएंगे डॉक्टर पटेल और सिस्टर शिवानी.
2: एक सिंपल चीज तो ये करो कि भी समय निकालो. मैंने कहा था कम से कम 15 मिनट का समय जरूर निकालो.
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा क्रॉसवर्ड के लिए हम 2 घंटे निकाल लेंगे.
3: वो सुडोकू खेलते हैं आजकल. हाँ. कितनी देर लगाते हैं उस पे, है ना. और क्रॉसवर्ड या कुछ भी ऐसा लेकर हम बैठ जाएं तो हम कितनी देर बैठे रहेंगे जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट. वाई डू वी गिव अप ऑन आर सेल्व्स सो फास्ट. हम क्या करते हैं, ज्यादातर 5 मिनट बैठे, नहीं हो रहा, उठ जाओ, यू नो, अपने ऊपर बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. सो इट विल टेक लिटिल टाइम.
0: डॉक्टर साहब, वेन सिस्टर शिवानी, ये जो आपने कहा कि हम अपने ऊपर वक्त, अपने को वक्त नहीं देते, कितनी सारी चीज़ों को और वक्त देते हैं. एक मेल यहाँ मैं आपको चाहूँगी, क्योंकि इतनी सारे मेल्स आ रहे हैं, इतने इंस्पायरिंग मेल्स हैं. एक ये लड़की है हमारे, हमारी जो दर्शक हैं, अंकिता माहेश्वरी, छोटी सी हमारी ये एक दर्शक हैं, 17 ईयर ओल्ड हैं, बैंगलोर से इन्होंने लिखा है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं. और इनका इन्होंने लिखा है कि आई बिन वॉचिंग योर प्रोग्राम फॉर लास्ट 3 मंथ्स. And I'm highly influenced by it. Your rational and logical approach is very impressive, and I strongly appreciate your stupendous program. What she says actually, which is more inspiring for us, is that the problem I faced earlier was inferiority complex, so-called depression, sometimes negative thoughts and many more. I was simply hopeless. It's 2 months since I'm doing meditation. Believe me, I feel so good. That's amazing. 17 year old. अगर हम पीछे याद करें तो एक 16 साल की लड़की का हमने ये किया था कि पता ही नहीं चला क्यों सुसाइड उसने कमिट किया. एंड वी हैव अनदर यंग गर्ल इंस्पायरिंग, यू नो, लाइक सच एन इंस्पायरिंग ईमेल. एंड वॉट शी राइट्स इन द एंड इज लाइक वेरी गुड. आई वुड लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स. शी सेज, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर माई लाइफ विच हैज बिकम दिस ब्यूटिफुल अगेन. See, life is beautiful. We all feel that life is beautiful. Thank you, Ankita, and we are really thankful to you. We wish you all the best. लेकिन सिस्टर शिवम,
2: और भी एग्जांपल है सर,
0: जैसे बहुत सारे ऐसे मेल्स आए हैं.
2: अहमदाबाद में मुझे एक बहन मिली थी, उसे भी जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थे. उनके पति कुछ जॉब नहीं करते थे, 2 बेटियों को संभालना था. वी वर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि भी हम बहुत गरीब है. और उसको दोनों चीजें मेंटेन करनी थी, तो शी यूज्ड टू क्राई इवन. उसकी बेटी है, उसने कहीं बार कहा कि मम्मी तुम तो नींद में रो रही थी बहुत बार. शी वाज रियली डिप्रेस्ड. लेकिन जब राजयोग सेंटर पे आई तो नाउ शी इज डांसिंग.
0: यही, दिस इज व्हाट इट इज.
2: एंड हाउ इट हैपेंड, डू यू नो, कि मैं अहमदाबाद गया था, वहां पर तो भागती भागती मेरे पास आई, उसने कहा आप डॉक्टर गिरीश पटेल? मैंने कहा हाँ. तो उसने कहा नहीं, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था और वो प्रोग्राम से मैं सेंटर पर आई. कहते भी हम तो फाइनेंशियल इतने क्राइसिस है हमको, परंतु बहुत अच्छी बात ये प्रोग्राम में हुई कि आप लोगों ने यह कहा कि यह कोर्स विनामूल्य है. तो कहते उसी से मुझे इंटरेस्ट हो गया. और उसने पता है कहाँ से, उसने आस्क मी सर्विस से ब्रह्मा कुमार इसका फोन नंबर भी फाइंड आउट किया. एंड शी स्टार्टेड गोइंग रेगुलर.
0: इफ यू वांट टू डू इट, लाइक आपको कहीं भी कोई, फिर एक बार जब रास्ता होता है तो मिल ही जाता है अगर आपको ढूंढना है. और ये बात कि लाइफ इज ब्यूटिफुल अगेन.
3: अगेन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट.
0: यस, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय इट. कि लाइफ इज ऑलरेडी ब्यूटीफुल. एक फेज, एक जिंदगी ऐसी जीते जीते हम सोते हुए गुजार देते हैं. मतलब आज मैं भी ये कहने लग गई हूँ, क्योंकि अवेयरनेस और अवेकनिंग, जागरण जिसे हम कह रहे थे, पहले भी हमने बात की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
2: यूथ इज द बेस्ट एज ऑल्सो, दिस इज द राइट एज.
0: वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल्सो, कि सही वक्त क्या है. हम इतने देर बाद जागे, उसे अच्छा पहले ही रास्ता जो तय कर रहे हैं तब कर लें. अगेन सजगता पे आते हैं, कि विचारों की सजगता, कि ये तो इतनी जल्दी इन्होंने समझ लिया, ये कह रहे हैं 2 महीने में ये यहाँ तक पहुँच गई. उनको विचारों के प्रति सजग हो पाना, जो एक्सरसाइजेज आप कह रहे हैं कि दिन में अगर हम 15-20 मिनट पे निकाल लें, कौन सा सबसे सही वक्त होगा? आपसे पूछते हैं सत्य शिवानी.
3: अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले, क्योंकि जय सबसे पहले उठते हैं, यू नो, क्योंकि बिना बिल्कुल किसी से बात किए कोई भी और एक्टिविटी में गए, क्योंकि जितना एकदम तब माइंड एकदम साइलेंट होता है ना, एंड वी वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर थॉट. हम चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने का अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं. इट्स एन एक्सरसाइज. तो जब जैसे अगर हम एक्सरसाइज शाम को करें जब ऑलरेडी शरीर बहुत थका हुआ है तो इट्स लिटिल टायरिंग, और अगर मॉर्निंग में करें जब शरीर एकदम फ्रेश है. सिमिलरली माइंड की एक्सरसाइज भी जब माइंड बिल्कुल फ्रेश है मॉर्निंग में, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ी सी एक्टिव, दिस इज फॉर इनिशियल, बाद में तो वंस आपको प्रैक्टिस हो जाए आप कभी भी कर सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि जब बिना आपने किसी से बात नहीं की, अभी आपने न्यूज़पेपर नहीं देखा, आपने कुछ भी नहीं किया, टेलीविजन नहीं ऑन किया, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी माइंड में नहीं है. जैसे ही मैंने बात करनी शुरू कर दी तो वो एक साइकिल शुरू हो जाता है, या न्यूज़पेपर उठा लिया तो वी हैव गॉन इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर. तो फर्स्ट उठते ही थोड़ा सा फ्रेश होकर आप बैठ जाइए और अपना स्थान एक अलग सा बना लीजिए. स्थान का भी बहुत महत्व है कि हमारा एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ हम अगर पॉसिबल हो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, हम रोज़ उसी स्थान पर बैठकर मेडिटेशन करें उसी टाइम पर. यू नो, एक डिसिप्लिन. राजयोग ऑल्सो टीचेस सेल्फ डिसिप्लिन. टुडे आर लाइफ इज़ नॉट वेरी डिसिप्लिन. हमारा खाने का टाइम सेम नहीं है, सोने का टाइम, लेकिन मेडिटेशन करने का टाइम हम ट्राई करते हैं कि सेम रहे मॉर्निंग में, फ्रेश मॉर्निंग में, और स्पेस एक हो अलग से बैठे, क्योंकि धीरे धीरे उस स्थान के वाइब्रेशन बनते जाएंगे. जैसे मंदिर होता है तो मंदिर की एक अलग वाइब्रेशन होती है. तो आप देखो जब आप मंदिर जाते हो आपको प्योर थॉट्स क्रिएट करने में एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, वो नेचुरल है बिकॉज स्थान का. तो इसी तरह जब आप अपने घर में एक स्थान चूज करते हैं और रोज़ उधर ही करते हैं, धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस, पहले आप वाइब्रेशन बनाएंगे और फिर वही वाइब्रेशन आपको बहुत जल्दी उस स्टेज तक पहुंचने में
1: फैला रहे हो.
3: राइट. तो एक ऑरा सा, यू नो, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है उस जगह में. अगर हम ऐसे रूम में बैठे हैं जहां टेलीविजन चलता है तो फिर वो रूम का वाइब्रेशन इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि टीवी देखते समय ऑल काइंड ऑफ थॉट्स आर देयर, वायलेंस, नेगेटिव. तो प्रेफरेबली वो रूम नहीं, प्रेफरेबली वो रूम नहीं जहाँ हम जस्ट सोकर उठे हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग सोकर उठकर बेड पर बैठ जाते हैं, यू नो, मेडिटेशन करने, तो वो फिर नींद आ जाती है क्योंकि उस स्थान की नींद के वाइब्रेशन है. तो या तो जहाँ आपका ऑलरेडी कहीं पूजा का स्थान बना है आप उस स्थान पर बैठ सकते हैं, या नेचर में अगर बैठें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे बालकनी में, टेरेस पे, या फिर जो भी स्थान, क्योंकि हर एक के घर के भी. तो एक अर्ली मॉर्निंग टाइम बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम पर दो फैक्टर होते हैं, एक तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश है, एंड बाकी सब लोग अगर उस टाइम अभी भी डोमेंट अवस्था में है, यू नो, जितना जितने लोग जागते जाएंगे
1: उतनी हलचल होती
3: है, उतनी हलचल, जैसे हम कहते हैं ना,
1: साइलेंस होगा.
3: हाँ, मतलब इट्स एज सिंपल एज कि मुझे अगर ड्राइव करके कहीं जाना है तो आई से लेट्स गो एट 6 in the morning. 6 बजे सुबह निकलेंगे, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हम जल्दी पहुंच, द जर्नी विल बी इजियर फॉर मी. जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और लोग सड़क पर आते जाएंगे, मैं अटकता जाऊंगा रास्ते में. सेम थिंग, जैसे जैसे लोग जागते जाएंगे थॉट्स वाइब्रेशन वायुमंडल में आते जाएंगे, और क्योंकि मेजोरिटी थॉट्स आज बहुत नेगेटिव और वेस्ट में है, तो देन दैट इज द एनवायरमेंट इन द हाउस एंड ओवरऑल. तो उस वायुमंडल में फिर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करना, इट्स स्टिल पॉसिबल, जस्ट गेट्स लिटिल टफर. जर्नी फिर भी पॉसिबल है. तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उस टाइम उठकर बैठते हैं जब मेजोरिटी लोग अभी भी सोए हुए हैं, सो वी फिनिश आवर जर्नी at that time. तो morning का एक time बहुत अच्छा है. एक evening time, जब आप सब कुछ अपना wind up कर लेते हैं, जिसको हम संध्या का समय भी कहते हैं ना, just before sunset, हम उस समय भी बैठें तो vibration बहुत अच्छा लगता है. And then before going to sleep. क्योंकि बिफोर गोइंग टू स्लीप हमें सारा दिन की जो थॉट्स है उसको बिल्कुल, यू नो, डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड एनी अकाउंट. नहीं तो क्या होगा, जिस थॉट्स में हम सोते हैं अगले दिन सवेरे फर्स्ट डोमिनेंट थॉट वही आ जाता है, आज उसने मुझे ऐसा कहा था, ये हुआ, ये सोचते सोचते सो गए, कल सुबह उठते पहले उसी का चेहरा सामने आएगा. और फिर एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुबह हमने सबसे पहले कौन सी थॉट क्रिएट की, वो हमारा पूरा दिन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है. और उसी के लिए आज तक अभी तक दुनिया में लोग कहते हैं सुबह सुबह पता नहीं किसका चेहरा आज देखा था, यू नो, तो इट्स नॉट किसी का चेहरा, लेकिन ये मेरा जो मन है इसमें सुबह सुबह सबसे पहला
1: विचार क्या है?
3: कौन सा आया था, वो मेरे दिन का फाउंडेशन है. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल फर्स्ट थॉट कौन सी है, और कॉन्शियसली अगर थोड़े दिन के लिए अटेंशन रखे कि फर्स्ट थॉट परमात्मा से याद की हो, यू नो फॉर मी इट वुड बी गुड मॉर्निंग टू हिम.

0: सबसे पहले मुझे याद कौन आता है? अभी पहले क्या होता था, सबसे पहले संबंध, दोस्त सारे याद आते थे, उनसे मदद मांगते थे, फिर कोई हेल्प नहीं कर पाता था, फिर कहते हैं भगवान कोई हेल्प नहीं कर रहा, अब आप हेल्प करो. लेकिन जब गॉड के साथ, परमात्मा के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप वो बने, फर्स्ट थॉट उसी को याद करते हैं और फिर किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
1: मेडिकल रीजन भी है इसमें. कहते हैं शरीर में जो हार्मोन्स है, हमारे दो प्रकार के हार्मोन है, एक तो अच्छे हार्मोन और दूसरे बुरे हार्मोन. जैसे कॉर्टिसोल एक बुरा हार्मोन है, तो ये कॉर्टिसोल का लेवल सबसे ज्यादा होता है, डबल होता है सवेरे.
2: अच्छा, मॉर्निंग में.
1: हाँ, और आफ्टरनून में आप लो तो उससे आधा होगा. तो उस समय ये जो बुरा हार्मोन है उसे भी कम करने की जरूरत है. तो सवेरे सवेरे उठ के थोड़ा आप ऐसे अवेयरनेस करो, मेडिटेशन करो, तो उसको आप कम कर सकेंगे. कहेंगे सुबह शुगर भी सबसे लो होती है, फास्टिंग शुगर उस समय सबसे लोएस्ट है, तो उस समय भी आप ऐसे मेडिटेशन करो तो देन यू विल बी इन ट्यून विथ योर सेल्फ. अपने उसके साथ डील करना सीखेंगे, तो दिन में भी कभी शुगर लो हो तो यू आर एबल टू डील विथ इट प्रॉपरली.
0: क्रिएटिविटी भी कहते हैं ना, उस टाइम पर बहुत अच्छी होती
1: है.
2: और एब्जॉर्ब करने की पावर, आपने कहा था कि ब्लॉटिंग पेपर की तरह.
0: और ज्यादातर हमने देखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कोई डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई वर्क से रिलेटेड डिसीशन है, कई बार सारा सारा दिन सोचते रहते हैं कि क्या इसके लिए करना
2: चाहिए.
0: स्लीप ओवर इट, बिकॉज मॉर्निंग जब आप उठेंगे वो एकदम क्लीन माइंड और इंटेलेक्ट के साथ, द सोल्यूशन इज जस्ट देयर
2: एंड क्लियर.
0: एब्सोल्युटली, इट कम्स लाइक दिस, प्रोवाइडेड आप उसको देख रहे हैं. सी अगेन, दैट्स इंट्यूशन. क्या है, कई लोग कहते हैं ये बहुत क्रिएटिव है, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ. यू नो, इनको बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं, सबको आते हैं. I think everybody is creative. Everybody is creative. Everybody is intuitive. Intuition हर एक की work करती है, लेकिन हम में से majority के इतने ऊपर इतनी सारी layers हैं, you know, noise की और waste thoughts की, कि वो intuition वाली layer
1: ऊपर नहीं
0: आती ही नहीं है. तो ये morning time उसके लिए बहुत अच्छा है. तो बहुत अनुभव है हम सबके कि morning में ऐसी कोई thought आ जाती है, which is like हम सोचते हैं पहले नहीं आइडिया आया ये वाला,
2: और सारे दिन के लिए हमें तैयार भी कर
0: देते हैं फाउंडेशन.
2: सो अगेन, पहले हमने शुरुआत, सी विल अगेन कम डाउन टू दैट ओनली, कि शुरुआत हमें, क्योंकि अभी भी हम,
0: और अगर उस टाइम आप वो अवेयरनेस वाला प्रोसेस प्रैक्टिस करेंगे, सी अगेन, लुक एट इट व्हेन इट्स द स्लोएस्ट, है ना, माइंड जब स्लोएस्ट स्पीड पर है तब उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो प्रोसेस विल बी सिंपलर.
2: तो वही
1: मोर डीपर इवन, जैसे अवेयरनेस क्यों, तो इसलिए क्योंकि अवेयरनेस से हम डीप जाना चाहते हैं, हमारी चेतना की गहराइयों में जाना चाहते हैं, वह भी अवेयरनेस से ही होगा.
0: और जो सुप्रा कॉन्शियस की बात की थी जागने की, वो भी उसी समय ही, मतलब अर्ली मॉर्निंग टाइम पे भी पॉसिबल है. लेकिन अर्ली मॉर्निंग की डेफिनेशन भी आज हम सब में मेजोरिटी के लिए चेंज हो गई है. तो व्हाट पर्टिकुलर टाइम,
1: जब सब सोए,
0: जब सब सोए.
2: तो जब अगर सभी मेडिटेशन करना चाहते हैं
1: तो
2: सपोज, तो फिर तब क्या होगा? तब
0: अपनी जगह पे गुड टाइम इज बिटवीन 4 and 5.
2: ओके, 4 and 5.
1: 1% करेगा, 5% करेगा. तो फिर उसके बाद, ये
2: इसके बाद कोई सो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता?
0: नहीं, ऐसा हो
1: अच्छा है. ऐसा तो बेस्ट तो ये है
0: कि नहीं सोए उसके बाद, लेकिन डिपेंड्स दिनचर्या पे.
1: दिनचर्या पर थोड़ा सा, लेकिन नहीं सोए तो बेस्ट है. फिर भले थोड़ा देरी से आफ्टरनून में शॉर्ट एक माइक्रो स्लीप भले ले लो,
2: नैप लेके,
1: परंतु उस समय नहीं हो तो बेस्ट है.
2: यू आर
1: क्रिएटिव. आपने एक बार इंजन को स्टार्ट किया, फिर से बंद किया, फिर से स्टार्ट किया, वो अच्छा नहीं.
2: तो 4 से 5 बजे के बीच, या 5 to 5:30, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि यूजुअली
1: लोगों के लिए
2: 6 बजे तक तो लोग उठते मैंने सुना है, क्योंकि काफी सारी तैयारियां करनी होती हैं. तो 5:30 तक अगर, कई लोग मैंने देखा है जो व्यायाम के लिए जाते हैं, जो योगा के लिए जाते हैं, वो लोग 5:30-6 बजे एग्जैक्ट उठ के जाते हैं, वॉक करके आते हैं, फिर अपनी बाकी चीजें शुरू करते हैं. डॉक्टर साहब, शिवानी बहन, अभी तक तो हमने ये तो बात कर ली कि सजगता के लिए सबसे अच्छा टाइम सुबह है, अगर हम सुबह करें, या आपने कहा कि संध्या काल भी, और खासकर सोते वक्त भी करें. एक पर्टिकुलर जगह तय कर लें, कि ये एक्चुअली ये सब इतना आसान है, किया जा सकता है. एक पर्टिकुलर जगह हम तय कर लें घर पे, वहाँ बैठ के शुरुआत करें परमात्मा से, हलो करके, नमस्कार करके, या उन्हें याद करके. आगे क्या करें
0: जब बैठते हैं उस टाइम पर? तो डिपेंड्स हर एक किस प्रोसेस से उसको करते हैं. राजयोग में जो हम करते हैं, क्योंकि थॉट्स को चैनलाइज करना है, सबसे पहले तो अपने

0: आपको रियलाइज कि अवेयरनेस भी कौन, कौन है जो मैं हूँ जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, कौन है जो मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या आंसर अंदर से निकलता है. जो हमने बात की कि ईगो है मैं को नहीं जानना, तो सेल्फ, अब ऑल दिस वी आर डूइंग ताकि हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़े, डिप्रेशन फिनिश्ड हो, हॉलोनेस फिनिश हो जाए, तो वो सब तब ख़त्म होगा जब वो मैं की अवेयरनेस होगी कि मैं कौन हूँ. तो वो आइडेंटिटी को अपनी फिर से पहचानना कि हु एम आई एक्चुअली. तो शुरू में वी जस्ट गो थ्रू अ रिलैक्सेशन प्रोसेस, जैसे गिरीश भाई ने भी बताया कि शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स कर दें, एक एक बॉडी के हर एक पार्ट को फील करते हुए उससे डिटैच होते जाएं. यू नो, डिटैच इन द सेंस, जैसे सपोज एक ये हाथ मेरा पड़ा है यहाँ, बहुत देर ऐसे ही रखे अगर एक पोजिशन में, थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है कि ये है ही नहीं, ये है नहीं, बट इट्स स्टिल देयर. लेकिन जैसे ही उसकी तरफ फिर ध्यान जाएगा, देन आई कैन फील इट्स देयर. तो इसलिए शरीर के एक एक अंग को उस तरह से फील करके फिर डिटैच होते जाए, एंड देन कम बैक टू दैट, दैट हु एम आई एक्चुअली, यू नो, एंड स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ. क्वेश्चन भी पूछते जाए, आंसर भी आता जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें थॉट से ही होनी है. द क्वेश्चन इज ऑल्सो अ थॉट, द आंसर इज ऑल्सो अ थॉट.
1: इट इज पार्ट ऑफ अवेयरनेस,
0: इट इज पार्ट ऑफ अवेयरनेस,
1: ये सजगता का ही एक भाग है.
2: नेक्स्ट स्टेप है सर, नो, बहुत अच्छा स्टेप है जो शिवानी बेन बता रहे हैं, दैट इज अ नेक्स्ट स्टेप. सजगता को अगर हमें प्योर, लाइक नो प्योर अवेयरनेस इफ वी आर टॉकिंग, तो उसमें कहते भी रिलैक्स होने का भी नहीं सोचो, सिर्फ आप उसे ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस उसी को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करो. और साक्षी भाव से जैसे आप ऑब्जर्व करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक विचारों की गति कम होगी.
1: साक्षी भाव से हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, वही
2: जो कुछ भी
1: जो हो रहा है
0: माइंड में, जो हो रहा है
2: अभी, एक माइंड में, बॉडी में भी कर सकते हैं वे शुरुआत. हाँ, बल्कि बॉडी में भी करना है तो करो, बॉडी में भी करो कि भाई आईब्रोज में क्या हो रहा है, आंखों में क्या हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, जीभ है वहाँ क्या हो रहा है, शोल्डर्स में क्या हो रहा है, ऐसे. लेकिन एक डायरेक्शन डिसाइड करो पहले, वो डिफरेंट हो सकता है. जैसे एक मैंने कैसेट देखी थी,
1: यही करें.
2: हाँ, कुछ दिन करो कम से कम.
1: नहीं, पर हर रोज एक ही एक्सरसाइज कीजिए, जैसे आपने कहा कि हर रोज एक ही जगह तय करें, तय एक ही जगह कर ली जाए कि वहीं करना है, टाइम वो कर लिया जाए. तो विचार भी क्या, या जो भी कर रहे
2: कम से कम
1: जो प्रोसेस हम करें,
2: कि एक आध मास है, जो पूरा मैं आपको थेरेपी बता रहा था 5 stages में,
1: बिल्कुल
2: उसका अगर ये हम स्टेप लेते हैं तो यही करो
1: 5 दिन हम ये तो, पर ये तो बहुत जल्दी अपने आप को समझ लेंगे हम.
2: नहीं, ये जल्दी उसमें, लेकिन जो डीप बेनिफिट्स है वो जल्दी नहीं आएंगे. अभी इसमें हम डीप
1: एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि हमें बैठना तो वहाँ 20 मिनट है ना, 20 से 25 मिनट है.
2: हाँ,
1: तो हम ये जो अवेयरनेस वाली बात है अपने बारे में, हम आंख में क्या जा रहा है, ये तो मुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा.
2: जल्दी नहीं करना है ना, वो 20 मिनट में यहाँ से नीचे पहुँचना है, जल्दी नहीं करो. इवन 45 मिनट्स भी कहते हैं, परंतु कम से कम मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको टाइम देना है तो मिनिमम 15 मिनट्स, क्योंकि इट कैन बी लॉन्गर ऑल्सो. तब है ना, क्या अभी फायदा. ये तो कहीं कहते ये तो बोरिंग एक्टिविटी है, क्या करना है हमको. परंतु इसका फायदा यह है कि आपके जो डीप रूटेड थॉट्स है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, चाहे डिप्रेशन न भी हो और भी आप में जेलसी क्रिएट कर रहे हैं और नेगेटिविटी ला रहे हैं, तो वह फिर आपको पता चल जाएंगे. जिसको कहेंगे कि हमारी गहराई में जो सबकॉन्शियस में है वह सरफेस पर आएंगे, उसी समय आएंगे कि भी आप यहाँ देख रहे क्या हो रहा है. तभी हो सकता है कि भी मेरा दोस्त है ना, वो बहुत अपने आप को अहंकारी समझता है, मुझे उसको कुछ करना पड़ेगा. तो वो विचार क्यों आया था, अभी दूसरा कोई नहीं आया, क्योंकि डीप में था.
0: कई डीप रूटेड चीजें इमर्ज हो जाती हैं,
2: रूट कॉज भी इमर्ज हो.
1: तो फिर कभी कभी हमें लगने लगेगा कि ओहो मैं तो कितना नेगेटिव हूँ.
0: दैट ऑल्सो हैपेंस, बट इट्स ओके. जैसे कहते हैं ना, होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू किया तो सारा वो निकल आएगा बाहर. दैट्स गुड, दैट्स अ साइन दैट इट्स ऑल कमिंग आउट.
2: पीपल स्टार्ट क्राइंग समटाइम,
1: कैथारसिस जो होता है,
2: वो हो सकता है. तो अच्छा, एक्चुअली वो बुरी साइन नहीं है कि आप अभी अपने आप को पहचानने लगे, जो है ना कैच की बात है. भी पहला था अवेयरनेस या वॉच, और फिर सेकंड है कैच.
1: और इसी में जो ये सारे विचार आते जाएंगे, आपको फिर वापस उसी पे पहुंचना है.
2: आपको तो वहीं
1: पहुंचना है कि भाई अब मैं गले तक पहुंचा था या मैं यहाँ कंधे तक पहुंचा था,
2: ठीक है. हाँ, तो उसको मैंने देख लिया कि विचार आया, ठीक है.
1: फिर उसने क्या किया उस विचार.
2: अगर आपको थेरेपी करनी है तो लिख भी लो भले, मैं कई बार ये कहता हूँ कि सचमुच अभी थेरेपी के रूप में हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ भले नोट भी कर लो तो शायद आप भूल जाएंगे 20 मिनट में कि क्या आया था।
1: अच्छा, ये विचार आया है।
2: भले नोट कर लो, कोई बात नहीं, और फिर से मुझे इसी में आगे बढ़ना है।
1: ओ, अच्छा,
2: तो फिर
1: अच्छा।
2: उसको कैच करने में आपको बहुत बड़ी मदद मिल सकेगी।
1: ओके, और आपने कहा कि कम से कम 5 दिन लगातार या 10 दिन?
2: ज्यादा, एक मास करो
0: कम से कम।
1: अच्छा, एक महीना सिर्फ यही एक्सरसाइज करते रहे?
2: हाँ, तब भी ना रूट मिल गया तो आपकी 50% विजय हो गई।
1: ओके,
2: रूट नहीं मिला, सारी जिंदगी कुछ भी करते रहो कोई फायदा नहीं।
1: और शुरू शुरू में लगेगा कि नहीं हो पा रहा हमसे, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते जाने, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है डीप विद इन कि दिस इज फॉर द गुड। क्योंकि हमारे सामने वो लक्ष्य दिख रहा है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँचना है। अवेयरनेस से शुरुआत करके ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँचना है। बहुत सुंदर, आज इनफैक्ट मेरे लिए भी एक बहुत अवेयरनेस की बात थी, मेरे लिए मुझे एक तरीका मिल गया, एक रास्ता मिल गया। बहुत से हमारे दर्शकों को ये रास्ता मिला होगा। हो सकता है मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हों, सब कुछ एक पूरा हर तरह के जो आस्पेक्ट्स हैं वो शामिल हैं, लेकिन ये खुद से बात करना, एक्चुअली खुद को पहचानना, अवेयर होना एक ज़रूरी एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ में। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग नाउ। सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर गिरीश पटेल, थैंक यू सो मच। और अगला कदम जो होगा वो कैच करने का होगा। ये आपने बताया तो है कि लिख लें, लेकिन कैच करना ज़रूरी हो जाएगा। एक जल्दी से रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है हमें। सुबह का समय अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संध्या के समय या फिर रात सोने से पहले एक जगह तय करेंगे, मंदिर या कोई भी ऐसी जगह जो लगता है हमें कि हम उसकी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर सकते हैं और वो पॉजिटिव रहेंगे और हम हर रोज़ वहीं बैठ सकते हैं। कोशिश करके देखते हैं, आज से मैं और आप सब प्रयास करते हैं कि ये एक समय निश्चित करके हर रोज़ हम शेयर भी करेंगे। आपके ईमेल्स और फ़ोन कॉल से हमें वो शेयरिंग ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद कोशिश ये करनी है, कोई भी तरीका अपना के कि 15 मिनट से अगर हम शुरू कर लें तो
2: ठीक है
1: तो 15 मिनट से हम ये पूरे प्रोसेस को शुरू करेंगे, अपने ही बारे में जानेंगे कि यहाँ से लेके पांव तक क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ, ये वॉच करेंगे। तो वॉच आप भी कीजिएगा, अपने आप को भी और इस प्रोग्राम को भी, क्योंकि हर कड़ी में हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे कैच करना है, कैसे जो वो विचार जो नेगेटिव हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म करने हैं उन्हें कैच करना है। तो अगर आपके पास कोई सवाल है या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि आपने ये जो सजगता का प्रोसेस है ये शुरू किया है कि नहीं, आप हमें फ़ोन पर या मेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर आज इस वादे के साथ एक दूसरे से कि ये प्रोसेस हम शुरू कर देंगे और जल्द ही हमें इसके जो अंजाम है, रिजल्ट्स हैं, ये भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दीजिए इजाज़त, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात। तब

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आज मंगल दिवस है और मंगल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 अगस्त 2026 आज का तारीख है। बड़ा अच्छा लग रहा है, 26 लिख के 20 लिखो, फिर से 26 लिखो, है ना। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे तारीखों को भी बच्चे जो है लिखते समय बड़ा खुशी महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी खुशी होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन को और यादगार बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक 1948 चार गते 10 श्रावण बुधवार आज है। ओह, आज बुधवार कैसे हो गया। सॉरी, आज बुधवार ही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बुधवार की आप सभी को। और इस्लामी हिजरी 1448 12 रबी उल अव्वल बुध आज है। और इसके साथ ही आज ओणम, ये एक फेस्टिवल है, और महिला समानता दिवस भी आज है। और आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार भाव जी, नमस्कार। कल का भी बहुत बढ़िया आनंद आया हमने, जो कल का भी प्रोग्राम सुनकर के हम मजा ले लिए। और आज का भगवान का एक भजन है सर, वो सुना देना सर।
0: बिल्कुल सुना देते हैं।
1: हाँ, भजन है।

0: हमारे घर आए भगवान, हमारे घर आए भगवान खुशी के दीप जलाए, हमारे घर आए भगवान खुशी के दीप जलाए। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको भी प्रणाम। सूरज भाई भी वचन सुनते होंगे, वो भी इंतजार करते होंगे। क्या नाम, बुधाराम जी भी है, भजन भाई भी है, सभी भाई है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गुड़ीलाल जी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए बुधवार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आज जैसे कि ओणम, महिला समानता दिवस और 12वां वफ़त, ये भी कोई फेस्टिवल है, तो इस तरह से आज जो है फेस्टिवल है और इसके साथ में कुछ ख़ास लोगों का जन्मदिन है जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि मदर टेरेसा, इनका भी जन्मदिन आज है, जो सोशल वर्क के लिए, गरीबों के लिए और कोढ़ जैसे बीमार, जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनका कोई नहीं होता, तो वहाँ पर मदर टेरेसा उनको अपने पास रखती और उनका इलाज करती और उनका अंतिम क्रिया भी कर देती। तो आइए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई, वो हम शेयरिंग करेंगे। लेकिन अभी गुड़ीलाल जी ने कहा घर आए भगवान, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर का ये खूबसूरत भजन याद किया है, तो आनंद लेते हैं। इसके बाद फिर बातें करते हैं। ढेर सारी खुशियां आप सभी को। सुनते रहो मुस्कराते।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत सुंदर सुंदर भजन आपको सुनाया। आशा करूंगा आपको एक एक भजन सुनकर कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा को जो है सुकून मिला होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और महिला समानता दिवस आज है, इसके बारे में बातें करते हैं। और ओनम फेस्टिवल जो लोग ये केरल के हैं शायद उनको ज़्यादा पता होगा और वो लोग ये फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। वैसे ओनम केरल का एक मुख्य त्यौहार है, जिस तरह उत्तरी भारत में दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार केरल में ओनम का त्यौहार मनाया जाता है। अंतर केवल इतना है कि दशहरे में 10 दिन पहले राम लीलाओं का आयोजन होता है और ओनम से 10 दिन पहले घरों को फूलों से सजाने का कार्यक्रम चलता है। और ओनम को मलाईजी कैलेंडर कोल वर्षम के पहले महीना छिंगम यानी अगस्त सितंबर के बीच मनाने की परंपरा चली आ रही है। ओनम के पहले दिन जिसे अथम कहते हैं वहाँ से शुरू हो जाती है। घर घर में ओनम की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं और 10 दिन के इस उत्सव का समापन अंतिम दिन जिसे तिरु ओनम या तिरु ओनम कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि भाई वास्तव में ये श्रावण का ही दूसरा स्वरूप है। श्रावण के महीने में मौसम बहुत खुशगवार होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूलों का सुगंध और सारा चमन जो है महक उठता है। केरल में चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च तथा धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। नारियल और लाट के वृक्षों में छाए हुए जल से भरे तालाब बहुत सुंदर लगते हैं। लोगों में नई नई आशाएं और नई उमंगें भर जाती हैं। लोग खुशी से भरकर श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। तो ये है ओनम का सही अर्थ। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मैं ले चलूँगा एक और सुंदर गीत। और आप 94 14 15 14 15 इस नंबर पर फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं या ओनम के बारे में आपको कुछ पता हो तो ओनम की कुछ बातें ज़रूर शेयर कीजिए। आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बातें करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताना चाहूँगा कि किस तरह से ओनम का फेस्टिवल फूलों का फेस्टिवल है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी।
1: हेलो, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सुगना जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। और आज हमारी फरमाइश सुनवा दीजिएगा। माना है ना,

0: वाला सुना दीजिएगा।
1: जी कौन सा गीत है ये?
0: भजन है, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु यूं मांगू छू। हेलो हेलो।
1: हाँ जी हाँ जी, सुगना बहन, ठीक है ठीक है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए ये थे गुजरात से सुगना बहन, जो अपनी भावनाएं विचार साझा करते हुए एक प्यारा सा भजन सुनना चाहते हैं गुजराती में, तो आइए उनके लिए सुनाएंगे भजन। हेलो जी नमस्कार।
2: ओम शांति भाई जी।
1: ओम शांति जी, ओम शांति।
2: गोंदिया से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र।
1: जी जी, क्या नाम है आपका?
2: नीरज गुप्ता।
1: नीरज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग।
2: प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा, ये भजन सुनना था।
1: क्या बात है, क्या बात है। नीरज गुप्ता जी, करते क्या है आप?
2: सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता सर।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सिक्योरिटी का आप काम करते हैं, थैंक यू सो मच। और रेडियो भी सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज जी आपको, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी देर में आपका भजन सुनाऊंगा, कबीर का आपने याद किया है, ठीक है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, नई किरण, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, 8:30 हो रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हुए ये प्यारा गुजराती भजन सुगना जी और उनके परिवार के लिए सुनते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। 8:38 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। और सुबह सुबह जो है नाश्ता और चाय की शुरुआत हो गई होगी आपके घरों में, या नहीं हुआ तो बना लेंगे, है ना। कुछ लोग ऑफिस में जाकर नाश्ता चाय भी करते हैं। तो आइए आप सभी हेल्दी वेल्दी और अच्छा खाना खाएं, अच्छा नाश्ता करें, ताकि आप अपना सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसी से हमारा शरीर जो है एक्टिव रहता है। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें खा ले रहे हैं जिससे हम बीमार पड़ने के संकेत को आह्वान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने डाइट को जो है प्रॉपर तरीके से समझे और उसे अच्छी तरह से यूज़ करें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने प्रोग्राम्स में आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में हर संडे जो है किसी अच्छे डॉक्टर्स को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनके ज़रिए आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो कभी ये प्रोग्राम सुन के भी आप जो है अपने आप को अपग्रेड करते रहें, है ना। कई बार नॉलेज हमारे पास बहुत होता है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और यहीं से जो है मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। अपने जीवन में टालम टोल को ख़त्म कर दीजिए और प्रैक्टिकल रहें। क्योंकि टालम टोल से हमारी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है, बीमार हो जाते हैं हम। इसलिए अपने आप को झकझोरे और अपने आप से जो है वादा करें कि नहीं, मैं अपने लिए इम्पोर्टेंस, मैं अपने आप को बहुत सम्मान, खुद को खुद ही सम्मान दे, किसी और से अपेक्षा मत कीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए एक बहुत ही प्यारा सा कबीरदा का भजन। नीरज गुप्ता जी गोंदिया से याद कर रहे हैं, सिक्योरिटी में काम करते हुए, तो उनके लिए बजाएंगे। लेकिन उसके पहले एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चलिए इनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: बुराराम बोल रहा हूँ सर।
0: बुराराम जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हैं आप?
1: आपका मुलत में बोला रमेश भाई को सुबह सुबह प्रणाम, सब मधुबन भाइयों को प्रणाम, और मैं आज वो कोई अच्छा भजन सुना हुए तो ठीक है।
0: जी जी जी जी,
1: ओके सर,
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बुराराम जी। चलिए आपके लिए और नीरज जी के लिए मैं ये भजन सुना रहा हूँ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, ओनम की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। व्हाट्सएप पर ओनम के त्यौहार की फूलों भरे सुंदर सुंदर जो है चित्र आ रहे हैं और शुभकामनाएं मिल रही हैं, और शायद आपके फ़ोन पर भी ये चीज़ें हो रही होंगी। तो ओनम एक फूलों का बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है। जिस तरह से हम यहाँ पर श्रावण महीने में शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर कृष्ण की पूजा अर्चना फूलों के ज़रिए सजा सजा कर किया जाता है, और साथ में व्यंजन भी बहुत सारे बनते हैं। तो आशा करूँगा कि आप सभी जो प्राचीन परंपरा है उसे बना के रखने के लिए ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए, आज महिला समानता दिवस भी है और ये दिन 26 अगस्त को मनाया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की। भारत में आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन पंचायतों और नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अंगीकरण किया गया, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयास से। इसी का परिणाम है कि आज भारत की पंचायतों में महिलाओं की 50% से अधिक भागीदारी भी है। तो आइए बात करते हैं 26 अगस्त ही क्यों। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता शुरू की। अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इसके पहले वहां महिलाओं को दूसरे श्रेणी नागरिक का दर्जा प्राप्त था। महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार वहां पर भी संघर्ष हुए। देखिए साथियों, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नाम, लेकिन फिर भी वहां पर महिलाओं को दूसरे दर्जे का माना गया था, और फिर संघर्ष हुआ समानता के लिए, और फिर लगातार संघर्ष होने के बाद ही एक महिला वकील बेल्ला अबुगुज के प्रयास से 1971 में 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, और तब से वहां पर भी महिलाओं की स्थिति समान होने लगी। भारत ने महिलाओं को आज़ादी के बाद से ही मतदान का अधिकार पुरुषों के बराबर दिया, परंतु यदि वास्तविक समानता की बात करें तो भारत में भी संघर्ष तो रहा ही। आज़ादी के इतने वर्षों बीत जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति जो है गैर करने लायक रहा है, और सभी महिलाएं नज़र आती हैं यहाँ पर, जो सभी प्रकार के भेदभाव के बावजूद प्रत्येक क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर चुकी है, और अभी उन पर गर्व भी महसूस करते हैं हम। परंतु इस कतार में उन सभी महिलाओं को भी शामिल करने की ज़रूरत है जो हर दिन अपने घर और समाज में महिलाएं होने के कारण असमानता को झेलती है, विवश होती है। चाहे वो घर में बेटी, पत्नी, माँ या बहन होने के नाते, समाज में एक लड़की होने के नाते, आए दिन समाचार पत्रों में लड़कियों के साथ होने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे खबरें पढ़ते हैं, इन सभी पर भी रोक होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर महिला समानता के दिवस के बारे में या इस दिवस को मनाना और लोगों को और अन्य महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो महिला समानता में ये सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर स्त्री और पुरुष एक साथ अपना कार्य कर सके और उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान दोनों को प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8:52 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ, तो एक और सुंदर सा गीत आपको सुनाऊंगा। और जब महिलाओं की बात हो रही तो महिलाओं का ही गीत सुनाता हूं, और नारी को शक्ति के रूप में याद किया जाता है। तो नारी शक्ति पर कमज़ोर नहीं तू शक्ति का नाम है नारी, ये गीत अभी आप सबके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर नई किरण, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बड़ा प्यारा सा गीत आप महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में आपको सुनाया और आशा करूंगा कि ये आपको अच्छा भी लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें बताइए आपको और महिला समानता पर आप अपने विचार क्या बताना चाहेंगे। कई बार होता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन मैं यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन चाहता हूँ। आप भी फ़ोन करके, मैसेज करके हमें बताइए कि आपको महिला समानता दिवस में अपनी भावनाएं व्यक्त करना हो तो क्या आप बताना चाहेंगे। आइए, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: ओम शांति सुरेश जी, बताइए, स्वागत है आपका।
1: बस बिल्कुल अच्छे है, अच्छा गाना सुना दिया महिलाओं पर, क्योंकि आज महिलाओं का दिन है, महिला समानता दिन है, तो सभी महिलाओं के भी हमारे तरफ से नमस्ते सर। क्योंकि आज के दिन इसको वोट देने का अधिकार मिला था शायद मेरे हिसाब से, इसलिए आज महिला समानता दिन मनाया जाता है। तो क्योंकि आप देखो महिला सबसे आगे है, कहीं भी जाइए महिलाएं आज कहीं ना कहीं है, कोई ऑफिस में कोई कारोबार कर रही है तो महिलाओं को भी आज एक अच्छा मौका मिल रहा है सभी जगह पे है, और सभी जगह पे महिला आगे है। खेल कूद में देखो, खेल कूद में भी आज महिला कितनी आगे है, तो महिलाओं को समानता देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। तो सब माताओं को भी हमारे तरफ से नमस्ते सर।
0: जी जी, नमस्ते, शुक्रिया सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज मेरे हिसाब से आज एक अभिनेता जो बहुत अच्छे कलाकार थे, अच्छे कलाकार थे, अवतार किशन जी, जिसको एके हंगल जी बोलते थे।
0: जी जी,
1: तो उसका भी आज स्मृति दिन है, पुण्य दिन है, तो शायद कई सारी फिल्में उस पर बनी है सर।
0: तो जी,
1: अच्छा गाना भी उसकी पसंद का सुना देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: नमस्ते। हमारे सभी मित्रों को राम राम। हमारे बुराराम जी है, बुरीलाल जी है, कंचन भाई है, सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। समाचार का समय हो गया है और आपको दिल्ली ले जाना है सबको, तो हम भी दिल्ली जाएंगे और समाचार सुनेंगे। नमस्ते सर, ओम शांति।
0: ओम शांति, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे दिल्ली ले चलता हूँ मैं आपको समाचारों की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
5: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
6: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
3: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
7: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलम वासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

0: भेज।
1: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
2: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
3: बीता हुआ कल हो या फिर आज, हर बात नए अंदाज के साथ, जो मन को दे एक दर्पण, ये है।

इंतजार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:33 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। आइए साथियों, बात करते हैं आज, जैसे कि ओनम की बातें चल रही थी और महिला समानता दिवस के बारे में बातें हो रही थी। भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर काफ़ी गंभीर अवस्था में आज जो है मतदान और फिर साथ में इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं, आज के समय में हो रही जो चीज़ें हैं वहाँ पर फिर से एक बार महिलाओं को समानता का अधिकार सिर्फ बताने से नहीं होगा, लेकिन उनको वो सम्मान देने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे देहात हैं जो गांव हैं, वहाँ पर महिलाओं की साक्षरता भी बहुत कम है, पढ़ी लिखी महिलाएं कम हैं। तो ऐसे में हमें जो है इन चीज़ों को समझना है। और जब पढ़ाई की बात करें तो आज भी पुरुषों से पीछे है महिलाएं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता दर, उसमें 12% की वृद्धि ज़रूर हुई है, लेकिन केरल में जहां महिलाएं साक्षरता दर 92% है, वहीं बिहार में महिला साक्षरता दर अभी भी 53.3% है। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य रूपिंदर कौर कहती हैं कि बदलाव तो अब काफ़ी दिख रहा है। पहले जहां महिलाएं घरों में नहीं, घर से बाहर नहीं निकलती थी, वहीं अब वे अपने एक हक की बात कर रही हैं। उन्हें अपने अधिकार पता है और इसके लिए वे लड़ाई भी कर रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम कॉलेज में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मधुरेश पाठक मिश्रा कहते हैं, कॉलेजों में लड़कियों की संख्या देखकर लगता है कि अब उन्हें अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन एक शिक्षिका के तौर पर जब मैंने लड़कियों में, खासकर छोटे शहर की लड़कियों में सिर्फ विवाह के लिए ही पढ़ाई करने की प्रवृत्ति देखी, तो यह मेरे लिए काफ़ी चौंकाने वाला रहा। और आज भी समाज की मानसिकता पूरी तरह नहीं बदली है और काफ़ी हद तक इसके लिए लड़कियाँ भी जिम्मेवार हैं। तो यहाँ दोनों तरफ, एक तरफ लड़कियों के समानता या महिला अधिकार की बात हो रही है, दूसरी तरफ लड़कियों की अपनी मानसिकता कि वो पढ़ना चाहती है या सिर्फ विवाह करके अपना घर बसाना चाहती है, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो ऐसे में लड़कियों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है और उन्हें जो है अधिकार जो है उसका सही उपयोग करना भी आना चाहिए। तो दोनों तरह के लोगों को, एक तरफ हम महिला आयोग की बात भी लोगों को समझाएं और लड़कियों को भी इस बात पे अवगत कराएं कि उन्हें आगे चल के समाज और परिवार का कैसे ध्यान रखना है। तो ये दोनों तरफा चीज़ें चलती हैं, तो दोनों तरफे लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखते हैं इस तरह के महिला समानता की बात करें, तो महिलाओं को सम्मान की बात करें, तो ब्रह्मा कुमारी इसमें पूरी जो सिस्टम है वो महिलाओं के ज़रिए ही चलाया जा रहा है, ताकि एक एग्जांपल के रूप में ईश्वर ने ये चीज़ें बना के रखी हैं। तो निश्चित तौर पे हमें यहाँ से भी कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती है। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। और चलिए, एक हंगल साहब को आपने याद किया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो कोई गीत उनका बना हुआ है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो पिक्चर में ज़रूर आए हैं। तो एक बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया है, लेकिन उन पे गाना नहीं है, वो डायलॉग अच्छे चरित्र अभिनेता रहे हैं, लेकिन उनका काम किया हुआ एक फिल्म है ए के अंगल साहब का, जिसमें उन्होंने काम किया है जमुना, उस फिल्म का एक गीत मैं आपको अभी सुनाता हूँ। सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: बनता
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: तो आपको नमस्कार करते हैं, नवी किरण को नमस्कार करते हैं, हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं, और जो त्योहार आने वाले उन सभी को शुभकामना करते हैं। और कल हमारी प्यारी दादी का पुण्यतिथि थी, उनको भी बहुत याद किया, मजा आ गया, कल का मौसम बहुत अच्छा रहा, और आपको नमस्कार करते हैं। और बस अब इस समय भी बस 17-18 मिनट रह गए हैं तो आपको नमस्कार। और क्या गाएंगे आज? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र तुझ में जो मिल गया उसी तुमको दर समझ लिया, जो मिल गया उसी तुमको दर समझ लिया, उसको दर समझ लिया। मैं खो गया जो उसको बुलाता चला गया, मैं हर फिक्र तुझ में। तो ये गाना लगा देना सर। नमस्कार, ओम शांति सभी को बड़े प्यार से।
1: ओम शांति जी, स्वागत, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं रिजमत बन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए, ये थे मदन जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे, और आइए बात करते हैं अब मदर टेरेसा के बारे में। जी हाँ, 26 अगस्त को ही इनका जन्म 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ था, और रोमन कैथलिक नंस थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी, और 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद की, और साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। मदर टेरेसा ने जिस आत्मीयता से भारत के दीन दुखियों की सेवा की, उसके लिए देश सदैव उनका त्राणी रहेगा। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्रेस गोनक्ष बोजकिशाउ था, जिन्हें रोमन कैथलिक चर्च द्वारा कोलकाता की संत टेरेसा का नाम दिया गया था। बात करें उनका जीवन परिचय के बारे में, तो आज ही के दिन 1910 को यूगोस्लाविया में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम निकोला बोयूस था, जो कि साधारण व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे, एक रोमन कैथलिक संगठन की वे सक्रिय सदस्य भी थे, और 12 वर्ष की अल्प आयु में ही उनके हृदय में विराट करुणा का बीज अंकुरित हो उठा, और मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस गोंजा था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। और फिर उनके पिता उनके बचपन में ही कुछ समय के बाद मर गए। बाद में उनका लालन पालन उनकी माता ने किया। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, और उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन अच्छा की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल की थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। गोंजा एक सुंदर, जीवंत, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ना, गीत गाना वो विशेष पसंद करती थी, और उनकी बहन गिरजाघर में प्रार्थना की मुख्य गायिका भी थी। गोंजा को एक नया नाम सिस्टर टेरेसा दिया गया, जो इस बात का संकेत था कि वो एक नया जीवन शुरू करने जा रही हैं। ये नया जीवन एक नए देश में, जो कि उनके परिवार से काफ़ी दूर था, सहज नहीं था, लेकिन सिस्टर टेरेसा ने बड़ी शांति का अनुभव करते हुए इस चैलेंज को अपनाया। और सिस्टर टेरेसा 3 अन्य सिस्टरों के साथ आयरलैंड से एक जहाज़ में बैठकर 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वहाँ बहुत ही अच्छी अनुशासित शिक्षिका थी, और विद्यार्थी उन्हें बहुत प्यार करते। 1944 में वो सेंट मैरी स्कूल की प्रधानाचार्य बन गई। मदर टेरेसा ने आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की, और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। वहाँ से पहली बार तालतला गई, और जहाँ वो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के गाँव को धोया, उनकी मरहम पट्टी की, और उनको दवाइयाँ दी। 1900

ने समाज के बाहर निकाल दिया गया हो, ऐसे लोगों को इस महिला ने अपने ममता और प्रेम लुटाकर सेवा भावना का परिचय दिया और यहीं से मदर टेरेसा की कहानी शुरू हो जाती है और यहीं इन्हीं सेवाओं से लोगों ने उनको उनसे प्रभावित होकर उनका नाम मदर टेरेसा रखा। मिशनरीज की स्थापना मदर टेरेसा मात्र 18 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर वो सिस्टर टेरेसा बनी थी। उस दौरान 1948 में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला और उसके पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। सच्ची लगन और मेहनत के लिए किया गया काम कभी निष्फल नहीं होगा, ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। मदर टेरेसा की मिशनरी संस्थान 1986 में 96 तक करीब 125 देशों में 755 निराश्रित गृह खोले, जिसमें करीबन 5 लाख लोगों की भूख मिटाए जाने लगी। समाज सेवा का उन्होंने प्रण लिया और मदर टेरेसा जब भारत आई तो उन्होंने यह बेसहारा और विकलांग लोगों की, बच्चों की तथा सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा और फिर वे भारत से मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकी। वे यहीं पर रुक गई और जन सेवा का व्रत ले लिया, जिसका वे अनवरत पालन करती रही। मदर टेरेसा ने भ्रूण हत्या के विरोध में भी काम किए। विश्व में अपने रोष दर्शाते हुए अनाथ और अवैध संतानों को अपनाकर मातृत्व सुख प्रदान किया। उन्होंने फुटपाथों पर पड़े हुए रोते सिसकते रोगी अथवा मरण अवस्था में असहाय व्यक्तियों को उठाया और अपने सेवा केंद्रों में उनका उपचार कर स्वस्थ बनाया। ये कम से कम उनके अंतिम समय को शांतिपूर्ण जो सुकून दिया, दुखी मानवता की सेवा ही उनकी जीवन का व्रत बन गया। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें पद्मश्री 1962 में, 1979 में नोबल पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 1980 में, मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 में। विश्व भर में फैले उनके मिशनरीज के कार्य की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। नोबल पुरस्कार की राशि उनको उस समय धन राशि भी प्राप्त हुई थी, $192,000 की धनराशि भारतीय गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, जो उनके विशाल हृदय को दर्शाता है या बताता है। अपने जीवन के अंतिम समय में मदर टेरेसा पर कई तरह के आरोप भी लगे। उन पर गरीबों की सेवा करने के बदले उनका धर्म बदलकर ईसाई बनाने का आरोप लगा और भारत में भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उनकी निंदा हुई। मानवता की रखवाली की आड़ में उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि ना, जहाँ सफलता होती है वह आलोचना तो होती ही है। तो इस तरह से बाद में 1983 में 73 वर्ष की अल्प आयु में मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल दूसरे से मिलने चले गए, वहीं उन्हें पहला हृदयघात आया। इसके बाद साल 1990 में उन्हें दूसरा अटैक आया। लगातार गिरती सेहत की वजह से 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में लिप्त थी। समाज सेवा और गरीबों की देखभाल करने के लिए जो आत्मसमर्पण मदर टेरेसा ने दिखाया, उसे देखते हुए पोप जॉन पॉल ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया था। तो ये थी कुछ खास बातें मदर टेरेसा के बारे में आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सुंदर गीत आपको सुनाते हैं। अभी सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए, बड़ा प्यारा संगीत आपने सुना। आइए इसके साथ ही मैं आप सभी को ले चलता हूँ आज के दिन। जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, और 26 अगस्त को जन्मे उन लोगों की बात करें तो भारतीय निशानेबाज रहे जीतू राय का जन्म आज ही के दिन 1987 को हुआ। भारतीय हिंदी सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर सहायक अभिनेताओं में से एक थे इंद्र कुमार। 1972 में आज ही के दिन उनका हुआ था जन्म। भारत रत्न सम्मानित मदर टेरेसा, जिनकी कहानी हमने आपको बताया, 1910 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आज़ादी के दीवाने बंसी लाल जी, आज ही के दिन इनका जन्म 1927 को हुआ। हीरो साइकिल के सह संस्थापक भारतीय व्यापारी और समाजसेवी ओम प्रकाश मुंजल, इनका भी जन्मदिन आज है। 1928 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता जो गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं लुइजिनो फ्लेरोरा, 1951 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। संजय गांधी की पत्नी एवं पशु पालन अधिकारवादी प्रसिद्ध राजनेत्री मेनका गांधी, 1956 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार गीत गजल दिनेश रघुवंशी, 1964 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारत के बहुत ही पॉपुलर वस्तुकार बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, 1927 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। हिंदी साहित्य के एक महान उपन्यासकार चतुर सेन शास्त्री, 1891 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन हमेशा की तरह करता है हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलिए, आज आप में से भी अगर सुनने वालों में से किसी का जन्मदिन है तो उन सभी को भी रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खम्बा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

आप सुनने जा रहे हो ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना आपकी अपनी उषा के साथ। आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे से विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही और आपको देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। चलिए एक शक्तिशाली विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का शक्तिशाली विचार इस प्रकार है, खुशी अनमोल औषधि है। खुशी अनमोल औषधि है। चलिए आज के विचार का विस्तार करते हैं। खुशी हर उम्र के हर वर्ग के व्यक्ति को चाहिए। आज मनुष्य खुशी को बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों, वैभवों, क्लबों, होटलों, पर्यटन स्थलों में ढूंढ रहा है। वास्तव में खुशी अंतर मन में छुपी हुई है, वो बाजार में मिलती नहीं। अगर संतुष्ट रहे तो खुशी गले में सजे हुए हार बरोबर है। खुशी के खत्म होने के 100 कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। खुशी को कायम रखने के लिए सदा सर्व को खुशी दे, फिर हम भी खुश रह सकते हैं। खुशी देने से खुशी मिलती है, दुख देने से दुख मिलता है। जो देंगे वही मिलेगा, यह एक नियम है। खुशी अनमोल औषधि है, यह हमारे जीवन को अनमोल बनाती है। तो ये हुआ आज का पावरफुल विचार, जिसको जरूर हम धारण करेंगे। और चलिए अब सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: You are listening to Sister Dipti from Johannesburg, South Africa, and you are listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. This has been heard on www.radiomadhuban.in. I'm in South Africa, but you can tune into this wherever you are in the world and stay tuned into this wonderful fragrance.
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको घरेलू नुस्खे देते हैं। अगर पित्ती उछलती हो तो आप क्या करेंगे? चलिए, इस प्रॉब्लम में आप 10 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम गुड़, 200 ग्राम पानी में उबाल करके छान करके पिलाइए। इससे बार बार उछलने वाली पित्ती ठीक हो जाएगी। 10 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम गुड़, 200 ग्राम पानी में उबाल करके छान कर पिलाइए। इससे बार बार उछलने वाली पित्ती ठीक हो जाएगी। अगला नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। चने, यानी कि चने का आटा होता है ना, बेसन, बेसन से बने मोतियों का लड्डू पर काली मिर्च डालकर खाइए। इससे पित्ती ठीक हो जाएगी। बेसन के बने मोतियों के लड्डू पर काली मिर्च डाल करके खाइए, इससे भी पित्ती ठीक हो जाती है। और भी आप सुनेंगे अगला नुस्खा। पित्ती या छपा की निकलने पर देसी घी और सेंधे नमक को मिला करके मालिश करिए, फिर कंबल ओढ़कर पसीना लीजिए, पित्ती मिट जाएगी। पित्ती या छपा की निकलने पर देसी घी और सेंधे नमक को मिला करके मालिश करिए, फिर कंबल ओढ़कर पसीना लीजिए, पित्ती मिट जाएगी। लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। हींग को घी में मिला करके मालिश करने से भी लाभ होता है। हींग को घी में मिला करके मालिश करिए, इससे भी लाभ होगा। इस तरह पित्ती की प्रॉब्लम में आपको राहत मिलेगी। पित्ती तो आप समझ ही गए होंगे, जिसको हम पस्तोई भी बोलते हैं, शरीर से पस्तोई निकलती है ना, तो इसको पित्ती कहते हैं। तो चलिए, ये सारे ही नुस्खे अच्छे हैं और आप इनको आजमा सकते हैं, अगर पित्ती की प्रॉब्लम हुई, पस्तोई की प्रॉब्लम हुई तो। अब सुना देते हैं आपको एक अच्छा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी बीच में ही गीत गाने लगी है, भजन गाने लगी है। तो इन दो लाइनों का अर्थ आप साथ ही साथ समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। जी हाँ, खुशनुमा जीवन में ये दो लाइनें मैंने इसलिए गुनगुनाई है कि कभी कभी लोभी इंसान जो होता है ना, कभी कभी उसके ऊपर भी कहते हैं कि सवा शेर जो मिल जाता है ना, कहते हैं कि सारा लोभ धुला रह जाता है। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर शेर से सवा शेर मिल जाए तब पता चले कि हम कितने गहरे पानी में। इसी तरह जो लोभ लालच करता है उसको भी अगर मात देने वाला मिल जाए ना, तो उसकी हालत देखने वाली होती है। तो कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि कंजूस न खाता है न खर्च करता है, उसकी तीसरी गति होती है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, लोभी और लालचियों का भी यही हाल होता है। बहुत लोभ करके पेट को काट काट करके पैसे जोड़ते हैं, एक पैसों का भी दान नहीं करना, और अपने परिवार को भी बहुत ही कंजूसी से चलाना, जबकि अच्छा खासा पैसा है फिर भी हर चीज में कंजूसी करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, इकोनॉमी से चलना चाहिए, बचत करिए, आप बहुत ही सावधानी से चलिए। लेकिन ये तो नहीं हुआ कि भाई हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 के 100 हम बचा सकते हैं या 100 में से 90 बचा सकते हैं। नहीं, देखिए कुछ लिमिट होती है हर चीज की। कहते हैं कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से थोड़े दान पुण्य के भी निकालने हैं, घर परिवार के खर्च के लिए भी निकालना है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी निकालना है और बचत के लिए भी निकालना है। 4 हिस्से होने ही चाहिए, तभी हम खुशनुमा जीवन जी पाएंगे। अगर हम 100 में से 90 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे और 10 रुपये खर्च करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि हमारी किस तरह हालत होती है। और फिर जब कोई ठग हमें ठग लेता है तो हम अपने किस्मत पर फिर रोना शुरू कर देते हैं कि हाय रे, ये मैंने क्या किया। तो इसी बात पर प्यारे श्रोता बंधु, एक मुझे कहानी याद आ रही जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक सेठ ने मार्ग में जाते हुए एक खजूर का पेड़ देखा जिसमें मीठी मीठी और मोटी मोटी खजूर लगी हुई थी। खजूर देख करके लाला जी के मुंह में पानी आ गया। वो सेठ कौन थे? लाला जी। लाला जी के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। खाने की इच्छा हुई तो वो पेड़ पर चढ़ गए। खजूर खाने के बाद जो ही उतरने के लिए धरती की तरफ देखा, तो ही सेठ जी का शरीर कांपने लगा। आप सभी जानते होंगे कि खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है। तो लाला जी ने सोचा कि यदि कहीं उतरते समय इसके नीचे गिर पड़ा तो हड्डियों का भी कहीं पता नहीं लगेगा। ऐसा विचार करते हुए वह थर थर कांप रहा था और खजूर खाने की इच्छा करने वाले अपने मन को बार बार धिक्कार रहा था। इस प्रकार सोच विचार करते हुए बहुत समय तो वहीं पर बीत गया। फिर लाला जी ने सोचा कि इस प्रकार पेड़ पर कब तक बैठा रहूंगा, इसलिए भगवान को याद किया। भगवान के सामने संकल्प रखा कि हे भगवान, अगर मैं इस पेड़ से नीचे आराम से उतर गया तो 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा, भोजन करूंगा। जब वह पेड़ पर से आधा नीचे आया, फिर उसने पेड़ से उतरना शुरू कर दिया। जब पेड़ पर से आधा नीचे आया तो फिर नीचे की तरफ देखा और सोचा, फिर कहा भगवान से कि हे भगवान, अब मैं 100 को नहीं 50 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। प्यारे श्रोता बंधु, वह सेठ जो जो पेड़ के नीचे उतरता रहा, त्यो त्यो जिमाने वाले ब्राह्मणों की संख्या भी कम होती जा रही थी। अंत में जब वह आराम से पेड़ के नीचे उतर आया ना, तो उसने सोचा कि केवल 2 बिंदी ऊपर की हटानी पड़ेगी, इसलिए घर पहुंचते ही 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। ऐसा करने से न तो प्रतिज्ञा ही भंग होगी और न अधिक खर्चा ही करना पड़ेगा। यह विचार करता हुआ सेठ घर चला गया और दूसरे दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को खोजने लगा जो कम से कम भोजन करने वाला हो। अब उसका नियम हो गया था कि कोई ब्राह्मण उसकी दुकान के आगे से निकलता, उसी के आहार के बारे में पूछता। बेचारे सरल स्वभाव
वाले ब्राह्मण जितना भोजन करते उससे कहीं अधिक कर देते थे, इस कारण से वह भोजन नहीं कराता। एक दिन एक धूर्त ने विचार किया कि क्यों न इस लालची लाला को लूट करके अपने घर का काम चलाया जाए। यह विचार करके वह तिलक लगा दिया स्वयं के और पंडितों जैसा स्वरूप बना करके लाला की दुकान के सामने से निकला। त्यों ही सेठ जी ने उसे विद्वान ब्राह्मण समझ करके प्रणाम करते हुए कहा, पंडित जी आपकी खुराक कितनी होगी? उसने कहा, इससे तात्पर्य। सेठ जी ने कहा, पंडित जी आप तो बुरा मान गए, तात्पर्य वात्पर्य कुछ नहीं, यूं ही पूछ लिया था, क्रोध न कीजिए महाराज। लाला जी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, यजमान हम ब्राह्मण लोग शत्रु पर भी क्रोध नहीं करते, फिर आप जैसे सज्जनों पर तो अप्रसन्न ही क्यों होने लगे? भाई आप हमारे भोजन के बारे में पूछना ही चाहते हैं तो लीजिए, मैं आपके सम्मुख अपना आहार बताता हूँ। सुनिए, अधिक से अधिक आधा पाव आटा, आधी छटांग दाल और 6 मासा घी, बस इतना भोजन 24 घंटे के लिए पर्याप्त है। सो भी जितना आपको बताया है सारा नहीं, इसमें से कुछ भाग गौ के लिए और कुछ काग तथा कुत्ते के लिए निकाल दिया करता हूँ। यदि सारा भोजन कर लूंगा तो फिर वेद जी को बुला करके चूरन लेते हुए 48 घंटे पेट के दर्द में कराते हुए व्यतीत करना पड़ेगा, और दक्षिणा तो हम किसी से लेते ही नहीं। इतना सुनते ही लाला जी का मन आनंद के मारे भर गया और उनका मन खिल उठा और मुस्कुराते हुए लाला जी ने कहा, पंडित जी कल आपका निमंत्रण है, सो आप घर आकर के इच्छा के अनुसार रसोई बना करके भोजन कर लेना। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप समझिए कि लाला जी इस बात से खुश हो गए और धूर्त को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। अब आगे क्या हुआ होगा लाला जी के साथ, क्या उस धूर्त ने कहे के अनुसार भोजन किया या फिर अभी नहीं बताऊंगी। एक गीत सुनाने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि उस धूर्त ने लाला जी के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह भोजन खाया और किस तरह लाला जी को लूटा। तो चलिए सुन लीजिए एक गीत, गीत के बाद आप धैर्यता रखिएगा, जरूर आपको सारी बात बताएंगे, पूरी ही कहानी सुनाएंगे, लेकिन एक गीत के बाद। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: लोभ लालच से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, जब ये बात जानता है तो छोड़े क्यों न फिर। चिंता चित्ता है जो जिंदा जलाती है, चिंता चित्ता है जो जिंदा जलाती है, खुशी छीन कर शोक के घुट पिलाती है, खुशी छीन कर शोक के घुट पिलाती है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, किस सुनने से पहले आपको मैं बता रही थी कि किस तरह लोभी इंसान को कभी सवा शेर जो मिल जाता है ना, तो सचमुच उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे मैंने आपको लाला जी के बारे में बताया कि लाला जी किस तरह खजूर के पेड़ पर चढ़े और खजूर खाने के लालच में चढ़ तो गए, लेकिन उतरना उनके लिए भारी हो गया। फिर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे और 100 ब्राह्मण जिमाने की मन्नत मांगी, फिर 50, फिर 25। लास्ट में जब वो नीचे उतर गए धरा पर, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को जिमाने की मन्नत पूरी करनी चाहिए कि चलो एक ब्राह्मण को जिमा देते हैं, वो भी इस तरह का कि सबसे कम खाता हो। और एक धूर्त ने सोचा कि चलो बहुत सारे ब्राह्मण को लाला जी ने पूछ लिया है, अभी इनका नहीं हो रहा है सेठ, तो चलो अब लाला जी को लूटते हैं। तो इस तरह उस धूर्त ने खाने की मात्रा बहुत कम बताई। तो चलिए और भी मैं आपको आगे बता रही हूँ कि लाला जी के साथ क्या हुआ। लाला जी ने तो निमंत्रण दे दिया, तो फिर सेठ जी क्या करते हैं, लाला जी अपने घर का पता भी दे देते हैं और लाला जी अपने घर पर आते हैं और सेठानी को कहते हैं कि कल एक पंडित जी अपने घर भोजन करने आवेंगे, सो उन्हें जिस वस्तु की इच्छा हो ना दे देना, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें अपने घर आकर किसी बात का कष्ट उठाना पड़े। सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी, उसने लाला जी के मुख से धर्म के काम के लिए ऐसी दिल खोल कर बातें आज पहली बार ही सुनी थी, अतः उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन लाला जी तो दुकान पर चले गए। उसके बाद लगभग 9 बजे पंडित जी सेठ जी के घर गए और सेठानी से अपने जिमाने के बारे में पूछताछ की। तब सेठानी ने अपने हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए कहा, पंडित जी महाराज, लाला जी ने मुझसे कह दिया है, अतः आप प्रेम पूर्वक इच्छा अनुसार भोजन करिए, जो आपको चाहिए वे सभी आपकी आज्ञा अनुसार आपके पास पहुंच जाएंगे, इसलिए चौके में चल करके रसोई बनाने का कष्ट कीजिए। सेठानी की ये बात सुनकर प्रसन्नता से फूले हुए पंडित जी ने कहा, बस अभी तो केवल 10 सेर आटा, 2.5 सेर मेवा, 7.5 सेर घी और 10 सेर बूरा ला दीजिए, बुरादा ला दीजिए। जब हलवा लड्डू पूरी तैयार हो जाएगा ना, तो फिर साग मसाला पापड़ और दही मंगवा देना। पंडित जी के कहने की देर थी, सेठानी ने सब सामान मंगवा दिया। प्यारे श्रोता बंधु, इतनी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि पहले के जमाने में पंडित लोग अपने हाथ से बना करके खाते थे, किसी के भी घर का खाना नहीं खाते थे, वो सूखा सामान लेते थे और सूखा सामान अपने हाथों से बना करके उन्हीं ही के घर में खाते थे। तो इस तरह पंडित जी ने इतने सामान की डिमांड की। अब पंडित जी की रसोई भी तैयार हो चुकी थी क्योंकि सेठानी जी ने सारा ही सामान भिजवा दिया था, तो पंडित जी ने रसोई तैयार कर दी थी। और फिर जब सारी रसोई तैयार हो गई ना, तो फिर पंडित जी ने क्या किया, अपने स्त्री और बाल बच्चों को सभी को बुला लिया और सभी ने मिलकर के प्रेम पूर्वक भोजन किया और जो कुछ सामान बाकी बचा उसे उनके हाथ घर पहुंचा दिया। जब ये धूर्तराज घर जाने लगा ना, भोजन करने के बाद जब ये धूर्तराज घर जाने लगा, तब उसने सेठानी जी को बुला करके कहा, सेठानी जी, भगवान आपको सदैव आनंद दे और आपको दिन दुना रात चौगुना लाभ हो, अब दक्षिणा दिलाने का और कष्ट कीजिए। सेठानी ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा में क्या दिला दिया जाए, तो उसने कहा, लाला जी इस समय होते तो 1 सोने की मोहर जरूर दे देते, अब आपकी जो इच्छा हो सो दे दीजिए। उसकी ये बात सुनकर के सेठानी ने झट से 2 मोहर दे करके विदा किया। रात को जब सेठ जी घर आए तो सेठानी ने ब्रह्म भोजन का इतिहास सुनाया तो वह हाय कह करके पलंग पर गिर पड़ा। कौन? सेठ जी। इसके बाद उसने भाग्य को धिक्कारते हुए और सेठानी की मूर्खता पर दुख प्रकट करते हुए कहा, अरे पगली, तूने क्या किया जो ब्राह्मण पर इतना खर्च करके मुझे दिन दहाड़े लुटवा दिया। सेठानी ने कहा, मेरा इसमें क्या अपराध है? आप ही की तो आज्ञा थी कि उन्हें जिस वस्तु की इच्छा हो सो दे दे देना। सेठानी की ये बात सुन सेठ ने क्रोध करते हुए कहा, अरे तुझमें घर की भी फिक्र नहीं थी? मैंने ये थोड़े ही कहा था उसे 50 आदमियों का भोजन का सामान देकर उसे 2 मुहर दक्षिणा में दे देना। हाय, वह तो जिस समय दुकान पर आया था आधा पाव आटा, 1 छटांग दाल और 6 मासा घी मेरे भोजन के लिए अधिक से अधिक होगा और दक्षिणा लेने के लिए सर्वता इनकार करता था। इसलिए तो मैंने उसे निमंत्रण दे करके जिमाने के लिए कहा। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, सेठानी को अब पता लगा कि लाला जी कल क्यों दिल खोल करके बातें कर रहे थे, परंतु जो कुछ होने वाला था वह तो हो गया। अब आप समझ सकते हो कि ज्यादा कंजूसी कितनी भारी पड़ती है, ज्यादा लोभ लालच कितना भारी पड़ता है। लाला जी ने भी कहां 100 ब्राह्मणों को खिलाने की बात की, फिर 50 पर आए और फिर 1 पर अटक गए, और 1 ब्राह्मण भी ऐसा कि जैसे मरियल मिले और खाने में न के बरोबर खाए। तो कहते हैं कि लोभ का थोब निकलता ही है, लोभ को कभी थोब नहीं मिलता। तो लोभी इंसान कभी न कभी जब उसके ऊपर सवा शेर का पाला पड़ता है ना, तो इस तरह की हालत होती है जिस तरह लाला जी के साथ हुई। तो खुशनुमा जीवन में मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि प्यारे श्रोता बंधु, 1 रुपये कमाते हो तो 25 पैसे अपने ऊपर खर्च करिए, 25 पैसे की बचत करिए, 25 के दान दक्षिणा दीजिए और 25 का अपने घर परिवार पर खर्च करिए। बाकी आप सोचोगे कि नहीं, 1 रुपये में से 90 पैसे मुझे जमा करना है, 10 पैसा खर्च करना है, तो फिर किसी न किसी माध्यम से वो धन हमारा जाता ही है। इसलिए पेट को मत काटिए, पेट को भूखा रख करके आप अपने आप पर कंजूसी करके आप पैसा इकट्ठा करेंगे तो किसके लिए, किसके लिए करेंगे? कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सपूत है तो वो खुद बना लेगा प्रॉपर्टी, और अगर पुत्र कपूत है तो आपका जमा किया हुआ भी खो देगा। इसलिए आप अपने वर्तमान को सुधारिए, भविष्य की चिंता मत करिए। थोड़ा सा बचाना जरूरी है, वो आप समझदारी से चलिए, लेकिन अपने पेट को आटी दे करके, मतलब कहते हैं कि लिमिट से ज्यादा कंजूसी करके अगर आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर तनाव तो बना रहेगा ना, दुख ही दुख होगा, खुशियों का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा, क्योंकि परिवार दुखी तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। और जब हम भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखते हुए आराम से जीवन जिए और जो हम कमा रहे हैं अच्छी तरह उसका खर्चा करें, परिवार को खुश रखे, तो सचमुच परिवार खुश तो स्वयं भी खुश, और इस तरह खुशियां बनी रहेगी। तो चलिए अब सुन लीजिए फिर से एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Priyanka Chopra, and I'm truly blessed to share an incredible relationship with my parents. I just wonder, you know, the love, trust, the kind of feeling that you have for your own family. Can you feel like that for anyone and everyone else? Can you treat every single human being that you come across with that same love and trust? Well, that's what the Brahma Kumaris teach you, to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling, with that same kind of love.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में आप सभी का वेलकम है। आइए आज बनाएंगे आशियाना के किचन में तल साकड़ी। तो चलिए, तल साकड़ी के लिए सामग्री इस प्रकार है, वैसे तो बहुत कम है फिर भी लिख लेना अच्छी बात है। तो 500 ग्राम तिल ले लीजिएगा, ठीक है, 500 ग्राम लेना है तिल। फिर आप 350 ग्राम ले लीजिए गुड़, ठीक है, और घी ले लीजिए एक चम्मच। बस इतनी सी सामग्री है जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। 500 ग्राम तिल लेना है और 350 ग्राम ले लीजिएगा गुड़ और घी ले लीजिए एक चम्मच। बस तो अब चलिए कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, तिल को सेक लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लाल हो जाए ना तब तक आप तिल को सेकिए, हिलाते रहिएगा। एक अगर हिलाएंगे नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं तिल की क्या कंडीशन होगी, इसलिए हिलाते हुए सेकिए, हल्के लाल कलर के हो जाए बस। फिर आप तिल को एक बर्तन में निकाल दीजिए, फिर डालिएगा गुड़, गुड़ का पाया बनाइए, ठीक है। गुड़ भी हल्का लाल कलर का हो जाए, आपको लगे कि गुड़ अच्छी तरह पिघल गया है और हल्का सा लाल हो गया है, तो फिर उसमें आप डाल दीजिए तिल। तिल डाल करके गैस बंद कर दीजिए और अच्छी तरह दोनों को मिक्स कर दीजिए, तिल और गुड़ को। फिर जो घी लिया है वो घी आप लगाइए एक थाली में। थाली में घी लगा करके जो हमने तिल और गुड़ का पाया तैयार किया है, इसको आप इस मिश्रण को डाल दीजिए एक थाली में, जिसमें अपने हमने घी लगाया है उस थाली में आप डाल दीजिए, और कटोरी की मदद से अच्छी तरह चारों तरफ फैला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह फैला दिया है, फिर थोड़े से ठंडे हो जाए तो उसको आप चाकू की मदद से काट लीजिए, चिक्की की तरह काटना है। तो इस तरह तिल साकड़ी हमारी तैयार है। आप चाहे तो बेलन से बेल भी सकते हैं, पर बेलन से बेलने के लिए हमको दोनों को थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा, तिल को थोड़ा सा ज्यादा डार्क करना पड़ेगा और गुड़ को भी ज्यादा डार्क करना पड़ेगा, तभी आप बेलोगे ना तो वो कड़क हो पाएंगे। और अगर थोड़ा सा लाइट सेकोगे तो इस तरह आप

थाली के अंदर जमा दीजिए, फिर चाकू से काट दीजिए और ठंडा होने के बाद आप सारे पीस को निकाल करके एक डिब्बे में भर दीजिए। तो इस तरह तिल सांकड़ी बनाई जाती है। चलिए, तिल सांकड़ी तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसी तरह की एक और अच्छी सी आपको रेसिपी सिखाने वाली हूँ, लेकिन एक गीत के बाद। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ले ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में गीत सुनाने से पहले आपको सिखा रहे थे तिल साकड़ी। आइए अब बनाते हैं तिल के पापड़। ठीक है, तिल के पापड़ भी बहुत ही इजी है। आप तिल के पापड़ में बस शक्कर चाहिए, तिल चाहिए और बस कुछ भी नहीं चाहिए। शक्कर और तिल, ये दो चीजें चाहिए। अब इसमें आप क्या करेंगे कि कितना लेना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि शक्कर आप जैसे कि दो छोटे चम्मच शक्कर लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर दो छोटे चम्मच ही तिल लेना है, तो बराबर मात्रा चाहिए। 500 ग्राम तिल तो 500 ग्राम ही शक्कर ले लीजिए। ठीक है, तो सामग्री खाली दो है, तो साथ ही साथ मैं आपको पापड़ कैसे बेलना है वो भी बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, गैस चालू करके कढ़ाई को रखिए और दो छोटे चम्मच शक्कर डाल करके चम्मच से हिलाइए। शक्कर अच्छी पिघल जाए, अच्छी तरह पिघल जाए, हल्की सी लाल कलर की हो जाए, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर आपके पापड़ डार्क बन जाएंगे। इसलिए हल्के से लाल कलर की हो जाए फिर आप तिल डाल दीजिए। इसमें कच्चे तिल डालना है, सेकना नहीं है, ठीक है, तो कच्चे तिल डाल दीजिए और अच्छी तरह उसको हिला दीजिए। जब शक्कर और तिल एकदम मिक्स हो जाए तो बस आप गरम गरम को आपके प्लेटफॉर्म पर ही डालिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म को एकदम स्वच्छ और साफ आप पोंछ लीजिए और पोंछ करके वहाँ पे घी लगा दीजिए। घी लगा करके आप इस तरह जो हमने पाया तैयार किया है ना तिल और शक्कर का, वो आप नीचे डाल दीजिए और उसको दोनों हाथों से गोल गोल घुमाइए। लुआ तैयार होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा गर्म है तो हाथ जलेगा, तो रह रह के घुमाइए, एक साथ में नहीं घुमाना है। फिर आप जब वो गोल गोल लुआ की तरह तैयार हो जाए, बस फिर आप बेलन से बेलिए। पहले थोड़ा धीरे धीरे बेलिए क्योंकि गर्म ज्यादा है ना, तो एकदम जोर लगाओगे तो बेलन के भी चिपकेगा और पापड़ टूट जाएगा। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आप पहले तो बेलन चलाइए। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि अब हमारा ये जो लोहा है थोड़ा सा बढ़ गया है और ठंडा हो गया है थोड़ा सा, तो फिर आप जोर लगा करके फटाफट फटाफट बेलते जाइए। आप चारों तरफ घूम जाइए अगर लोहा नहीं घूमता है तो, और बस जब उसकी कैपेसिटी होगी तब तक वो बढ़ेगा। फिर एकदम ठंडा हो जाएगा तो फिर आप उसको नहीं बेल पाओगे, फिर तो वो टूट जाएगा। इसलिए गरम गरम को इस तरह बेल लीजिए, फिर आप पापड़ को रख दीजिए थाली में, फिर दूसरा पापड़ भी इसी तरह तैयार कर लीजिए। इसमें आप इकट्ठे पापड़ तैयार नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि साथ में ही आपने पाया कर दिया और साथ में बनाने जाओगे तो एक पापड़ दो पापड़ तो बना दोगे, बाद में वो ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप बना नहीं पाओगे। इसलिए एक एक पापड़ का ही आप इस तरह पाया तैयार करिए और एक एक पापड़ को बनाइए। बहुत ही पतले और सॉफ्ट बनते हैं ये पापड़ और आप आराम से, मतलब बाजार से भी नहीं खरीदना पड़ेगा, नहीं तो बाजार से खरीदते हैं तो चिपचिपे भी होते हैं और ज़्यादा मीठे होते हैं, तो किसी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता है, और घर पे तो हम अपने इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। तो चलिए, तिल साकड़ी भी तैयार है और पापड़ भी हमारे तैयार है, तो लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप पापड़ रखिए, तिल साकड़ी रखिए और तुलसी पत्र भी रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। देखिए अगर इस तरह की चीजें आप बना करके रखते हैं तो 15-20 दिन महीने भर कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जब चाहे तब आप नाश्ता कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी भर सकते हैं, कभी भी जब इच्छा हो जाए तब भी हम बना करके खा सकते हैं। तो चलिए अब भले आप भोग लग गया है तो आराम से अब आनंद लीजिए तिल साकड़ी और तिल के पापड़ का, और साथ ही साथ सुनिएगा एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन,
2: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। बीमारियों में कारगर मिट्टी चिकित्सा, कई बीमारियों में कारगर मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी के द्वारा हम किस तरह चिकित्सा कर सकते हैं, कितनी ही बीमारियों में कारगर सिद्ध हो चुकी है मिट्टी, तो आइए इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मिट्टी में सर्वाधिक अवशोषण क्षमता होने के कारण मिट्टी प्रबल कीटाणुनाशक है। मिट्टी में विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु एक्टिनोमाइसिटेस पाया जाता है, जिसका आचरण प्रतिरक्षी जीवों की तरह होता है और इस बैक्टीरिया की गति सर्वाधिक होती है। मिट्टी में इस जीवाणु की अधिकता इसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है। जब मिट्टी में पानी डाला जाता है ना, तो इस जीवाणु की गति 20 गुना बढ़ जाती है। मिट्टी चिकित्सा पद्धति में साफ व 12 घंटे भीगी हुई मिट्टी का प्रयोग भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे कि सूजन। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की सूजन आ गई है तो उस जगह मोटी मिट्टी की पट्टी 25 मिनट लगा करके सूजन को तेजी से कम किया जा सकता है। यदि सूजन शरीर के अंदरूनी हिस्सों जैसे अल्सर, लीवर ऑफ सिरोसिस, प्लीहा वृद्धि, यकृत वृद्धि है, तो सुबह व शाम 2 बार मिट्टी पट्टी का प्रयोग बेहद लाभकारी है। गांठ या फिर रसोली, इसमें शरीर के किसी भी हिस्से में अगर अंदर की गांठ हो, खास करके स्तन, बच्चेदानी, मलद्वार, पेट वगैरह वगैरह में, तो पहले आप गर्म सेक देकर के 1 इंच मोटी चिकनी मिट्टी की पट्टी 30 से 45 मिनट तक सुबह शाम रखिए। गांठ स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगेगी। कैंसर गांठ में भी यह प्रभावी है। कब्ज, पेट रोग, कब्ज, एसिडिटी, अपच, कोलाइटिस, गैस्ट्रिक रोग हो, उस स्थिति में पहले पेट का गर्म सेक देकर के तुरंत 1 इंच मोटी मिट्टी की पट्टी रखने से अंदर जमा मल उखड़ने लगता है और आंतों को बहुत आराम मिलता है। आंखों के रोग, ब्लाइंडनेस, आंखों का विजन कमजोर, रेटिना कमजोर, धुंधलापन वगैरह वगैरह, इन सभी रोगों में आंख पर सीधी मिट्टी रखने से आंखों को आराम मिलता है। माइग्रेन या सिर दर्द होने पर भी आंखों को आराम मिलता है। मिट्टी चिकित्सा का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि मिट्टी साफ गहरे गड्ढे से ली गई हो। मिट्टी को प्रयोग में लाने से पहले 10-12 दिन धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए। विशेषज्ञ की निगरानी में ही इसका उपयोग करना है, तो इस तरह मिट्टी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है अगर हम सावधानी से यूज करते हैं तो। चलिए, ये तो हुई मिट्टी के लिए जानकारी, और मिट्टी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किस तरह की मिट्टी लेनी है। तो अब आपको सुनाते हैं एक गीत, क्योंकि समय हो चुका है गीत सुनाने का, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है। चलिए जानने योग्य बात आपको बता रहे हैं। पसीना बताएगा सेहत का हाल। हेल्थ एक्सपर्ट ने एक डिवाइस बनाया है जिसे कलाई में पहना जा सकता है। इस डिवाइस में ऐसे सेंसर है जो हमारे शरीर के पसीने का विश्लेषण करके किसी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। दिल की धड़कन व अन्य जानकारियां देने वाले तो कई रिस्ट बैंड थे, लेकिन पसीने के विश्लेषण से बीमारी का पता लगाने वाला यह पहला रिस्ट बैंड होगा। इससे बीमारियों का पता आरंभिक अवस्था में लगा सकेंगे। अब मैं आपको आज के अनमोल वचन सुनाना चाहूंगी। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, आपकी एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अब प्यारे श्रोता बंधुओं, मैं अपना स्वरचित भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, क्षमा गणी सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। आनी मनक जमारा में आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। हो आनी मनक जमारा में आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा। आनी मनक जमारा में आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कैयन आयो हाथे। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कैयन आयो हाथे। अरे अंत समय आयो जब थाने यमदूत मारे लाते। आनी मनक जमारा में आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा। आनी मनक जमारा में आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। थारी मारी कर कर के या जिंदगी सारी खोई। थारी मारी कर कर के या जिंदगी सारी खोई। अरे इस जीवन में सब ही पराया अपना है ना कोई। अणी मनक जमारा में आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा। अणी मनक जमारा में आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। चार दिनों की जिंदगानी में कर ले आछो काम। चार दिनों की जिंदगानी में कर ले आछो काम। हाथों से कर ले काम, मुख से भज ले प्रभु का नाम। अणी मनक जमारा में आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा। अणी मनक जमारा में आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। हो अणी मनक जमारा में आयो रे, कुछ कर जा रे।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God, and friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते हैं वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर, नो, वी डोंट फियर गॉड। देन देयर इज अ सेकंड गुड रीजन व्हाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड, बिकॉज़ फ्रेंड्स, मोर देन 80% ऑफ द वॉर दैट इज फॉट टुडे इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड। चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वॉर हो, अमेरिका इराक वॉर हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, हैव वी रियली अंडरस्टूड गॉड? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली ALI तो रमजान में है राम RAM। दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल DIL तो रमजान में है जान ZAL। अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। तो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं। And that is a beautiful relationship that we can establish with the Almighty God. And this is what is very very important. और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।

0: जब कबूतर को पता चलता है कि बिल्ली उसके पास आ गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे बिल्ली गायब हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है बाबू। वैसे हम लोग कभी कभी यही तरीका अपनाते हैं, समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे वो खत्म हो जाती है? घर ऑन एयर के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राठौड़ परिवार बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर होती है एक नॉक। कौन पूछने पर गेट से जवाब आता है, पुलिस। अब यहाँ कबूतर है राठौड़ परिवार और बिल्ली है पुलिस। चलिए देखते हैं कि अब कबूतर करता क्या है।
1: बड़े भैया, गेट मत खोलिए, मैंने सीरियल में देखा है, पुलिस एकदम से आती है अंदर और बिना कुछ बताए हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर बहुत मारती है।
2: अरे अरे, तो आप गेट मत खोलिए, आपको ले गए तो हमारा क्या होगा?
3: अरे, पुलिस वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी को भी ले जाएं, और मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या किया है?
4: एक काम करते हैं, तुम लोग सब चुप हो जाओ, उनको लगेगा घर पे कोई नहीं है तो सब वापस चले जाएंगे।
5: माँ, ऐसी थोड़ी होता है, आप
4: चुप कर किशन, जेल जाना है क्या?
6: माँ, आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। बड़े भैया, आप बैठिए, भाभी घबरा रही है, मैं देखता हूँ, और आप लोग जरा शांत हो जाइए।
7: भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
6: ठीक है, चलिए।
4: नहीं वीरेंद्र, रुक। अरे रुक बेटा।
6: माँ, आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा।
8: हम नजदीकी पुलिस थाने से आए हैं, हमें विजय की तलाश है।
7: आपका मतलब विजय दीनानाथ चौहान है?
8: आप पुलिस वाले से मजाक कर रहे हैं?
7: सॉरी सर, मैं नर्वस होता हूँ तो मजाक निकल जाता है।
8: ठीक है ठीक है, आप मेरी बात का ठीक से जवाब दीजिए, विजय कहाँ है?
6: जी, विजय नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता।
8: देखिए, हमें पता चला है यहीं रहता है। एक आरोपी को छुपाना कानूनन जुर्म है, इसलिए जल्दी बताइए विजय कहाँ है।
6: सर, हम सच कह रहे हैं, यहाँ कोई विजय नहीं रहता।
8: देखिए, हमारे पास प्रूफ है, विजय कुशवाहा आधार कार्ड डिटेल्स है, उसमें यहीं का एड्रेस दिया हुआ है।
9: अरे, ये तो अपना विजय है।
8: हाँ हाँ, पकड़े गए, मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे। कौन विजय, अब कहते हो अपना विजय?
6: नहीं नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये तो हमसे पहले इस मकान में रहता था, तो इसलिए ये एड्रेस पड़ा होगा, इसकी पोस्ट आती है कभी कभी यहाँ, तो लेने आ जाता है बस।
8: कोई और आपके एड्रेस पे 5 साल से अपनी पोस्ट पार्सल मंगा रहा है, आपने कुछ नहीं कहा?
7: ये लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं।
8: सर, मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
6: नहीं सर, हमें लगा वो तो हमारा दोस्त है।
10: सर, हुआ क्या है ये तो बताइए।
8: देखिए, विजय ने बड़ा बैंक फ्रॉड किया है।
0: कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मुसीबत आ ही जाए तो फिर समझदारी ही तो काम आती है। आपका आईडी प्रूफ आपका प्रमाण है, ध्यान रखिए कि आपके नाम, नंबर या एड्रेस का कोई और इस्तेमाल ना करिए। अब पुलिस अपने विजय, मेरा मतलब है कि विजय को तो पकड़ ही लेगी, बैंक में जो फ्रॉड किया है, लेकिन क्या राठौड़ परिवार की समस्या कम होगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा।
11: मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमसे हंस खेल के बात करने वाला वो विजय फ्रॉड निकला।
12: रागिनी दीदी, पहली बार सही बात बोली है आपने।
11: पहली बार तो क्या कहना चाहती है शांति, क्या मैं हमेशा गलत बात कहती हूँ?
10: भैया, ये हमारी बहने ही है ना, कहीं मंदिर से तो उठाकर नहीं लाए थे इन दोनों को?
11: किशन, तू तो पिटेगा मुझसे।
12: दीदी, आपसे और मुझसे दोनों से।
11: रुक, अभी बताती हूँ।
12: पकड़ो दीदी, पकड़ो इसको, बहुत मजाक बनाता है हमारा।
10: अरे कोई बचाओ मुझे इन दोनों से, कोई छोड़ के आओ इनको वापस मंदिर में।
11: तुझे तो मंदिर में भी नहीं रखेंगे, रुक।
1: मारो दीदी, मारो मारो।
4: अरे क्या कर रहे हो तुम तीनों, बच्चों की तरह लड़ रहे हो।
13: थोड़ा लड़ने तो इन्हें अंबिका, बड़े होकर भी बचपन जी लेना चाहिए कभी कभी। घर की रौनक इस मीठी प्यार वाले झगड़े से ही तो है। और देखो ये लोग इस बहाने एक तो हो गए ना।
2: इसलिए तो मैं भी प्यार से झगड़ती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें।
4: बड़ी बहू तू तो इतना खुश कर देती है कि खुशी के साथ मेरा बीपी भी बढ़ जाता है।
3: वैसे चंद्रावती तुम तो बचपन में बड़ी शांत थी, तुम्हारी माताजी ने बताया था मुझे, कहीं शादी के लिए झूठ तो नहीं कह दिया था।
2: मैं तो सच में बड़ी शांत थी, अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। और ये आपकी बहनों को देख लीजिए।
10: बड़े भैया आप तो बहुत लकी हैं।
13: हाँ बिल्कुल, हमारी बड़ी बहू ने आते ही इस घर को संभाला, इस घर को एक करके रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो चंद्रावती 23 साल की थी और गजेंद्र 26 का, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बहू पर ज्यादा थी। शादी होते ही एक लड़की से सब ऐसे उम्मीदें लगा लेते हैं जैसे एकदम से वो बदल जाए, अपनी उम्र से भी बड़ी होकर व्यवहार करने लगे और वही लड़के को छूट दे देते हैं, बस इसलिए कि वो एक लड़का है। इसलिए मैं तो सच में मानता हूँ मेरी बहू तो बहुत सयानी है।
2: थैंक यू पिताजी।
14: चलिए कोई तो समझा कि बहू भी एक आम लड़की ही तो है जिसे अपनी सहेलियों से बात करना पसंद है, जिसकी आंखों में अपने भी कुछ सपने हैं। उसी लड़की को शादी की रस्मों के बाद एकदम से सब जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है और कहीं चूक हो जाए तो उसे बुरी बहू का खिताब दे दिया जाता है। उसकी गलतियों पर ताने कसने की जगह प्यार से समझा कर गले लगाकर तो देखिए, देखिए कि कैसे वो बहू बेटी बन जाती है। हाँ वैसे बहू से याद आया कि राठौड़ परिवार की छोटी बहुरानी राजकुमारी जी नजर नहीं आ रही। हो समझ गया, राजकुमारी जी किचन में है।
4: कुमारी ये क्या कर रही हो? अरे ये कढ़ाई जमीन पर क्यों गिरी हुई है और ये दो तरफ से मुड़ी हुई क्यों है?
15: मासा मैं तो आपने जो कहा था बस वही कर रही थी।
4: मैंने क्या कहा तुझे?
15: आपने तो कहा था मासा कि राजकुमारी हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, जा इसे बदल कर कुकर ला।
4: तो तूने कढ़ाई को हथौड़े से तोड़ दिया?
15: हाँ मैं तो इसे कुकर बना रही थी मासा।
4: राजकुमारी बेटा मैंने कढ़ाई को दुकान से बदल कर लाने को कहा था।
15: ओ तभी मैं सोचूं कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, फिर मासा ने मुझे कुकर बनाने को क्यों बोला? लेकिन फिर मैंने सोचा मासा ने बोला है कि कढ़ाई को बदल के कुकर ला तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
1: आपको क्या लगता है भाभी इंजीनियर बर्तन बनाते हैं?
15: हाँ मतलब वो पास वाली दुकान पे जो छोटू है ना वो इंजीनियर ही तो है, बर्तन ठीक करके देता है सारे वो।
1: भाभी वो उसके पापा की दुकान है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
15: ओ अच्छा अच्छा अच्छा अब समझी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शुरू में ही सिखा देते हैं बर्तन बनाना।
4: बेटा अच्छा हुआ तू इंजीनियर नहीं बनी, वरना सारे इंजीनियर दरिया में कूद जाते।
7: हमारी भाभी कितनी भोली है ना?
11: हाँ भोली भी है और भाली भी,
1: जैसी भी है हमारी है।
7: मैं बहुत लकी हूँ मासा कि इस परिवार का हिस्सा हूँ।
14: ऐसा आज्ञाकारी देखा है आपने कि कोई कढ़ाई को कुकर बनाने की कोशिश करने लगे? वैसे हर परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और यही तो जिंदगी का मजा है। जैसे चाट होती है ना, थोड़ी खट्टी आहा, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी, हर स्वाद होता है। ऐसे ही जिंदगी में हर कोई हमारे जैसा सोचने बोलने और करने लगे तो फिर बोरिंग ना हो जाएगी लाइफ? हाँ तो चलिए आप और हम लोगों में छुपी खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ आपका साथ निभाने और राठौड़ परिवार की कहानी सुनाने। फिर आऊंगा अगले एपिसोड में, इंतजार कीजिएगा हमारा, क्योंकि भाई ये राठौड़ परिवार है, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है यहाँ।
16: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माय सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं दोस्तों? आज एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हम राही। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम भी मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है हमेशा की तरह। और इस प्रोग्राम के माध्यम से कई बार हम कोशिश करते हैं ना कि जो डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो सोसाइटी में जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमारे दिव्यांग साथियों को, दृष्टिबाधित साथियों को, और खासकर शादी ब्याह के मामले में कितना सपोर्ट होता है, नहीं होता है, क्या वो कैसे उस पर जो है आगे बढ़ते हैं, ये सब हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं वो ये सब काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो श्रोताओं, तो एक शो आया करता था सत्यमेव जयते, जिसको मशहूर अभिनेता आमिर खान साहब होस्ट किया करते थे। तो उस शो पर भी आज के हमारे मेहमान आ चुके हैं। और इसके अलावा केवल इतना ही नहीं है, अभी तो अब मैं बोलूंगा तो पूरा प्रोग्राम उनकी जो अचीवमेंट्स है उसको बताने में ही निकल जाएगा, लेकिन आज हम उनसे खुद से भी सुनेंगे। वो दो दो कंपनीज के फाउंडर हैं, CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत के पहले IT प्रोफेशनल हैं आज के हमारे मेहमान। तो चलिए, आप में से बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जो है वो जानते होंगे। आज हमारे बीच में श्रीमान कृष्णकांत माने जी और उनकी श्रीमती जी प्राजक्ता जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। तो कृष्णकांत सर और प्राजक्ता मैम, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: शुक्रिया, और हमें भी बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। तारीफ और तारुफ दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात है सर, तारीफ और तारुफ तो मुझे लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है अभी तो। अब मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए कृष्णकांत सर आप खुद जो है अगर बताएंगे आपकी जर्नी, आपकी डिसेबिलिटी, आपकी अचीवमेंट्स, तो शायद अच्छा लगेगा।
2: अच्छा, तो शुरुआत में एक चीज मैं बताना चाहूंगा
0: जी।
2: और ये मतलब मैं बहुत जगह पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे बता रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा भी ये सही जगह पे पहुंचेगा।
0: राइट।
2: कि सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, वो ये एक शब्द से हो रहा है जिसे कहते हैं दिव्यांग।
0: जी जी जी।
2: हमारे पास कोई दिव्यांग नहीं है, हम सुपरमैन नहीं, ना मैं उड़ सकता हूँ, ना मैं डूब के पानी में रह सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल।
2: तो मतलब मैं मेरे अचीवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ, कोई भी जो विकलांग व्यक्ति है, देखो हर इंसान में कुछ तो विकलांगता होती है।
0: जी।
2: तो मैं ब्लाइंड के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि ब्लाइंड पर्सन कैन बी अ साइंटिस्ट, ही कैन बी अ लॉयर, ही कैन बी अ थीफ, वो जान बचाने वाला डॉक्टर हो सकता है, वो जान लेने वाला खूनी हो सकता है, वो मिलिट्री में IT ऑफिसर हो सकता है, वो टेररिस्ट हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है, वो फ्रॉड करने वाला हो सकता है, या फिर वो बड़ा कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है। तो
0: क्या बात है
2: यार, एज गुड और एज बैड एज एनी अदर पर्सन। तो दिव्यांग दिव्यांग कह के कुछ तो हम लोग अलग है, ये बताने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। मैं हंसी मतलब एक जोक के तौर पर बताता हूँ, अगर हम लोग, हमारे पास दिव्यांग है, तो आज पूरे दुनिया में सारे अच्छे जगह पे केवल और केवल हम लोग ही होने चाहिए ना।
0: बिल्कुल।
2: थोड़ी ना होता है, तो हम उतने ही अच्छे या उतने ही बुरे होते हैं जितने पापी सब लोग होते हैं।
0: एग्जैक्टली।
2: तो रही बात मेरी, तो मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आई एम एन IT प्रोफेशनल। मेरे से पहले कुछ लोग ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे प्रोग्रामिंग किया करते थे, जैसे फॉक्सप्रो डिवाइस वगैरह, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज है। बल्कि मैंने उन जैसे लोगों से ही थोड़ा इंस्पिरेशन लिया है, जैसे हरीश कोटियन भाई है और बहुत लोग हैं थोड़े फोन। बट एज अ कम्प्लीट ब्लाइंड IT प्रोफेशनल मैं पहला ही निकला देश में, जो फ्रंट एंड बैक एंड, उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन, सिस्टम आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर के डिजाइन बनाने से लेके सब कुछ करना, जिसे IT प्रोफेशनलिज्म कहते हैं ना, IT प्रोफेशनल। तो वैसे मैं पहला था। और उसके बाद मैंने ऑफकोर्स मेरा ग्रेजुएशन पहले मैंने इकोनॉमिक्स में किया, चूंकि कभी पॉसिबल नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना। लेकिन उसके बाद जब फैसिलिटीज आई तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने बाकी सब अरेंजमेंट करके, और फिर ऑब्वियसली बाद में सब कुछ हुआ। एंड देन मैं कई जगह पे पहले जॉब भी कर चुका हूँ, यहाँ तक कि IIT में भी था, उसके बाद होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में मैंने काम किया, ऐसे बहुत जगह पे। और फिर उसके बाद मेरी खुद की फाउंडेशन भी है, डिजिटल फ्रीडम फाउंडेशन। और अभी जो सबसे लेटेस्ट बात है वो है कि मैं एक बुकमैटिक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज देते हैं, और अभी अभी मैंने एक मेंटोर प्राइस करके कंपनी चालू किया। मेंटोर प्राइस इज मेंटोरिंग यू टू गेट एंटरप्राइज रेडी, जो आजकल के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आईटी फील्ड से निकलते हैं या जो अभी एग्जिस्टिंग है लेकिन उनको अभी जॉब चेंज है या नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उन लोग को वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू गेट, मतलब खुद का पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग कोर्सेज चलाते हैं, और हम लोग सिर्फ सिखाते नहीं, हम लोग वी मेंटोर देम, तो इसलिए हम लोग ने इसका नाम रखा मेंटोर प्राइस। तो हाँ, यही है बस मेरे बारे में।
0: क्या बात है सर, ये तो मुझे लगता है अभी भी इसमें भी बहुत कुछ तो रह गया होगा। क्या बात है, तो आप विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ हैं सर या बाद में है?
2: हाँ, एक्चुअली मैं जब मतलब पैदा हुआ तब मेरे अंदर थोड़ी दृष्टि थी, कुछ 5-10% विजन था।
0: Okay.
2: कुछ तो मेरे माँ के प्रेगनेंसी में कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हुए थे जिसके वजह से रेटिना पे मेरे इफेक्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बता ही दिया था कि जैसे 3-4 साल के हो जाएंगे ओपेसिटी बढ़ेगी तो रेटिना पूरा चला जाएगा।
0: ओके,
2: तो वैसे ही हुआ। सो आफ्टर दैट आई लॉस्ट आई सेक बट आई डेवलप्ड माय ओन विजन।
0: गुड गुड गुड गुड। थोड़ा सा सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी प्लीज बताएं हमारे सुनने वाले।
2: आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मतलब काफी मध्यम वर्गीय फैमिली थी। मेरे पिताजी सीमेंस में काम करते थे, एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर।
0: Okay.
2: मेरी माँ शी इज अ होम मेकर, मतलब वो घर पे ही रहती थी। मेरी एक बहन है जो डाइटिशियन है, मतलब जो आहार तज्ञ जिसे कहते हैं।
0: yes, yes,
2: तो
0: yes.
2: उन्होंने जसलोक हॉस्पिटल से वीआरएस ली है। अब वो खुद ही प्रैक्टिस करती है और बस, और मतलब वही ऐसे ही घर था हमारा, साधारण घर था, बस वो हम दो हमारे दो वाला। हाँ, आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड।
0: गुड, वेरी नाइस। तो आपकी एजुकेशन वगैरह कौन से स्कूल से हुई सर?
2: हाँ, ये भी एक बात है कि मेरे माँ और पिताजी का ये मानना था, मेरी बहन मेरे से 3 साल बड़ी है
0: जी,
2: तो जो स्कूल में वो पढ़ती है, बिकॉज शी इज साइटेड, तो उनको लगता था उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो काफी मतलब उसके लिए मशक्कत करनी पड़ी। और तभी ये इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं था, मेरे टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं
0: जी।
2: उसके बावजूद भी कोशिश करके आखिर इंग्लिश मीडियम किंग जॉर्ज करके स्कूल है दादर में जो इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के अंडर आती है, उनको कन्विंस करके बतौर एक्सपेरिमेंटल केस मुझे उन्होंने जूनियर केजी में ले लिया, लेकिन वो तुरंत ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि मैं तो बच्चा था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी कुछ लोग कहते कि तभी कुछ बहुत लोग कहते थे कि आपका बेटा बहुत ब्रिलियंट है, वो कर पाएगा करके, तो फिर उसके बाद आगे ये हो पाया। तो मैं साइटेड स्कूल में ही था, मतलब मैं कभी ब्लाइंड स्कूल गया नहीं, तो इंग्लिश मीडियम किंग जॉर्ज हाई स्कूल में मैं था।
0: अच्छा, आप हमेशा मतलब जो है साइटेड बच्चों के साथ ही आपने एजुकेशन।
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके, ग्रेट। चलिए तो अब थोड़ा सा प्राजक्ता मैम से भी बात कर ली जाए। मैम, आप भी अपने बारे में बताएं, और आप तो मतलब जो है साइटेड है, तो आप भी अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं।
1: वैसे मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ।
0: यस मैम।
1: भी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने 6 साल मैंने कंपनीज में काम किया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, और अभी हम दोनों दो कंपनी के को फाउंडर्स है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एडुटेक।
0: ओह गुड, क्या बात है। और कब से जानती है मैम आप कृष्ण सर को?
1: वैसे तो मैं बहुत, आई थिंक 2010 या 11 से मैं जानती हूँ उनको। उनको सुपर एडोल करके एक बड़ा अवार्ड होता है आईबीएन नेटवर्क से।
2: हाँ, आईबीएन नेटवर्क का सुपर एडोल, यंग टेक्नोलॉजी अचीवर्स जो होते हैं, जो डिसेबल्ड भी होते हैं, या उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ अगर अच्छा किया तो उनको अवार्ड दिया जाता है आईबीएन नेटवर्क के।
0: ओके ओके।
1: तो तभी से मैं इनको पहचानती हूँ। उसके बाद उनके बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स आते थे, तो मैं पहचानती थी उनको। फिर वो एक दिन मेरे कॉलेज में आए थे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में लेक्चर देने, तभी मैंने तभी ज्यादा जानकारी हुई उनके साथ। फिर हम दोनों ने बातें करना शुरू किया फेसबुक पे। उसके बाद जैसे मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तो वैसे हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी, सामाजिक कुछ प्रश्न और ऐसे ही म्यूजिक के बारे में बहुत बातें करते थे। तो जैसे मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मैंने इनको पूछा था कि अभी मैं आके क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन से टेक्नोलॉजी में जाऊँ, मैं डेवलपर बनूँ, टेस्टर बनूँ या सर्वर साइड पे काम करूँ। तभी उन्होंने मुझे ऑफर किया था उनके कंपनी में काम करने के लिए, तो मैं एज अ इंटर्न मैंने ज्वाइन किया था। तभी थे बहुत हमारी, फिर हम बहुत एक दूसरे को मिलते थे, रोज मिलते थे, रोज बातें होती थी। तो उससे प्यार बढ़ गया।
0: क्या बात है। लेकिन मतलब पहली बार कब आया दिल में कि मतलब ही कैन बी माय लाइफ पार्टनर, ये कब पहली बार आपके दिमाग में आना?
1: वैसे पहली बार मैं ऐसा कुछ पता नहीं मुझे कि ऐसा कुछ टाइम है या वो
0: ओके
1: okay. हम लोग जैसे भी पहले से भी बहुत बातें करते थे जब मैं कॉलेज में थी
0: ओके
1: okay. तो बहुत टेक्नोलॉजी के ऊपर तो वो होता ही था, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजों पे बातें होती थी हमारी। और जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो और ज्यादा नजदीक मतलब पर्सनली बातें होती थी।
0: राइट right.
1: उसमें से हम लोग को पता चला कि हमारे छंद, हमारे जो विचार है, हमारा हमारी खुशियाँ सारी एक ही है। मतलब बहुत ही हम लोग बहुत सिमिलर विचार करते हैं। तो ऐसा कर करके फिर पता चला कि अरे हम एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर
2: हाँ, दैट इज द राइट वर्ड, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, काइंड ऑफ जिसे सोलमेट्स कहते हैं ना। क्योंकि कोइंसिडेंटली आपको बताऊं, हमारे बचपन की शरारतें भी एक जैसी, हम लोग को मालूम ही नहीं था ये। मतलब आई कुडंट इवन इमेजिन इन माय ड्रीम्स कि हम लोग वही चीजें के लिए पनिश किए जाते थे हम लोग हमारे घर पे, जो सेम सेम है। भी चोरी अंगूर खाया करती थी और मैं भी चोरी करके बहुत ज्यादा अंगूर खाया करता था, हमको डांट पड़ती थी। मुझे भी पसंद है, वो भी पूरी टैक्स आवी थी, मैं भी टैक्स आवी था, और हमारे जो सोशल इसके तरफ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सेम था। तो आई थिंक इट वॉज अ नेचुरल प्रोसेस की वो, मतलब मैं ये कह सकता हूँ हम लोग में प्यार नहीं होता तो ताजुब था ऐसा, मतलब इतने हम लोग ऐसे।
0: क्या बात,
1: हम नहीं तो कौन ऐसा।
0: तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इनके कॉलेज में जाना भी इसीलिए हुआ कि आप लोग जो थोड़ा सा एक जो डिस्टेंस था ना वो भी खत्म हो जाए।
2: उसके लिए शायद हुआ होगा वो, बिकॉज़ उसके बाद तो हम लोग की बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हुई। मतलब दूसरे तीसरे ही दिन उसने मुझे बोला कि अरे आप वही बातें करते हो जो मैं हमेशा सोचती हूँ, तो कितनी अच्छी बात है करके।
0: क्या बात है। लेकिन प्राजक्ता मैम, कभी कोई आपको बैरियर नहीं लगा जो मतलब आम सोसाइटी में जो बातें होती हैं दरअसल वीआई को लेकर के, आपको कभी नहीं लगा ऐसा कुछ भी?
1: बैरियर का आप अगर बोलोगे तो आपको पता है मैं साइटेड हूँ।
0: राइट
1: ओके। मैं मतलब मेरे पूरे मतलब इतने साल में मैंने किसी विजुअली इम्पेयर्ड आदमी से या औरत से मैंने कभी
0: बात नहीं की,
1: मतलब कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं।
0: जी
1: हाँ, अलावा कृष्णकांत सर
0: जी।
1: तो जब ही मैंने जैसे ज्वाइन किया इंटर्नशिप ओके, तो तभी मुझे कुछ कुछ एक्सेसिबिलिटी होती है, तो वो मुझे कुछ कुछ मतलब मुझे नहीं पता थी ओके कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो यूजुअली हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कुछ चीजें दिखा रही हूँ तो थोड़ी सी एक्सप्लेन करना, अगर हम लोग एक साथ चल रहे हैं तो अगर कोई मोड आया तो उनको बताना। तो इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट कि नहीं आपको अगर साइटेड में और वीआई में कुछ फर्क लगे, तो वो वैसे कुछ हुई बैरियर ऐसा नहीं लगा था, लेकिन यस कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी सीखनी तो पड़ी, लेकिन फिर ऐसे कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं था।
0: आपने वो चीजें सीखने के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया एक्चुअली?
1: सीखने के लिए खुद को प्रिपेयर किया मतलब कैसे होता था कि हम दोनों एक साथ काम करते थे ओके, तो कभी कभी ऐसे होता था कि ये स्क्रीन रीडर ऑन करते थे तो मैं देखती थी ये कैसे काम कर रहे, तो मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा था
0: ओके।
1: उसके बाद हम लोग मीटिंग्स के लिए एक साथ जाते थे, वर्कशॉप्स के लिए एक साथ जाते थे, तो कैसे बताना है, कभी बताना है, तो और हम दोनों में एक ऐसा हुआ था कि हम दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया था तभी से, तो उनको पता ही चलता है जैसे कि अगर मैं थक गई हूँ तो मैंने कुछ फटक से नहीं बोल दिया तो उनको पता चलता है कि नहीं आगे जाके हम लोग को उतरना है या चढ़ना है, एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन तो हम दोनों में बना।
0: क्या बात है।
1: मतलब मैं कहना चाहती हूँ मतलब बहुत अभी इसके पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था तभी भी मुझे मतलब बोलना था कि एक्सेसिबिलिटी ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं होता। जैसे कि अभी हमारी मदर टंग है मराठी,
0: राइट,
1: आप हिंदी में बात करें और अभी ये प्रोग्राम हम लोग को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, तो हम लोग को मतलब जारी सा है कि हम लोग को हिंदी में ही बात करें।
0: Right.
1: But this is also accessibility for someone.
0: Yeah, exactly.
1: अभी मैंने आपको मतलब ऐसा कहा देखो वहाँ पे कुछ तो है, ऐसा बोल के किसी को कुछ नहीं समझ में आने वाला, वो साइटेड है, डम है या कोई भी है। तभी आपको थोड़ा सा प्रिसाइज होना है, देखो वहाँ पे मैंने बॉटल रखी है, तो ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं होता है, यू हैव टू जस्ट बी प्रिसाइज।
0: गुड, दैट्स वेरी नाइस। के सर
2: हाँ बोलिए।
0: मैम ने तो बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर थे, लेकिन आपके आपका तो इतनी मतलब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने बहुत जगह मेंटोरशिप भी की है, सेमिनार्स भी लिए हैं, इतने लोगों के साथ काम किया है, तो आपके लाइफ में तो बहुत से लोग आए होंगे।
2: लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, सही बात है, और आते रहेंगे और आते भी थे, लेकिन कैसा होता है ना कि
0: डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा ना प्राजक्ता मैम के लिए कि नहीं रहा।
2: डिसाइड करना उनके लिए मुश्किल होता है जिनको खुद को नहीं पता रहता है कि उनको क्या चाहिए। तो ऐसा होता है ना कि अपने को मालूम रहता है कि लाइक एज यू राइटली सेड एक्सपीरियंसेस पास्ट एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग, हमारा एक माइंडसेट बना रहता है और हमें मालूम रहता है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट इन अ लाइफ पार्टनर। और कई बार ऐसे हो जाता है कि मतलब कई लोगों को ढूंढना पड़ता है, लेकिन कई लोगों के अपने आप ऐसे जैसे जिग्सॉ पजल का एक पीस दूसरे पीस से अट्रैक्ट हो जाता है। तो हमको पता है पहले ही अपने दिमाग में ये इमेज बनी रहती है कि अपने को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या यू नो माय वाइफ शुड बी लाइक दिस, ओके, जनरल एक व्यू रहता है। एंड होता है कि कुछ चीजें मिल जाती है, कुछ चीजें नहीं मिलती है, लेकिन हमारे बारे में ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट जैसा मैंने सोचा था, लाइक द मोर आई स्पेंड टाइम विद हर, जितना ज्यादा हम टाइम बिताते थे और हम लोग मतलब वो इंटर्न थी तो हम लोग कोडिंग एक साथ प्रोग्रामिंग एक साथ करते थे, तो प्रोग्रामिंग करना कम और गप्पे बहुत मारते थे हम लोग। वो इतनी ब्रिलियंट थी और इतनी ब्रिलियंट है कि जो आम आदमी 4 घंटे में काम करेगा वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में कर देती थी। तो
0: क्या बात है,
2: एंड बिकेम एन एडवांटेज कि चलो बचे हुए टाइम में हम लोग गप्पे मारेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी बातें करते थे, ट्रैवलिंग का हम लोग दोनों को शौक है, पहाड़ों पर समुन्द्र का शौक है, तो सारी बातें आती थी, सारी की सारी बातें। और चीज जो फाइनली मतलब मेरे दिमाग में आई, कैसा होता है कि रिलेशन में जितना खुश रहना होता है उतना ही जरूरी होता है खुश अपने लाइफ पार्टनर को देखना। कई ऐसी छोटी मोटी इंसिडेंट हुई जिसके वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि साथ रहती है तो बहुत मुअत्तर होती है, बहुत खुश होती है वो। इसमें मेरे जबान पे उर्दू के शब्द आ जाते हैं क्योंकि मैं लिखता भी हूँ उर्दू में, इसलिए तो।
0: अरे वाह, बहुत खूब, बहुत।
2: तो ऐसा हुआ कि मिसाल के तौर पर एक बार उसको कुछ बुखार वगैरह कुछ था, एंड शी वाज सिटिंग होम, मुझे मालूम है इसको हारमोनियम वगैरह बहुत पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो एक अच्छा बुक मेरे पास था जिसमें पूरा हारमोनियम के बेसिक्स और उसको किस तरह से बजाना है, किस तरह उसको ट्रीट करना है। तो मैंने उसको वो बुक भेजा, एंड सडनली शी फेल्ट सो नाइस, सो वेल, जहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसको पूछा, रे क्या हो गया, तू तो ऐसे मतलब थोड़ी मुरझाई हुई लग रही थी, एकदम खिल कैसे गई। तो मतलब ये एक मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल से मुझे मालूम पड़ा कि सिर्फ मैं खुश हूँ नहीं, मैं उसको खुश देख भी पा रहा हूँ मेरे वजह से। तो अगर मेरे वजह से इतनी खुश हो रही जितने उसके वजह से मैं हो रहा हूँ, तो मतलब वो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऐसा एक पॉइंट आ गया कि हमको मालूम ही पड़ गया कि हम लोग शादी करेंगे, मतलब मालूम ही पड़ गया।
0: ग्रेट। अच्छा सर, आपने भी कहा आप लिखते भी हैं, तो मैम के लिए क्या लिखा आपने, बताओ।
2: वो आई थिंक मैम आपको बताएं क्या क्या लिखा या क्या क्या लिखा।
0: आप बताइए जरा मैम। चलिए
2: मैम बताइए।
1: मैं मेरे फैमिली के साथ केरला घूमने गई थी।
0: ओके।
1: और हम लोग मतलब उतना बात नहीं कर रहे थे तभी।
0: ओके।
1: इश्यूज थे तो थोड़ा सा मतलब होता था, अरे मुझे इनसे बात करनी है, लेकिन होता है ना वो स्टार्टिंग के फेज में कि आपको बहुत अच्छा लगता है, वो प्यार का पहला नशा वाला।
2: हाँ, बराबर
1: वैसा ही सेम।
0: क्या बात है, बिल्कुल वो पहला एहसास।
1: यस यस यस। तो तभी एक मतलब 10 दिन के बाद में आ गई, तो इन्होंने मुझे एक उनकी लिखी हुई डायरी दे दी, मतलब उन्होंने कुछ मेरे लिए एक डायरी में लिखी, अभिजीत नाम है उनका। उन्होंने मेरे लिए डायरी में लिखी थी और वो मुझे वो पारिजात करके वो बुक का टाइटल है, जो मेरा नाम है प्राचा।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दी है, तो अभी और हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं पोएम्स एंड गजल्स, तो अभी कुछ सालों में हम लोग उसको
2: मतलब हुआ ये था कि वो बुक तो उसको मिला था, लेकिन उसके पहले भी उसके पिछले दिन जब वो वापस आ रही थी केरला से, मैं कोंकण में था, ये कोंकण रेलवे केरला से कोंकण होते हुए मुंबई आती है, तो मैं वहाँ कोंकण में था मेरे दोस्त के घर पे, एंड आई सरप्राइज मैं उसके ट्रेन में चढ़ गया बीच में।
0: ओह क्या बात है, वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंट। अरे गजब। हाँ फिर
2: तो फिर आने के बाद मैंने वो बुक उसको गिफ्ट की एंड उस दिन पहली बार मैंने मतलब खुशी के आंसू क्या होते हैं वो मैंने पहली बार देखे हुए।
0: वाह क्या बात है। तो इतनी सारी आपने जो पोएट्री की है, जो मैम को सबसे ज्यादा पसंद हो कोई दो लाइनें अगर याद आ रही हो अभी।
1: बहुत अच्छी अच्छी कविताएं
2: मैंने एक्चुअली बहुत सारी कविताएं लिखी है, उसको शायद मेरी मशवरा करके एक कविता थी जो उसको पसंद आई थी कि हर वक्त हर सवाल का जवाब देना लाजिम नहीं होता, मोहब्बत के कारोबार का हिसाब देना लाजिम नहीं होता, होता नहीं दोस्ताना हर फूल इस्तकबाल का, हर गुलाब के बदले गुलाब देना लाजिम नहीं होता। ये माना कि मेहमान नवाजी तहजीब तो है लेकिन हर महफिल में मेहमान को शराब देना लाजिम नहीं होता।
0: वाह वाह क्या बात।
2: खुदा है इस जहान में तो जानता है निसार, निसार ये मेरा तखल्लुस है, और खुदा है इस जहान में तो वो भी जानता है निसार कि हर शब को माहताब देना लाजिम नहीं होता। सो हर नाइट जो मून वाली नाइट है वही ब्यूटीफुल है, जरूरी नहीं मूनलेस नाइट भी उतनी।
0: यस यस यस क्या बात। वाह ग्रेट। अच्छा कृष्ण सर एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, ऑलमोस्ट पूछता हूँ, पहला प्रपोज किसने किया?
2: अरे बाप
1: उसके भी एक कहानी है।
0: और मुझे मैम की हंसी से पता लग गया कि वाकई में कोई कहानी है।
2: बहुत बहुत बहुत ही मतलब अभी लोग बोलेंगे यार ये फिल्म की कहानी बता रहे हैं या रियल लाइफ की कहानी बता रहे हैं। ये था
0: जी,
2: और इसलिए जानबूझ के मैंने वो कविता, वो उसमें भी एक कविता इन्वॉल्व है, मैंने वो नहीं कही
0: जी,
2: नहीं मतलब बस वो उसके लिए ही है ऐसा है।
0: आपको लग रहा था ये क्वेश्चन आएगा ही।
2: क्या हुआ था कि मैंने कहा ना कि जैसे जैसे जितना बात करते गए हम उतने अट्रैक्ट होते गए बात करते, और हमको मालूम पड़ गया एक टाइम पे कि बस मतलब ये है सही बात है। एंड मैं बहुत देर से मुंतजर था कि ये इजहार करेगी करके, हर रात को बात करता था उनके साथ। जब बात करने के बाद एक ब्यूटी एंड द बीस्ट करके एक फेरी टेल थिएटर में एक मूवी लगती थी बचपन में, तो उसमें बीस्ट रहता है, वो ब्यूटी को हर बार पूछता है डू यू लव मी विल यू मैरी, तो मतलब एक्चुअली रियलिटी में जिस दिन वो यस बोलती है
0: वो बीस्ट ब्यूटी में बदल जाता है,
2: वो बदल जाता है, वो राजकुमार बनता है। तो वैसे ना हर नाइट में चैट हम लोग बात करते थे, मैं एंड में इसको पूछता था डू यू लव मी विल यू मैरी मी, तो वो हर लैंग्वेज में मुझे यस बोलती थी।
0: अच्छा
2: फन मजाक में चलता था, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कभी तो ये हो और मैं कोशिश कर रहा था। तो शी यूज्ड टू से नहीं नहीं नहीं मैं बोलूंगी कभी तो बताऊंगी मेरे मन में क्या, लेकिन सस्पेंस है करके। तो एक कुछ तो अराउंड ठीक एक हफ्ते पहले वो सस्पेंस मैंने क्रैक कर दिया, मतलब उसने ज्यादा हिंट, जरूरत से ज्यादा हिंट दे दी। उसका बर्थडे होता है 26 दिसंबर को,
0: ओके,
2: तो उस दिन ये होने वाला था ये मुझे मालूम पड़ गया। तो एक अच्छा बंगलो मैंने रिसोर्ट बुक करके रख दिया पूरा का पूरा।
0: वाह।
2: तो मेरे फ्रेंड्स के मदद से अभिजीत जो बताया है वो मेरा कलीग भी है और मेरे साथ रूममेट था, वो केरला से था, तो हम लोग ने जाके गुपचुप वो सब बुक कर लिया। और ट्रेन से आते आते आई रोट अ पोएम, मैंने लिख दी, कार्ड है अभी भी उसके पास वो। तो हुआ ये कि अभिजीत वाज स्माइलिंग, मतलब वो हंस रहा था जब मैंने उसको वो कविता दी और बोला ये कार्ड पे लिखना और मेरे लिए कुछ गुलाब लेते आना था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या माजरा क्या है करके। हुआ ये कि 26 तारीख को जब मतलब शाम को जब वो प्रोग्राम हुआ, काइंड ऑफ एंगेजमेंट का ही एक तरह से प्रोग्राम बोल सकते हैं, प्रपोजल क्या पूरा एंगेजमेंट ही था हमारा, वो एक तरह से पूरे उसके बर्थडे के दिन प्लान था। तो मैंने उसको वो कार्ड और वो पोएम गिफ्ट किए और गुलाब गिफ्ट किए। उसके बदले में मालूम है मैम ने क्या किया? ऐसा कोइंसिडेंस था, मैम ने भी एक पोएम लिखी थी, वो भी गुलाब और कार्ड लिखे। ये दोनों की चीजें मेरे दोस्त को पता थी जो ऑर्गेनाइज करा था, बेचारा उसकी हालत खराब की, अभी मैं क्या बोलूं। ये मामले में भी ये लोग दोनों एकदम सेम है कि दोनों को भी नहीं मालूम एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए पोएम लिख रखी है
0: क्या। और मैम को रिजॉर्ट वाली बात पता थी?
1: नहीं, पता चला कि ये बहुत अच्छे अच्छे से अलग अलग से सरप्राइज देते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा तो होने ही वाला है।
0: क्या वेरी, मतलब एक तरह से पता तो आप दोनों को ही था कि होने वाला क्या है, लेकिन बस वो है कि पहले आप वाला मामला था,
2: फॉर्मलाइज करना था।
0: प्राजक्ता मैम आपकी फैमिली के लिए थोड़ी इतना इजी रहा होगा ये सब?
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: बताइए जरा क्या कहानी रही वो जब उन्हें पहली बार पता चला?
1: पहले दिन से ही नकार थी वो, उनको मतलब पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, उनकी कामगिरी के बारे में पहचानते हैं, उनके काम, और उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो वो काम करते हैं उसके बारे में, जैसे वो इंसान है उसके बारे में, लेकिन उनको नहीं एक्सेप्ट हुआ रहा हमारा मैरिज।
0: ओके,
1: वो ही था कि
0: क्या बोलते थे वो,
1: मतलब वो ही कि आप मतलब एक्चुअली वो लोग जो बोलते थे उसका सारा चीज हम लोग करते हैं अभी। तो अभी कैसे बताऊं, जैसे कि उनका रहता था कि आप आपका सौंदर्य वो कैसे देख सकता है,
0: बताइए। बहुत कॉमन बात है ये सब जगह की जी।
1: यस, के बाद उनका होता है
0: वो आपको फील कैसे करेंगे और ये सब चीजें, मतलब ना
1: था कि देखो आपको, फिर आपको तो मतलब ट्रैवल करने का, ये देखो आप दुनिया इतनी खूबसूरत है, कैसे दिखा सकता है
0: जी,
1: ऐसे सारे बहुत सी बातें थी।
0: आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी।
1: हाँ यस एग्जैक्टली, ये तो मैं भूल ही गई थी कि नहीं फिर आपको खुद का कुछ इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, आपको स्वतंत्र से कर नहीं सकते हो, फिर आपको उनके पीछे ही जाना होगा, ऐसे वैसे बहुत थी। लेकिन उसके आंसर्स भी मैं आपको बताती हूँ, वो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: एक लड़की होती है जिसको ऐसे बोलता है ना कि सजना धजना बहुत पसंद है,
0: पसंद है राइट।
1: कि हम लोग हमारे जो समाज में लड़कियां आती है, हम लोग पहले मतलब हमारी भी बेटियां होगी कुछ होगी या कुछ हमारे फैमिलीज में होते हैं, तो हम लोग उनको फ्रॉक लाते हैं, मुझे सजाया है मेरे पति ने।
0: वाह क्या बात।
1: मैं ये बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि मुझे सजाया है मेरे पति ने, उसने मेरे लिए सारे टाइप्स के ड्रेसेस लिए हैं। अगर मैं कहती हूँ अरे नहीं यार अभी नहीं, ये टाइम पे नहीं लेते कुछ, तो वो मुझे जबरदस्ती लेके जाके वो मतलब चीज लेता ही लेता है।
0: क्या बात,
1: वो अलग सी बात है। फिर
0: वेरी नाइस।
1: यस, कुछ कुछ ड्रेस पैटर्न्स मुझे नहीं पता होते कि अच्छा ये इसको ऐसा कहते हैं क्या, ये ऐसा होता है क्या,
0: तो
1: मुझे बताते हैं तभी मैं हाँ ये आपको कैसे पता चला।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: बात जो होता है कि जैसे कि पार्लर में जाना बहुत शौकीन होती है लड़कियां,
0: राइट राइट राइट,
1: ऐसा होता था हाँ ठीक है जाऊंगी नहीं जाऊंगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझे हमेशा कंपलसरी नहीं नहीं नहीं नहीं तुझे जाना ही है, वो अपॉइंटमेंट बुक करने से वहां तक मेरे साथ आने तक वो मेरे साथ रहते। जो पार्लर्स में रहती है औरत है उनको भी इतना यूजुअल हो गया, अरे सर नहीं आए क्या, सर को
0: और शुरू में होता होगा भाई जेंट्स कैसे आ रहे हैं।
1: नहीं वो यूपी से पार्लर हम लोग में इसलिए जानबूझ के हम दोनों का एक साथ ही सब कुछ हो
0: सकता है। ओके गुड गुड गुड गुड गुड।
1: पहले मैं एक लेडीज पार्लर में जाती थी लेकिन उसको भी बहुत अच्छा लगता था। अरे हाँ मुझे पता है आप क्यों आई हो, आपका बर्थडे है नहीं तो केके सर का बर्थडे है, उन्होंने भेजा होगा आपको पैम्पर करने के लिए। सेकेंड जो है कि आप घूम नहीं सकते हो, एक खूबसूरती देख नहीं सकते हो, तो लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे घूम के आए हैं। वैसे तो ये लोगों को सच में पता नहीं कि हम लोग मतलब वैसा देखा जाए तो सारा देख लिया ना हम लोग ने, पहाड़ देख लिया है
2: कि
1: हम लोग ने समुन्दर देख लिया है।
2: पता इसलिए नहीं कि हम लोग ज्यादा फोटोज वगैरह डालने में मतलब दूसरों को दिखाने के लिए हम नहीं घूमते। और ये मामले में कई बार कपल्स में एक छोटा सा इशू हो जाता है कि या तो लड़का बहुत फोटो सेवी और शो ऑफ वाला होता है, लड़की शांत रहती है, या लड़की एकदम यार मैं फोटो डालूंगी सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम उस पे धार 2-10 मिनट में, लड़का वो बोलते ना हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या मिर्जा गालिब की गजल है
0: जी जी जी।
2: ये मामला हमारे मामले में ये भी नहीं, हम दोनों भी ऐसे है कि यार खुद के खुशी के लिए कर रहे यार हनीमून जा रहे हैं, खुद के खुशी के लिए जा रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं, इसलिए वो बराबर बोल रहे हैं लोगों को नहीं मालूम कहाँ कहाँ घूम चुके।
1: वैसे तो हम लोग ने पहाड़ देख लिया है, समुन्द्र देख लिया है, जंगल देख लिया, नदी देख लिए, झरने देख लिए, सब जगह पे हम लोग।
0: ग्रेट,
2: आपको जो पिक मैंने भेजी थी वो मेरे हनीमून से थी उत्तराखंड में, वो वहाँ की थी, वहाँ आजू बाजू में पूरा बर्फ था, क्योंकि चूंकि नेत्रहीन लोग भी इसको सुनते रहेंगे, 1500 फीट पे तो वो एक शंकर का मंदिर है तुंगनाथ करके
0: जी जी जी,
2: मतलब वो देखने में बहुत अच्छा है। वैसे एक्चुअली हम दोनों नास्तिक है ये मैं बता देता हूँ पहले, भगवान का से बहुत अच्छा जिनके मतलब लाइफ में ऐसा हो गया कि अभी सच में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उनके लिए ऐसा साइकोलॉजिकल रिलीफ की कोई है, कोई हमारा शायद कुछ करेगा उम्मीद है, उस कॉन्सेप्ट से भगवान का कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसलिए हम लोग जो मानते हैं उनका कभी इंसल्ट नहीं करते, लेकिन हम दोनों नास्तिक है।
0: वेरी गुड।
2: तो मंदिर बहुत अच्छा है, तो वो चढ़ गए, हम लोग पूरा चढ़ गए थे। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है और मतलब इट्स अ डिफिकल्ट क्लाइंब, वो बारे में भी प्रोजेक्ट आपको बताएंगे बाद में। तो वहां गए हम लोग, भूटान में गए थे, वहां तो 13,000 फीट तक थी हम लोग। समुन्द्र में मतलब मैंने एक बार ऐसी सरप्राइज के लिए गोवा में उसके लिए बोट बुक किया था, बहुत कुछ हुआ था ये सब। तो हम लोग घूमते, क्यों नहीं घूमेंगे भाई, सब जगह घूमते हैं।
0: क्या बात है, तो मतलब तो पानी के अंदर और पहाड़ के ऊपर सब जगह होकर के आ गए आप लोग। क्या
2: अभी सबमरी जगह बाकी नीचे पानी।
0: अभी आज जो है मैम, आपकी फैमिली सेटिस्फाइड है या अभी भी कुछ है प्रॉब्लम?
1: जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग बहुत ही सैटिस्फाइड।
0: वेरी गुड, वेरी गुड।
1: ऐसा है कि आपने अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आप कभी भी खुश नहीं होती थी। लाइफ खुश तो आपको कोई नहीं रख सकता था।
0: क्या बात है।
1: तो जिनके थोड़ी सी है विरोध, उनका है ही, कुछ दिन में वो भी समझ जाएंगे।
0: वो भी समझ जाएंगे, एग्जैक्टली।
2: देखो कैसा है, ये आज की बात नहीं है, मतलब ये मैं किसी फैमिली के को ब्लेम नहीं करूंगा
0: जी।
2: कैसा है कि अभी हम लोग जैसे ट्रेन में वगैरह भी सफर करते हैं या जर्नीज में वगैरह, तो मुझे दो तरह के ज्यादातर लोग मिले हैं। या तो उनको लगता है हम लोग भाई बहन है, बिकॉज वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये कपल है। समझ में आया तो फिर ये रहता है, अरे आपने कितना बड़ा काम किया एक अंधे के साथ शादी करके दया।
0: अरे बाप रे बाप जी।
2: ये दो ही तरह के लोग मुझे ज्यादातर मिले हैं, मतलब जो जनरली लोअर
0: टू मिडिल। हां कि आप तो देवी हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है।
2: और एक विशिष्ट समाज के लोग भी ये बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ये बोला जाता है, मतलब जो लोअर टू मिडिल ग्रुप के जो लोग रहते हैं
0: जी।
2: मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कई बार, मतलब तब तक मेरी शादी हुई नहीं थी, कई बार लोगों ने ये पूछा कि यार तुम लोग तो मतलब शादी कैसे करोगे, क्यों नहीं करेंगे, अरे तुम लोग तो देख नहीं पाते, तो आप तो लैंगिक संबंध भी नहीं कर पाओगे ना, तो कैसे ये सब, मतलब इतना लेवल तक इग्नोरेंस है लोगों के बारे में।
0: बताइए बताइए आज भी, जबकि आप मतलब एक डेवलप्ड सिटी कह सकते हैं, वहां रहते हैं आप।
2: हाँ वहां पे भी ये सुनाई देता है, हालांकि मैं कोई कोकण में कई गाँव में वगैरह गया हूँ या घाट साइड में भी गया हूँ ना, तो वहां भी उन्होंने ना ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उधर भी ये सब होता है, उधर भी अरे रे बेचारा ऐसे सब होता है, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग, मतलब मुझे सिटी के लोग पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव करते हैं कि कुछ तो बड़ा अजूबा देख लिया, और यू नो। तो हम लोग भी यही, अगर ट्रेन में वगैरह जाते रहते तो कई बार ये मतलब इंसिडेंट हुआ है कि लोग ऐसे पूछते हैं या अरे क्या आपका भाई है, या मुझे कहते हैं आपकी बड़ी दीदी है, कभी कभी मैं उनका बड़ा भाई बन जाता मतलब
0: भी ऐसा, कभी ऐसा हुआ कि सर आपने कहा और गैस कीजिए जरा और गैस कीजिए जी।
1: थोड़ा बोल्ड सा इनको बोला था
0: जी।
1: कि हम कभी भी बाहर जाते, तो अभी तो मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ
0: जी,
1: और हम दोनों एक साथ रहते ऑलमोस्ट
0: जी जी जी,
1: करना होता है तो हम दोनों को एक साथ करने में बहुत आनंद होता है, तो हम लोग एक साथ ही करते हैं
0: जी।
1: तो आपका भाई है क्या?
0: ओ
1: देख रहे हो ना मेरे गले में मंगलसूत्र
0: है,
1: देख रहे हो। ऐसा नहीं कि आज ही अचानक से हम दोनों आपके सामने आए हैं
0: जी।
1: तो मैंने सबको बोला देखो अभी हम लोग एक साथ इतना हाथ पकड़ के एक साथ चल रहे हैं, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत जोक्स होते हैं, सब कुछ होता है, हम लोग हंसते हैं, सब कुछ होता है। तो मतलब मैंने सोचा ठीक है अभी ऐसा कोई पूछेगा ना उनके सामने किसिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हम लोग भाई बहन है,
0: क्या करेंगे, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: और मेरे साथ इतना उल्टा है कि कैसे होता है कि अभी देखो मैंने जैसे बोला कि ये मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े लेता है, ड्रेसेस लेता है, तो हम लोग जाते हैं एक साथ घूमने, कपड़े खरीदने, कुछ भी खरीदना होता है तो हम लोग एक साथ जाते हैं, तो मैं उनके लिए लेती हूँ, ये मेरे लिए लेते हैं, तो मॉल्स में जैसे बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमते हैं वैसे हम लोग घूमते हैं।
0: वेरी गुड।
1: यस, तो उसमें कैसा रहता है, अरे आप उनको क्यों बोल रहे हो, अरे आप इनका उनको क्यों घुमा रहे हो, अरे आप उनको हाँ उनको तकलीफ क्यों दे रहे हो, अरे तो मैं अरे आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरा बॉयफ्रेंड है मेरे साथ घूम रहा है, क्यों ना घूमे वो,
0: सही है,
1: उनके कपड़े चॉइस करे, क्यों ना वो मेरे कपड़े चॉइस करे।
2: आज सुबह की बात बता था, हम लोग फिश मार्केट गए थे अभी, हम कोंकण के, एंड शी इज एन एक्सेलेंट कुक बाय द वे,
0: गुड, वेरी नाइस।
2: मैंने लाइफ में इतनी अच्छी कुक, और मतलब उसमें टेस्ट भी रहता और प्यार भी रहता, ये अलग बात है, लेकिन इतना अच्छा कुकिंग करते। तो हम लोग फिश लेने गए थे मार्केट में, भीड़ थी, मैं मानता हूँ भीड़ थी, और किसी ना किसी को अड़ंगा होगा, तो पीछे से एक औरत बोल रही थी इसके बारे में, अरे क्यों इसको लेके आई है मार्केट में,

0: लेके आने की क्या जरूरत थी, इतना मतलब ये अड़ंगा हो रहा है। तो मैं पीछे मुड़कर बोला, क्यों आपके पति आएंगे तो भिड़नी होंगे क्या? तो मेरी वजह से भीड़ क्यों?
1: सही है, सही है
0: मैं ही दिखा आपको जिसके वजह से भीड़ हो रही है। ये
1: जी जी जी जी जी
0: सब गलत बात है, मतलब ये होना नहीं चाहिए।
1: जी
0: और थोड़ा मतलब अभी गवर्नमेंट वगैरह तो ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोला ये दिव्यांग बोल के और जगह पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। पर अभी
1: मैं
0: फैसिलिटीज है, जैसे अभी बसेस में वगैरह फ्रंट सीट रहते रिजर्व फॉर हैंडीकैप, ये कोई सिंपथी नहीं है, ये इसलिए किया गया है ताकि हमको उतरने में आसानी रहे और हम लोगों के लिए मुसीबत न बने।
1: ना बने वही मैं पूछने वाला भी था आपसे सर, कि ये जो जो जितनी भी ये शब्दावलियां हैं, जितने भी वर्ड्स हमारे लिए यूज किए जाते हैं, इन पर भी आपने काफी कुछ बोला है मैं जानता हूँ। चाहे डिफरेंटली एबल हो, चाहे स्पेशल एबल हो, या फिर जो है दिव्यांग पर अभी आपने कहा, आप क्या मानते हैं ये सारी जो मतलब जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मतलब क्या सोसाइटी यूज करके क्या दिखाना चाहती है, और अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए सही वर्ड?
0: अकॉर्डिंग टू मी सही वर्ड होना चाहिए जो एक्चुअल मतलब मेडिकल टर्म है ना, उसको अगर आप डिसेंटली बोले। अभी विजुअली इम्पेयर, ठीक है विजुअली इम्पेयर है तो विजुअली इम्पेयर है, तो जो है वो फैक्चुअल बोले। क्योंकि मैं बताता तो हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि मेरे कुछ ब्लाइंड फ्रेंड्स मतलब जो बने हैं वो तरह का प्रॉब्लम होता है, और दोनों भी चीजों में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होता है, और उसमें से एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। या तो एकदम ऐसे इग्नोर करेंगे और बेचारा बेचारा करके, एंड दे विल लुक डाउन अपॉन ब्लाइंड पीपल, ये क्या करेगा ये तो ऐसे ही फालतू में है कोई बेचारा, ऐसा होता है। या फिर अजूबे की तरह देखेंगे, अरे ये तो स्पेशल है एकदम, ही लाइक ब्लाइंड होते हुए भी कंप्यूटर यूज करता है, ब्लाइंड होते हुए भी ये कर रहा है वो कर रहा है, ये दोनों में से एक चीज होती है। और मेरे ख्याल से ये दोनों भी चीजें होना बहुत हार्मफुल है। अभी आप शादी की हमराही के बच्चे की बात कर रहे हो, अगर कोई मैं अगर अजूबा हूँ या ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, आई वुड अ गर्ल लाइक टू मैरी, क्योंकि उसको तो इंसान चाहिए यार, उसको कोई सुपरमैन या ये सब फिल्म में वगैरह ठीक है, इंसान चाहिए जिसके साथ वो झगड़ा कर सके। हमारे भी झगड़े होते हैं, हमारे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हमारा भी प्यार होता है, सब कुछ होता है, कोई किसी को सुपर ह्यूमन नहीं चाहिए। तो मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है कि लोगों को लगता है अरे कितना ये तो बाप रे अजूबा ही हो गया, जैसे कॉन्फ्रेंस में वगैरह जाता हूँ तो कुछ लोग आके ऐसे ही मिलते हैं, तो ये उसी वजह से हुआ। या तो आप उनको डिसेबल्ड कह के थोड़ा सा मतलब ये करते हो, दिव्यांग कह के उनकी जरा ज्यादा हाइप क्रिएट करते हो, तो दोनों भी नहीं होना चाहिए। जो है वो है, अभी मैं बोलता हूँ मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा बेस्ट वर्ड है विजुअली चैलेंज,
1: गुड,
0: क्योंकि ये देखना यही मेरे लिए एक चैलेंज है। बाकी मेरे लिए लाइफ में कोई चैलेंज नहीं, उतने ही चैलेंजेस है जितने बाकी लोगों के लिए होते हैं।
1: जी एग्जैक्टली
0: एक चैलेंज है जो मेरे लिए सॉल्व करना नामुमकिन है, जो बाकी लोगों के पास बहुत सारे लोगों के पास है, वो है आई साइट। उसके अलावा क्या है? और जो अभी प्राजक्ता कह रही थी थोड़ी देर पहले, ये अभी वो बताने वाली बात है नहीं, अभी वो मैं उसके लिए ड्रेसेस वगैरह लाता हूँ, ये करता हूँ। देखो जो मैंने शुरुआत में बोला कि वन ऑफ द मेजर थिंग जिसके वजह से मैंने मतलब ये सोचा हाँ मैं इसके साथ ही शादी करूंगा, ये मतलब कभी कभी मैं मजाक में बोलता था, या आयरनी है कि मैं नास्तिक होते हुए ये बोलता हूँ, मैं इसको बोलता था तू ना मेरे पिछले जन्म की प्रेयसी रही रही होगी शायद से,
1: जी,
0: मिले है करके।
1: जी जी
0: तो ये
1: जी
0: क्यों हुआ? बिकॉज मैं देख पा रहा था कि आई वॉज एबल टू मेक हर हैप्पी, और किसी को हैप्पी करना और किसी के जीवन में हैप्पीनेस लाना इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सब उसी बातों का। तो हैप्पीनेस फील करना या हैप्पीनेस देना या एक दूसरे का की कंपनी में खुश होना, इसके लिए कहाँ आई साइड की जरूरत है?
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली
0: नहीं है इसके लिए।
1: जी जी जी जी जी क्या अभी प्राजक्ता मैम आपकी लाइफ मतलब कोई भी सुनेगा तो लगेगा अरे वाह यार व्हाट अ आइडियल कपल, मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी लाइफ में?
2: अभी इसके बारे में मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि देखो कि अभी तो मेरा पति तो विजुअली चैलेंज है,
1: राइट,
2: लेकिन मेरे बाकी सारे लोग विजुअली चैलेंज या कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं
1: जी।
2: मेरे उनके साथ भी कुछ कुछ मतलब कुछ बातों बातों में ये हो जाती है, मुझे कुछ पसंद आता है, कुछ चीजें मेरी उनको पसंद नहीं आती, दूसरों की नहीं आती है, मेरे पति के साथ भी ऐसे होता रहता। हम लोग ना बातें करके ये सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग हमेशा बोल सकते हैं। अभी देखिए अगर हम आपने हमें इनवाइट किया, अगर कुछ हम लोगों को कुछ दिक्कतें आती थी तो अब हम आपको बता देते, आपको रिक्वेस्ट करते थे कि सर ऐसा नहीं करते, ऐसा करके देखते चलेगा, आप भी कुछ दूसरा रास्ता
1: कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकालते, राइट?
2: एग्जैक्टली। तो वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है लाइफ में सब सबके साथ और सब मतलब सब कुछ आप दूसरों को समझा के बात करके सॉल्व हो जाए।
1: गुड।
2: और कैसा है कि देखो आपको एक दूसरे के साथ रहना है, आपको एक दूसरे का रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या वो बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो चैलेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको सॉल्व करना है या उस पे ही अटक के आपको रोना छोड़ना है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें।
0: मतलब आपको पहले शुरुआत यहाँ से करनी है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है या नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना है, देन डोंट टॉक अबाउट इट।
1: यस,
0: सॉल्व करना है देन तो सॉल्व करना है, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है?
1: तो फिर वो प्रॉब्लम है ही नहीं फिर तो।
0: जो मैंने बोला कि सुपर आइडल अवार्ड मुझे मिला था
1: जी,
0: आईबीएन नेटवर्क ने मतलब बड़ा प्रोग्राम रखा था और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अवार्ड मिले थे। सो एज एन यंग अचीवर, क्योंकि तब तक मैंने टॉकिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी काम किया था जो ओपन सोर्स है, जो लिनक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चलता है
1: जी।
0: तो उस पर काम किया था, फिर काफी कुछ मैं रूरल एरियाज में भी काम करता था, मेरी फाउंडेशन वगैरह ये सब। तो वो अवार्ड मिला था और उस अवार्ड के मतलब देने के टाइम वो जो फंक्शन था तभी आमिर खान आए थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। और मैंने एक बात कही थी जिसके वजह से वो उनके बाद दिमाग में रह गए और जिसके वजह से ही रिमेम्बर्ड मी काइंड ऑफ फॉर सत्यमेव जयते, वो ये थी कि तभी थ्री इडियट्स रिलीज हुआ था तो और उसके पहले तारे जमीन पे हो चुका था।
1: हाँ,
0: हाँ। पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, वैसे वो बहुत अच्छे एक्टर है और बहुत चूजी है फिल्म्स के बारे में,
1: भले ही तीन साल में एक फिल्म करनी है लेकिन अच्छी करनी है।
0: इसलिए थोड़ा सा मैं धूम थ्री वगैरह जब हुआ तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, बट एनीवेज सबको थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो सारे अवार्ड विनर्स है ये सब तारे जमीन पर है, दे आर ऑल द स्टार्स ऑन द फ्लोर।
1: यस,
0: तो मैं जब स्टेज पे गया और जब मैंने अवार्ड लिया तो मुझे बोला गया कि आप दो शब्द कहिए करके, एक्चुअली दो शब्द कोई नहीं कहता, दो से बहुत ज्यादा कहते। तो मैंने बोला कि थैंक्स कि आपने अप्रिशिएट किया हम सबको और आप जो कह रहे हैं कि हम तारे जमीन पर है, बट आई थिंक मोर देन दैट आई वुड वांट टू बी वन ऑफ द इडियट्स बिकॉज दैट इज द वे यू सॉल्व प्रॉब्लम्स।
1: यस यस यस,
0: वो उनको बहुत खुश, वो कुर्सी से उठ के मेरे नजदीक आ गए थे वो टाइम पे, ही हैड लाइक्ड दैट थिंग वेरी मच और वो याद रख लिया। तब जब सत्यमेव जयते का डिसेबिलिटी वालों का एपिसोड हुआ तब मुझे बुलाया गया था। लेकिन मैं ज्यादा जिक्र वो सुपर आइडल्स का इसीलिए करते रहता हूँ, सत्यमेव जयते वाज ओके, लेकिन ये सुपर आइडल का जो अवार्ड था वो मेरे लिए बहुत जरूरी था, मेरे लिए नहीं ये समाज के लिए जरूरी था कि जो दृष्टिहीन इंसान है वो क्या क्या कर सकता है। बिकॉज देखो ऐसा है कि जो साइटेड लोग है वो साइटेड लोगों के लिए भी काम करते हैं और ब्लाइंड लोगों के लिए भी करते हैं। जो ब्लाइंड होते हैं वो अपने आप के लिए लोगों के लिए करते ही करते, लाइक ब्लाइंड कम्युनिटीज एक दूसरे को हेल्प करते हैं और करना भी चाहिए।
1: राइट,
0: मेरा कहना हमेशा से ये था और बहुत सारे विजुअली डिसेबल्ड विजुअली चैलेंज लोगों से मेरे इस मामले में थोड़ी सी अनबन भी होती रहती है, भाई मेरा दिल इतना बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि मदद के हकदार और मदद के जरूरतमंद सिर्फ ब्लाइंड नहीं होते, जो ब्लाइंड नहीं होते उनको भी कई तरह की मदद लगती है। सो माई हार्ट मस्ट बी वेरी बिग, मैं सिर्फ ये नहीं सोचू कि सिर्फ ब्लाइंड है करके मैं इसको हेल्प करूंगा। तो ब्लाइंड होके भी अगर कोई इंसान साइटेड लोगों के लिए भी कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली दैट गेट्स अप्रिशिएटेड। तो वो सुपर आइडल में थोड़ा उजागर किया गया था, इसलिए मैं ज्यादा लोगों को सुपर आइडल के एपिसोड्स ही देखने को बोलता हूँ, बिकॉज उसमें वो उजागर किया गया था। और ये मेरा हमेशा से मानना है कि डोंट लिमिट योर सेल्फ, अगर आप मतलब ब्लाइंड और आप करना चाहते हैं कुछ अच्छा तो वो ब्लाइंड के लिए अच्छा करना या साइटेड के लिए अच्छा करना ये सोचो मत। जैसे अभी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, उनका तो एकदम स्ट्रिक्ट ये है कि ब्लाइंड है वो लोग, कि वो लोग करेंगे तो साइटेड लड़की से या साइटेड अगर लड़की है तो साइटेड लड़के से ही शादी करेंगे। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बुरी बात है। अभी क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग कहेंगे हाँ आपका हो गया करके आप बोलते तो पता है कि जो सोच के मतलब हमको कुछ सोशल कॉज करके करना है करके ब्लाइंड आदमी के साथ शादी कर दे, ऐसी लड़कियां भी
1: वो उसमें फिर सिंपैथी आ जाती है कहीं ना कहीं,
0: सिंपैथी और खुद को ग्रेट बनाने की बात हो जाती
1: है।
0: उससे अच्छा तो ब्लाइंड शादी करे तो क्या प्रॉब्लम,
1: क्या प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, और मैं तो मानता हूँ कि जहाँ आपका दिल करता है वहाँ होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ब्लाइंड हो चाहे साइटेड हो,
2: कैसा भी हो।
0: तो मैं मानता हूँ दो ब्लाइंड करेंगे तो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं समझ सकता हूँ और मैंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखे भी होते हुए, लेकिन उनको प्रॉपरली अवेयर करके उनको चीजें समझा के किस तरह से पब्लिक में रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता।
1: आप तो टेक से भी हैं सर, अभी टेक्नोलॉजी ने तो कितना इजी कर दिया है ना सब कुछ, आप खुद भी जानते हैं ये बात।
0: बिल्कुल, तो इसलिए मेरे लिए मानना है कि भाई जो भी है ना ऐसा है कि डू इट फॉर अदर्स एंड डोंट सी। अभी मुझे बहुत लोग पूछते हैं आप अच्छा आपकी कंपनी कितने ब्लाइंड लोगों को आपने जॉब दिया, मेरा ये कहना है
1: कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था एक्चुअली, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए कि अपने आप तो सक्सेसफुल हैं विजुअली चैलेंज कम्युनिटी के लिए आप क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं?

0: कमा रहा है। आज थोड़ा सिचुएशन सुधर गया, आज लोगों को मालूम है कि ब्लाइंड इंसान कमाता है। पता है वो क्या, कुछ चाचा म्यूजिक में हो आप, गाना वाना गाते हो क्या? मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब कोई ब्लाइंड आदमी अच्छा खासा दिखे तो पूछे अच्छा इंजीनियर हो क्या। आई वॉन्ट टू सी दैट डे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड इतनी कॉमन बन जाए कि किसी को अजूबा ना लगे।
1: लगे बिल्कुल सही।
0: मैं चाहता हूँ, मेरे पास एक पूरा प्लान रेडी है और इसके लिए पूरा एक एनजीओ लेवल पे या किसी भी तरह सेक्शन 25 या कोई कंपनी की तरह से ये किया जा सकता है कि इनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए, यहाँ तक कि इंटर्नशिप के लिए मल्टीनेशनल्स में भेजा जाए, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स है अच्छे मल्टीनेशनल्स में।
1: वेरी गुड।
0: अभी मल्टीनेशनल में वो लोग थोड़े ना जॉब के लिए जा रहे हो, तो इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो। अगर इंटर्नशिप में आप खुद को प्रूव करते हो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अच्छा अभी प्रूफ तो हो गया तो अभी आप उनको जॉब क्यों नहीं देते? तो भी जॉब दे दो, उनको भी प्रोग्रामिंग करने दो, उनको भी वो सारे चैलेंजेस फेस करके आगे आने दो।
1: एग्जैक्टली।
0: इंजीनियरिंग फील्ड में आने दो, बिकॉज देखो इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग ये होता है, प्रोग्रामिंग इज अ ब्रेन वर्क। प्रोग्रामिंग में आंखें नहीं लगती है, मैं
1: नहीं लगती है,
0: साल से कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ।
1: देखो लोग सोचते हैं उल्टा, बिना आंखों के प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती है।
0: ये जो छुटपुट एक दो प्रोग्रामर्स बने हैं, आपने अभी और एक प्रतीक का जिक्र किया, हमारे यहाँ इससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिवली एज अ मोमेंट कहिए, एज अ रेवोल्यूशन कहिए, या एज अ कंपनी, या एज अ व्हाटएवर, ये मैं चलाना चाहता हूँ।
1: इन टोटल सुपर 30 की तर्ज पे कुछ होना चाहिए।
0: एग्जैक्टली। और मैं, मेरे पास टैलेंट है, मैं जानता हूँ क्या करना है। मेरे पास प्राजक्ता जैसी, उसको मैं प्राजक्ता कहते नहीं, लोगों को लगता है मैंने शादी के बाद उसका नाम बदल, उसको रानी कहता हूँ मैं।
1: क्या
0: इतनी मतलब हर चीज में रहती है
1: जी।
0: मेरे पास अच्छे लोग हैं, मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज है, होना यह है कि इसको एक तरह से फंड करके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना, और ये मेरी बहुत जमाने से ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा। मैंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ काम किया ट्रू विजन नाम के प्रोजेक्ट पे, अगर आपने गूगल किया ट्रू विजन एलिकॉट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु, आपको मिल जाएगा।
1: yes,
0: आप yes. इसका एक तरह का पायलट किया गया, वो सक्सेसफुल भी हो गया, ब्लाइंड बच्चों को जॉब्स भी मिले। केरला में मैंने इनसाइट करके एक सेंटर है, उनको मैंने काफी कंसल्ट किया है। आई वॉज अ कंसल्टेंट टू ब्राजीलियन एंड मलेशियन गवर्नमेंट ऑल्सो। पर फिर इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है? मतलब मेरे जैसा इंसान होते हुए भी ये नहीं हो पा रहा है, बिकॉज शायद अभी भी वही लोगों को लगता है कि मैं दिव्यांग हूँ, मेरे पास कुछ तो दिव्य शक्ति है और मैं ये कर पाया और कोई कर नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। एंड सेम अप्लाइज टू मैरिज ऑल्सो, बन गया कि ऐसा नहीं एवरी कपल कैन बी एन आइडियल कपल। आपने आइडियल कपल कहा ना, सब लोग हो सकते हैं, ऐसी कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकते। अभी है, हमने इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग है, कोऑर्डिनेशन है, हम दूसरे से प्यार करते हैं, बियॉन्ड एवरीथिंग हम लोग एक दूसरे के।
1: प्रॉब्लम तो अभी दूसरी है ना सर, एक्चुअली सोसाइटी समझे तब ना ये सारी बात।
0: आई थिंक अभी धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो अजूबा वाली बात है वो बहुत जल्दी निकल जानी चाहिए, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पहले वो गरीब बेचारा था, अभी एकदम ऊपर चला गया, पहले एकदम नीचे था, अभी तो एकदम मतलब किसी को देखते हैं कुछ अच्छा काम कर रहा है, कोई बड़ा लॉयर बन गया, कोई लॉ फर्म में गया, कोई IDBI जैसे बैंक में गया, और सोचते अडोर करते इसको, जिसको ये बोलते हैं ना कुछ तो एक उसको वर्ड है, मतलब बोलते हैं ना कि इसका कुछ तो इतना हाइप करके रखते कि अरे बाप रे, तो कुछ तो अनयूजुअल चीज हो गई। कई बार करती है, तो वो स्टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से। वी आर जस्ट लाइक एनी अदर पीपल।
1: अब मीडिया ये सब चीजें पहुंचाने के लिए ना मीडियम हो सकता है हमारे लिए सर।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो ये गाना बजाने वाला मैटर भी आपको मैं बता दूं, ज्यादातर के ये हिंदी फिल्म्स का ही नतीजा है कि हमेशा एक नेत्रहीन इंसान को ऐसे बतौर गाना बजाने वाला ही दिखाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड कॉर्पोरेट दिखाते हो कोई फिल्म में? आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड बंदे को IT प्रोफेशनल दिखाते हो? आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड बंदे को सिक्योरिटी एनालिस्ट दिखाते हो, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिखाते हो, या इकोनॉमिक्स दिखाते हो? कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर क्यों नहीं दिखाते हो? आप एक ही चीज दिखाओगे तो जनता को वही देखेगी
1: ना। IAS दिखाएंगे ना, लॉयर दिखाएंगे,
0: ये सब हुआ है, ये हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है, दिस इज नथिंग न्यू। पर ये मतलब ये मेरा फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। बीच में वो ऋतिक रोशन वाली भी कोई फिल्म आई थी,
1: हाँ काबिल,
0: मतलब मेरा उसके भी ऊपर ऑब्जेक्शन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सबका ऑब्जेक्शन है राइट।
0: मैंने उसका ट्रेलर और ओवरव्यू देखा, लेकिन आई डिड नॉट लाइक द स्टोरी।
1: गुड, वेरी गुड। सर आप तो मुंबई में रहते हैं ना, और इंडस्ट्री तो मुंबई में है।
0: यस।
1: और आपके कॉन्टेक्ट्स भी हैं जैसा आपने कहा, तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए ना।
0: मैंने बोला कुछ लोगों के साथ, पर उनका ये कहना है कि अगर हम लोग ऐसी क्या है ना, ये पुशिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रहा है सर। वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमने इस तरह से दिखाया तो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जनता ये कह रही है कि आपने कुछ दिखाया तो हम लोग देखेंगे, लेकिन आप दिखाते, दिस इज द प्रॉब्लम। वो बोलते नहीं जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, वो लोग फिल्म को फ्लॉप कर देंगे, हम लोग को आपको

0: उस तरह से ही दिखाना पड़ेगा।
1: क्या मतलब है, अब वही बात है, अब क्या कहा जाए इस पर, तो वो उनका एक्सक्यूज है मुझे तो यही लगता है कि, और कुछ नहीं है।
0: और ये न्यू इंडस्ट्री में क्यों, अभी आई टेल यू, इतना एक सुंदर वो है, आपको पता है शायद से गाना, वो फिल्म कोई तो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रफी और लता का गाना है, उसमें तो बॉय तो एक्साइटेड थी क्या लड़की ब्लाइंड है, वो क्या है एक मंदिर है वाला गाना
1: जी जी
0: है ना, वो बादल कैसा होता है तेरे आंचल जैसा होता है
1: जी।
0: तो उसमें आप अगर एक कपल दिखा सकते हो जिसमें लड़का ब्लाइंड नहीं है, लड़का साइटेड है, लड़की ब्लाइंड है, वो मस्त में एकदम ऐसे रोमांटिकली जा रहे हैं, व्हाट हैज हैपेंड, वेयर इज एवरीथिंग लॉस्ट, आई डोंट नो।
1: कहीं ना कहीं ये भी तो होता है कृष्ण सर की जो ब्लाइंड विमेन उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा है ऐसा लगता है, खासकर मैट्रिमोनियल के इश्यूज में।
0: आई डोंट नो, मतलब हो नहीं सकते, मुझे सीरियसली नहीं मालूम ये मामले में, और
1: सोचना चाहिए ना इस पर भी हमें,
0: क्या सोचना पड़ेगा, मतलब मेरे, आप शायद सही बोल रहे हो, बिकॉज स्टैटिस्टिकली अगर मैं सोचूं तो मेरे पहचान में ब्लाइंड मेन मैरिंग साइटेड वुमेन बहुत ज्यादा है, लेकिन वाइस वर्सा मेरे पास ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है।
1: वही सर, वही हमारे इस प्रोग्राम में भी ज्यादा एग्जांपल्स इनफैक्ट नहीं है दरअसल,
0: तो वो है मतलब स्टैटिस्टिकली मेरे भी जान पहचान में कोई है नहीं ज्यादा, देयर वाज वन कपल लेकिन वो खैर सेपरेट हो गए बाद में।
1: कुल मिलाकर के ये है कि अभी हम सबको, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं, आप बहुत सालों से लोगों को बोल रहे हैं चेंज के लिए, लेकिन अब हो नहीं रहा है, कुल मिलाकर सबको मतलब यूनाइट होना पड़ेगा सर इन सब चीजों के लिए,
0: यूनाइट होना पड़ेगा, एंड आई विल टेल यू दैट इज द रीजन मैं बहुत प्राउड फील करता हूं व्हेन, मतलब एज प्रोजेक्ट एज माय वाइफ, बिकॉज़ हम लोग ये बात को ज्यादा कभी एग्जैजरेट भी नहीं करते, अभी आपके साथ इंटरव्यू देना है करके ये सब बातें निकली, वरना हम, हमारे लिए ना वेरी फ्रैंकली डजंट मैटर कोई ब्लाइंड है कोई साइटेड है, इसीलिए वो बात उस दिन मेरे एक दोस्त को मैं और प्रोजेक्टा दोनों भी समझा रहे थे कि अरे ब्लाइंड ब्लाइंड भी शादी करेंगे, अगर दिल की बात है तो प्रॉब्लम क्या है, तो मतलब ये आना चाहिए, व्हाट इज द बिग डील यार, हाँ तो ब्लाइंड है और साइटेड है, तो कई बार तो प्रोजेक्टा करेस्पॉन्ड करके लोगों के साथ बताती भी नहीं है कि मैं ब्लाइंड हूँ, दे डोंट इवन नो क्योंकि उसको तो कामकाज संभालना होता है कंपनीज का, हो
1: राइट
0: ये कि क्या मैटर करता है, तो ये चेंजेस हम लोग को खुद से आनी चाहिए अंदर से, और हम लोग जब आजू बाजू में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के, तो अब धीरे धीरे लोगों को नहीं एक्सेप्ट होने, मतलब इट्स अ स्टार्ट, इट्स फार फ्रॉम, मतलब जब 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिल गया तो ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि 1933 में जब भगत सिंह को हैंग किया गया जिस दिन, उसी दिन से चर्चे चलते थे कि हाँ अब इंडिया का फ्रीडम दूर नहीं है, अभी शुरुआत हो गई है, नाउ इट्स गोइंग टू हैपन समडे,
1: 1931
0: जी। हाँ, वो टाइम से जब लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस अब तो इंडिया को फ्रीडम मिलनी ही मिलनी है, चाहे 10 साल में हो या 5 साल में हो जो भी हो, लेकिन मिलेगी जरूर,
1: मिलेगी
0: वो एक कॉन्फिडेंस, तो अब मुझे वो लगने लगा कि सुबह की पहली गिरने बस अब गिरना शुरू हुई है, बिकॉज कई बार मुझे और प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस आया भी है कि पीपल हैव नॉट मेड एन इश्यू एट ऑल, उनको मालूम है, मतलब वो देख रहे हैं कपल है सो व्हाट, कई बार ऐसा भी हुआ है, अच्छे भी एक्सपीरियंसेस आए कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अप्रिशिएट ही किया।
1: अच्छा केके सर, अभी आपने कहा कि वो अच्छी कुक है,
0: हाँ।
1: आपने कुछ सीखा कि नहीं पकाना?
2: सीखा कि
1: और नहीं। कभी कुछ खिलाया कि नहीं?
2: खिलाया कि नहीं, अरे बापरे
1: केके सर ने आपको कुछ खिलाया कि नहीं?
2: अरे बहुत सारी चीज।
1: अच्छा कुक करके?
2: हाँ, मतलब कैसा है कि मैंने जैसे बताया कि हम दोनों को एक साथ सारी चीजें करनी बहुत पसंद है, तो वैसे हम लोग खाना भी एक साथ पकाते हैं, मतलब आपने अगर मुझे पूछा होता कि इनके साथ आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या करने को पसंद है, तो मैं कहती थी कि खाना बना।
1: क्या बात,
2: हम लोग ये शादी के बाद वो मेरे साथ खाना भी बनाता है किचन में,
0: बर्तन मांजना वगैरह सब
2: वो सब करता था, मैं फिर जो चॉप करना है वो मैं करती हूँ फिलहाल अभी।
1: तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हमारे श्रोता सुन रहे सोच रहे होंगे कि वहाँ भी टेक्नोलॉजी ले आए होंगे आप।
2: नहीं तो अभी मुझे लगाना है तो वो मिक्सर ग्राइंडर लगा के देता है, ये जो लहसुन का छिलका निकालना है वो सब करके देता है, सब्जी धोने का काम उसका होता है।
1: चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं प्राजक्ता मैम आपसे, देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है ना, सवाल एक जवाब है।
2: ओके
1: अच्छा बताइए, कृष्ण सर का फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है?
2: लिनक्स, मतलब उसके नाम के आगे ही लिनक्स नाम है।
1: वहां भी किया गया। हाँ, उनकी फेवरेट टेक कंपनी?
2: टेक कंपनी मतलब उसके खुद की टेक कंपनी उसकी फेवरेट रहेगी।
1: नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा
2: ओपन सोर्स में बहुत सारे बहुत अच्छी कंपनीज ने काम किया है, जैसे कि ओरका सॉफ्टवेयर है जो उसने खुद ने पहले स्टार्ट किया था, इट इज अ टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वो उसकी फेवरेट रहेगी।
0: सन माइक्रोसिस्टम,
2: सन माइक्रोसिस्टम,
1: सन माइक्रोसिस्टम, Okay.
0: I was a part of that project initially.
2: हाँ, मतलब उसने initiate किया था ये project जैसे
1: कि. Oh, very nice.
2: Linux पे जो आता है Orca करके talking software वो उसने start किया था.
1: अच्छा, एक question पूछ रहा हूँ मैं आपसे project का, मैम उनके favorite politician कौन?
2: जो मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, I think.
0: हम लोग उस पे ज्यादा बात करते नहीं है, लेकिन ये आई थिंक शी नोज, मैं बोलूंगा तो उसको समझेगा, लाल बहादुर शास्त्री.
1: मुझे पता है कि आप लोग बात नहीं करते, तभी तो भी एक क्वेश्चन आया मेरे जहन.
2: लाल बहादुर शास्त्री.
1: क्या सही कह रहे हैं क्या सर?
0: बिल्कुल 100%.
1: ओ, क्या बात है, यहाँ तो कुछ चीटिंग हुई है लग रहा है. अच्छा चलिए, अभी आपकी बारी है कृष्ण सर.
0: हाँ.
1: इनकी मैम की फेवरेट फिल्म बताइए.
0: फेवरेट फिल्म?
2: हम दोनों फिल्म देखते नहीं है.
1: अभी तो क्वेश्चन ही तो तभी है.
0: हम लोग दोनों ने एक साथ देखी वो फिल्म से मैं बता सकता हूँ, थ्री इडियट्स. यस.
2: हाँ, मतलब मुझे खुद, हम दोनों नहीं देखते हैं, मतलब मैं खुद से भी पहले बचपन से भी नहीं देखती.
1: सभी का होता है, लड़कियों का
2: नहीं, मेरा रेड है.
1: ओ, रॉन्ग हो गए आप तो भाई.
2: मतलब दादा मेरे रेड कलर का कुछ खरीदा नहीं है.
1: जी जी जी. चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके. और अभी अगर आप दोनों के मन में कोई ऐसी बात हो जो रह गई हो, हम नहीं पूछ पाए हो, तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो प्रोग्राम के बिल्कुल एंड की तरफ आ गए.
0: मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जो मतलब पहले भी मैंने बहुत बार बोली है कि
1: जी.
0: जब आप किसी से प्यार करते हो तो खुश रहना और उसके साथ खुश होना, जब वो बात होती है ना, बाकी सारी बातें, कितने भी उसमें झगड़े हो, कितना भी कोई प्रॉब्लम हो, कितने भी मुसीबतें आए, कुछ नहीं. एट दी एंड योर लव एंड योर म्यूचुअल हैप्पीनेस इज व्हाट मैटर्स. और हम दोनों में वो सबसे बड़ी वही चीज है, और वो एक चीज है जो जिसके लिए आंखों की जरूरत होती है.
1: एक तरह से ये आपका मैसेज है सबके लिए.
0: अच्छा, प्रोजेक्ट का कोई
2: नहीं? मुझे भी
1: जी मैम बताएं.
2: कैसा था? मेरी माँ एक बहुत सा सीधी साधी औरत है, बहुत बोली है, मतलब ऐसा कोई रहता नहीं है लाइफ, मतलब दुनिया में, लेकिन वो एक्सेप्शन है. मतलब ये मुझे भी पहले एक्सेप्ट नहीं होता था कि इतनी सीधी साधी क्यों है, ऐसी क्यों है, बोली क्यों है, उसको बहुत ये करती. लेकिन उसने मुझे सिखाया कि सच्चे दिल से प्यार करना चाहिए, किसी को भी करो, पूरे सच्चे दिल से प्यार करो, और मतलब आपको भी वो मिल जाता है. मतलब आप कितने भी कहो कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सी औरतों का ये कंप्लेंट रहता है, बहुत सी लोगों का ये कंप्लेंट रहता है, नॉट ओनली औरतें.
1: हाँ.
2: लेकिन आप जब सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, आपको भी सच्चे दिल से प्यार करने वाला मिल जाए. और प्यार एक चीज है कि वो हमेशा प्योर रखो, उसमें कुछ मिलाओ मत.
1: क्या बात, वाह.
2: बहुत प्योरली प्यार करो.
1: वेरी नाइस, वेरी गुड.
2: शादी के टाइम पे ये सोचो कि मुझे दूसरे को साथ देना है, ना कि मैं सिर्फ समाज को दिखाने के लिए शादी कर रहा हूँ, या कोई रिचुअल है कि शादी करनी ही चाहिए.
1: करनी ही चाहिए.
2: Exactly. ये नहीं होना चाहिए. जब आप बहुत प्रिपेयर हो कि आप दूसरे को साथ दे सकते हो, तभी मतलब होता है ना पूरा उसका अर्थ एक होता है.
1: क्या बात, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. आज आप दोनों ने हमको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की, रेडियो मधुबन के इस प्लेटफॉर्म पर आए, और उम्मीद है आपके इस प्रोग्राम से हमारे श्रोतागण बहुत कुछ सीखेंगे. तो एक बार फिर आपको थैंक यू दोनों को, केके सर और प्राजक्ता मैम. और श्रोताओं, ये था आज का हमारा हमराही प्रोग्राम. रेडियो मधुबन सुनते रहें श्रोताओं, और कॉल करें 94-14-15-14-15 पर. मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ.
3: अभी बचे हैं दोपहर के 1

0: सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष एडवोकेट अमन जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन अभी गाड़ी से ही आपके साथ लाइव हो रहे हैं। तो अमन जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और
1: धन्यवाद सर।
0: मिलिंद जी भी हमारे साथ हैं। मिलिंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे हमें खुशी मिलती है और आपके अनुभव को सुनते हैं तो और खुशी मिल जाती है। तो आइए अमन जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। जी,
1: सर मैं बेसिकली चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ चंद्रपुर में अभी 15-16 सालों से वकीली का व्यवसाय कर रहा हूँ।
0: जी जी जी
1: और हमारा केंद्रीय मानव अधिकार संगठन भी है मिलिंद जी का, उनके यहाँ भी हम राष्ट्रीय सलाहकार करके काम करते हैं। उसे तो गरीब लोगों की मदद करना, ये सब काम भी हम हमारे तरफ से होते रहता है।
0: जी जी जी चलिए, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं, करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में जो चीजें आती हैं तो शॉर्ट आउट करने के लिए एक तो हम लोग किसी न किसी मार्गदर्शक के पास जाते हैं। तो आपने काफी लोगों को हेल्प भी किया है, काफी लोगों को मार्गदर्शन भी किया है एक अच्छा बेहतर जीवन बनाने के लिए। तो बेहतर सोसाइटी के लिए हमें किस तरह का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो आज का विषय है हमारा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने अनुभव से हमारे साथ अपने विचार साझा करें।
1: सर देखिए, बेहतर सोसाइटी या बेहतर समाज के लिए अपने को तो सबसे महत्व की तीन चीजें हैं। एक सबसे पहले
0: जी
1: है
0: जी
1: शिक्षा, एक है संस्कार, दूसरे है सकारात्मक सोच। ये तीनों चीजों का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक अपन एक बेहतर समाज के लिए आगे बढ़ नहीं सकते। सबसे पहले तो अपने को शिक्षा दे के बच्चों को उसमें डालना पड़ेगा। हर हर जो बुराई चीज है उसको बच्चों को उससे ये करना पड़ेगा। बच्चों में संस्कार भी इतने अच्छे होने चाहिए कि एक आगे चल के वो क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या बुरा है, सही है, वो सब चीजें उसको ध्यान में आनी चाहिए। और आदमी की हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि अपन कोई भी चीज जो करने जाने जाएंगे उससे अपनी निगेटिविटी कम रहेंगी। तो ये सब चीजों का जब तक मिलाप नहीं होगा तब तक अपन बेहतर समाज के आगे नहीं बढ़ सकते।
0: जी, चलिए मिलन जी, आपको भी मैं सेम सवाल पूछना चाहूंगा जैसे अमन जी ने भी बताया कि बेहतर समाज के लिए सबका ही सहयोग चाहिए और सभी को थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़ना है और एक दूसरे को हेल्प करने के बिना वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपका क्या विचार है बेहतर सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं?
2: जी, बेहतर सोसाइटी के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान आज अवेयर होना चाहिए, हर इंसान आज सजग होना चाहिए। जिस तरीके से हम आज हमारे घर में रहते हैं, आज हमारे घर का परिवार समझो 2 लोगों का होगा, 3 लोगों का होगा, 5 लोगों का होगा, मगर हम जिस परिसर में रहते हैं उसको हम मोहल्ला बोलते हैं। वहां पे करीब करीब 50-60 हजार लोगों की आबादी होती है। अब जिला बोलेंगे तो उसकी आबादी कम से कम 5-6 लाख की आ जाती है। तो हमारा अपना जो घर है, अपने घर पे जो लोग रहते हैं वही हमारे गांव में भी रहते हैं, हमारे इलाके में भी रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी रहते हैं। तो हम अगर हमारे नागरिकता के नैतिक कर्तव्य को अगर हम पूरा करें तो सजग समाज हो सकता है। वो कैसे, लोग सुबह उठते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुबह घर का जो कचरा है वो भी फेंकने जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। मगर क्या होता है कि जहाँ पे यहाँ पे कचरा न रखे जो लोग है वहीं पे कचरा डालते हैं, यहाँ गाड़ी पार्क न करे लोग जाके वही बोर्ड के पास जाके पार्किंग करेंगे, यहाँ गंदगी न करे लोग जाके वहीं पे गंदगी करेंगे। तो कोई है नहीं, उसके वजह से क्या होता है कि हर जगह गंदगी हो जाती है। जहां पे गाड़ी पार्क नहीं होना चाहिए वहां पे जाके गाड़ी पार्क होता है। तो जब तक लोगों में डिसिप्लिन नहीं आएगा, लोगों को ये समझ में आएगा कि भैया ये जो घर है, यहाँ पे जो मैं चीज फेंक रहा हूँ ये मेरा घर है, तो मुझे जैसा मैं घर घर साफ करता हूँ वैसा मैंने मेरे आसपास रहने वाली चीजों और परिसरों को भी मैंने साफ रखना चाहिए। और लोगों में मोटिवेशन बहुत जरूरी है आज के तारीख में, क्योंकि लोग अभी किताबों को छोड़ के मोबाइल की तरफ आ गए। पहले क्या था, हम लोग जब 10 साल पहले 15 साल पहले बातें करते थे, किताबें खरीद के घर लाते थे, आज हमारे इधर चंद्रपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा दी थी, पूरा भारत बौद्धमय करने के लिए बाबा साहब ने बात की थी। और यहाँ पे जब ये धम्म दीक्षा समारोह आयोजित किया जाता है तो लाखों के तादाद में लोग बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के और महावीर के और महात्मा फुले की किताबें खरीद के ले जाते हैं। संविधान की किताबें उस दिन खरीदी जाती है धम्म चक्र प्रवर्तक दिन के उपलक्ष्य में। तो अभी बहुत सारे लोग संविधान की किताबें नहीं खरीद पाते हैं, तो संविधान लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। आज की तारीख में कोई भी पुलिस स्टेशन के अंदर में अगर कोई केस दाखिल करना है तो उसको सीआरपीसी से तपास करना है और आईपीसी सेक्शन के अंतर्गत उसके ऊपर में कार्रवाई होनी है। तो अगर हम थोड़ा बहुत अगर कायदा कानून अगर पढ़े तो सही मायने में क्राइम कम हो सकता है और हम सजग निर्माण कर सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मिलिंद जी, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हुए मैं अमन सर को वापस जोड़ना चाहूंगा। अमन सर, मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे विकट सिचुएशन में कैसे हम लोग अपने आप को संभाले उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ नई नई चीजें आती रहती हैं, तो कैसे हम अपने आप को संभालते हुए कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जिससे बहुत मुश्किल हो फिर वापस लौट के आना।
1: सर देखिए, मैं एक आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ।
0: जी,
1: जुवेनाइल कोड भी रहता है, जुवेनाइल कोड मतलब जहाँ 18 साल के नीचे के जो बच्चे रहते हैं उनका कोड अलग होता है, तो उनको बाल बाल गुनेगार करके वहाँ ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि वहाँ पे एज ए एडवोकेट जैसे हम अपियर होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे कैसा है सर, जैसे अपन ना, मेरे पास एक केस था, छोटा सा मैं एक केस बताता हूँ आपको। एक बच्चे को एक चोरी के मामले में उसको पकड़ के लेके आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तब उसकी उम्र होंगे 16 साल हो गए, 16 या 17 साल। केस चला, बाद में फिर एक्चुअली वहाँ पे कैसा है, सजा करके उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं, लेकिन चलो वो केस से तो मैंने समझा बुझा के उसको, समझदारी से उसको ये कर दिए, लेकिन वो चीज का जैसे हमने उसको इतना माइंड वॉश किए सब कर दिए, वो बच्चा आज इंजीनियरिंग होके पूरा कंप्लीट होके एक अच्छे पैकेज में नौकरी कर रहा है। तो ये क्या होता है ना, ये सब चीजें जैसे है कि वो उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। अब वो किस हालात में से निकला, यानी जब वो क्या कर रहा था, किस चीज को लेके वो उसने वो कदम उठाया था चोरी करने का, अभी अभी अच्छे एजुकेशन लेके अब इंजीनियर बन के वो एक अच्छे अच्छे कंपनी में नौकरी पे है वो, यानी ये जो इसमें चेंज है ये भी बहुत बड़ा चेंज था उसके लिए, और हमारे लिए वो बड़ी बहुत बड़ी बात थी। एक हमको भी एक अच्छा लगा कि चलो एक हमारे तरफ से कुछ समझाने का एक कुछ अच्छा ये हो गया। हमने भी काफी समझाए थे उसके परिवार को बुला के, उसको भी कि ये सब गलत चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये सब चीजों में हमको भी एक समाधान रहता है कि हम कुछ समाज के लिए कुछ कर रहे करके।
0: जी, अमन जी, काफी अच्छी बात आपने बताया। प्रैक्टिकल उदाहरण जो आपके लाइफ में था उसको शेयर किया आपने। आइए, सूरज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: धन्यवाद सर जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें, वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप?
3: सर जी, मैं गोवा में रहता हूँ, केंद्रीय मानवाधिकार संगठन में काम करता हूँ। पिछले 11 सालों से मैं मिलिंद दहिवले सर जी से जुड़ा हुआ हूँ और गोवा में बहुत अच्छी तरीके से हम काम कर रहे हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गोवा के बारे में बताइए, वर्तमान में अभी वहां पर मौसम कैसा है, क्या सिचुएशन है?
3: देखा जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। छोटा राज्य होने के कारण गोवा हमेशा ही एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन की इसमें गिना जाता है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पर टूरिस्ट घूमने को आते हैं। एक अलग पहचान है गोवा की, गोवा के कल्चर की। और आज भी पुर्तुगीज ने गोवा पे राज किया है, तो आज भी पुर्तगाल के लोग गोवा को अपना एक पार्ट मानते हैं। ऐसा छोटा राज्य है हमारा गोवा। और अभी तो गोवा का ट्रेडिशन जिसको हम शिग्मोत्सव बोलते हैं, शिग्मो, वो अभी शुरू हुआ है गोवा में, और उसकी एक अलग खुशबू अभी गोवा में चल रही है।
0: बहुत बढ़िया। तो हम लोग का आज का जो विषय है थोड़ा सा ब्रॉड है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बेटर सोसाइटी, टू क्रिएट बेटर सोसाइटी। इसके
3: सर,
0: बारे में आप अपने विचार जरूर सुनाइए।
3: जिस दिन से मैंने ह्यूमन राइट्स ज्वाइन किया है
0: जी
3: उसी
0: जी
3: से संकल्प लिया है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सोसाइटी में
0: जी जी जी
3: अवेयरनेस अवेयरनेस की जो कमी है, ह्यूमन राइट्स के अवेयरनेस की जो कमी है, उसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 11 साल से वही प्रयास हमारा चल रहा है कि एक अच्छी सोसाइटी निर्माण हो जाए जहाँ पर बच्चे या औरतें सुरक्षित हो जाए, ऐसा कोई घटना न हो घटे जिससे हम शर्मिंदा हो सके कि हम किस सोसाइटी में जी रहे। सो ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा विचार है कि अच्छी सोसाइटी कैसे बने, और हम सबको प्रयास करना है कि एक अच्छी सोसाइटी हम बना सके या अपने अगले जनरेशन को दिखा सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा गोवा के बारे में बताइए, गोवा का इतिहास के बारे में कुछ ताजा हो जाए, पुरानी बातें।
3: हाँ, ओके। जैसे हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो गोवा उसके बाद स्वतंत्र हुआ। गोवा
0: जी
3: के सबसे पहले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोड़कर, जिससे गोवा का पॉलिटिक्स शुरू हुआ, और आज भी भाऊसाहेब बांदोड़कर का नाम गोवा में बहुत इज्जत से लिया जाता है। ऐसे ही गोवा एक छोटा राज्य, मैंने पहले ही बोला है कि छोटा राज्य है, यहाँ 40 विधानसभा की सीट्स है और 2 लोकसभा के सीट्स है, और 15 से 16 लाख की आबादी गोवा में है। सो ऐसा छोटा राज्य है, एक अपनी कल्चर के लिए बहुत फेमस है, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ के लोग बहुत क्या बोलते हो मिलनसार लोग हैं, जो हमेशा हर एक का स्वागत करते रहते हैं। ऐसा है सर जी गोवा हमारा।
0: जी। चलिए सूरज जी, आपका मना गोवा में आप बच्चा कितना समय हुआ?
3: अभी तो 43 ईयर से मैं गोवा ही हूँ, मेरा बर्थ गोवा में ही हुआ है। गोवा के मापसा सिटी में मेरा जन्म हुआ है और मेरी स्कूलिंग भी गोवा में ही हुई है। मेरे पिताजी का भी एजुकेशन इधर ही हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर गोवा के एमपीटी में काम करते थे, तो पीढ़ियों से हम गोवा में ही है, प्रॉपर गोवन है हम लोग।
0: जी, वहाँ के जो बहुत सारे घूमने के लिए जो चीजें हैं, लोग खास आते हैं घूमने के लिए, टूरिज्म बहुत ज्यादा गोवा का जो है फेमस है, तो थोड़ा सा बताइए वहाँ की टूरिज्म में जो अच्छी चीजें हैं देखने लायक, उनके बारे में।
3: गोवा के सबसे अच्छी चीजें में देखा जाए तो गोवा बीचेस के लिए फेमस है। गोवा गोवा हम ऐसे देखा जाए तो गोवा एक आइलैंड की तरह है जिसकी चारों तरफ से पानी है। तो पानी, समुंदर, अरेबियन सी लगने के कारण गोवा की बीचेस बहुत फेमस है। और स्पेशली हमारी जो नॉर्थ नॉर्थ गोवा के बीचेस है वो बहुत बड़े और अच्छे बीचेस है, जहाँ पर देश विदेश के टूरिस्ट आते रहते हैं हर साल घूमने के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। अगर बीचेस जाए तो देखे जाए तो बोट कलंगूट,
0: जी
3: वागातूर, ऐसे बहुत बढ़िया बीचेस है गोवा में जो आप घूम सकते हैं। एक अच्छा माहौल फील होता है गोवा में आने के बाद। और वैसे
0: बिल्कुल
3: भी
0: बिल्कुल।
3: गोवा के चर्चिस चर्चिस फेमस है। बाद में गोवा के अच्छे पुराने मंदिर है जो हर किसी ने देखने मांगते हैं। अभी भी उनका स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे बनाए थे वैसे। ये
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: सब बहुत सारी चीजें है जो गोवा में आके देख सकते हो।
0: वहाँ पे फेस्टिवल के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। किस किस तरह के फेस्टिवल्स वहाँ पर ज्यादा मनाए जाते हैं?
3: अभी जो अभी ये होली का सीजन है, सो होली के
0: हाँ हाँ
3: सीजन में हम बोलते हैं उसको शिग्मो, शिग्मोत्सव बोलते हैं उसको। हाँ,
0: अच्छा
3: तो हमारा जो ट्रेडिशन है वो देखने को मिलता है। हर शहर में एक 18 मार्च से शुरू हो जाएगा, सो हर शहर में एक झांकियां निकलती है और हमारा ट्रेडिशन वहां पर शो दिखाया जाता है। जैसे कि मंदिर और मंदिर का कल्चर, जिस गांव गांव का कल्चर, ऐसी वो झांकियां निकलती है। उसमें हर मीन्स अपना जो ट्रेडिशनल वाद्य है वो बजा के झांकियां निकालती है। ऐसा मीन्स बहुत बढ़िया फीलिंग होता है वो देखने के लिए, देखते हैं जब।
0: जी
3: और बाकी
0: जी
3: तो त्योहार तो चलता ही रहता है, 12 साल के 12 महीने कुछ ना कुछ ये चालू ही रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, बहुत ही अच्छा गोवा के बारे में आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए, अमन सर वापस जुड़ गए हैं। अमन सर, फिर से एक
3: हाँ
0: बार
3: जी, थैंक
0: स्वागत है आपका। जी,
3: यू सर, थैंक यू।
0: और बताइए, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन सी जगह से ट्रैवल कर
3: सर कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा एक्चुअली मैं सिटी के बाहर निकल गया था थोड़ा। अभी हम अब क्या सैटरडे है, बाकी दिन
0: हैं?
3: तो
0: हाँ
3: टाइम इतना नहीं है, तो
0: बिल्कुल
3: थोड़ा फैमिली
0: बिल्कुल
3: को भी टाइम देना पड़ता है नहीं तो फिर वो क्लाइंट हमारा वो सब शुरू ही रहता है ना।
0: सही बात है।
3: ऐसा है, सब
0: जी,
3: सब चीजें जरूरी है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजें जरूरी है, सबके लिए टाइम देना जरूरी है, तब जाके हम लोग एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ युवा साथियों के लिए, जैसे कि आज बहुत सारी ऑप्शंस है करियर का। पहले ऐसे होता था कि भाई डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं, युवा काम कर सकते हैं। आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसके
3: बिल्कुल
0: बावजूद भी कई बार हमें करियर चुनने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप?
3: सर, देखिए अभी तो मैंने कैसा हो गया ना, आपको तो विकल्प बहुत सारे हैं कि चलो, जैसे अभी हमारा लॉ फील्ड भी बहुत अच्छा है,
0: जी,
3: नहीं अने चलो अने इन केस तुम नहीं मेडिकल को जा सक रहे, नहीं इंजीनियरिंग कर सक रहे, तो LLB करो। उसमें अच्छे कॉलेजेस में तुमको एडमिशन, अगर अच्छा तुम पढ़ाई करते हो तो उस अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो उसमें क्या होता है ना, आज तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं कुछ तो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो। तो उसमें क्या सर, और ये फील्ड सर ऐसा है, लॉ फील्ड हमें तो चलो गर्व है कि हम अच्छे यानी इसमें आ गए करके, क्योंकि सर ये कैसा है, एक हमारी तरफ से तो दोनों काम होते हैं सर, एक समाज के लिए भी हम कुछ दे सक रहे हैं, ऐसा हमको रोज के इसमें लगता है। क्या होता है सर, जैसे हम आज कोई भी केस है या उसमें कुछ है, एक सिंपल एक सर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोई फैमिली मैटर है तो उसमें क्या होता है ना कि अब जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है, लेकिन हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो मैटर सॉल्व होके वो दोनों साथ में रहे, हमारे तरफ से पूरे इफोर्ट्स लगाए जाते हैं कि क्योंकि कैसे कभी कभी सर बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, तो उसमें क्या होता है ना कि हम खुद भी नहीं चाहते कि उसमें कुछ तोड़ मरोड़ हो, उसमें कुछ जिंदगी में कुछ ये आ जाए, चलो एक्सट्रीम कुछ
0: जी
3: हो जाता है तो अलग बात है वो, लेकिन हमारे तरफ से तो 100% हम एफर्ट्स वही लगाते हैं कि ये दोनों साथ में मिलके रहे, बच्चे साथ में रहे, सब साथ में रहो। लेकिन सर क्या होता है ना, कभी कभी हमारे कुछ एफर्ट्स भी फेल हो जाते हैं, लेकिन चलो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे तरफ से पूरी कोशिश, इसलिए बोल रहा हूँ सर कि ये जो ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारा ये जो प्रोफेशन है ये समाज के लिए भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि जरूरी कि हर चीज है सर। मैं तो मैंने मेरे तरफ से तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत से केसेस में मैं फ्री ऑफ चार्ज भी मैं केसेस भी लड़ता हूँ कि जिसके पास कुछ किसका
0: अरे
3: सपोर्ट
0: वाह,
3: नहीं है, यानी किसी के यानी पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है, तो भी वो हमारे पास आते हैं तो हम उसको भी फ्री में कर देते हैं, क्योंकि सर हमारे सिर्फ नॉलेज का पैसा है सर, बाकी क्या है, हमको कुछ पैसा लगना नहीं है, सिर्फ उसका ही पैसा देना है, तो वो
1: वो तो हम उतना कर ही सकते हैं ना समाज के लिए।
0: जी,
1: तो ये फील्ड भी बहुत अच्छा फील्ड है लॉ का, जिसमें यंगस्टर्स अभी आके यहाँ पे एडमिशन करके आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इसमें ना किसी को कुछ देना है ना कुछ है, सिर्फ तुम खुद के तुम्हारी एबिलिटी बनाओ और खुद उसको प्रेजेंट करो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया अमन सर। और मैं चाहूंगा कि जैसे कि अभी जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, इसके बावजूद भी हमारे लाइफ में हैप्पीनेस की थोड़ी जो है मात्रा, धीरे धीरे इवेंट्स के माध्यम से हमें हैप्पीनेस मिलता है। तो हमेशा खुश रहने के लिए क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे, या अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या करते हैं?
1: सर सबसे सही चीज है तुम्हारी पॉजिटिविटी, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए कोई भी चीज को लेके। जितनी ज्यादा आदमी नेगेटिव थिंकिंग रखेगा कोई भी चीज को लेके, वो नकारात्मक सोच आते रहेंगे उसमें। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, तो उसमें क्या है ना, हर चीज को तुम आनंद ले सकते हैं। आज जैसे सर एक अपन डे टू डे लाइफ में ये चीज मेरी ऐसी नहीं हुई, मेरे मेरे हिसाब से नहीं हुआ, अपन थोड़ा डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ उसके बारे में निगेटिव सोचेंगे, फिर वो दूसरा एक विचार आएगा तुम्हारे दिमाग में, फिर और कुछ चलते रहेगा। तो ये सब सोच को एक पॉजिटिव वे में लो कि चलो ठीक है, आज नहीं हुआ ना तो कल होगा, वो कल नहीं हुआ परसों होगा, लेकिन होगा, मेरे मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो ये चीजें जो है ना, तो वो आदमी को थोड़ा पॉजिटिविटी जो रहेंगी वो हमेशा आपको हैप्पी रखेंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, नीता जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने बताया और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, ऐसा लिखा है सर जी आपने। और फूल सिंह जी ने भी याद भेजा है, बहुत सुंदर करके मैसेज किया है, नीता जी ने ओम शांति लिख के भेजा है। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों को।
1: थैंक
0: और
1: यू
0: आइए
1: सर,
0: मैं फिर से अमन सर के बाद सूरज सिंह जी से वापस जोड़ना चाहूंगा। आप खुशी को बढ़ाने के लिए या खुशी कायम रखने के लिए आप क्या करते हैं, किस टाइप का एक्सरसाइज करते हैं या मंथन करते हैं?
3: सर एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं लगभग 20 साल पहले सिद्ध समाधि योग इससे जुड़ा हूँ, SSY बोलते हैं उसको। ऋषि प्रभाकर जी ने इसकी स्थापना की थी, और वहाँ पर मैंने मेडिटेशन, प्राणायाम और सात्विक आहार से जीते कैसे, ये सब चीज़ें हमने सीखी है। वो आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं खुश रहने के लिए। और मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट ये है कि मैं 8 फ़रवरी को जन्मदिन था,
0: जी
3: उसी
0: जी
3: दिन मैं माउंट आबू के आश्रम में पहुंचा हुआ था इस साल।
0: अरे
3: तो वहां पर जाने के बाद मेडिटेशन की एक अलग दुनिया देखी मैंने वहां पर जाके, और
0: जी
3: बहुत बहुत प्रेरित हुआ हूँ मैं वहां पर जाके। और ऐसा लगता है कि एक मेडिटेशन एक हमारे जीवन में बहुत जरूरी है खुश रहने के लिए। और मैं तो 2 दिन में 2 बार मेडिटेशन करता ही था, लेकिन अभी वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ मैं कि मेडिटेशन कंपलसरी करना ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सूरज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आपका जन्मदिन के दिन आप यहाँ थे, ये आपकी खुशी का एक जो है पैरामीटर हमेशा बढ़ाता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि मेडिटेशन के अलावा आप किस तरह से, किन किन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं?
3: जब जॉब नहीं करता था
0: जी,
3: तब तो खुशी अपने आप ही मिलती थी। यहाँ पर जाओ, ये टूर्नामेंट खेलो, खेलने को जाओ या ऐसे, लेकिन अभी ढूंढनी पड़ती है। अभी शाम को फैमिली के साथ टाइम दो, या किसी सीनियर सिटीजन से बात करो, उनका उनका थोड़ा दुख शेयर करो, तो उसमें भी अभी खुशी मिलती है। क्या अभी ह्यूमन राइट्स में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, सो उनको सजेशन या उनका एडवाइस देके भी खुशी मिलती है। सो अभी खुशी का पैरामीटर चेंज हो गया है। अभी चल रहा है।
0: बिल्कुल। बिल्कुल सूरज जी, काफी अच्छी बात है आपने बताया, क्योंकि समय के साथ साथ जो है हर चीज थोड़ी सी बदल जाती है। तो हमारी पहले बचपन में हम, हो सकता है कि थोड़ा सा गिल्ली डंडा खेल के खुश हो जाते थे, आज गिल्ली डंडा खेल नहीं सकते हैं, तो वो खुशी हम फिर वापस लौटने के लिए बचपन जाना पड़ेगा, या फिर हमें इतना पेशेंट होना चाहिए कि हम अभी भी बच्चों के साथ मिलके खेल जाके खेले ग्राउंड पे, तो वो चीजें बन सकती हैं। लेकिन अभी चीजें कुछ और हो सकती हैं कि आपके पास कोई केस आता है, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, आप उसको बड़े दिल से उसको सुनते हैं और फिर उनको सजेशन देते हैं, उनको ठीक कर देते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, तो वो भी खुशी आपको मिलती होगी नेचुरली। तो आइए फिर से अमन जी को मैं जोड़ना चाहूंगा। अमन जी, मैं चाहूंगा कि आपकी खुशी, मतलब आप फ्री हैं, जैसे आज सैटरडे संडे में छुट्टी रहता है, बाकी टाइम तो आप ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो आप अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताइए, आप किन चीजों से ज्यादा खुश हो जाते हैं?
1: सर सबसे बढ़िया तो है, जैसे अभी हमको जब भी टाइम मिलता है तो हम फैमिली लेके निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। और क्या सर,
0: अच्छा
1: हमारा जो ये एरिया है पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ
0: अच्छा
1: से
0: अच्छा
1: आपको ताड़ोबा सेंचुरी है, आपने सुने होंगे, अच्छा बड़ा
0: हाँ
1: फॉरेस्ट है। तो इसमें कैसा है, हमको जस्ट सर हम 2-4 किलोमीटर क्रॉस कर दे तो पूरा जंगल एरिया लग जाता है। तो
0: अच्छा अच्छा
1: रात में हम सफर पे निकल जाते हैं, उसमें बहुत आनंद आता है हमको।
0: जी, इसके अलावा आपकी खुशी की और क्या,
1: सर
0: किस बात
1: देखो,
0: से आप?
1: हमारा वर्क ही हमारा पैशन है। जैसे जो चीज मैं कर रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरे को बहुत आनंद आता है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: मैं मेरे क्लाइंट को क्या सजेस्ट करता हूँ और उसको उसमें उसमें कितना रिलीफ दे सकता हूँ उसको,
4: भैया
1: वो जितना खुश रहेगा उससे उससे डबल दुगनी खुशी मेरे को मिलेगी।
0: बिल्कुल
1: देखो सर,
0: बिल्कुल
1: ऐसा प्रोफेशन तो हमारा है, उसमें कुछ गलत लोग भी आते हैं, कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के ऊपर अत्याचार होता है, कोई ऐसा भी आता है कि उसने वो करने के बाद भी उसको उसमें से बचना रहता है वो, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन है तो मेरे को उसको डिफेंस में कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन सर ये बात है कि अपने को हर हर एक को सबको लेके चलना है। तो कैसा है, हर छोटी बड़ी जो चीज रहती है उसमें अपने को वो सब चीजें को ये करना ही पड़ता है, उसमें अपना का जो
0: बिल्कुल
1: वर्क है उसमें अपना आनंद लेना पड़ेगा, तभी तो अपन आगे काम कर सकते हैं ना। जैसे आप
0: सही
1: अभी
0: बात,
1: जो काम कर रहे हैं उसमें आपको आनंद है, तभी तो आप वहां बैठे हो।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। नीता जी याद कर रही हैं, उन्होंने लिखा है कि सही बात है, और आज भी हम लोग पुराने गेम्स को खेलते हैं और उससे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अमन सर, मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग, आपका प्रोफेशन ही है, बहुत सारे केसेस आप हैंडल करते हैं, तो एक पेचीदा चीज के बारे में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें बहुत ज्यादा आपको लगा कि हाँ, इसमें भगवान की अच्छी मदद मिली हो, ऐसा बोलते हैं ना, मिराकल चीजें होती हैं कभी कभी, हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे संभव है ना।
1: सर कैसा है ना, बहुत बार क्या होता है ना कि केस बहुत पहले पुलिस, जैसे अभी मोस्टली जैसे मैं क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करता हूँ सर, क्या होता है ना, अब बहुत बार तो मैं एक्यूज के साइड से रहता हूँ, जिन्होंने गुनाह किया है उसके तरफ से, तो ठीक है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है सर, इनोसेंट पर्सन भी उसमें फंस जाता है कभी कभी। एक मेरे पास एक केस था सर, मैं आपको एक छोटा सा एक केस बताता हूँ। एक शादी हुई,
4: भैया 300 रुपये ले लीजिए।
1: बच्चे होंगे 18 साल के ऊपर ही थी, ठीक है, लेकिन पुलिस वालों ने केस बनाते हुए ऐसा बनाया कि वो नाबालिग थी, उसकी शादी करवा दिए, फिर वो पोक्सो एक्ट वगैरह वो सब सब लगा दिए। तो उसमें सर मैं एक पंडित की तरफ से उसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, एक पंडित को जिसने शादी लगाया था।
0: अच्छा
1: तो वो पंडित को अननेसेसरी फंसाया गया कि चलो ठीक है, वो पंडित ने तो सिर्फ शादी लगाया, उसको तो कुछ मालूम नहीं हो, उसको तो सिर्फ एक, चलो क्या होता है ना सर, अब अपन भी एक जनरली सर एक पंडित को बुलाते हैं, हमारे यहाँ शादी है, शादी लगाना है आपको, पंडित सर आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखेगा क्या कि वो बच्चे कितने साल की है करके, नहीं देखेगा ना। तो उस
0: बिल्कुल
1: बेचारे ने शादी लगा दिया और चले गया। लेकिन क्या हुआ सर, जब केस हुआ तो पंडित को भी अंदर डाल दिए, पंडित बेचारा 1 महीना अंदर रह गया, क्यों, तो नाबालिग लड़की की शादी लगा दिया करके। जब केस हुआ पूरा हुआ तो हमको उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े, चलो ठीक है। वो यानी ऐसा हुआ सर कि लास्ट मोमेंट पे जिस दिन वो केस अपना समझो कि एक फाइनल स्टेज पे था, हमारे हाथ में एक वो एक बच्ची का ऐसा एक डॉक्यूमेंट लग गया कि उसमें उसका बर्थ जो था, बर्थ प्रूफ, वो बच्ची का एज शादी के टाइम पे 19 ईयर्स था।
0: अच्छा,
1: तो वो एक सही में मिराकल था कि यानी पूरा, अगर वो नाबालिग रहती थी तो ये तो पक्का ये 100% अंदर ही जाना था, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे जिस दिन फाइनल जजमेंट है या आर्गुमेंट है बोलो, उस दिन वो डॉक्यूमेंट हाथ में लग गया, फिर हमने वो प्रेजेंट किए तो वो एक क्या हुआ ना, वो छूट गया उसमें से। तो ऐसी ऐसी भी चीजें होती है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी चीज आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए मैं वापस इसी क्रम में सूरज जी को भी जोड़ना चाहूंगा। सूरज जी, आपका जैसे कि गोवा में ही आप रहे हैं, तो गोवा की कुछ ऐतिहासिक चीजें हमें याद कराइए। सुना है वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी इतिहास को याद दिलाती हैं।
3: अगर गोवा में ऐसे ही फोर्ट है जो
0: जी।
3: हमको इतिहास की याद दिलाते हैं। हाँ, अभी भी याद है कि शिवाजी महाराज ने वो फोर्ट बनवाए। अभी भी शिव जयंती के समय उस फोर्ट में अभी शिव जयंती मनाई जाती है। ऐसे ही हमारा जहाँ पर मैं रहता हूँ हेडलैंड सड़ा वास्को में, वहाँ पर भी एक छोटा सा किला है जिसका
0: अच्छा।
3: जो हम बचपन में वहाँ पर जाते थे तो ऐसे ही जैसे दिखता था कि वहाँ है, वो बहुत बढ़िया फोर्ट है। और वो उस समय यूज किया होगा जो शिवाजी महाराज ने जब गोवा में आए थे लड़ाई के दौरान। तो है ऐसे बहुत सारी जगह है जिससे इतिहास पता चलता है। और अभी भी गोवा गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पुर्तुगीज टाइम पे जो हमारे जो मंदिर थे, पुराने मंदिर जो डिस्ट्रॉय किए थे, अगर वैसे मंदिर गोवा गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अगर वैसे मंदिर मिलते हैं तो वो हम उसको वापस बनाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है और वो उस पर काम भी चल रहा है।
0: अच्छा, जी सूरज जी, काफी अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद। गोवा के इतिहास को याद कराया, और अभी हमारे साथ ब्रजभूषण जी भी जुड़ गए हैं पूना से। ब्रजभूषण जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्ते, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक बार ये एंटर कीजिए आप। जी, तो काफी अच्छी बात आपने बताया सूरज जी, और मैं चाहूंगा कि एक और बात पूछना चाहूंगा। जैसे कि वहाँ मोस्टली सारा समंदर के किनारे हैं, बीचेस ज्यादा है, तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरह से करते हैं? क्या आम कंस्ट्रक्शन जैसे करते हैं लोग दूसरे शहरों में वैसे करते हैं, या कुछ खास चीजें देखी जाती हैं?
3: खास नहीं है, जो नॉर्मल जो चलता है वैसे ही चलता है। थोड़ा तो टूरिज्म स्टेट होने के कारण कुछ चीजें होती है जैसे हायर साइड में, लेकिन नॉर्मली जो ओवरऑल है वो वैसा ही है। और
0: अच्छा,
3: गोवा गोवा बहुत छोटा राज्य है जो 70-80 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। ब्रजभूषण जी, आप कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है ब्रजभूषण जी? अच्छा, आप एक बार री एंटर करो। क्योंकि आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा हमें, बाकी आपको मेरी आवाज आ रही है शायद। एक बार री एंटर करो आप। चलिए, फिर से मैं सूरज जी को ही जोड़ना चाहूंगा, सूरज जी से ही बात करेंगे हम लोग। वहां पे जैसे कि स्कूल्स वगैरह के ये जो मिशनरी स्कूल्स ज्यादा हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर कैसा है वहां पर? जैसे यहाँ पर जो है हर 4-5 किलोमीटर पे गवर्नमेंट ने स्कूल बना के रखा है, तो एजुकेशन का जो स्टेटस है, एजुकेशन के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, थोड़ा सा वो बताइए हमें।
3: सर गोवा में एजुकेशन बहुत बढ़िया है, पहले से ही बहुत अच्छा एजुकेशन गोवा गवर्नमेंट दे रही है। स्कूल की बात करें तो स्कूल के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है।
0: अच्छा,
3: हाँ, हर मीन्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छे स्कूल गोवा में है। अगर थोड़ी सी अगर रिमोट एरिया में जाते हैं या हम बॉर्डर की एरिया में जाते हैं गोवा के, तो वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो छोड़ा तो गोवा का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। और ऐसा कोई एजुकेशन नहीं है जो गोवा में नहीं मिलता है अभी के समय में।
0: अच्छा,
3: गोवा
0: सारी
3: में बहुत,
0: चीजें
3: हाँ, गोवा में बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है।
0: हैं।
3: तो हम गोवा मेडिकल बोलते हैं, गोवा मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। गोवा में बहुत अच्छे पॉलिटेक्निक्स है, गोवा में बहुत अच्छे लॉ कॉलेजेस है। तो एजुकेशन सिस्टम गोवा का बहुत बढ़िया है।
0: क्या बात है। और ट्रांसपोर्टेशन का?
3: ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है क्योंकि गोवा के गवर्नमेंट बसेस रेगुलर चलते हैं। पहले तो ज़्यादा प्राइवेट बसेस चलते थे, लेकिन अभी गोवा ने जो मेन सिटीज है, वास्को, पणजी और मडगांव, ये नेशनलाइज कर दिया है। तो उसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट बसेस की सर्विसेज अच्छी चलती है। लेकिन प्रॉब्लम,
0: अच्छा,
3: हाँ, एक ही है कि गोवा का ट्रांसपोर्टेशन रात के 10 बजे, 9-10 बजे बंद हो जाता है।
0: चलिए, ब्रजभूषण जी वापस आ गए हैं, देखते हैं उनकी आवाज आ रही कि नहीं। हाँ जी, नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दूसरा मोबाइल से शायद ट्राई कीजिए एक बार। कल तो आवाज आ रही थी आपकी, आज नहीं आ रही। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपसे हो रही है, गोवा के बारे में काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमें, और मूल निवासी हैं आप गोवा के, तो अच्छा लगता है हमें सुनने में। इसके साथ में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा रश करते हैं, तो गोवा में ज्यादा रश जो टूरिज्म का जो समय होता है वो कौन से टाइम से कौन से टाइम तक ज्यादा रहता है?
3: बारिश के बाद, यानी हम बोल सकते हैं नवंबर से टूरिज्म स्टार्ट हो जाता है, तो
0: अच्छा,
3: मई एंड तक।
0: मई एंड तक।
3: हाँ, मई एंड तक, क्योंकि गोवा का मौसम ऐसा रहता है कि हर साल 7 या 10 जून के पहले बारिश गोवा में स्टार्ट होती है। सो 4 महीने बारिश के कंटिन्यू रहती है। तो वो 4 महीने छोड़ा तो बाकी के 8 महीने टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे हैं गोवा में। और गोवा में जो फेस्टिवल्स
0: नवंबर से
3: मनाते
0: लेकर
3: हैं,
0: मार्च,
3: हाँ, मई तक,
0: जी,
3: मई एंड तक। सो
0: मई तक। मई
3: अप्रैल,
0: तक अच्छा लगे।
3: हाँ, अप्रैल और मई में थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है।
0: और बारिश में ज्यादा बारिश होती होगी।
3: हाँ, बारिश में बहुत ज्यादा बारिश होती है। गोवा का
0: तो आप
3: सीजन,
0: गोवा के, जी
3: हाँ, गोवा का सीजन मीन्स जैसे कि अदर स्टेट में, जैसे राजस्थान, दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, वैसा नहीं होता है। गोवा का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है।
0: अच्छा, यहाँ नॉर्मल है।
3: हाँ, गोवा में
0: जी, सूरज जी, गोवा के अलावा आपने कौन कौन से राज्य को ज्यादा टाइम दिया है, या घूमने के हिसाब से या कोई कार्य के हिसाब से गए हो? गोवा के अलावा कौन कौन सी जगह पे गए हैं, थोड़ा सा अपनी टूरिज्म के बारे में बताइए।
3: अगर गोवा छोड़ा तो महाराष्ट्र तो मेरा आना जाना रहता ही है, क्योंकि मेरा गांव है जो वो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तालुका में आता है। साल में 2 या 3 बार गांव जाना रहता है। तो महाराष्ट्र का फेमस जो फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी, तो हर साल गणेश चतुर्थी के समय हम महाराष्ट्र में रहते हैं। और जो छुट्टियां रहती है यहाँ पर अप्रैल मई में, तो उस दौरान एक 10 दिन के लिए जाके आता हूँ। और इसके अलावा महाराष्ट्र के और जो है कोल्हापुर हो गया, पुणे हो गया, सो वहाँ पर आना जाना रहता है।
0: अच्छा। तो वहां की सोलापुर की कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती हैं? वहां पर क्या चीजें देखने जाते हैं अगर जाते हैं तो?
3: सोलापुर नहीं सर, कोल्हापुर।
0: कोल्हापुर। अच्छा हाँ, कोल्हापुर में।
3: हाँ, कोल्हापुर में एक जगह है जहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर काट सिद्धेश्वर का कणेरी मठ है।
0: जी।
3: हाँ, तो कणेरी मठ पे जाना आना जाना रहता है। वहाँ पर जब प्रोग्राम रहते हैं तो वहाँ पर जाते हैं हम लोग। बाद में कोल्हापुर घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। कोल्हापुर में
0: जी
3: कोल्हापुर का फेमस महालक्ष्मी टेम्पल हो गया, ये सब चीजें बहुत अट्रैक्टिव है वो सब।
0: बिल्कुल बिल्कुल। महालक्ष्मी टेम्पल फेमस है,
3: हाँ
0: लोग वहां पर बहुत आते हैं। एक बार हमारा भी वहां जाना हुआ था किसी कार्यक्रम के अंतर्गत, तो
3: हाँ
0: काफी अच्छा लगा वो भव्य मंदिर देखकर। जी अमन जी वापस आ गए, कैसे हैं आप?
5: बस सर बढ़िया। चलो घर पहुंच गया हूँ मैं।
0: बिल्कुल, अभी पीछे कार नहीं है आपके। सूरज जी ने पूरा गोवा का इतिहास याद कराया, एजुकेशन के बारे में बताया, ट्रांसपोर्ट और मौसम वहाँ का पूरा जो है। बिल्कुल
5: गोवा जाएंगे तो सूरज जी से पक्का मिल ही लेंगे।
3: बिल्कुल। आप सभी लोगों का स्वागत है सर जी।
0: तो अमन जी मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सोसाइटी के यहाँ।
5: सर देखो ऐसा है, एक सोसाइटी में समाज है अपना, इसके उन्नति के लिए अपने को जैसे हम लोग जो है अपना क्या काम है, जो अपन जो काम कर रहे हैं उससे अपने काम के साथ समाज को भी क्या फायदा हो सकता है उससे, ये चीजें भी सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ आदमी ने अपना सिर्फ भला नहीं सोचना चाहिए कि उससे अपने काम से समाज को भी कुछ मिलना चाहिए, ये
0: बिल्कुल
5: चीज का भी
0: बिल्कुल
5: सोचना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा ना, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब अपन अपनी ये हर एक की सोच ऐसी हो जाएगी। उसके लिए अपने को भी उतना ही सतर्क रहना चाहिए कि अपन समाज के लिए क्या कर सक रहे हैं। चलो आदमी अपनी खुद की उन्नति तभी करेगा जब अपन समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, उसके
0: जी
5: बिना
0: जी
5: बिना
0: जी
5: अपन नहीं कर सकेंगे वो सब चीजें।
0: जी अमन जी, काफी अच्छी बात आपने बताया कि खुद का भी करना है लेकिन समाज का अगर सोचते हैं तो वो एक बहुत अच्छा काम होता है। और
5: जरूरी है
0: समाज
5: सर।
0: मजबूत है तो आप भी मजबूत हैं, समाज अच्छा है तो आप भी अच्छे बने रहते हैं। सूरज जी एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप भी एक लाइन में?
3: सबसे पहला तो अन्याय और अत्याचार सहन मत करो, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। खुद पर
0: बिल्कुल
3: भी हो रहा है तो, और दूसरों पर भी हो रहा है तो। और दूसरी चीज, पढ़ाई बहुत जरूरी है। हर एक को 1% ग्रोथ
0: जी जी
3: डेली
0: जी
3: अपनी लाइफ में करते रहना है। एक किताब किताब का साथ कभी नहीं छोड़ना है, तो पढ़ते
0: बहुत
3: रहना है
0: बढ़िया।
3: कुछ ना कुछ।
0: चलिए सूरज जी, बहुत ही अच्छा एक संदेश आपने दिया कि किताब का साथ हमेशा रखना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अमन जी आपने भी बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया, समाज को हमें जो है बैक टू सोसाइटी कुछ देते रहना है, समाज को मजबूत बनाना है, ये भी आपका संदेश था। तो आप दोनों को आज के इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक
5: आपको धन्यवाद।
0: यू, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, बहुत खुशी हुई। और फिर मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने एडवोकेट अमन जी को सुना, सूरज जी को सुना, गोवा की पूरी इतिहास आपने सुना और किस तरह से हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो हर मुश्किल में कहीं ना कहीं जो है अगर

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा

मैं गायक कलाकार हाकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान खरताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये खरताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने खरताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है, हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान केसुमिला के अंदर ये बच्चों को संगीत की खरताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों खरताल ढोलक कमायचा सारंगी मोरचंग मुरली अलगोजा सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफ़ी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निम्बूड़ा। ये निम्बूड़ा हमारे मांगनियार लोगों का गाया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है मीना के गांव में बनी है एक नई नाटक टोली जिसमें ना सिर्फ बच्चे हैं बल्कि गांव के बड़े भी हैं। आओ अब जल्दी से चलते हैं मीना के स्कूल जहां जोर शोर से चल रही है कल के नाटक की तैयारी।
1: मीना, सुमी, आखिरी बार सारी तैयारियां ठीक से देख लेते हैं, कहीं कुछ रह न गया हो।
2: जी बहन जी।
1: तो शुरू करते हैं मंच की सजावट।
2: बहन जी, मंच की सजावट रोशनी और तारा दीदी ने पूरी कर दी है।
1: और पोशाकें?
2: बहन जी, पोशाकें भी तैयार हैं और क्लास में रखी हैं। चल के देखें।
1: हाँ हाँ सुमी, क्यों नहीं।
0: और क्लास में पहुँचते ही
2: अरे ये क्या, ये सारी पोशाकें फटके से गई।
3: फटके से गई, जगह जगह से कटके से गई।
2: अब क्या करेंगे हमारा नाटक।
1: ऐसे रोते नहीं सुमी, इसके पीछे जरूर किसी न किसी की शरारत है। चलो पता करते हैं
0: आखिर किसने कर दिया नाटक की पोशाकों का इतना बुरा हाल। लगता है क्लास के बाहर मीना अपने बाबा और पोंगाराम चाचा को यही बता रही है।
2: बाबा, पोंगाराम चाचा, क्या आपने किसी को क्लास के अंदर जाते देखा?
4: मीना बेटी, हम तो कुछ ही देर पहले आए हैं, पर हमने तो किसी को नहीं देखा।
5: मीना, मुंशी काफी देर से उस सामने वाले चबूतरे पर बैठा है, शायद उसने किसी को देखा हो।
0: बहन जी, मीना और उसके दोस्त चबूतरे के पास पहुँचे।
2: मुंशी काका, क्या आपने यहाँ से किसी को क्लास के अंदर जाते हुए देखा?
6: मीना बेटी, अब मैं यहाँ चौकीदारी तो नहीं कर रहा जो आते जाते लोगों का ध्यान रखूं।
1: मुंशी जी, फिर भी अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई तो जरूर गया है क्लास में।
6: बहन जी, जब से मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैंने तो सिर्फ भोलू की बकरी भूरी को अंदर जाते देखा।
2: भूरी? इसका मतलब उस बकरी ने कपड़ों को चबाकर उनका ये हाल कर दिया।
1: पर मुंशी जी, आपको भूरी को अंदर जाने से रोकना चाहिए था।
6: देखो जी, मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है, ना तो ये स्कूल मेरा है और ना वो बकरी।
1: मुंशी जी, ये स्कूल गांव का एक जरूरी हिस्सा है और आप भी तो इसी गांव में रहते हैं।
6: देखिए बहन जी, सीधी सी बात है ना, मेरा कोई बच्चा है जो इस स्कूल में पढ़ता है और मेरी अपनी पढ़ाई तो कब की खत्म हो चुकी, तो भला मेरा स्कूल से क्या नाता। चलता हूँ।
0: मुंशी जी तो चले गए, पर अब इन फटी पोशाकों का क्या होगा, आओ देखें।
2: बहन जी, अब हम इन सारी पोशाकों को कैसे ठीक करेंगे, नाटक तो कल ही है।
5: तुम चिंता मत करो, मैं कुछ लोगों को शाम तक इकट्ठा करता हूँ और हम सब मिलकर जल्दी से ये कपड़े सिल देंगे।
1: धन्यवाद भाई साहब। मीना, सुमी, तुम गांव में जाकर सबको बुलाओ कि कल का नाटक देखने जरूर आए।
2: जी बहन जी।
0: मौसम तो सचमुच बहुत खराब हो रहा था। अरे ये क्या, मीना और सुमी चलते चलते अचानक मुंशी जी के घर के सामने क्यों रुक गए?
2: चलो सुमी, जल्दी से मुंशी काका को भी कल के नाटक के लिए बुला लेते हैं।
7: नहीं मीना, मुंशी काका की वजह से ही नाटक की सारी पोशाकें फट गई। हमें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए।
2: सुमी, मैं मानती हूँ कि उन्हें भूरी को रोकना चाहिए था, पर वो गांव के बड़े हैं और हमें सबकी तरह उन्हें भी बुलाना चाहिए।
7: हाँ ठीक है मीना।
6: सुमी, मीना, अब क्या हो गया?
2: मुंशी काका, गांव के बच्चों और बड़ों ने मिलकर जो नाटक टोली बनाई है, उसका पहला नाटक हम कल स्कूल में करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप भी वहां आए। और
6: देखो मीना बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि स्कूल से अब मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है।
2: मुंशी काका, गांव के सभी लोग वहां आएंगे और ये नाटक टोली सबके मनोरंजन के लिए है, सिर्फ स्कूल के बच्चों और टीचर बहन जी के लिए नहीं। बाहर देखो मीना, कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है।
7: हाँ सुमी, स्कूल वापस पहुँचने तक तो हम भीग जाएंगे।
6: अरे बच्चों, इतनी बारिश में कहाँ जाओगे, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, बारिश रुकने पर निकल जाना।
0: पर उस दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे और बाहर अंधेरा सा होने लगा।
2: मीना देखो, बाहर इतना पानी जमा हो गया है कि घर के अंदर भरने लगा है। ये क्या आवाज थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
8: ओहो, घर में तो काफी पानी भराया, अब क्या कहूँ, घर से बाहर निकलना ही सही रहेगा। ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा।
2: मुंशी काका, यहाँ खिड़की के बाहर देखिए, दरवाजे के बाहर पेड़ गिरा हुआ है, इसीलिए दरवाजा नहीं खुल रहा।
8: अब क्या करें? अरे कोई है, कोई है, हमें यहाँ से निकालो।
3: बचाओ! कोई है? बचाओ!
9: जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया।
2: लगता है बाहर कुछ लोग पेड़ हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
9: जोर लगा के हैया।
2: बहन जी, बाबा,
10: चलो चलो जल्दी बाहर चलो।
2: देखिए मुंशी काका, हमें बचाने पूरी नाटक टोली आई है।
6: पर वो आप सब लोगों को कैसे पता चला कि हमें मदद की जरूरत है?
5: मुंशी जी, बहन जी ने हमें बताया कि गांव के इस तरफ के सारे घर ढलान से थोड़े नीचे हैं और यहाँ पानी भर सकता है, इसीलिए हम इस तरफ के सभी लोगों को स्कूल की ओर ले जा रहे हैं। स्कूल थोड़ा ऊपर की तरफ जो है।
6: आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें बचा लिया।
5: चलो अब जल्दी से स्कूल चलते हैं।
0: बातचीत करते हुए सब सुरक्षित स्कूल पहुंच गए, जहां पर और गांव वाले भी थे।
4: आज तो स्कूल ने हम सब की जान बचा ली, नहीं तो हम कहां शरण लेते।
11: ठीक कहा पुंगाराम भैया, स्कूल में आना तो हमें हमेशा से अच्छा लगता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब कुछ साल पहले सभी गांव वालों के लिए स्कूल में पढ़ने लिखने की कार्यशाला हुई थी। जो तब सीखा था आज तक नहीं भूली।
5: और हाँ, याद है पिछले साल जब हमारे गांव में एक नृत्य टोली आई थी और उन्हें कहीं जगह नहीं मिली, तो स्कूल ने ही उन्हें मैदान में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए जगह दी थी।
4: हाँ भाई साहब, और मैं था जो कभी सोचता था कि स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए होता है।
6: बहन जी, अगर आपकी नाटक टोली में कोई जगह खाली हो तो मैं भी जरूर उसमें शामिल होना चाहूँगा।
1: हाँ जरूर मुंशी जी, हमारी नाटक टोली स्कूल की तरह ही सभी गांव वालों के लिए है, आपका हमेशा स्वागत है। पर हाँ, आपके पास समय होना चाहिए।
6: बहन जी, अब मैं समझ गया हूँ, अगर स्कूल वक्त निकाल कर पूरे गांव के लिए कुछ कर सकता है तो मैं भी स्कूल के लिए वक्त निकाल सकता हूँ।
1: तो फिर क्यों ना हम सब मिलकर पोशाकों को सिलना शुरू करें?
3: हाँ, क्यों नहीं?
0: भाई वाह, अगली बार तो मुंशी जी भी नाटक टोली के साथ मिलकर सबका मनोरंजन करेंगे, है ना? बढ़िया बात। चलो अब देखें ये मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं।
2: स्कूल तो है हम सब का, अपने गांव की है शान।
3: सब जुड़ जाएं जब इससे तो पाए नया ज्ञान।
0: क्या कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने, और अब वक्त है एक मजेदार गाने का।

0: अरे ये क्या, आप सब भी साथ में गा रहे थे और मैं भी। गाना जो इतना मजेदार था। चलो अब देखते हैं कि मीना की बहन जी आज अपनी क्लास में कौन सा खेल खिला रही हैं।
1: बच्चों आज का खेल है बड़ा मजेदार। भेद खोलना है हमें उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार पर्वतों के नाम बताऊंगी। उन चारों में से एक ऐसा पर्वत है जो बाकी तीन पर्वतों से किसी खास वजह से अलग है। बस तुम्हें उसी अलग पर्वत का नाम मुझे बताना है। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी लहन जी।
1: वो चार पर्वत हैं कंचनजंगा, नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। बोलो कौन सा पर्वत है सबसे अलग। एक बार फिर से बोलती हूँ, कंचनजंगा, नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी।
3: मुझे पता है बहन जी।
1: हाँ हाँ दीपू बताओ।
3: कंचनजंगा।
1: क्यों दीपू, कंचनजंगा क्यों?
3: क्योंकि ये नाम मैंने कभी नहीं सुना बहन जी।
1: नहीं दीपू, ये सही जवाब नहीं है। कंचनजंगा के पहाड़ भारत के उत्तर पूर्व में हैं।
3: ओह
4: समझ गई बहन जी, मैं बताऊं?
1: हाँ मीना।
4: बहन जी सही जवाब है नीलगिरी, क्योंकि कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी सभी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है, जबकि नीलगिरी दक्षिण भारत में स्थित है।
1: बिल्कुल सही जवाब मीना। और पता है बच्चों, इनमें से माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। तो मजा आया बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: आशा है आपको भी आया मजा। तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू। पांचवा पाठ, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। पृष्ठ 52, गप्पू की हवाई यात्रा। गप्पू एक छोटा सा बहादुर चूहा था। एक दिन उसने देखा कि बच्चे बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं। गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से जा टकराया। गप्पू खुशी से झूम गया। तभी उसे कुछ सूझा। अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया। अब वो ऊपर से पंखे की पंखुड़ियां देख सकता था। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ छत का चित्र है जहां पंखा लगा है और गप्पू को गैस के गुब्बारे के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया गया है। गप्पू बोला,
2: ओ इन पंखुड़ियों पर कितनी धूल जमी है, नीचे से तो कितने साफ दिखते हैं।
1: पंखा नीचे से कैसा दिखता है बनाकर देखो।
3: अब गप्पू ने नीचे देखा, उसे बिस्तर दिखाई दिया, कुर्सी दिखाई दी, एक मेज किताबों से भरी हुई और दूसरी मेज पर बोतल, जग और फल आदि रखे हुए थे।
1: चित्र में इन चीजों को पहचानो। पृष्ठ के बीच वाले हिस्से में कुछ कुर्सियां, टेबल और कुछ सामान रखा है। गप्पू बोला,
2: ये बुद्धू चिंकी पनीर ढूंढ रही होगी, देख भी नहीं सकती कि वो जग के ऊपर रखा है।
1: शिक्षकों के लिए निर्देश, अलग अलग दृष्टिकोणों से और दूरियों से देखने पर वस्तुओं की आकृति और लंबाई चौड़ाई अलग दिखती है। इस पर बच्चों को पर्याप्त चर्चा की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखें कि कहानी का आनंद बना रहे। पृष्ठ 53, क्या तुम सोच सकते हो कि गप्पू को जग के ऊपर रखा पनीर कैसे नजर आ गया जबकि चिंकी उसे नहीं देख पाई। गप्पू सोचने लगा,
2: जब मैं घर में घूमता था तो घर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन यहां से इतना छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों?
1: तभी जोर से हवा चली और गुब्बारा कमरे से बाहर उड़ गया। गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगा, साथ ही गप्पू भी आसमान में उड़ने लगा। जब उसने देखा तो उसे अपना घर नजर आया। जैसे जैसे गप्पू ऊपर उठता गया उसे घर के आसपास की चीजें भी दिखने लगीं। पार्क, गुरुद्वारा, रेल की पटरी, मिठाई की दुकान और सुहासिनी का घर जिसकी छत पर बड़ी सी पानी की टंकी रखी थी। गप्पू बोला,
2: ये रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है, कहीं मोटी बिल्ली मोंटी तो नहीं? यहां से तो ये एक बड़े सफेद चूहे जैसी नजर आ रही है। ये गुरुद्वारा ही होगा, अमरजीत रोज यहीं जाता है। अरे यहां मिठाई की दुकान भी है, मुझे नहीं पता था। यम यम यम यमी, यम यम यमी।
1: पृष्ठ के अंतिम हिस्से में आसमान से लिया गया एक चित्र है जिसमें नीचे धरती पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं और साथ ही गप्पू को गुब्बारे की रस्सी पर लटका हुआ दिखाया गया है। पृष्ठ 54, सोचो तुम्हारी कक्षा ऊपर से कैसी लगती होगी, उसका चित्र बनाने की कोशिश करो और चित्र में बेंच, ब्लैक बोर्ड, दरवाजे, खिड़कियां आदि भी बनाओ। गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ता रहा और छोटा गप्पू हैरान होकर सोचता रहा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। अब उसे बहुत सारे घर दिख रहे थे, गलियां, सड़कें और गाड़ियां भी। गप्पू कहने लगा,
2: अरे क्या ये रेलगाड़ी है, यहां से तो एक लंबे बॉक्स जैसी लग रही है। यहां से ये कारें और बसें कितनी छोटी दिखती हैं। बिल्कुल खिलौनों की तरह, और आदमी चींटियों जैसे नजर आते हैं।
1: यहां पर एक दृश्य दिखाया गया है जहां रेलगाड़ी को चलते हुए और बहुत सारी बसें और कारें दिखाई गई हैं। अचानक एक जोर से आवाज हुई, फट, गुब्बारा फट गया और नीचे गिरने लगा, नीचे और नीचे। सभी चीजें बड़ी बड़ी नजर आने लगी। धप, गप्पू रेल की पटरी पर जा गिरा और वो डरावनी मोंटी से बचने के लिए भागा, जो गप्पू और दूसरे चूहों के पीछे पड़ी थी। जब गप्पू ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो वो कुछ ऐसी लग रही थी। यहां पर आसमान से लिया गया रेल की पटरी का चित्र है, पृष्ठ 55। लेकिन जब वो पटरी पर गिरा तो पटरी कुछ इस तरह दिख रही थी। यहां पर रेल की पटरी का चित्र बना है। रेल की पटरी आगे से चौड़ी और पीछे से संकरी दिखाई गई है। रेल की पटरी पर गप्पू और मोंटी का चित्र भी बना है। गप्पू बोला,
2: ओह, ऊपर से और सामने से देखने पर चीजें कितनी अलग दिखती हैं।
1: इन चित्रों को देखो और चर्चा करो कि चीजें क्यों एक सिरे पर चौड़ी और बड़ी दिखाई देती हैं, जबकि दूसरे सिरे पर संकरी और छोटी। यहां पर दो चित्र बने हैं। एक रेल की पटरी का है जो आगे से चौड़ी और बड़ी दिखाई दे रही है और पीछे से संकरी दिखाई दे रही है, और साथ ही मोमबत्ती की दो पंक्तियों का चित्र बना है जो आगे से चौड़ी और बड़ी हैं और पीछे से संकरी दिखाई गई हैं। एक आसन के दो चित्रों का मिलान करो। ऊपर से लिए इस चित्र में एक लड़की योग आसन में बैठी है। यहां पर एक लड़की का चित्र है जिसे ऊपर से योग आसन करते दिखाया गया है। नीचे दिए गए चित्रों में उसी योग आसन से केवल एक का ही मिलान किया जा सकता है। पहचान करो। यहां पर एक ही आसन की चार मुद्राओं को अलग अलग तरफ से दर्शाया गया है और आपको इन चारों चित्रों में से ऊपर से लिए गए चित्र से इसका सही मिलान करना है। पृष्ठ 56। इन चित्रों में कटोरों को दो अलग अलग तरह से दिखाया गया है। यहां पर दो चित्रों में तीन तीन कटोरों का चित्र है, चित्र एक और चित्र दो। कौन से चित्र में कटोरे पलट कर रखे गए हैं? रिक्त स्थान। जवाब खोजने के लिए चित्र तीन में देखो कटोरे साइड से कैसे लगते हैं। यहां पर चित्र तीन दिखाया गया है जिसमें तीन अलग अलग प्रकार के कटोरे रखे हैं। इन चित्रों की ऊपर से दिखने वाली आकृति और साइड से दिखने वाली आकृति का मिलान करो। एक नली और एक कुप्पी, यहां पर चार चित्र दर्शाए गए हैं। आपको इन दोनों से इनका सही मिलान करना है। एक जूते का एक तरफ से ऊपर से सामने से दिखने वाले चित्र बनाने की कोशिश करो। यहां पर एक खाली जगह है जहां पर आप जूते का चित्र बनाएं जो एक तरफ से ऊपर से और सामने से दिखे। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को यह सोचना और मालूम करना मजेदार होगा कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग कोणों से कैसी दिखती हैं। यह गतिविधि उनकी स्थान संबंधी समझ को विकसित करने में मदद करेगी। पृष्ठ 57। गप्पू के घर के पीछे का पार्क। क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है? यहां पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है। इसको ध्यान से देखो और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो। यहां पर एक चित्र है जिसमें गप्पू के घर के पीछे का पार्क दिखाया गया है और साथ ही गप्पू का घर भी बना है। ये चित्र ऊपर से लिया गया है। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ, ए, बी, सी या डी। कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है? अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो हरा बेंच
3: किस तरफ होगा, दाएं, बाएं या सामने।
1: जब सुहासनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसके दाएं तरफ थी। वो कौन से गेट से अंदर आई होगी? अगर तुम गेट सी से घुसो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा?
3: एक, बास्केटबॉल कोर्ट। दो, फूलों की क्यारी। तीन, हरा बेंच। और चार, सी सॉ झूला।
1: शिक्षकों के लिए निर्देश। छोटे बच्चे अक्सर बाएं, सामने आदि दिशा निर्देशों को निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मान लेते हैं। स्थान संबंधी समझ विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें यह अवगत कराया जाए कि दिशाएं अपनी स्थिति के सापेक्ष होती हैं। कोई वस्तु किसी के संदर्भ में बाईं ओर है, किसी और के संदर्भ में दाईं ओर हो सकती हैं। कक्षा में इस अवधारणा पर आधारित और भी क्रियाएं कराई जा सकती हैं।
3: पृष्ठ 58।
1: इस्माइल का घर। इस्माइल ने श्रीजाता को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया। रास्ते का नक्शा यहां पर दिया गया है। यहां पर एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर तक का जाने का मार्ग दिखाया गया है और बीच में पार्क और दूध की दुकान भी दिखाई गई है। साथ में एक पुल भी है। इस्माइल ने श्रीजाता को यह बताया,
2: अपने घर से दूध की दुकान तक पहुंचो और फिर बाएं मुड़ जाओ, दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ जाओ और पुल को पार करो, वहां से सीधे जाओ और फिर पहले दाएं मोड़ से मुड़ जाओ। लगभग 100 मीटर जाने के बाद तुम्हें एक बड़ा पार्क दिखाई देगा। जैसे ही पार्क को पार करोगी तुम्हें बराबर में एक छोटी गली दिखाई देगी। उस गली का पहला घर ही मेरा है।
1: क्या इस्माइल कुछ गलत बता गया? क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? वो रास्ता दिखाओ। यदि श्रीजाता इस्माइल के बताए रास्ते पर चलती तो वो कहां पहुंचती? अब इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए रास्ता बताओ।
3: पृष्ठ 59।
1: गिबली और बड़ा बक्सा। क्या तुम्हें कक्षा 3 की किताब गणित का जादू में गिबली नाम की चींटी याद है? गिबली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा बक्सा देखा। वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। गिबली उसके सामने से गई और बाएं मुड़ गई। अब वो उस बड़े बक्से की दूसरी सतह देख सकती थी। यहां पर एक ही बक्से के 3 चित्र बने हैं जिसमें बक्से की अलग अलग सतह को दर्शाया गया है। पहले बक्से में 4 लिखा है और उस पर गिबली दिखाई गई है। दूसरे बक्से में 5 लिखा है और वहां भी गिबली दिखाई गई है। अर्थात गिबली एक तरफ से दूसरी तरफ आगे बढ़ती दिखाई गई है। और बक्से के तीसरे चित्र में सबसे ऊपर की सतह पर 1 लिखा हुआ दिखाया गया है और सामने 4 और दाहिनी तरफ 5 लिखा हुआ है। गिबली को कुछ समझ नहीं आया। यह बक्सा क्या था? वो एक कप पर चढ़ गई और वहां से देखने लगी। बक्सा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। क्या तुम सोच सकते हो कि वो बक्से जैसी चीज क्या थी? इस बक्से की आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्याओं का जोड़ हमेशा 7 होता है। अब तुम इन प्रश्नों के उत्तर दो। संख्या 5 के आमने सामने कौन सी संख्या होगी? चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या लिखी होगी? अगर गिबली एक बार फिर 5 से बाईं तरफ मुड़े तो उसे कौन सी संख्या दिखेगी? क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम इस बक्से को खोल दो तो वो कैसा लगेगा? सही चित्र पर निशान लगाओ। यहां पर 4 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है क। यहां पर 2 पट्टियां बनी हैं, एक खड़ी पट्टी और एक लेटी पट्टी। खड़ी पट्टी पर नीचे से ऊपर की तरफ 6, 4, 1 और 3 लिखा है और लेटी पट्टी पर बाएं से दाईं तरफ 2, 1 और 5 अंकित है। पट्टी नंबर ख में खड़ी पट्टी में नीचे से ऊपर 2, 4, 1 और 3 और लेटी पट्टी में बाएं से दाएं 6, 1 और 5 अंकित है। पट्टी ग में नीचे से ऊपर 3, 5, 1 और 4 लिखा है और लेटी पट्टी में बाएं से दाएं 2, 1 और 6 अंकित है। और पट्टी घ में नीचे से ऊपर 4, 6, 1 और 3 लिखा है और लेटी पट्टी में बाएं से दाईं तरफ 2, 1 और 5 अंकित है। अब आपको इन चारों पट्टियों को देखकर ऊपर दिए गए बक्से से सही मिलान करना है कि ऊपर दिए गए बक्से वाली सही पट्टी क, ख, ग और घ में से कौन सी है। पता लगाओ। इस तरह की आकृति एक मोटे कागज पर बनाओ, उसे काटो और उसकी अलग अलग सतहों पर अलग अलग रंग भरो। क्या तुम इस बक्से का प्रयोग कोई खेल खेलने के लिए कर सकते हो? इसी के साथ पांचवां पाठ दुनिया कुछ ऐसी दिखती है अब यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम है इतना इंटरेस्टिंग कि आप भी सुनेंगे तो अपने बचपन में चले जाएंगे, और जो बच्चे हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आएगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स ही आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम ही है बच्चों की दुनिया। तो हमारे साथ सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले पूछ लेते हैं कि स्टूडियो में कौन कौन है। तो आप लोग एक एक करके आपका नाम और आपकी क्लास बता दीजिए हमारे सुनने वाले दोस्तों को।
2: मेरा नाम दीपक है, मैं प्लस वन क्लास में पढ़ता हूँ।
3: मेरा नाम अनमोल है, मैं सेवन क्लास में पढ़ता हूँ।
4: मेरा नाम विवेक है, मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता हूँ।
5: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास फाइव में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास सिक्स में पढ़ता हूँ।
7: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास सेवन्थ में पढ़ती हूँ।
8: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास टेंथ में हूँ।
9: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास एट में हूँ।
1: ओके, तो हमारे साथ में छोटे बच्चे भी हैं और थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन हैं तो सभी बच्चे। अब बहुत सारी बातें अलग अलग टॉपिक्स पे हम करते हैं, तो आज कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिस पे हम बात करेंगे। तो अच्छा, आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है, कोई भी बता सकते?
6: रेड।
1: ओके।
6: ब्लू।
10: ब्लैक।
1: ओके।
11: पिंक।
12: सोचना पड़ेगा।
1: ठीक है, ओके। कोई किसी किसी का बहुत सारे फेवरेट्स होते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाता है ना। आप लोग का कौन सा है?
8: दीदी सारे ही अच्छे हैं,
1: कोई फेवरेट नहीं है?
8: पिंक।
1: पिंक, ओके।
13: दीदी मुझे ब्लैक के अलावा सारे कलर पसंद है।
1: ब्लैक के अलावा सारे पसंद है,
14: ब्लू और पिंक।
1: ओके, अच्छा लड़कों को पिंक कलर नहीं पसंद होता क्या? नहीं पसंद होता?
15: नहीं।
1: किसी को भी नहीं होता?
15: नहीं।
1: क्यों, पिंक अच्छा नहीं होता?
16: थोड़ा
1: सा गर्लिश लगता है ना। राघव को क्या लगता है? राघव तो पिंक भी पहने आज।
17: नहीं, वो पिंक नहीं है।
1: पिंक नहीं है,
18: मजेंटा है ना।
1: कौन सा कलर है फिर ये?
17: वो पता नहीं,
18: पिंक
17: तो वो होता है मेरा, थोड़ा डार्क उससे।
1: अच्छा,
18: तो थोड़ा पिंक ना,
1: पर्पल जैसा है। पिंक नहीं है, पिंक नहीं पहन सकते क्या लड़के?
17: नहीं।
1: नहीं, क्यों?
8: पहनते हैं दीदी,
1: पहनते हैं।
17: हम पहनते
6: हैं
17: ना,
6: पहनते हैं, लेकिन
1: हम नहीं पहनते। आप
14: नहीं पहनते? दीदी मेरी क्लास में एक लड़का, उसको पसंद है पिंक कलर।
1: किसी किसी को मतलब हो सकता है पसंद, पर ज्यादातर लड़कों को नहीं होता?
17: नहीं।
1: ओके, अगर पिंक पहनेंगे तो क्या चिढ़ाएंगे सब लोग?
6: यस
17: यस।
1: कौन चिढ़ाएगा?
17: दोस्त।
1: क्या बोलते हैं?
14: सबसे पहले दोस्त ही चिढ़ाएंगे, लड़कियों जैसे कपड़े पहने, लड़की हो गया,
6: छपरी बोलेंगे।
1: अच्छा ओके, और क्या बोलते हैं, मतलब चिढ़ाते हैं किसी को? नहीं,
17: नहीं तो चिढ़ाएंगे क्यों,
1: पहनता ही नहीं हूँ। ओके, आपकी क्लास में जो लड़का पिंक पसंद है उसे कोई कुछ बोलता है?
14: नहीं, कोई नहीं बोलता, सब इक्वल ही है हमारी क्लास में।
1: कोई नहीं बोलता?
14: नहीं, लड़कियों को भी ब्लू पसंद होता है, लड़कों को भी पिंक पसंद होता है।
1: ओके, तो लड़कियाँ ब्लू पहन सकती हैं क्या?
17: यस,
14: पहन सकती हैं।
1: मतलब लड़कियाँ सब कलर पहन सकती हैं, बट लड़के नहीं पहन सकते सारे कलर?
6: लड़की को तो अच्छा लगता है।
1: हाँ, लेकिन लड़कों पे क्यों नहीं अच्छा लगता फिर सब कुछ?
14: अच्छा तो लगता है, लेकिन
6: दोस्त मजाक नहीं उड़ाते ना।
1: अच्छा, दोस्त मजाक उड़ाते, अगर दोस्त मजाक ना उड़ाए तो
14: फिर पहनेंगे,
6: फिर पहन सकते
14: तो अच्छा है,
1: फिर पहन सकते हैं ना। डिफरेंस तो नहीं है ना, कलर तो सबके ही होते हैं। ओके ठीक है, तो अच्छा आप लोग को क्या लगता है कि जब बाहर के काम करने होते हैं ज्यादातर, जैसे बैंक का काम, अच्छा बैंक के बारे में किसी को पता है, किसी को नॉलेज है बैंक के काम कैसे करते हैं?
14: मुझे
1: है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा, आपको पता है कुछ? नहीं भी पता है तो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बच्चे हो आप लोग,
14: है ना? थोड़ा बहुत पता है,
1: थोड़ा बहुत पता है। आप लोगों को
13: बैंक में पैसे नहीं,
1: ये पता है? हाँ ठीक है, बिल्कुल।
13: लॉकर्स होते हैं,
6: लॉकर्स होते हैं, उनमें वैसे देखा जाओ तो जनरल होते हैं और क्लर्क होते हैं, जिसमें हम उनके पास जाते हैं और लॉकर्स के वैसे जैसे हम पैसे निकालने हो उनके पास जाते हैं, फिर उसमें काफी तरह के चेक्स होते हैं, 7 तरह के चेक्स होते हैं ज्यादातर।
1: ओके,
14: अगर हमको कैश एक्सचेंज कराना हो वो भी बैंक में होता है, कैश एक्सचेंज हो जाता है
6: वहाँ पे, कैश वो फटे नोट होते हैं उनको हम एक्सचेंज करा सकते हैं उनसे पास।
1: ओके ठीक है, और आप लोगों को कुछ पता है बैंक के बारे में कुछ?
14: दीदी मुझे एटीएम से पैसे निकालने आते हैं और दूसरों को भी निकाल के देती हूँ जिनको जरूरत होती है।
1: वेरी गुड,
14: तो मुझे भी आते हैं।
1: आपको भी आते हैं?
4: जब समर वेकेशन और विंटर वेकेशन होती है मैं तब चंडीगढ़ जाता हूँ अपने मामू के पास। मामू मेरे बैंक में जॉब करते हैं इसलिए उनके साथ जाता हूँ मैं बैंक में कभी कभी।
1: ओके अच्छा तो आपको क्या लगता है बैंक के काम करना लड़कों का काम होता है कि लड़कियों का काम होता है?
4: नहीं जैसे वहाँ पे तो दोनों होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं लड़के भी होते हैं,
1: दोनों का
4: दोनों का
1: कोई डिफरेंस नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को?
9: दोनों दोनों कर सकते
18: दोनों
1: पर दोनों करते हैं क्या? बराबर है।
8: पहले के टाइम पे होता था कि हाँ लड़कियाँ बाहर काम करने निकलेंगे पर अब तो सारी इक्वल है।
4: अब तो लड़कियाँ क्रिकेट भी खेलते हैं।
1: लड़कियाँ क्रिकेट भी खेलती हैं अभी तो।
4: पहले सोचा जाता था क्रिकेट सिर्फ लड़कों का गेम है, अगर इनके चोट लग जाएगी लड़कियों के तो ज्यादा लगेगी, ज्यादा चोट लगेगी। अभी तो ज्यादा लड़कियाँ भी खेलती हैं क्रिकेट।
1: आपको क्या लगता है?
10: दोनों ही बराबर है,
4: जबकि आरसीबी को सबसे पहले गर्ल्स टीम ने आईपीएल ट्रॉफी जिताई है।
1: लड़कियों की टीम पहले जीती है
6: और जो कि हमारी इंडिया टीम है लड़कियों की उन्होंने भी हमारे देश के लिए पहले ही ट्रॉफी खेली है।
1: पहले खेली है बात तो सही है। आप लोग को क्या लगता है भाई आप लोग सीखोगे बैंक के काम करना कि नहीं सीखोगे बड़े होके?
8: सीखेंगे दीदी।
1: सीखोगे करोगे? बोरिंग तो नहीं लगेगा वहाँ जाके सब ऐसे?
4: मुझे तो खुद कॉमर्स करनी है, मुझे आई एम इंटरेस्टेड।
1: और आप लोग लड़कियों को क्या लगता है? इंटरेस्टेड है, बोरिंग तो नहीं लगता?
9: नहीं।
1: ओके अच्छा खाना बनाना किस किस को आता है यहाँ पे?
4: मुझे आता है।
6: सबको आता है?
1: सबको आता है,
4: सबको आता है।
1: अरे बाप रे
6: कुछ भी करा सकती हूँ
8: दीदी। मेरे को बनाना तो आता पर खाना पसंद है।
1: खाना ज्यादा पसंद है? अच्छा ओके
9: खाना खाना और बनाना दोनों ही पसंद है।
1: अच्छा सबसे अच्छा आप लोग क्या बनाते हो एक एक चीज बताओ?
10: मैगी।
1: ओके
4: सबसे अच्छा पास्ता या फिर सैंडविच बना लेता
1: हूँ। ओके वाह
6: मैं सबसे अच्छा पनीर।
1: अच्छा आप
9: तो, पास्ता।
1: ओके मैगी पास्ता और
9: सब्जी कोई भी तरह की सब्जी
1: कोई भी सब्जी
8: सैंडविच
9: कल हमको पनीर टिक्का खिलाना फिर।
1: ओके अच्छा जैसे आप लोग बड़े होके अच्छा क्या बनना चाहते हो?
10: बैंक मैनेजर।
1: बैंक मैनेजर ओके।
6: क्रिकेटर।
1: क्रिकेटर दैट्स ग्रेट। बैंक मैनेजर भी बहुत अच्छा है।
4: मैं भी बैंक में जॉब करना चाहता हूँ।
1: क्यों बैंक में करना चाहते हो?
4: क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बैंक में जाना। मैं अपने मामू के साथ जाता हूँ उनकी जॉब देखता हूँ मुझे बहुत पसंद है।
1: ग्रेट।
9: डॉक्टर।
10: बड़े होके सोचूंगा अभी टेंशन क्यों लेनी है।
1: ओके ठीक है।
9: डॉक्टर।
8: आईपीएस ऑफिसर।
9: आईएएस।
1: ओके तो आपको लगता है ऐसा कोई काम है जैसे बॉक्सिंग या ऐसा कोई काम लगता है जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं?
4: नहीं, नहीं, नहीं। लड़कियां भी बॉक्सिंग करती है। हरियाणा की काफी लड़कियां जो बॉक्सर हैं
1: करती है ना।
4: रेसलिंग करती है। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल दिया उन्होंने अपने देश को।
6: हमारे रनिंग भी करती लड़की।
9: और दीदी अगर बॉक्सिंग के मैदान में नहीं जाना हो तो घर पे भी वो तकियों से बॉक्सिंग कर सकती
4: दीदी। तकियों से या फिर अपने छोटे भाई से बॉक्सिंग कर सकती है।
8: बॉक्सिंग तो दीदी भाई बहनों के साथ होती है।
1: भाई बहनों बॉक्सिंग करते हैं एक दूसरे के साथ?
4: मेरी छोटी बहन है वो मुझे मारती है।
1: छोटी बहन मारती है?
4: मेरी छोटी बहन है वो मुझे मारती है। अभी तक वो सिर्फ 5 साल की होगी।
1: हाँ
4: मेरे को मारती है वो बहुत।
10: मेरी बहन जब पिटाई करती है वो बहुत फिरती है मुझे।
1: आपको मारती है? वो भी छोटी है?
10: हाँ जी।
1: अच्छा
8: राघव और मेरी बहुत अजीबो तरीके से लड़ाई होती है। मतलब कोई बात नहीं हो गई तो भी हाँ आजा लड़ ले आजा।
4: जब होती है ना इतनी वाहियात लड़ाई होती है ना फिर जो उसके हाथ में पिल्लो आ गया वो पिल्लो मार देगी मेरे मुक्का मार देगी कुछ भी कर देगी।
1: फिर आप नहीं करते कुछ?
4: वो छोटी है उसको मैं इसलिए नहीं कुछ कहता ना।
1: छोटी 5 साल की है ना बहुत छोटी।
4: अभी तो बहुत छोटी। मैं तो वेट कर रहा हूँ थोड़ा बड़ी हो जाए फिर देखेंगे।
1: अच्छा फिर बराबरी से मुकाबला होगा?
6: मेरे तो बस चांटी पड़ती है।
1: चांटी पड़ती है?
4: ये अपनी बहन को फिरता चांटी चांटी।
1: बहन बड़ी है कि छोटी है?
4: बड़ी है।
1: अच्छा
6: ये की मैंने हमारे
4: हर घर में ऐसा होता है अगर कोई छोटा हो तो वो अपने से बड़ों को पीटता है। अब मेरी छोटी बहन है वो मुझे पीटती है हम उसको यही सोच के छोड़ते हैं कि अभी वो छोटी है। ये छोटा है ये अपनी बहन को मारेगा तो वो भी यही सोचती है कि
1: ये छोटा है अभी। और राघव? राघव तो छोटा है घर में।
10: दीदी मेरे को तो कोई नहीं सोचता।
8: दीदी हमारे घर में सब इक्वालिटी है। उसको मार पड़ेगी तो मेरे को भी पड़ेगी उसको डांट पड़ेगी तो मुझे।
4: हाँ ये बात सही है शरारत चाहे कोई भी करे लेकिन मार दोनों को पड़ेगी।
1: दोनों को पड़ती है
8: थोड़ी सी ज्यादा
6: बराबर है। मेरे

0: ना होता है, रोज सब कुछ होना होता है, रोज खाना कौन बनाएगा, क्या लगता है?
1: मैं दीदी मैं
0: ओके
1: मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी बना लूंगा, मेरी मम्मा भी बना लेंगे क्या, कोई
0: बना दोगी?
1: वैसे मेरे मम्मा मुझे ऐसे बनाने नहीं देंगे।
0: नहीं मम्मा बना देंगे। और मान लो मम्मा के लिए आपको बनाना हो तो
1: फिर मैं बना दूंगा, मुझे नो प्रॉब्लम।
0: रोज
1: यस
2: मैं तो बाहर से ही ऑर्डर करूंगा।
0: बाहर से ऑर्डर करोगे?
3: के लिए जो बने होते हैं वो भी देते। बर्तन
0: बर्तन भी करते हो?
1: हम तो कर देते हैं, हमारे मम्मा कभी बीमार होते हैं हम फिर भी घर का काम कर देते हैं,
0: सफाई झाड़ू सब
1: सब झाड़ू सफाई डस्टिंग सब।
2: मम्मा अगर कहीं वॉकिंग करने भी गए हो ना, फिर भी जब मैं घर पे होता हूँ तब सफाई सफाई कर देता हूँ।
0: अरे वाह। और आप लोग?
4: दीदी ये बात राघव को भी सीखनी चाहिए, कुछ भी नहीं करता।
0: कुछ नहीं करता, कुछ तो करता
1: हूँ, करता हूँ, देखते नहीं तो मेरी क्या गलती।
0: चुपके से कर देता है राघव, है ना?
4: चुपके से भी ऐसा करता है कि बाद में कोई काम करने लायक ही नहीं।
1: दीदी झूठ बोल रही है।
0: अच्छा आप लोग?
1: दीदी सच बोल रही है।
0: क्या आप लोग घर का काम करते हो?
1: हाँ अभी भी करते हो और आगे भी जाके करेंगे।
0: रोज करोगे?
1: हाँ।
0: ओके
5: दीदी मैं भी रोज घर का काम करूंगी और खाना भी बनाऊंगी अलग अलग।
2: दीदी ये बात शिवांशी को सिखा दो। दीदी जब भी बर्तन धोने जाएगी टीवी इधर से दिखाने सुनूंगी, फिर मैं सिर पे ऐसे खड़ी रहेगी अगर मैं नहीं दूँ, फिर छीन के अंदर चली जाएगी, फिर अंदर से गेट भी बंद कर देगी, मैं अंदर आके ले भी नहीं सकता।
4: पाँच मिनट तक रुकते होते हैं, हाँ, अगर सामने वाला दे रहा है तो ले लेंगे, नहीं तो
2: दीदी मुझे को 5 मिनट का नाम बोल के 1 घंटा पूरा गाना सुनती है।
0: अच्छा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ भी आपको ना बड़ी याद आएंगी, पता है बड़े हो जाओगे तो। अभी अच्छा ये बताओ, कभी किसी ने आपको ऐसा कहा है या आपने किसी को कहा है या सुना है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हैं?
1: नहीं हम ऐसे करते ही नहीं है, रोते ही नहीं कभी।
0: कभी नहीं रोते?
2: नहीं।
0: क्या बात कर रहे हो?
2: किसी आपको कल की बात बताता हूँ।
1: कल ना कल की बात बहुत इंटरेस्टिंग है।
2: डायमंड हॉल के पीछे गेम चल रही थी, तो उधर बड़े बच्चे भी थे छोटे बच्चे भी थे, तो उधर मैं जब हम गए तब कोई भी नहीं था, 5 बजे बुलाया था और 5 बजे पहुंच गए थे, कोई नहीं था, ये दोनों मेरे साथ थे, तो फिर इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो फिर एक्चुअली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी, तो वो रनिंग करवा रहे थे, फिर मैंने उनको बोला मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, फिर मैंने इनको ढूंढा, फिर ये नहीं मिले, फिर मैं उधर मोहिनी वन में चले गया रूम में, उधर देखा उधर भी कोई नहीं, फिर मैं फिर से आया इधर, फिर देखा तो फिर वो गेम खिला रहे थे, फिर मैं चले गया, फिर मैं गेम खेला 8 बजे आया, फिर पता क्या हुआ, फिर मैंने रोते रोते पूरा घूमा, कोई दिखाई नहीं मुझे, फिर बच्चों ने बोला कि जहाँ पर आपका रूम है उधर चले जाओ, उधर वो अपने आप आ जाएंगे, और ये लोग बॉलीवुड स्टूडियो में गए घूम रहे थे, और फिर
1: ये बेचारा रो रहा था घर पे।
0: हाँ आप लोग मिल नहीं रहे थे ना उसको कितनी देर तक?
1: इसने हमको बताया मैं 3 बार अपने रूम में गया रोता रहता।
2: मुझे ना 2 नंबर याद थे, मम्मा का और पापा का, जो पापा का नंबर था वो 2-3 पहले ही चेंज हो गया था, और मम्मा का परसों फोन टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे कोई अब चांस भी नहीं था जिससे मैं फोन कर सकूं।
0: तब तो बड़ी मुश्किल हो गई, काफी देर लग गई ना। फिर कैसे मिले ये लोग? मिल गए थे?
2: मैं रूम में चले, फिर मैं नीचे रिसेप्शन पे बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद, फिर पहले तो मैंने बहुत देखा नहीं आया, फिर मैंने बोला शिव बाबा आप ही मिला दो मुझे, 5-6 मिनट के बाद मासी आ गए।
0: अरे वाह चलो फिर आप चुप हो गए ना। फिर
1: हम कल वहाँ पे बाबा की मूवी भी आधी छोड़ के आए, इसी के चक्कर में कहीं रो ना रहा हो घर पे। हमें दीदी ने बोला कि देख लेते हैं मूवी, नहीं रोएगा वो बड़ा है, घर आके पता चला ये तो फूट फूट के रो रहा था।
0: हाँ, वो मिल नहीं रहा था ना, नंबर भी नहीं था उसके पास।
3: नंबर पर उसको जाते हैं,
1: रूम तो हमारा खुला था सारा,
2: मुझे ये टेंशन पड़ी हुई थी कि फिर ये लोग इतनी लेट आएंगे तब तक।
0: होता है कभी कभी होता है भाई, अकेले छूट जाते हैं तो होता है,
2: घूमते रहेंगे उधर ढूंढते रहेंगे आएंगे नहीं रूम में, फिर
0: हो जाता है भाई, अकेले हो जाते हैं तब तो होता है। तो अच्छा कौन कौन यहाँ पे रोता है कभी कभी, जैसे तो उसने तो अपना बताया,
1: मैं कौन कौन जब जाता था छोटा होता बहुत रोया,
0: अभी नहीं रोते?
1: अभी नहीं रोते।
0: आप लोग?
6: मेरा भाई मुझे अगर मारता है तब मैं रोती भी हूँ और उसको मारती भी हूँ।
7: मेरा भाई मेरे को जोर से मारता है, अगर मैं रो जाती हूँ तो फिर बाद में मेरे को इतना गुस्सा आता है उसको भी रुला देती हूँ मैं।
2: मुझे अगर कोई भी मारता है मैं रोता नहीं हूँ, मतलब रोना आता ही नहीं है
1: इसको, मारने पर रोना नहीं आता, वैसे ही रो पड़ता है बिना बात के।
0: मारने पे नहीं आता, किसी और बात पे, सबको अलग अलग बात पे आता है ना, है ना?
1: का अलग नहीं।
0: राघव रोता है कि नहीं रोता राघव? कभी
3: एक बार हुआ।
0: बताओ सच सच बताओ, है
2: कभी कभी
0: कभी कभी है ना, किस बात पे रोते हो
2: दीदी? मेरी इधर

0: की हड्डी में इतनी जोर से लांग मारी, अब बोलो मेरे को इतना दर्द हुआ, मेरी कमर पूरी एक दिन के लिए ऐसे हो गई थी।
1: ओहो, और शिवांशी को रोना आता है?
2: दीदी वैसे तो जब लगभग लड़ाई होती सब तो रोने के बजाय हंसना।
0: दीदी झूठ बोल रही है, बाथरूम में जाके रोती है, आधे घंटे में आ जाती है।
1: अच्छा वो बता रही, कोई बात उसको बता।
2: कई बार जैसे कोई ज्यादा ही चोट लग जाए कि हाँ खेलते खेलते तब थोड़ा रोना आता।
3: दीदी ये तो बात बात पर भी रोने की एक्टिंग करती
1: आपको?
3: और दीदी मैं तो भैया के साथ खेलती हूँ तो भैया ही एक्टिंग करते हैं रोने की।
4: मैं भी एक बार
1: रोए थे
4: 2023 में, इंडिया का मैच था, वर्ल्ड कप था,
1: हार गया था ना फाइनल में, बहुत लोग रोए थे उस दिन तो।
5: मैं ऐसे गेम के पीछे कभी नहीं रोया,
1: गेम के पीछे
5: वो हमारे देश का लक है,
1: मतलब
5: बैड लक होता है कभी गुड।
4: क्या चक्कर है उसको मालूम है, जिसने कुछ ऐसा करना हो तो उसके तो दिल में बीतती है ना, इसलिए
1: पता चलता है। लेकिन मतलब किसी ने कभी ऐसे नहीं बोला ना कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, या ऐसा लगता है आपको लड़कों को रोना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता लड़के रोते हैं, ऐसा है कि रो सकते हैं?
0: रो सकते हैं,
1: रो सकते हैं,
4: दर्द होता है वो।
0: अभी ये लोग भी मुझे कल से चढ़ा रहे हैं, रो रहा था इतना बड़ा हो गया, रो रहा था
1: तो क्या हुआ, रो सकते हैं ना, बड़े बड़े लोग नहीं रो सकते
5: भाई, तो अभी रो ले चाहे कोई बात नहीं,
1: है नहीं, बड़े लोग रो सकते कि नहीं रो सकते?
0: दीदी मम्मी पापा रो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रो सकते?
1: हाँ, कोई भी रो सकता है,
4: पापा भी रोते
0: हैं, रोते हैं ना,
4: कब रोते हैं,
1: कभी कभी बुरा लगता है तो
0: रोते हैं,
4: झगड़ा हो जाता है तब,
1: कभी कभी उनको बुरा लग सकता है।
5: दादी की डेथ हुई थी, फिर मैंने अपने पापा को फर्स्ट टाइम रोते देखा था, उसके बाद कभी
0: रोते ही नहीं। मम्मा तो जब हमसे गुस्सा होते हैं ना, मतलब जब हम बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे मम्मा तब रोते हैं, और पापा को भी जब दादी की डेथ हुई थी तभी रोते हुए देखा था।
1: पापा को कभी और उसके अलावा रोते नहीं देखा?
0: नहीं,
1: कभी भी नहीं। आप लोगों ने, आपने
4: देखा भैया की डेथ हुई थी
1: तब, जब बहुत कोई बड़ी घटना ऐसे होती है,
0: ऐसे रोते
1: पापा को रोते हुए देखा है किसी ने?
4: नहीं दीदी,
1: कभी भी नहीं,
0: नहीं
1: कभी भी नहीं।
0: तो हाथ को उठा रही है जब नहीं,
5: अरे मुझे कुछ और
1: नहीं देखा भी बोल सकते हैं ना कि नहीं देखा।
2: मेरे पापा को तो मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है, कैसी बात पे भी हंसते रहेंगे।
1: ओके,
5: मेरी मम्मी तो रोए पूरे दिन घर में, अगर शाम को आते हैं ड्यूटी से तो सबको हंसाते हैं,
1: हंसते रहते हैं। आप क्या बोल रहे हो?
3: मेरी मम्मी तो रोती नहीं है पर एक लगा देती है, शांत हो जाते हैं,
1: शांत हो जाते हैं मम्मी। अच्छा पापा की बात कर रहे हैं, पापा को रोते देखा है?
3: नहीं पापा तो नहीं, पापा तो और ही प्यार करते हैं,
1: कभी रोते नहीं है पापा ना।
3: दीदी पापा रोने की एक्टिंग करते ताकि हम लोग उनको परेशान ना करें।
1: ओके,
3: असलियत में नहीं रोते,
1: असलियत में नहीं रोते। राघव
6: नहीं रोता।
1: तो क्या लगता है पापा लोग क्यों नहीं रोते, कभी उनको बुरा नहीं लगता किसी चीज का, कि वो क्यों नहीं रोते कभी?
4: नहीं लगता है,
0: बुरा स्ट्रॉन्ग होता है,
4: दिल स्ट्रॉन्ग होता है उनका,
1: दिल स्ट्रॉन्ग होता है। ओके,
5: क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कई ऐसी मुसीबतें जो होती है छोटी मोटी एक्सपीरियंस करी होती है बचपन से लेके बड़े होने तक, जब ऐसे कभी अपने माँ बाप के साथ उन्होंने ऐसी मुसीबतें जो एक्सपीरियंस करी होती है, जब माँ बाप की डेथ होती है फिर तो वो रोते हैं ना,
4: उनका इमोशनल उनका एक्सपीरियंस बन जाता है।
1: ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है पापा लोग क्यों नहीं रोते?
3: मेरी मम्मी तो बहुत नाटक करती है रोने का,
1: एक्टिंग करते हैं रोने का, रोती थी लेकिन रियल में।
2: दीदी पिछले जन्म में एक्टर होंगे।
1: अच्छा मम्मी को रोते देखा है किसी ने?
0: हाँ जी
5: बहुत बार।
1: नहीं
3: मम्मी तो ऐसे नाटक करती है, असलियत में नहीं रोती।
2: नहीं मम्मी को तो नहीं देखा,
5: मम्मी तो कभी नहीं रोती।
3: मेरी मम्मी रोती तो है नाटक में, मेरे को पता चल जाता है क्योंकि आंसू तो नहीं निकलते।
1: अच्छा बिना आंसू के भी तो रो सकते हैं?
3: नहीं दीदी पानी लगा देते हैं यहाँ पे और बोलते हैं मैं तो रो रही हूँ।
1: ऐसा ऐसा क्यों? लेकिन
3: हम चुप होने के।
1: हाँ ये चक्कर
5: है, दीदी बताया ना शिवांशी ने पिछले जन्म में एक्टर होंगे।
1: और आप लोगों ने देखा है मम्मी को रोते हुए?
5: नहीं मैंने नहीं देखा।
4: कभी कभी झगड़ा हो जाए तो थोड़े रो लेते हैं,
1: रो लेते हैं।
4: पापा तो खुशी रहते हैं, मम्मी है बस,
1: मम्मी कभी कभी कभी कभी
4: वो भी साल में एक दो बार
1: रोते, ज्यादा नहीं ना। अच्छा मम्मी को रोते हुए देखना ज्यादा अजीब लगता है कि पापा को रोते हुए?
0: पापा को,
4: मम्मा को,
0: मम्मा अलग अलग स्टाइल से रोते
1: हैं, अलग अलग
4: कभी
5: अजीब नहीं लगता, खुद को ऐसे बुरा लगता है कि हमारे पापा रो रहे हैं।
1: हाँ मतलब किसको देख के ज्यादा बुरा लगता है, मम्मी को,
0: पापा को,
4: पापा को, मम्मा को?
1: किसको रोता देख ज्यादा बुरा लगेगा अगर मान लो मम्मी या पापा?
0: पापा तो रोएंगे ही नहीं, तो फिर
1: बुरा कैसे लगे? बुरा कैसे
5: लगे? ऐसा लगता है जब हम रोते हैं हमें पापा चुप कराते हैं, पापा रोएंगे तो उनको हम ही चुप कराएंगे।
0: पापा रोती नहीं है, चुप कब करवाओगे?
1: हाँ रोते ही नहीं है ना, लेकिन रोएंगे अगर अगर चुप करा सकते हैं हम बच्चे को, नहीं रोए तो भी अच्छा है, रोए तो भी कोई बुरी बात नहीं है रोने से, तो है ना। आप लोगों को किसको देख के ज्यादा बुरा लगेगा, मम्मी को या पापा को रोते हुए देख?
5: कोई रोता ही नहीं है।
2: गाली वाली रहे।
1: ये भी अच्छी बात है, रोना भी अच्छी बात है, नहीं रोना भी अच्छी बात है, है ना। कभी हर्ट तो सबको होता है, कभी ना कभी कुछ बुरा सबको लग सकता है।
0: दीदी मैं रोता फिर भी नहीं हूँ।
1: रोते फिर भी नहीं हूँ, क्यों नहीं रोते?
0: पता नहीं,
1: पता नहीं। चलो ठीक है, तो मतलब हमेशा खुश रहता राघव, है ना? लग रहा है। ओके अच्छा, तो आप लोगों ने बताया कि सब इक्वालिटी है अभी तो, है ना। तो कोई मतलब लड़कों को रोने के लिए या किसी भी चीज के लिए चिढ़ाया तो नहीं जाता ना?
5: नहीं
1: कभी नहीं है, कभी
5: चिढ़ाया जाता है। जैसे अब ये रोने लग गया था, इसको हम कल से चिढ़ा रहे हैं कि एक बार फिर से रो दे चिढ़के।
1: वो तो दोस्तों को थोड़ा थोड़ा ऐसे मस्ती करते हैं ना। हाँ
0: दीदी, रिवांशी ने जब मैं छोटा था तो मेरी शर्ट में कॉकरोच डाल दिया था।
1: कॉकरोच डाल दिया था? अरे बाप रे। ओके अच्छा, क्या लगता है आपको लड़के ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं?
0: दीदी मैं बस एक साल का था।
1: ओहो, तो आपको तो कैसे याद है फिर?
0: मम्मी ने बताया था।
5: ये बात झूठ लग रही है,
0: मम्मी ने बताया था।
2: दीदी
0: झूठ ये बोल रही है, मम्मी ने मेरे को बताया था।
1: अच्छा अभी तो नहीं डालती ना कॉकरोच, है ना? अभी नहीं डालती शिवांशी
4: कॉकरोच तो। क्यों
5: मेरी
0: दीदी फिर ना ऐसे कॉकरोच कॉकरोच शर्ट के अंदर हाथ डाल देती है,
1: लेकिन ऐसे रियल में नहीं होता ना। क्या बोल रहे हो?
5: मेरी मम्मी जी, मैंने एक दिन उनको देख लिया था ऐसे रो रही थी, मैंने देख लिया था ऐसे हाथ खोल के देख लिया था, मेरे देख रही थी।
1: हाँ
5: मैंने देख लिया था, नाटक कर रही थी।
1: आपने देख लिया तो फिर चुप हो गई मम्मी?
5: नहीं फिर नाटक करने लगी, और मैंने बोतल में छेदा तो वो ये पानी गिरा दिया, बोला लो अब रो।
1: अच्छा मतलब आपको चुप कराने के लिए?
5: सच में लगा रो रही है।
1: सच में लगा रो रही है। कभी कभी सच में रोते हैं, कभी कभी कुछ बुरा लग जाता है तो होता है, बड़े लोगों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता।
5: पर हमारे सामने तो आज तक सच में नहीं रोए।
1: कभी कभी बच्चों के सामने नहीं रोते हैं, और कभी कभी नहीं भी रोते हैं ना, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं सब लोग अपने दुख। कोई हर कोई रो के नहीं करता, हर कोई बिना रोए नहीं करता, सबके अपने अपने तरीके हैं। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है, लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती हैं?
0: तो आप मम्मा पापा को ही देख के देख लो, पापा नहीं रोते मम्मा रोते हैं, इधर से ही देख लो कौन स्ट्रांग होता है ज्यादा।
1: ओके और आप लोग क्या लगता है?
5: उनके हार्ट स्ट्रांग होते हैं पापा के, लेकिन लड़कियां भी किसी से कम थोड़े हैं आजकल,
1: लेकिन हार्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना पापा लोग के। ओके गर्ल्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं?
5: नहीं बॉयज
1: ज्यादा स्ट्रांग होते हैं।
5: नहीं दीदी गर्ल्स ही होते स्ट्रांग,
0: गर्ल्स होती
1: है। क्यों, लेकिन आप लोग को क्यों लगता है बॉयज ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और आप लोग को क्यों लगता है कि गर्ल्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं?
4: जो गर्ल्स होते हैं वो बात पर जल्दी रोने लग जाते हैं।
1: क्यों लगता है आपको कि लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं?
4: क्योंकि जब भी कोई बात होती है लड़के जल्दी रोने लग पड़ती है, इसीलिए
1: लड़कियां जल्दी रोने लगती हैं।
5: मुझे ऐसा नहीं है कि लगता है कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जैसे उन्होंने बोला पहले कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं तो एक लड़का हूँ, ऑब्वियसली लड़कों
1: को इसलिए बोलना पड़ेगा। दोनों भी बोल सकते हो,
5: लड़कों को नीचे थोड़ा गिरने देंगे।
1: देख दोनों भी बोल सकते हो, आपकी दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो।
4: वैसे जल्दी से लड़के के रोने लग पड़ती है,
1: लड़कियाँ जल्दी रोने लगती हैं।
2: दीदी ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियाँ हमेशा नहीं रोती,
1: हमेशा नहीं रोती ना,
2: जब लड़ने का टाइम आता ना तब लड़ती भी है,
1: लड़ती भी है,
4: कोई भी बात हो जाए तो जल्दी रोती
5: है। सही बात है
0: मैम, अभी अभी इनको थोड़ा सा सुना दो अभी रोने लग पड़ेंगी।
5: लड़कियों का एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा होता है।
1: एटीट्यूड ज्यादा होता है?
5: हमारे स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम नंदिनी था, तो वो मेरे से एक क्लास आगे पढ़ती थी। जब भी उसको टीचर्स ने कुछ बोल देना तो टीचर से गुस्से हो जाती थी, अगर उनकी क्लास लग रही वो साइड वाले रूम में जाके बैठ जाती थी। उनकी क्लास में नहीं आती थी,
1: टीचर से ही नाराज,
5: टीचर से ही नाराज।
2: दीदी कुछ कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी जो बात बात पे अपना
5: कुछ कुछ होती हैं, कुछ कुछ के लिए हम सभी को तो नहीं बोल सकते।
1: नन्नी के अलावा और कितनी सारी लड़कियां भी तो थी, है ना?
2: पर हमारे जैसी नहीं रोती।
5: दीदी लड़के थोड़ी कोई कम होते हैं, वो भी तो ज्यादा एटीट्यूड दिखाते। दीदी मैं तो नाटक करती हूँ फिर मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं सच में डालती हूँ रोते हैं। जैसे मैंने मेरे भाई के भी दोस्तों को रुलाया है, बहुत
1: भाई के दोस्तों को भी रुला दिया है। अरे बाप रे
0: दीदी, हम टीचर्स के सामने एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं।
5: हाँ ये बस
4: ये बस
5: टीचर्स ने अगर कुछ बोल दिया तो चुप रहते हैं।
1: एक एक करके
5: टीचर्स ने कुछ बोल दिया तो अपना चुप रहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, बड़े हैं ना।
1: बड़े हैं
5: हमारे सही।
0: दीदी दीदी लड़कियां है ना मैम को प्लीज प्लीज बोल के माफ करवा देती है गलतियां।
4: अक्सर ज्यादातर देखा जाओ तो जो टीचर होते हैं ना वो अक्सर ना ज्यादा जो लड़के उनको पीटते हैं।
5: लड़कियों को इसी वक्त माफ कर देते हैं।
2: लड़कियां सारा काम करती हैं, कई बार कुछ छूट जाए काम तो वो माफ कर देती है। फिर
3: दीदी लड़के तो ऐसे ही बैठे रहते हैं बेंचों पे।
5: नहीं कुछ लड़के होते हैं जो पढ़ते भी हैं।
0: मम इनकी तरह टाइम वेस्ट करके स्टिकर थोड़ी बनाएंगे।
1: क्यों स्टिकर नहीं लगाते लड़के?
0: पेपर पे ड्रॉ करते रहते हैं और फिर उस पर टेप चिपका के कलर कुलर भर के करते रहते हैं, नोटबुक में लगाते रहते हैं।
1: ओ लड़के नहीं करते ऐसा? बिल्कुल नहीं
5: करते हैं। कुछ लड़के होते हैं जो करते हैं,
1: बहुत कम
5: होता है।
0: नोटबुक में कौन लगाते हैं?
5: क्यों नहीं लगाते भाई, कुछ ऑयल पेस्ट करते भी है।
1: हाँ बोलो बोलो रूहानी बोलो।
6: दीदी जो शाय लड़कियाँ होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ब्रेव लड़कियाँ बहुत कम होती है, इसलिए लड़कों को सिर्फ शाय लड़कियाँ ही दिखाई देती है। और हम आर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा पैशन है, उसमें हम गुड है इसलिए हम करते हैं, क्योंकि लड़कों को आता नहीं है वो करना।
0: क्यों नहीं आता? आर्ट की बात नहीं कर रहा, मतलब पेंटिंग पुंटिंग की बात नहीं कर रहा, पर जो टाइम वेस्ट करते हैं वो चीज अलग है।
1: ओके
5: आर्ट तो बहुत अच्छी चीज है। सौरभ जोशी जो आज के समय में ब्लॉगर है वो भी पहले आर्टिस्ट ही थे, आर्ट करते थे, पोर्ट्रेट्स बनाते थे वो।
1: अमीक्षा
3: हम लोग तो स्टिकर्स बनाते हैं, इन लोगों की तरह थोड़ी हम पीछे मुड़ के बातें करेंगे हर लोगों से।
0: सही है टाइम पास होता है,
5: पीछे मुड़ के क्या बातें,
0: मजा आता है, यादें होती है। दीदी मैं बातें नहीं करता पीछे मुड़ के।
1: ओके
4: हमारे आगे बैठे होते
3: हमारे हमारे क्लास में कोई सर आते हैं, वो चमन जी सर है, वो हिंदी पढ़ाते हैं। तो वो क्या है किसी लड़की और लड़की दोनों साथ में झगड़ा हो गया तो वो सीधा लड़कों को ही मारेंगे जाके।
5: हाँ। गर्ल्स को छुएंगे भी नहीं, गर्ल्स को छोड़ देते हैं।
0: मैम ही मारती है लड़कियों को।
4: ऐसा क्यों? बराबर है ना, दोनों को पीटा।
1: लड़कों को ज्यादा पिटाई होती है?
4: बहुत ज्यादा।
0: मैम ही मारती है लड़कियों को, सर तो जब मार हल्का सा एक थप्पड़ मार दिया लड़कियां लग पड़ेंगी, फिर सर उनको मनाने में।
1: दीदी तो लड़कियां क्यों नहीं रोते फिर? सर उनको भी वो कर दें, जैसे मान लो सर मार रहे हैं और लड़कियां रोने लगी तो चुप हो जाते हैं, तो लड़के भी रोने लगे अगर सर मार रहे हैं तो?
0: उनको तो मारो भी ना फिर भी पहले ही रोने लग पड़ती है।
1: अच्छा तो फिर माफ कर देते हैं
0: दीदी।
1: एक मिनट पहले लड़कियों की साइड भी सुन लो, बोलो।
2: दीदी ऐसा नहीं है कि टीचर के सामने रोने लग जाते हैं? कोई रोते नहीं, वो टीचर को पता है कि हाँ ये लड़की काम करने वाली है, नेक्स्ट टाइम पूरा करेगी, इसलिए छोड़ देते हैं।
1: हाँ मतलब उसकी इमेज अच्छी है,
2: इमेज अच्छी बना रहे हैं।
5: कई लड़कियां ऐसी होती है वो बिल्कुल ही नहीं करती, उनको इतनी वो ढीठ हो जाती है, उनको रोज मार पड़ेगी वो फिर भी काम नहीं करेंगी,
1: फिर भी रोएंगी।
5: अगर उन्होंने हम अभी नहीं करेंगे काम, जैसे अभी अप्रैल मई का सिलेबस चल रहा है तो उनका अप्रैल का कंप्लीट है, मई का कंप्लीट नहीं है, तो वो अगर उन्होंने ठान लिया कि हम मई में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, जो मई करेंगे समर वेकेशन में, तो वो ऐसे ही करती हैं,
1: जो ठान लिया वही करती हैं।
0: अमीक्षा दीदी मैंने
1: एक बार अमीक्षा बोलो।
3: अभी इन लोगों ने बोला कि है ना लड़कियां लास्ट तक वो नहीं करती, तो हम लोग अगर पहले भी ना करें तो भी लास्ट तक हमारा सब कंप्लीट हो जाता है।
1: राघव
0: दीदी पहली बात मुझे आज तक किसी भी टीचर ने मारा नहीं है। दूसरी बात एक बार ना हमारी क्लास में मतलब दो लड़कियां थी, वो लिख रहे थे ये मैम पागल हैं, और वो मैम क्लास में बैठे थे और ना किसी ने जाके उनको वो दिखा दिया, फिर उन दोनों का ऐसे थप्पड़ पड़े वो पूरा दिन रोती रहे।
1: लड़कियों की पिटाई हो गई यानी?
0: मैम मेरे पुराने स्कूल में दो लड़कियां थी, एक सर थे वो उनको इतना सुनाते थे, जब भी क्लास में आते थे डांटते ही रहते थे, अगर कुछ भी हो तो उन पे ही बात लेके जाते थे, कितने मतलब बहुत बेइज्जती करते थे उनकी। और लड़कियों ने उन्होंने क्या किया, जब सर की ट्रांसफर हो रही थी वो इतना फूट फूट के रो रही थी।
1: अच्छा तब भी?
0: हाँ बहुत रो रही थी
1: जबकि उनको ही डांटते रहते थे। ओहो
6: दीदी मैं तो सोचती हूँ दोनों ही कमजोर है और दोनों ही स्ट्रांग है।
1: ओके ऐसा क्यों?
5: हाँ मैं भी इस बात के साथ एग्री हूँ,
6: क्योंकि कुछ लड़कियाँ होती है जो शाय होती है उनकी ये कमी होती है, कुछ लड़के होते हैं जो कुछ होते हैं जैसे क्लास में होते हैं कुछ बोलते नहीं है काम करते नहीं है, इसलिए उनको डांट पड़ती है। वैसे दोनों भी वीक है और दोनों भी स्ट्रांग है, क्योंकि लड़के भी बहुत काम करते हैं क्रिकेट में भी, और एक लड़की थी जिसने एवरेस्ट पर उसका पैर नहीं था तब भी वो चढ़ी थी।
1: बात तो सही है
3: दीदी, हमारे तो सर और मैम दोनों ही गर्ल्स को नहीं मारती, मैम तो है ना सीधा दोनों की गलती होगी तो बॉयज को ही मारेगी, मैम गर्ल्स को नहीं मारेगी, क्योंकि मैं और मेरी तीन दोस्त है, वो एक मैम की फेवरेट है, तो वो सीधा बॉयज को मारती है।
1: सीधे
4: तो ये तो नाइंसाफी हुई ना, कोई काम भी हो ना तो तब भी वो ना लड़कियों की ही कहते हैं।
1: जैसे
2: क्योंकि दीदी टीचर्स को पता होता है ना लड़कियां काम पूरा कर देंगी, लड़के इतने
4: नहीं, अक्सर कोई भी स्कूल का काम हो वो लड़के क्योंकि कहते हैं, स्कूल का कहते नहीं
1: काम, जैसे
4: कोई भी काम,
0: काम
4: हो
0: जैसे अगर कुछ डेकोरेट करना हो, क्योंकि लड़कियों से ज्यादा घुमा फिरा नहीं जाता है ना, बैठी बैठी के काम करना होता है ना उनको,
3: ऐसी बात नहीं है, वो घूम लेती हैं,
2: घुमा फिरा नहीं जाता, लड़कियां ही बाजार के काम करती हैं,
1: करते हैं
3: नहीं, सही बात है, ऐसा तो नहीं है लड़कियों से घुमा फिरा नहीं जाता, लेकिन लड़कियां जैसे
4: हो या लड़के हो
3: भाई, अगर मैं लड़का हूँ लेकिन ऐसा थोड़ा है कि लड़कियों के साइड
2: लेता हूँ, लड़कियों की तरफ ले रहता हूँ,
3: मेरी भी तो बहन है,
4: जाओ फिर उधर बैठ जाओ,
3: इसका मतलब मैं अपनी बहन को ही बुरा बोलूंगा नहीं बोलूंगा मैं,
1: बोलो बोलो आप जो बोलना चाह
3: रहे हो। लड़के होते हैं कि कोई जैसे गेम्स खेलते रहते हैं ज्यादातर, लड़कियां होती है वो घर पे बैठ के कोई डेकोरेशन के आर्ट वगैरह करती हैं घर में लगाने के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि घूमती नहीं है, घूमती भी है, क्योंकि मेरी बहन बहुत घूमती है, अगर एक बार जिद पे अड़ जाए कि मुझे नीचे लेके चलो तो उसको लेके ही जाना पड़ता है,
1: लेके ही जाना पड़ता है ना,
0: जैसे अब ये खड़े हो गया ऐसे घूमने लग जाए तो वो भी घूमना ही हो गया।
7: दीदी नहीं, सुबह रोज 5 बजे से उठ के 6 बजे तक वॉकिंग भी तो करती है, जॉगिंग भी करती है,
0: हर लड़कियां नहीं करती,
7: तो कोई कोई तो करता है ना, हर लड़कियों की बात नहीं करती,
1: सब एक जैसे तो नहीं हो सकते ना,
3: आजकल तो लड़कियां बॉयज से ज्यादा अपनी फिटनेस का ध्यान रख रही हैं, कई बॉयज होते हैं जो बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, लेकिन जो लड़कियां वो ऐसे घर में भी करती है, ग्रीन टी पीती है, कॉफी पीती है सुबह ब्लैक, वॉकिंग करती है, योगा करती है, बहुत
1: बड़ी सारी चीजें करती है ना,
3: फिटनेस का ध्यान रखती
7: है। मेरी मैम तो हमसे काम करवाती है, बोतल भी भरवाती है, बोतल के पानी भरवा देती है,
1: हाँ मतलब बाहर जाके भी काम करती है,
0: फ्री होती है ना,
1: जो भी कर सकते हैं,
0: दोनों इक्वली होते हैं,
1: दोनों इक्वल होते हैं,
0: हाँ बस कईयों को लगता है कि ये बाहर वाला काम लड़के ही कर सकते हैं और ये अंदर वाला काम लड़की ही कर सकती है, बल्कि लड़कियां बाहर वाला काम भी कर सकते हैं,
1: ओके
0: पर कम करती है। अब पापा को अगर कोई सामान लेने को बोलते दुकान से तो लड़कियों को ही बोलता, कोई लड़कियों को नहीं बोलता।
1: अच्छा ज्यादा बात किसकी सुनी जाती है
3: घर में,
0: लड़कियों की
1: ओके
3: या फिर छोटे की,
0: छोटे
3: जो छोटा होगा,
1: जो छोटा होगा उसकी,
3: जो बड़ा होगा उसकी पिटाई होगी,
2: छोटे भाई बहन की सुनी जाती है।
1: अच्छा
0: छोटे भाई बहन की नहीं सुनी जाती,
1: छोटे भाई बहनों को लगता है छोटे भाई बहनों की नहीं सुनी जाती, बड़ों को लगता है बड़ों की नहीं सुनी जाती,
3: अगर
1: सुनी किसकी जाती है,
0: जब घर में
3: दो भाई हैं तो उनमें छोटे की सुनी जाएगी, अगर भाई बहन है तो उसमें चाहे बहन बड़ी हो चाहे छोटी हो उसी की सुनी जाती है।
1: अच्छा अगर बहन है तो बहन की सुनी जाती है, क्या बोलना रूहानी को?
6: दीदी मेरे घर में तो बुआ के लड़के जो मेरे भैया है ना वो घर में आते हैं तो मेरे प्रति सब बदल ही जाते हैं, दादी जी आती है आ बेटा क्या खाएगा क्या खाएगा, तू हट यहां से,
1: आपको साइड कर दिया जाता है, कभी कभी आते होंगे ना वो, है ना
7: दीदी, उस टाइम हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहती
0: दीदी, ऐसा रास्ते से आप हट जाते हैं फिर, मैम वैसे इनकी कौन सी वैल्यू होती है,
2: होती है
4: कोई,
7: हमारी बहुत सारी वैल्यू
3: होती है भाई, मैं तो मानता हूँ लड़कियां और लड़के सेम है,
2: लड़की में
3: कोई फर्क नहीं है,
1: दोनों इक्वल है, आपको ऐसा लगता है
2: ये दोनों इक्वल है, लड़का और लड़की दोनों ही समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए
0: हैं। दीदी दीदी अपन जूस की बोतल को भगवान मान सकते हैं, भगवान ने मतलब आधा इसमें भरा है आधा इसमें भरा है तो दोनों इक्वल है,
1: दोनों इक्वल है,
7: अगर है ना अगर लड़कियां नहीं होती ना तो मम्मी भी नहीं होती,
1: ओके हाँ मम्मी भी तो लड़की है,
4: लड़की बिना संसार नहीं चल सकता, लड़कियों बिना चल जाएगा,
1: तो मतलब दोनों दोनों इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह, दोनों इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हम इस कंक्लूजन पे तो पहुंचे हैं जो आप सबको लगता है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, किसी को तो वीक नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि लड़कियां भी सब कुछ बन सकती हैं, लड़के भी सब कुछ बन सकते हैं, आप लोगों ने खुद ही बताया है ना कि सारे प्रोफेशन में दोनों ही जा सकते हैं,
4: हाँ जी
1: है ना, कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नहीं जा सकते हैं, कोई कोई भी नहीं है,
3: हम अगर लड़कियों को बुरा बोले तो ऐसा नहीं हो सकता, हमारे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के डीसी है जो वो एक लड़की,
4: एक लड़की है
3: आशिका जैन,
1: बिल्कुल
3: अब हमारे राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू एक लड़की है, बहुत
4: मेरे मन में भी है,
1: बिल्कुल
2: दीदी जब अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था विंग कमांडर भी लेडी थी और जो कर्नल थी वो भी लेडी थी,
4: यस यस
3: सही बात है, सिंधु मिशन
1: ये भी सही बात है।
7: दीदी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में झगड़ा हुआ था तो लड़कियां भी पाकिस्तान में घुस घुस के हमला किया था पाकिस्तान में,
4: हाँ हाँ वो तो किया था,
1: मतलब लड़कियां आर्मी में भी हैं,
3: लड़कियों को इसीलिए भेजा कि वो सिर्फ और सिर्फ मसला निपटा के, लड़कों को भेजते तो
5: पाकिस्तान को ही निपटा देते
2: लड़कियां भी निपटा सकती है पाकिस्तान को, बस निपटा के
4: नहीं गए।
5: लड़कियां तरस खा जाती है, लड़कियां नहीं खाते ना,
4: किया है उन्होंने भी ऐसा।
1: ऐसा अच्छा लगता है आपको कि लड़कियां थोड़ी ज्यादा तरस खाती हैं या थोड़ा सा ज्यादा यू नो दया कर देती
5: हैं? हाँ, वो होता है लड़कियां
2: छोटे नहीं करते, पर अगर कोई बड़ा हो ना फिर बड़े करते हैं, छोटे नहीं करते,
1: छोटे
2: लड़कियां नहीं करती, जैसे मम्मा हो गई।

0: दादियों के वक्त,
1: हाँ वो ऐसे दया कर जाते
2: हैं। अच्छा, बहुत जल्दी हो जाते हैं।
3: ओके, तो आपको क्या लगता है दया ज्यादा कौन करता है, लड़के ज्यादा करते हैं या लड़कियां ज्यादा करती हैं?
4: ये लड़कियां करती है, बट देख के करते हैं कि सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाला की मतलब इमेज अच्छी होगी हमारे सामने तो थोड़ी बहुत दया खा लेंगे, पर अगर
0: बस इमेज अच्छी होगी, अगर उसकी रियलिटी
3: धीरे धीरे रुक जा उसको पूरा बोलने दो।
4: अगर सामने वाला अनजान है, हम उसकी रियलिटी पता नहीं है कैसे, तो थोड़ा दया खाने में सोचेंगे,
3: सोचना पड़ेगा। ओके,
5: हाँ दीदी, लड़कियां भी दया खाती है, लड़के भी खाते हैं कभी कभी, दोनों ही इक्वल, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं।
3: ओके
6: दीदी, मेरा भाई भी झगड़ा खाता है, मैं तो सोचती हूँ मैं इसे बड़ा है, छोड़ देती हूँ, पर वो मानता भी नहीं है।
3: तो और लड़के नहीं दया करते हैं?
2: करते हैं,
6: कर लेते हैं, पर बहुत कम
3: कर्म करते हैं थोड़ा सा,
6: जैसे कोई ज्यादा ही वो उस पे कर
3: जाता। सो मतलब लड़के भी करते हैं पर थोड़ा कम करते हैं, जैसा आप बोल। तो अच्छा, दया करना सॉफ्ट होना होता है या स्ट्रॉन्ग होना होता है?
6: जिनके हार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं वही दया कर सकते हैं।
3: ओके, चलो, मतलब ये तो हमको समझ में आ गया, जो भी आपने क्वालिटीज बताई वो भी स्ट्रॉन्ग बनाती है हमको, है ना, वीक नहीं बनाती, मतलब दया करना ये सब करना। चलो ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, जाते जाते हम यहाँ पे हम अपने एपिसोड को करेंगे क्लोज, क्योंकि बातें हो गई हैं बहुत सारी। तो बस जाते जाते आपको एक एक गुड क्वालिटी बतानी है जो लड़के और लड़कियों में दोनों में होती है, एक गुड क्वालिटी जो दोनों में होती है, क्या होता है दोनों में? कुछ सोचो, इतना सोचो पड़ गया।
2: लड़कों दोनों में होता है?
3: हाँ दोनों में, दोनों
2: जैसे कि लड़की है वो भी लड़के के बराबर काम करती है, जैसे कोई भी काम हो, जैसे हमने बताया है कि क्रिकेट है, उसमें भी कोई लड़कियां आगे है और लड़के भी आगे,
3: दोनों।
6: तो एक यही गुण अच्छा लगता है लड़कियों का, क्योंकि आरसीबी को फर्स्ट टाइम जो ट्रॉफी आईपीएल ट्रॉफी जिताई है वो लड़कियों ने जिताई है,
3: वुमेन टीम ने जिताई है, तो खेलना अच्छा लगता है आपको?
6: बहुत अच्छा लगता है।
3: ओके, दोनों में क्या अच्छाई होती है या सेम क्या होता है दोनों में?
4: दोनों पैसे कमाने की क्षमता रखते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, खुद के ऊपर डिपेंडेंट,
3: इंडिपेंडेंट रह सकते हैं दोनों। ओके
5: दीदी, दोनों में सेम एटीट्यूड होता है।
3: ओके, क्या सेम होता है?
6: दीदी, अगर लड़के खेल सकते हैं तो उतना ही लड़कियां भी खेल सकती हैं।
3: बिल्कुल। और राघव को क्या लगता है? हैं? बस दोनों पिंक नहीं पहन सकते ना?
6: दीदी, जैसे लड़के और लड़के एक ही होते हैं, क्योंकि लड़कियां अगर भागते भागते थक सकती है तो लड़के भी थक सकते हैं।
3: हाँ ये भी सही बात है, लड़के भी थक सकते हैं, है, लड़कों को भी चोट लग सकती है,
7: थक सकते हैं
3: पर थकते नहीं है।
4: नहीं दीदी,
3: लड़के थकते नहीं है कभी?
6: हाँ, बस वो शो नहीं करते,
3: बस शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते?
6: इमेज के लिए,
7: इमेज के लिए।
6: उनको हमेशा ऐसा ही लगता रहता है अगर हमने शो किया तो लड़कियां हमें चिढ़ाएंगी कि तुम थक गए, हम नहीं थके, लड़कियां हमसे स्ट्रांग रह जाएंगी ऐसे।
3: अच्छा ऐसा, लड़कियां चिढ़ाती हैं फिर?
6: चिढ़ाती हैं, बस थक गए यही तक का दम, आ जाओ और चलो फिर।
3: और फिर लड़कियां थक जाती हैं तो आप नहीं चिढ़ाते?
6: फिर हम कहते हैं रोलो, बैठ के रोलो, कह सकते हो।
3: ओके, लेकिन सच में, अच्छा ठीक है, दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, मतलब अगर नहीं चिढ़ाए कोई किसी को, मान लो कि ऐसी दुनिया हो जिसमें कोई किसी को नहीं चिढ़ाएगा, तो फिर थकना शो कर सकते हैं या नहीं?
7: कर सकते हैं,
3: ये तब भी नहीं करना,
7: उसके लिए थकना भी होना चाहिए।
6: हाँ उसके लिए थकना भी चाहिए, लड़के इतना थकते नहीं है क्योंकि उनको रोज की वो प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि उनको हर वक्त खेलना है, हर वक्त बैठे भी रहना है, उनको पढ़ाई करनी है एक जगह बैठ कर,
3: लड़के इतना थकते नहीं है।
6: हाँ घूमते फिरते रहते हैं ना।
3: आपको क्या लगता है?
4: दीदी वो दिखा सकते नहीं, दिखाएंगे कि हम थके हैं, कोई चिढ़ाने वाला तो है नहीं।
6: और दीदी
3: अगर कोई चिढ़ाने वाला नहीं है तो थकते हैं या नहीं थकते हैं?
6: थकते हैं,
4: थकते हैं दीदी, काम करेंगे तो थकेंगे,
6: थकेंगे तो सभी
3: थकेंगे तो
6: दीदी, ऐसे भी
4: शो करने की बात है बस।
6: अगर शो भी ना करे तो भी मतलब लड़कियां वैसे भी थकती है,
3: लड़कियां
6: थकती है पर दिखाती भी है,
3: दिखा भी देती हैं लड़कियां, बट लड़के दिखाते नहीं है, थक भी जाते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, नहीं ना? थक तो भाई सभी जाते हैं क्योंकि फिजिकल स्टैमिना आपका सबका बहुत होता है, हालांकि उसमें भी खुद को मोटिवेट करके और हम, है ना, खुद को मोटिवेट कर लेते हैं तो और भी कर लेते हैं, पर थकान तो किसी को भी हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? चलो फिलहाल हम करते हैं अपने दोस्तों को गुड बाय।
0: दीदी
3: हाँ,
0: गुड बाय का मतलब हमेशा के लिए बाय करना होता है।
3: गुड बाय के लिए हमेशा के लिए बाय करना होता है? नहीं भाई,
4: नहीं करके देखा सेंस ऑफ ह्यूमर है
3: बाय मतलब गुड बाय अच्छा वाला बाय उसमें क्या प्रॉब्लम है चलो कोई बात नहीं हम हमेशा के लिए नहीं करेंगे किसी को भी बाय बस इस एपिसोड से हम लेते हैं इजाजत और अपने दोस्तों को करते हैं बाय बाय

हाँ, मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खिदमत है एक नज्म। उन्वान है आमों की फरमाइश। शायर हैं अकबर इलाहाबादी। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है। आवाज है डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान की।
1: नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसे जरूर हों कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर हो 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। ऐसा ना हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलकार हैं देवाशीष। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है संतोष कुमार और उनके साथियों ने।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

रखना, घर में की रक्षा करने आएगा वो, अब घर में की रक्षा करने।

0: नमस्कार बाल संसार, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होने का मौका मिलता है बाल संसार इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हम लोग बाल मनोविज्ञान के बारे में बातें कर रहे हैं। तो कई बार हमारे जीवन में बाल मनोविज्ञान की बातें अगर हम लोग सुनते हैं तो जीवन में कई तरह की चीज़ें हमने देखी। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हमें जो है अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने से हम अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों से तो मुक्त हो ही जाते हैं, लेकिन सकारात्मक बनकर दूसरों को हेल्प भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा खुद को प्रोत्साहित रखना है, आनंदित रखना है, उल्लासित रखना है। इसके लिए आपको जो है छोटे छोटे गोल्स सेट करने हैं जिसमें आपको खुशी मिले। तो ये बात हमने पिछले एपिसोड में समझा। अब बात करते हैं पाँचवें छठवा एपिसोड जो हमारा अभी शुरू हो रहा है, जिसमें हम पांचवा अध्याय के बारे में बात करेंगे, आराम और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बात करेंगे। और बहुत बार देखा गया है डॉक्टर कहते हैं कि आराम और स्वस्थ जीवन शैली की बात करें तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अच्छी आराम भी ज़रूरत है। आराम इन द सेंस पर्याप्त नींद होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की कई चीज़ें जो है सिर्फ हमारा आराम ही या पर्याप्त नींद ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ में काफ़ी और भी बातें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज के हमारे खास वक्ता अजय शुक्ला जी हैं जिनसे हम लोग बातें करते हैं। तो आराम और स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा क्या है उसके बारे में बताइए। स्वागत है अजय जी।
1: ओम शांति भाई जी, बहुत खुशी हो रही है कि बाल संसार का ये जो एपिसोड है वो निरंतर जारी है और इसमें बच्चों के टोटल अगर हम व्यवहार की बात करें या संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात करें तो उसके बहुत सारे अति सूक्ष्म पहलुओं पर आप मेरा ध्यान खिंचवा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज जो आपने कहा कि बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए जो एक आराम शब्द है, रिलैक्स है, उसको अगर हमें परिभाषित करना हो तो मेडिकल साइंस का ये सपोर्ट होता है कि 8 आवर्स का रेस्ट होना चाहिए। लेकिन आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम फिर से डॉक्टर से पूछने जाते हैं दोबारा, तो वही डॉक्टर हमको कहते हैं कि नहीं, 6 घंटे भी अगर आपने साउंड स्लीप लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। तो कुल मिला के अगर हम इसको 24 घंटे को अलग अलग डिवाइड करें तो 6 आवर जो है आपका बिल्कुल साउंड स्लिप, जिसको हम गहरी नींद बोलते हैं, उसमें एक बार नींद खुल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार नींद अगर खुलती है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें फिजिकली अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कहाँ दिक्कत है। तो 6 घंटे की नींद हमको चाहिए। इसके अलावा एक आराम और है जिसे हम मानसिक शांति बोलते हैं, तो उसे हम मेडिटेशन के द्वारा भी एक्वायर कर सकते हैं। रिलैक्स होके थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़ के भी आप जा सकते हैं या नॉर्मल बेड पर भी आप एक आध घंटा रिलैक्स हो सकते हैं। तो एक शारीरिक आराम है जो आपकी वर्किंग स्टाइल में, अगर कुछ थोड़ा लंच का टाइम है आपने समय से भोजन भी कर लिया और 1 घंटे का लंच है तो आधे घंटे भी अगर आपने आराम कर लिया तो उसको भी हम फिजिकल रेस्ट में काउंट कर सकते हैं। तो नींद, गहरी नींद के अलावा जो रात में आप लेते हैं उसके अलावा हमको शारीरिक थकान हटाने के लिए रिलैक्स चाहिए और मानसिक शांति के लिए भी हमें रिलैक्स होना पड़ेगा। और मानसिक शांति से अर्थ यहाँ पर है कि जो थॉट्स का लेवल था या जिसे आप कई बार ओशन ऑफ थॉट्स बोलते हैं, निरंतर विचारों की श्रृंखला बनी रहती है और कई बार आप रात में भी देखें तो रात भर आपको जागना हो जाता है या दिन में भी आप चिंतन कर रहे हैं, तो वो जो ब्रेन का लेवल है या ब्रेन पर जो आपकी हार्ड डिस्क है उस पर जो दबाव पड़ता है, उस दबाव के कारण थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नींद नहीं है, शारीरिक और मानसिक शांति आपको नहीं है या रिलैक्स नहीं है, तो आप मान के चलिए कि मेमोरी लॉस होना इसका सबसे बड़ा लक्षण है और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए आपने घर में ताला बंद किया है और आप नीचे आए और गाड़ी खड़ी करके फिर आप जाके देखने जाएंगे कि ताला बंद है कि नहीं, और जाने के बाद में भी आप चाबी से नहीं देख रहे हैं उसको, आप ताला लगा हुआ है लेकिन उसको खींच के हिला के देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपका जो आत्मविश्वास है, जो भी आपने कुछ समय पहले किया था, वो आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि उसको एग्जैक्टली आपने फुलफिल किया था कि नहीं किया था। तो ये जब ये दो स्थिति क्रिएट होती है, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो इंसान, नॉर्मल चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, वो मानसिक द्वंद से गुजर रहे हैं। मानसिक द्वंद की स्थिति में गहरी नींद पॉसिबल नहीं है, शारीरिक आराम भी संभव नहीं होगा। जैसे आप लेटेंगे मन में आगे ने भी ये काम में कर लूँ, तो जो कार्य का दबाव है वो वैचारिक स्तर पर आपके मन में बना रहेगा और आप चाहकर भी शांति से आधा घंटा पौन घंटा नहीं आराम कर पाएंगे, बल्कि बड़े आपको बोलेंगे कि भाई अभी खेल के आए हो, अभी पढ़ाई करके उठे हो, थोड़ा सा आराम करो ना, शांति से आँख बंद करो। तो भले ही आँख बंद करके आप कोई अच्छा म्यूजिक लगा लें, कोई कहानी सुनने का प्रयास करें, मतलब कुल मिला के आप रिलैक्स हों। जो काम आप कर रहे थे उस काम में अगर आप परिवर्तन कर लेते हैं तो मनोविज्ञान की भाषा में इस परिवर्तन का नाम ही है रिलैक्स। जी,
0: डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया। रिलैक्सेशन का क्या मतलब होता है, आराम का जो है आपने कुछ उदाहरण देके बताया। तो निश्चित तौर पे जब हम लोग मानसिक रूप से बिल्कुल थक जाते हैं तो नींद आना स्वाभाविक है, और नींद आती है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, और गहरी पर्याप्त नींद हो जाती है तो फिर से आप जो है रिचार्ज हो जाते हैं अपने कार्य को करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और कई बार हम लोग जो है अपने जीवन में लक्ष्यों को निर्धारित करने में या फिर नई चुनौतियों का सामना करने में भी मुश्किल फील करते हैं, इसके कारण भी हम तनाव में आ जाते हैं या पर्याप्त नींद नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम, अगर बच्चों में ये चीज़ें आती हैं तो उन्हें कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं या इससे दूर कर सकते हैं।
1: बहुत ही सटीक बात है, और निश्चित तौर पर इस प्रकार की जब चुनौती आती है तो उसका बेसिक रीज़न है कि बच्चों को एक उलझन तो दिमाग में रहती है। अब बड़े तो कहते हैं उनसे कि उलझन सुलझेगी, थोड़ा धैर्य रखो, लेकिन कई बार बड़े अपनी व्यस्तताओं के चलते बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उस स्थिति में बच्चों के पास में फिर विकल्प नहीं होता है। उदाहरण के लिए कई बार आपने देखा होगा कि माता पिता ऑफिस से आने के बाद में भी टेलीफोनिक प्रोसेस में लगे रहते हैं। अब ये उनकी नेचर ऑफ जॉब भी कई बार ऐसी होती है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर आने के बाद में भी आप फुलफिल करते हैं। वो माता पिता भी मेरे पास में आते हैं कि हम कैसे मैनेज करें। फॉर एग्जांपल कि पिता बच्चों के मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रेस में हैं, अखबारों की दुनिया में। आप जानते हैं कि अखबार की दुनिया का जो समय होता है वो रात के 2 से 3 बजे तक तो उनकी कई बार स्टार्टिंग होती है और कई बार क्लोजिंग भी होती है। अब जो दिनचर्या है वहाँ वो डिस्टर्ब हुई, लेट आवर्स में वो आए, बच्चों से बातचीत नहीं हुई। माँ भी अगर बच्चों की जॉब में है तो मैं बच्चों से बात करता हूँ कि माँ से आपको क्या परेशानी है, बोले माँ ऑफिस तक जाएं, वहाँ तक हम लोगों का कोई हमको डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन उसके बाद माँ से भी समय नहीं मिल पाता है, पिताजी भी समय नहीं देते हैं, तो हम करें क्या? तो हमको ये समझ नहीं आता कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्या हमें सपोर्ट मिलेगा, क्या हम कैसे जो भी हम कर रहे हैं उसका फीडबैक किसको दें, शेयरिंग किसको करें। हम इसी द्वंद में रहते हैं। अब इस द्वंद का परिणाम क्या होता है कि बच्चे फिर अपने जो क्लासमेट होते हैं जिनके साथ वो रह रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उनके साथ वो डायलॉग करना स्टार्ट करते हैं। अब कई बार वो डायलॉग आज सोशल मीडिया है तो चैट के माध्यम से होता है। आप जानते हैं कि बच्चे सारे के सारे बच्चे आज रात में ही पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर हम और आप पुराने ज़माने के हिसाब से बताएं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और मेमोरी में रहता है, हमने इतना अचीवमेंट किया है, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में किया है, तो उनको केवल अपनी सक्सेस से मतलब है। अब उन्हें आज की डेट में ये पता ही नहीं है कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड अचीवमेंट। अब उन्हें सफलता और उपलब्धि में अंतर नहीं पता। उपलब्धि एक लॉन्ग टर्म गोल का परिणाम होता है, सफलताएं बहुत सारी एकत्रित होती हैं तब जाके इंसान उपलब्धि तक पहुंचता है। अब उस सफलता को भी वो निरंतर अर्जित करे, उस सफलता को फिर एंजॉय करे। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बहुत अच्छा आपने कुछ सफल हो गए और फिर दूसरे काम में लग गए, तो उस सफलता से जो खुशी मिली उसको आपने शेयर नहीं किया, एंजॉय नहीं किया, माता पिता भी सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो मैंने सीरियसली जब बच्चों से बात की कि आखिर बताओ बेटा कि आपके माता पिता 8 घंटे जॉब करते हैं कि 16 घंटे जॉब करते हैं, बोले 16 नहीं हो तो 20 घंटे जॉब करते हैं। वो पूरे टाइम बातचीत करते रहते हैं, ऑफिस संबंधी चर्चा करते रहते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आप अगर माँ से बोलते हैं, पिताजी से बोलते हैं, तो वो उस समय डांट डपट कर देते हैं कि भाई तुमको पढ़ाई करने के लिए बोल दिया ना, अभी स्कूल ने भेज दिया, कॉलेज में एडमिशन करा दिया, लैपटॉप दिला दिया, सब तो दिला दिया, अब वो कहते हैं कि तुम अपना काम करो। जब हम लगातार अपने कमरे में काम करते हैं तो बोलते हैं तुम हमसे बात ही नहीं कर रहे हो, फिर एक साथ छुट्टी का समय होता है तो बोलते हैं कहीं चलो, फिर हम अपने होमवर्क में भी जाते हैं, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो आपने बातचीत नहीं किया, तो हम भी भूल जाते हैं कि माता पिता भी हमारे घर में रहते हैं। तो ये सब जो सिचुएशन है, अगर 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, दिखने में छोटा परिवार सुखी परिवार है लेकिन अंदर से बहुत एक भड़ास एक दूसरे के प्रति है, और जब बहुत प्यार से स्नेह से बच्चों से बात करता हूँ मैं तो कहते हैं नहीं हम केवल फ़ोन ऑफिस से आता नहीं है, हमारी माँ तो फोन नहीं भी आता ना उसके बाद भी फोन कर लेते हैं। इसका मतलब वो खाली बैठने नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं से इंगेज जाते हैं, तो जो समय हमें मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। तो ये जो स्थिति बनती है ये उनके लिए चुनौती है, और ऐसी स्थिति में जब दूसरे बच्चों से संपर्क स्थापित करते हैं, लेट आवर्स बात करते हैं, तो कई बार लेट आवर्स बात करने में जो साइंटिफिक चेंजेज आते हैं सोसाइटी में, वहाँ पर हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर आते हैं और उसका भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो जहाँ बच्चे 9 या 10 बजे तक तो बिल्कुल पढ़ाई की बातचीत कर रहे हैं, वहीं वो 12 से लेकर और 2 तक के बीच में उनका जो डायलॉग डायलॉग है उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब ये माता पिता को पता नहीं है, उनको लगता है कि सब कुछ ओके है। ऐसे में फिर जब घटनाएं होती हैं या कुछ वर्स कंडीशन क्रिएट होती है तो उन्हें पता चलता है कि भाई पुलिस कॉल डिटेल निकाल रही है, बच्चे ने डिलीट कर दिया सब कुछ, नाम चेंज करके बात कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है कि रात के 12 के बाद अगर वो पढ़ते हैं तो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मकता नहीं होती है, वहीं अगर ब्रह्ममुहूर्त में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सकारात्मकता या एनवायरमेंटल सपोर्ट मिलता है। और ऐसी कंडीशन में जब उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज हो और उसमें अगर बेटा बेटी पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे से संवाद कर रहे हैं तो बहुत सारी स्थितियां नकारात्मक या व्यर्थ की तरफ भी जा सकती हैं। इस पर घटनाएं घटने के बाद पता चलता है, नॉर्मल स्थिति में नहीं पता चलता है। और उस समय माता पिता और बच्चे एक नई मुसीबत में आ जाते हैं और बच्चे कहते भी हैं कि हमारे कारण आपको पुलिस स्टेशन या दूसरे अलग स्थिति में जाना पड़ा, उसके लिए हमको बड़ा दुख हो रहा है। जी
0: डॉक्टर अजय जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है। आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं बाल संसार, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। तो चलिए, बाल संसार में हम लोग जैसे कि बातें कर रहे थे बच्चों की जीवन कहानी से, बच्चों की जीवन शैली में कुछ बातें जो हैं हमें कभी कभी वक्त और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो लक्ष्य हमारा है उसकी तरफ हम लोग नहीं पहुंच पाते, तो उसमें और कभी कभी पहुंचने की कोशिश भी करते हैं तो वो कोशिश जो है अधूरी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारी खुशी और संतुष्टता की जो प्राप्ति है वो नहीं होती है, जिसके वजह से हमारा मंजिल जो है हमें दूर लगता है या हमारा लक्ष्य दूर लगता है। तो लक्ष्य को समीप लाने के लिए डॉक्टर अजय शुक्ला जी क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जीवन में लक्ष्य को लेकर तो द्वंद्व केवल परिवार में बच्चों तक ही नहीं बल्कि बड़ों के पास भी रहता है। कारण उसके पीछे ये है कि जो पॉपुलेशन तेज़ी से दुनिया की बढ़ रही है, आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ पर जो जॉब हैं वो सीमित होते जा रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस करने का हम प्रयास करेंगे तो कुछ चीज़ें हमारी सॉल्यूशन मोड में जा पाएंगी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हम केवल देख रहे हैं बचपन से कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जज या मिलिट्री, ये सब सारी जॉब हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे साइंस ने तरक्की किया है तो साइंस की तरक्की के साथ साथ में जो स्ट्रीम लाइन है उसके अलावा आपने देखा होगा कि बायो साइंस की ओर लोग गए हैं, बाई प्रोडक्ट की ओर गए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि दूध का प्रयोग आप कर रहे हैं तो अभी भी दूध के दाम दुनिया में 100 रुपये के अंदर ही हैं, लेकिन जो इसका बाई प्रोडक्ट है, दही इससे महंगा है, मक्खन इससे महंगा है, मिठाइयाँ इससे महंगी हैं, लेकिन जिनके पास में डेयरी इंडस्ट्री है आप देखेंगे कि उनके पास में डायरेक्ट जो मेन प्रोडक्ट है वो कभी सेल ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी गाय भैंसें दूध हो रहा है, हम कभी ये दूध बेचते ही नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे संभव है। तो वो डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि इस दूध का वो यूज़ करते हैं, वो सोचते हैं डायरेक्ट फॉर्म में ये इतने कम में बिकेगा, जबकि इसकी लागत या सारा मेंटेनेंस और इतना ज़्यादा खर्च आता है और क्वालिटी प्रोडक्ट की आप बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि स्वीट्स की भी उनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं, उनको पता है कि ये जो मिल्क प्रोडक्ट है इसको हम उधर यूज़ करेंगे तो 2000 रुपीज़ केजी स्वीट्स हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ में, उससे भी महंगी है। कहने का अर्थ ये है कि हम थोड़ा सा अपने दृष्टि और दृष्टिकोण में थोड़ा वाइब्रेशन को एक नए एरा में लेके जाएं। हम ये नहीं सोचें कि यही जॉब होता है या ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जज हमारा बच्चा नहीं बनेगा तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तो जब ये सब बातें आप बच्चों से करते हैं तो वहाँ एक चीज़ निकल के आती है कि हर बच्चे को जन्म के समय गॉड से कोई ना कोई गिफ्ट मिला होता है। अब हो सकता है कि उस गॉड गिफ्ट को वो गॉड गिफ्ट ना समझते हुए ये समझता है कि मेरे को इस एरिया में इंटरेस्ट है। अब जैसे ही बच्चे ने इंटरेस्ट बताया और पिता और पुत्र का, माँ और बच्चे का द्वंद्व शुरू हो गया, आपस में आपाधापी शुरू हो गई। अब चलिए, इसमें द्वंद्व में एक चीज निकल के आती है, जनरली हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि तो निकल के आता है कि माता पिता चाहते हैं कि जो एरिया में वो जाना चाहते थे उस एरिया में सफल नहीं हो पाए, मैं अपने बच्चे को उस एरिया में करियर बना के स्वयं को संतुष्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चे को जन्म देने का अधिकार आपका है, पालन पोषण करने का अधिकार है, लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा बनाना ये आपके अधिकार में नहीं है, क्योंकि वो मशीन नहीं है ना कि आपने उसको वस्तु समझ के उठा के रख दिया, वो ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग 10 बार उसको पूछना पड़ेगा कि आपको वहाँ चलना है, वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ बैठना है, वहाँ उठना है। तो ये उसके पास में भावनाएं हैं ना, उसके पास में विचार हैं। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो जनरली माता पिता हिडन फॉर्म में करते हैं, वो सोचते हैं इनको बता भी नहीं चले और हमारी इच्छा थोप दें हम। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑनेस्ट अप्रोच अपनाइए। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलिए कि बेटा हम दोनों ऐसा चाहते थे, हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। क्या आप जन्म लेने के बाद में अपने माता पिता के ऊपर दया करके उनकी इच्छा पूरी कर सकते हो? तो इट में भी पॉसिबल कि उनके अंदर जो एक दया का गुण नैसर्गिक है ना, तो कहेंगे ठीक है माँ, आपने जो सोचा था नहीं हुआ, मैं करके बताती हूँ। आपकी बेटी बोलेगी, आपका बेटा बोलेगा, मैं करके बताता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, 20 साल 25 साल तक उनसे छुपा के रखते हैं और ये फोर्स करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं।

0: लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि हमारे माता पिता की इच्छा थी और उन्होंने हमको थोपा था, तो वो थोपने की बजाय आप बिल्कुल ऑनेस्टी से बताएं कि अगर तुम्हारा इसमें थोड़ा भी रुझान है, फॉर एग्जांपल कि 50% भी मन है उसका, तो बचे हुए मन को हम ला सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि आप चाहते हैं कुछ, बच्चा कुछ और चाहता है, और दोनों का 36 का आंकड़ा है, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, पॉजिटिव कोरिलेशन तुम छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में द्वंद्व बढ़ेगा। और वो बच्चा जब उसका इंटरेस्ट भी नहीं है और उसकी जो शारीरिक और मानसिक क्षमता भी नहीं है, तो लंबे समय तक हम पीड़ा में रहेंगे। तो ऐसी सब बातों से बचने के लिए जितना क्लियरिटी से अर्थात ईमानदारी से संवाद आप करेंगे, उनके इंटरेस्ट एरिया को पहचानेंगे, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, आप उनको बताएं कि जैसे हम आपके ऊपर 100% दया कर रहे हैं, तो तुम अपने जीवन में बेटा माता पिता के ऊपर 50% दया करो, तो ये सारी शब्दावली आपकी मदद वहाँ कर सकती है। लेकिन आप उनको बाई फोर्स या हिडन फॉर्म में करते हैं, तो आज नहीं कल पता चलता है, तो वो आप और उनके बीच में एक द्वंद्व का कारण बन जाएगा और वो हेल्दी रिलेशनशिप वहाँ कोलैप्स हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, लक्षण निर्धारित कैसे किया जाता है और बच्चों के और माता पिता के बीच में जो संवाद है उसको कैसे करना चाहिए वो आपने बताया, क्योंकि हम बच्चों पे कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते, ये आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया, लेकिन उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं दया के गुणों के, मना आप दया करो ऐसे बोल के, क्योंकि दया स्वाभाविक गुण है हमारे अंदर, तो उसके लिए बच्चा जो है तैयार भी हो सकता है, ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के बताया। तो चलिए जाते जाते अब मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी श्रोताओं को।
0: आज के संवाद से यही चीज निकल के आती है कि हमारी लाइफ जितनी ट्रांसपेरेंट होगी, जितनी पारदर्शी होगी, उतना हमारे बच्चों के साथ में हमारे संबंध नेचुरल होंगे। अगर ट्रांसपेरेंसी को हम मेंटेन रखते हैं और उसके लिए जिन अति आवश्यक मानवीय गुणों की आवश्यकता है, उसमें मैंने चर्चा भी किया, तो दया है, प्रेम है, करुणा है, सहानुभूति है, ये केवल बड़ों से छोटों तक नहीं जाती बल्कि छोटों से भी हमारे पास में आती है, ये अगर हम अपने संज्ञान में लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत कहना चाहिए कि स्वस्थ संबंधों को निभा पाएंगे और आप और बच्चों के बीच में सभी प्रकार के द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। जी
1: चलिए डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा अनुभव अपना साझा किया हमारे साथ में। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, बाल मनोविज्ञान पर बातें चल रही हैं और अगले एपिसोड में हम लोग कुछ नई विषय को लेकर आपके साथ बात करेंगे, सार्थक दृष्टिकोण से समाधान की नवीनता क्या हो सकती है, इस विषय को लेकर बातें करेंगे। लेकिन तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब 26 अगस्त की बातें आपसे शेयर करने वाला हूं आज के शो में, और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और मदर टेरेसा, बंसीलाल, चतुर सेन शास्त्री, मेनका गांधी, इंद्र कुमार, जीतू राय, लुईजिनो फ्लेरो, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही अवतार किशन हंगल, एन एस हर्डिकर, अतुल प्रसाद सेन, राधाश राधेश्याम, कथावाचक कृष्ण प्रभाकर खडिलकर, के ए दिनाश, इन सभी का विशेष पुण्य दिवस है। तो आइए आज हम लोग कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। आप सभी जानते हैं मदर टेरेसा को, उनके बारे में भी बात करते हैं और कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से भी आपको गुप्तगु कराते हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत, जैसे कि हम सभी लोग एक खूबसूरत विचार से शुरू करते हैं, और आज का विचार है आपके लिए खास। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए एक सुंदर गीत के साथ आपको जोड़ देते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बंसीलाल जी के बारे में बात करते हैं। चौधरी बंसीलाल आज़ादी के सेनानी, वरिष्ठ नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कई लोगों द्वारा आधुनिक हरियाणा के निर्माता माने जाते हैं। और बंसीलाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में एक तत्कालीन लोहारू रियासत में एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। बंसीलाल को 1975 में आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी का करीबी विधानसभा विश्वास पात्र माना जाता रहा और दिसंबर 1975 में विशेष मार्च 1977 तक रक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी और 1975 में केंद्र सरकार में बिना विभाग के मंत्री के रूप में उनका एक कार्यकाल रहा और उन्हें रेलवे और परिवहन विभागों का संचालन भी किया था। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। बंसीलाल के पिता बचपन की अधिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, इसलिए थोड़ा आरंभिक शिक्षा के बाद 14 वर्ष के उपरांत बंसीलाल को अनाज के व्यापार में डाल दिया गया। पिता की अनुमति न मिलने के पर भी बंसीलाल को अध्ययन का जो क्रम है वो जारी रखा और 52 तक प्राइवेट परीक्षाएं देते हुए BA पास कर लिया। फिर उन्होंने 56 में पंजाब विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। राजनीतिक जीवन सफर जो है, भिवानी में वकालत करते हुए बंसीलाल पिछड़े हुए किसानों के नेता बने और बंसीलाल ने कांग्रेस की एक स्थानीय समितियों में स्थान बनाया और 60 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए और इस प्रकार उन्होंने केंद्रीय स्तर पर नेताओं के संपर्क में आने का अवसर उन्हें मिला और राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल पूरा होने पर वे हरियाणा की राजधानी में वापस आ गए और सदस्य से लेकर 75 तक विधानसभा के सदस्य बने रहे। तो ये थी कुछ खास बातें बंसीलाल चौधरी के बारे में आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं हम लोग अभी, और बंसीलाल जी की कहानी सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। चौधरी बंसीलाल जी के बारे में हमने विशेष बातें की, और अब मैं आप सभी को ले चलता हूं एक और शख्सियत के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम आपने बहुत सुना भी होगा, चतुरसेन शास्त्री के बारे में। अब चतुरसेन शास्त्री जो है, ये हिंदी साहित्य के बहुत ही महान उपन्यासकार थे। इनका अधिकांश समय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित लेख लिखने में समय व्यतीत हुआ। आचार्य चतुरसेन ने उपन्यास रोचक और दिल को छू लेने वाले होते थे। उनकी मुख्य जो उपन्यास या फिर उनका कलेक्शन को अगर नाम से देखा जाए तो पहली उनकी आई थी एक कृति जिसका नाम था गोली, दूसरा सोमनाथ, तीसरा आया था वैमरक्षम और वैशाली की नगरवधु इत्यादि, इनके जो है पॉपुलर किताबों में से एक है। और चतुरसेन की बातें करें तो आचार्य चतुरसेन जी का जन्म आज ही के दिन 26 अगस्त 1891 को चांदोक जिला बुंदेल शहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है। चतुरसेन शास्त्री की ये विशेषता है कि वो उन्होंने उपन्यास के अलावा और भी बहुत कुछ लिखा, कहानियाँ लिखी जिनकी संख्या प्राय 450 है। आप सोच सकते हैं 450 कहानियाँ इन्होंने लिखी। गद्य, काव्य, धर्म, राजनीतिक, इतिहास, समाजशास्त्र के साथ साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा पर भी उन्होंने आधार पूर्वक जो है विशेष चीजें लिखी। द्विवेदी के युग में देवनंद की और देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहरी, किशोरलाल गोस्वामी आदि रचनाकारों के साथ ये हमेशा जुड़े रहते थे और इनकी भी उसी पंक्ति में उपन्यास आते थे। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं हम लोग चतुर्सेन जी के बारे में। बातें चल रही थी उनकी, जो रचनाओं की बात अगर करें तो एक अलग ही इनकी भाषा शैली थी। मेरठ क्षेत्र की साहित्यिक परंपरा इनकी रही है। साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य में न केवल इस क्षेत्र में जनजीवन को संस्कृत पक्ष के अभिव्यक्ति की ओर जोड़ा, बल्कि इस आंचल की भाषिक संवेदनाओं को भी पहचान दी। साहित्यकारों के बिना हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। 26 अगस्त 1891 को बुंदेल शहर के चांदोक में जन्मे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने 32 उपन्यास, 450 कहानियां और अनेक नाटकों का सृजन किया, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से कई अविस्मरणीय चरित्र हिंदी साहित्य को प्रदान किए। सोमनाथ, वैरक्षम, वैशाली की नगर वधु, अपराजिता, केसरी सिंह की रिहाई, धर्मपुत्र, पत्थर युग के दो भूत, बगुला के पंख उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और चार खंडों में लिखे गए सोना और खून के दूसरे भाग में 1857 की क्रांति के दौरान मेरठ अंचल में लोगों की जो शहादत का मार्मिक वर्णन किया गया है, गोली ये जो उपन्यास है वो राजस्थान के राजा राजाओं और दासियों के संबंध में कुछ समकालीन बातों को लेकर समाज की कुछ संबंधों को उखेरते हुए दिखाई देता है। अपनी समर्थ भाषा शैली के चलते शास्त्री जी ने अद्भुत लोकप्रियता हासिल की और वो जन साहित्यकार बने। तो ये थी कुछ खास बातें उनकी रचनाओं के बारे में। आइए आगे बढ़ते हुए उनकी जो विशेष बातें रहीं उनके जीवन में, भारत के उत्तराखंड में आर्य के सूर्यमंडल और चंद्रमंडल नामक दो राज समूह थे और दोनों मंडलों को मिलाकर आर्यवत कहा जाता था। उन दिनों आर्य में ये नियम प्रचलित था कि सामाजिक श्रृंखला भंग करने वालों को समाज बहिष्कृत कर दिया जाता था और दंडनीय जनों को जाति बहिष्कार के अतिरिक्त जेल भी और जुर्माना भी हुआ करता था। बहिष्कृत जन इस तरह से इन चीज़ों के बीच में आ जाते थे और धीरे धीरे ये जनों को दक्षिण और वहाँ के द्वीप पुंजों में दसु, महेश, कपी, नाग, पौंड, द्रविड़, परद, खास, पल्लव, चीन, किरात, मल, शक आदि जातियाँ संगठित हो गई थी। और आचार्य चतुर्सेन जी ने भी अपने लेख के संबंध में ऐसे व्यक्तिवत जो बातें सोमनाथ के विषय में उन्होंने लिखा था, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के उपन्यास जय सोमनाथ को पढ़ा और उसके बाद उनके मन में आकांक्षा जगी कि वे मुंशी के नहले पर अपना दहला मारे और उन्होंने अपने उपन्यास सोमनाथ की रचना कर दी। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि एक अगर साहित्यकार किसी चीज को पढ़ लेता है तो अगर उसमें कहीं कुछ कमी लगता है तो उस कमी को पूरा करने के लिए उसी नाम से या उसका पार्ट टू भी वो लिख सकता है, जिस तरह से आचार्य चतुर्सेन जी ने किया। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें आचार्य चतुर्सेन जी के बारे में। एक अच्छे साहित्यकार की जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें मैंने आपसे शेयर किया और ये 2 फरवरी 1960 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। आइए इसके साथ ही मैं एक और गीत के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो चलिए, एक बहुत ही पॉपुलर राजनीतिक, इनका भी जन्मदिन आज है 26 अगस्त, तो 1956 में इनका जन्म हुआ और भारत की बहुत ही पॉपुलर पर्यावरणविद, कार्यकर्ता और पशु अधिकारीवादी है मेनका गांधी। वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री है। भारत में पशु अधिकारों के प्रश्न को मुख्य धारा में लाने का श्रेय मेनका जी को जाता है। सन 1992 में उन्होंने पीपल फॉर एनिमल्स नामक एक गैर सरकारी संगठन आरंभ किया जो भारत में पशु आश्रय चलाता है और मेनका विशेष रूप से इसकी सदस्य हैं। और मेनका अपने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की पत्नी है। इन्होंने अनेकों पुस्तकों की रचना की और उनके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्राय लेख आते रहते हैं और वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री है और 11वीं 12वीं 13वीं 15वीं और लोकसभा के विशेष सदस्य चुनी है। तो आइए इनके बारे में कुछ और बातें आपको बताते हैं। 16वीं लोकसभा में पीलीभीत सीट से विजयी मेनका गांधी का जन्म आज ही के दिन 1956 को दिल्ली में हुआ था और शिक्षा दीक्षा लॉरेंस स्कूल और फिर उसके बाद नई दिल्ली में इनकी बाकी की शिक्षा हुई और 1982 में राजनीति में आई और वह चार सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। राजनीति में हटकर मेनका एक पत्रकार भी हैं और एक पत्रिका की संपादन भी कर चुकी है। कानून और पशुओं पर आधारित बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें बेजुबान पशुओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें मेनका जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हैं और आशा करूंगा मेनका जी को सुनकर आपको भी पशु या मूक पक्षी जो जानवर है उनके प्रति सहानुभूति जरूर हो रही होगी। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक अभी विशेष महिला की बात सुनाने वाला हूँ। मदर टेरेसा, आपने ये नाम सुना ही होगा, है ना। रोमन कैथलिक नन थी जिन्होंने सन 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। इन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और 45 साल तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद की, और साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। मदर टेरेसा ने जिस आत्मीयता से भारत के दीन दुखियों की सेवा की, उनके लिए देश सदैव उनका त्राणी रहेगा। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्रेस गोनस्का बोजासियो था, जिसे रोमन कैथलिक चर्च द्वारा कोलकाता की संत टेरेसा का नाम दिया गया था। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, आपको सीधे ले चलता हूं मैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: जिंदगी उसी की जिसकी मौत पे जमाना अफसोस करे गालिब। यूं तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन याद सिर्फ वही रहते हैं जिन्होंने इस देश और समाज को अपनी एक अलग छवि दी है, अपना एक अलग रूप दिया है और एक अपनी अलग दिशा दी है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं दो शब्द हैं, दया और निस्वार्थ भाव, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही महान होता है। और आज हम ब्लैक डायरी के इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जिनका नाम है मदर टेरेसा, जो भारत की नहीं होने के बावजूद वो भारत आई।

व्यवसायी थे, और जब वो मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना पर आ गई। वो 5 भाइयों में सबसे छोटी थी। वो एक सुंदर, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना गाना उन्हें बेहद पसंद था, और ऐसा माना जाता है कि जब वो मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। और जब वे 18 साल की हुई तो उस उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला किया। तत्पश्चात वो आयरलैंड गई जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वो एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उन्हें बेहद स्नेह करते थे। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास जो गरीबी और दरिद्रता और जो लाचारी जो फैली हुई थी उससे उनका मन बहुत अशांत रहा करता था। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों से तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयावह हो गई। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया, और इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। और वहां से पहली बार वो तालतला गई, जहां वो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घाव धोए, उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें दवाइयां दी। धीरे धीरे उनके कार्य से लोगों का ध्यान वो अपनी तरफ खींचती रही, और इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे जिन्होंने उनके काम की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बेहद कठिन था। वो लोरेटो छोड़ चुकी थी इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई, अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मशीनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिली। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े लूले, अंधों और चर्म रोग से ग्रसित ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों वे गरीबों की सेवा करना था जिन्हें समाज ने बाहर कर दिया हो। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। वो कहते हैं ना, सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पहले पद्मश्री और 1980 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से अलंकृत किया। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता के लिए दिया गया।
मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की 1 लाख

0: $92,000 की धनराशि गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मदर टेरेसा को कई सालों से दिल व किडनी की परेशानी थी। 1997 में जब उनकी हालत बिगड़ती चली गई, उन्होंने मार्च 1997 को मशीनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनका देहांत हो गया। जिनका कहना था कि यदि हमारे बीच शांति की कमी है तो वह केवल इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर उनकी यह शिक्षा समाज अपनाता रहे तो निश्चित रूप से उनसे एक नई दिशा मिलेगी और सामाजिक सौहार्द हमेशा बना रहेगा। ऐसी महान शख्सियत को ब्लैक डायरी करता है नमन। इसी तरह की बायोग्राफीज को हम और किस बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं, ये आप हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें और जाते जाते ब्लैक डायरी का आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे का बटन आपको नजर आ रहा है उसे भी आप दबा दीजिए। शुक्रिया।
1: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और जाते जाते आपके लिए एक सुंदर सा विचार छोड़े जा रहा हूं। कहते हैं 100 असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो इसीलिए किसी भी कार्य को करते वक्त आप ये मत सोचिए कि अब नहीं होगा, बिल्कुल इसके बाद होगा, ये सोचते रहिए। हमेशा देखिए पॉजिटिव साइड्स को। और 100 भी फेल हो गए तो क्या हुआ? हमारे जो बल्ब बनाने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने 1000 जो है फेल हो गए, उसके बाद भी बल्ब नहीं बना था। तो उनको पूछा, भाई तू क्या पगला गया है? 1000 नहीं हुआ तब भी प्रयास कर रहा है, तो इसका पीछे रहस्य क्या है? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी जवाब बताया था कि भाई मैं 100,000 ये देखा हो कि इससे बल्ब नहीं बनते हैं, तो मेरे पास 1000 तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बनता ये बताने के लिए। तो कहने का बात ये है कि भाई करते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। ट्रायल एंड एरर ये जिंदगी का एक फलसफा है, इसको ठीक से समझ लो तो दुख की बात नहीं होगी। दुख भी आए तो आपको कहीं ना कहीं सुख देने का काम करेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। दुख में आप दुख को सहन करेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे सुख के लिए, है ना। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सफर इस कार्यक्रम को। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और दोस्तों हम सब आ गए हैं आपके पास लेकर एक नए विषय और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है मोनिका. और दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज उस विषय के बारे में जो एक जीवन को कुछ इस तरीके से प्रभावित करता है कि समझ लें कि वो एक नया मोड़ ही ले आता है. हम बात कर रहे हैं कि जब कुछ ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन आ जाती है, एक बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है. कुछ मजबूरी होती है, कुछ चॉइस भी होती है, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस यानी हमें ये महसूसता नहीं होती कि क्या असर पड़ जाएगा. कई बार होती है मगर परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि वो हम कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी सिचुएशंस में क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी जानेंगे, क्या उपाय हैं वो भी जानेंगे और बात करेंगे इस विषय में. मोनिका आपका स्वागत है.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया.
0: तो मोनिका सबसे पहले तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में.
1: वैसे शिक्षा का महत्व तो आजकल सभी को पता है और शिक्षा के मामले में आजकल सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई है. तो वैसे आजकल सारे लोग शिक्षा लेते हैं पर ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें इस मामले में जागरूकता नहीं है और कोई ना कोई ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से वो स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में ही. और फिर एक ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में जब उन्हें लगता है कि हम क्या हम फिर से जा सकते हैं, क्या हम फिर से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. तो उनके लिए आज ये हमारा सेशन है. राइट.
0: ओके. तो जैसा आपने कहा कि क्या हम एक शिक्षा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये मन में आता है, पर क्या रीज़न होते हैं, मतलब क्यों आपको लगता है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्या विश प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या लगता है आपको.
1: जी सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि किसी कोई परिवार होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल वित्तीय प्रॉब्लम्स होती हैं. पर आजकल सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्लान अमेंडमेंट किया है, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलेंगे. 2009 में ही हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो पास हुई थी जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण प्राप्त किया जाता है. तो ये प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, मतलब
0: सॉल्व करने का प्रयास तो हो रहा है बिल्कुल. लेकिन हम अगर गांव-गांव में देखते हैं, आज बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जब माता पिता दोनों काम पे जाते हैं और घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें देखने के लिए कोई नहीं होता, तो कई बार बड़े भाई बहनों को स्कूल छोड़ना पड़ता है. कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जो बच्चे हैं वो उन्हें वो माहौल नहीं मिलता कि घर पे पढ़ाई के लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि शायद पढ़ाई करके क्या ही फ़ायदा है. कई बार माता पिता को भी ऐसा लगता है क्योंकि इतनी नौकरियां अब कहाँ से गांव में दिखेंगी, गांव में खेती करनी है या वही काम करना है, तो माता पिता को भी ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो अभी कमाएं क्योंकि बाद में भी यही काम करना है और अभी भी यही काम करना है. एक ये भी सिचुएशन होती है. और कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि छोटी सी बात बड़ी बुरी लग जाती है किसी टीचर की, कोई टीचर डांटेगा या फिर उनसे डर लगने लगता है या किसी और बात से डर लगने लगता है और लगता है कि छोड़ो मेरे दोस्त भी तो नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जाता हूँ. और वो एक दिन एक महीना और एक महीना एक साल और एक साल न जाने कितने साल बन जाता है और स्कूल जाना ही बंद हो जाता है. कई बार एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आता उस चक्कर में ऐसा हो जाता है. कई बार लड़कियों के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि रास्ते में छेड़छाड़ के मामले हो जाते हैं और वो ना घर पे बता पाती हैं ना स्कूल में किसी की मदद ले पाती हैं, और ऐसे में किसी को पता चलता है तो मुश्किल का सामना लड़कियों को ही करना पड़ता है, उनका स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद करा दिया जाता है. ये सब समस्याएं हैं लेकिन हल नहीं है. स्कूल बंद करा देना हल कभी नहीं हो सकता, सल्यूशन कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि पूरे जीवन का जो आधार है वो है शिक्षा. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, कर रहे हैं. ये इतना आसान तो नहीं है लेकिन हम सभी के प्रयास से मिलकर हम कुछ सफलता हासिल ज़रूर कर सकते हैं. और मोनिका और क्या लगता है, आपने इस बारे में और पढ़ भी रहे थे, आप क्या पढ़ा आपने.
1: जी कहीं कहीं पे लड़कियों के को शिक्षित करना एक समझा जाता है कि क्या ही करेगी पढ़ के, आगे जाके शादी करनी है और ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर वर मिलना वो वो भी चीज़ें हो जाती है जो माता पिता सोचते हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची, और लड़कों के मामले में रहता है कि आगे जाके इसने हमारा ही बिजनेस संभालना है तो क्या फ़ायदा, मतलब पढ़ के
0: ऐसा भी सोच लेते हैं
1: जी, जी। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कोई कोई स्कूल्स में एक ही एक साथ बहुत काफ़ी बच्चों को बिठा देते हैं और काफ़ी अलग अलग

0: सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाते हैं, उसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट भी चला जाता है. और कहीं पे जो सिखाते हैं स्कूल में वो ऑफ टॉपिक हो जाता है, जो बच्चों को लगता है कि इसका हमारे जीवन में रिलेशन नहीं है कुछ भी, इसका कहीं कहाँ उपयोग हो सकता है, तो हम क्या ही करेंगे पढ़ के
1: क्या फ़ायदा है
0: जी. तो इसके लिए शिक्षा इसका शिक्षा इस तरह से बनाई जानी चाहिए, नॉलेज एजुकेशन इस तरह का हो कि वो बहुत एंगेजिंग हो, बच्चों का ध्यान आकर्षित करे और
1: टीचर्स कुछ नए नए तरीके इस्तेमाल
0: नए तरीके होते हैं
1: जी. बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी बात है
0: जी. और जो लड़कियां होती हैं उन्हें वो कभी कभी इस कारण से भी स्कूल नहीं जाती है कि स्कूल में शौच घर नहीं होता है, तो उस कारण से भी वो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो आजकल काफ़ी स्कूल्स में बनाया भी जाता है
1: जी,
0: अवेलेबल किया जाता है, पर कहीं कहीं पे नहीं भी है, तो वो भी एक कारण है,
1: बहुत बड़ा कारण है. बिल्कुल
0: जी.
1: तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते. ऐसा लगता है कि अभी उस समय महसूस नहीं होता कि कितना बड़ा ये हमारे जीवन पे असर डालेगा, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, देखते हैं कि और उनके साथ के जो लोग हैं वो आगे निकल रहे हैं या अच्छे पदों पे नौकरी कर रहे हैं या कुछ अपना कर रहे हैं, तो महसूस तो होती है और फिर गिल्ट भी होता है, बुरा भी लगता है माता पिता को भी और बच्चों को भी. हाँ ये ज़रूर है कि भाई जिनका वो समय निकल गया, वो यूथ हो गए, बड़े हो गए, वो भी पढ़ सकते हैं हालांकि, लेकिन जो बच्चे हैं अगर आप लोगों ने किसी भी कारण से स्कूल छोड़ दिया है ना दोस्तों, तो उस कारण का दूसरा निवारण ढूंढ लीजिए, क्योंकि स्कूल छोड़ना सल्यूशन नहीं है. आपके जीवन के लिए स्कूल जाना बहुत बहुत ज़रूरी है. इस बारे में और भी बात करेंगे मोनिका. एक छोटा सा गीत हमारे दोस्तों को सुनाते हैं, लौट कर आएंगे. कार्यक्रम रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं युवा मंच. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज करा सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, डेप्यूटी डायरेक्टर, रूम नंबर 116, इवनिंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन नंबर 0112388647, ईमेल prabhudat.sharma@nic.in या CISCELL-MOIB@NIC.IN।

0: हूँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और हम बात कर रहे हैं आज दोस्तों स्कूल ड्रॉप आउट कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। अब लेकिन कैसे और क्यों, मुझे लगता है सबके कारण अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशंस भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए शो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हमारे साथ मोनिका जुड़ गई है स्टूडियो में। मोनिका, और क्या कारण है, आपको क्या लगता है क्यों होता है स्कूल ड्रॉप आउट?
1: जी, कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस में JEE और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनना होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो कुछ बच्चे इन्हें टाइम इसके लिए तैयारी करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम इसमें देते हैं और उसकी वजह से वो स्कूल के जो क्लासेस होते हैं वो मिस करते हैं और फिर वो स्कूल में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिर वो छोड़ देते हैं स्कूल। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार फेल होते होते फिर उनका फिर वो छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं करते, हम ऐसे ही कोई बिजनेस कर लेंगे। ये भी कारण है। और कुछ पेरेंट, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इधर उधर वो शिफ्ट करती रहती हैं, जो बहुत सिटीज़ में जो डिफेंस फैमिलीज होती हैं और उसकी वजह से
0: होते हैं वो बहुत सारे जो मजदूरी करते हैं, भाई बहन बंजारे भी होते हैं, वो एक जगह पे नहीं टिकते तो उनका कहीं पे बच्चों की उनकी पढ़ाई एक जगह नहीं हो पाती है।
1: जी, डिस्टर्ब हो जाता है उनका और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो भी उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। और जैसे कि हमने बुलिंग के बारे में भी बात की थी, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। और इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ में बैकग्राउंड ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं होता है और बच्चे जुआ और सट्टा ज़्यादा खेलते हैं,
0: गलत आदतों में पड़ जाते हैं।
1: जी, तो वहाँ शिक्षा का महत्व नहीं होता है तो इस वजह से भी वो स्कूल छोड़ देते हैं।
0: और कई बार लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है, मैंने कहा ना कि लड़कियों स्कूल छोड़ने की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और कई बार तो शुरुआत भी नहीं हो पाती, उनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता। कई बार भेजा जाता है तो उनकी पढ़ाई को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता जितना लड़कों की पढ़ाई को समझा जाता है।
1: हाँ जी,
0: और कई बार तो छुड़वा भी दिया जाता है स्कूल।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: हाँ, किसी के पास अगर आर्थिक समस्या है, पैसे वित्तीय समस्याएं हैं तो उनकी शादी करवाई जाती है, तो इसलिए ये भी कारण है, खास करके जो लड़कियाँ होती है।
0: बिल्कुल, और कई बार लड़कियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर छोटा भाई बहन है घर में तो भले वो लड़की खुद बहुत छोटी है बट उसे खुद अपने छोटे भाई बहन को देखना संभालना होता है। दोस्तों, परिस्थिति को हम समझ सकते हैं और अगर परिस्थिति इतनी बड़ी है ना कि नहीं हैंडल हो रही, तब भी मिलकर पूरा परिवार कोई ना कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर वो छोटी बच्ची की पढ़ाई छुड़वा दी गई तो उसका पूरा भविष्य दांव पर लग जाएगा और उसके पूरे भविष्य में अगर वो कल को चाहेगी कि एक अच्छे जॉब के लिए अप्लाई कर पाए, या मान लीजिए आज हम देखते हैं घरेलू हिंसा, कितने लोगों को इस घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, कितनी लड़कियों को अत्याचार सहने पड़ते हैं शादी के बाद भी। तो अगर एक लड़की आत्मनिर्भर है, अगर वो पढ़ी लिखी है, फिर उसकी शादी होती है, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने को इतना संभाल सकती है, अपनी केयर कर सकती है, बल्कि दूसरों की भी केयर कर सकती है, सिर्फ अपनी नहीं, उसको मदद मिलती है, उसको हौसला मिलता है। तो पूरे जीवन के लिए पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं चाहिए, पढ़ाई जीवन के लिए चाहिए। तो इसीलिए लड़कियों की पढ़ाई तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छुड़वानी चाहिए। आप अगर मिलके सोचेंगे, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। लेकिन वो बच्ची अगर स्कूल के अगर रास्ते को भूल गई ना, तो कल को हो सकता है उसका भविष्य उतना अच्छा ना हो पाए जितना चाहते हैं या वो खुद चाहती है। तो बहुत दुख होता है कई बार जब बच्चियों को छोटे-छोटे देखते हैं और उनको स्कूल जाने को नहीं मिलता है।
1: जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी, एक्चुअली हमारे हम भी ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे बोलते थे कि ज़्यादा पढ़ाना नहीं है और शादी करा देते हैं जल्दी, और हमें भी बोला जाता था कि क्या करोगे पढ़ के, और मतलब हमें ऐसे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे थे कि उनकी शादी करा देते थे पढ़ाई होने के बाद, फिर ऐसी सोच थी। पर आज हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से शिक्षित किया है, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए शिक्षा का महत्व खाली वहाँ तक नहीं है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व बहुत बहुत विकसित होता है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स अच्छा दिख के आता है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन जीने की कला हमें शिक्षा से मिलती है, शिक्षा में बहुत कुछ सिखाती है।
0: बिल्कुल, और कितनी सही बात की। और देखिए, आपके घर वालों ने इस बात को समझा
1: जी,
0: है ना, नहीं तो अगर समाज की, अड़ोसी पड़ोसियों की या कई बार रिश्तेदारों की बातों में भी आ जाते
1: जी,
0: तो हो सकता है, अब कई बार ऐसा होता है उन लोगों की बातों में हम आ जाते जिनकी हमारे जीवन से कोई लेना देना भी नहीं है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले, ना हम उनके किसी काम आने वाले हैं भविष्य में, तो जो होना है वो होना है, लेकिन फिर भी उनकी बातों का असर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लड़की को तुमने इतना पढ़ा दिया, लड़की को तुमने इतनी छूट दे दी, है ना, तो इस तरह की बातें भी बहुत होती हैं। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी कौन है, आपके बच्चे ज़रूरी हैं या लोग ज़रूरी हैं, और लोग तो बातें करते ही रहेंगे, कभी भी वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, जो बातें सही हैं तो समाज को समाज बनाने के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी है, हम सब एक समाज में रहते हैं तो हम उनका पालन करें, लेकिन अगर एक बच्चे की पढ़ाई की कुर्बानी देनी पड़ रही है उन बातों को पूरा करने के लिए, अगर किसी का भविष्य खराब करना पड़ रहा है उन बातों को सही ठहराने के लिए, तो आपका निर्णय अपने बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी गलत होगा, क्योंकि हमें समाज भी ऐसा चाहिए, वो बच्चे जो कल का भविष्य है वो पढ़े लिखे चाहिए, है ना, तभी तो बदलाव होगा, तभी तो परिस्थिति बदलेगी
1: जी।
0: जो हम चाहते हैं कि बेटर हो हमारा, कल को पैसे ज़्यादा आए घर में, घर की कंडीशन बेहतर हो, सब कुछ बेहतर चाहते हैं, कोई तो नहीं चाहता और बिगड़ जाए चीज़ें, नहीं, तो वो सुधरने का बहुत बड़ा हथियार है शिक्षा
1: जी,
0: बहुत ज़रूरी है।
1: जहाँ पे लोग पूछते हैं, ऐसी बातें करते कि क्या करोगे, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं आपने क्या पढ़ाई की है,
0: बिल्कुल,
1: तो उन्हें जवाब देने के लिए भी हमें पढ़ना तो ज़रूरी है।
0: कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमें बोलने का,
1: हाँ जी।
0: अगर हमने पढ़ाई नहीं की है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो लोग तो बोल रहे हैं इतने अच्छे से, हम डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता, उस चक्कर में हम जो टैलेंट है ना, जो हुनर है वो भी दिखा नहीं पाते आप, तो
1: जी।
0: कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के महत्व को समझना ही होगा। हाँ, जो हो गया सो हो गया, जो नहीं पढ़े, जिन्होंने कार्य जल्दी शुरू कर दिया, अपने घर को संभाला, उनकी बहुत बड़ा त्याग है उन्होंने किया, और वो त्याग जाया ना हो इसके लिए आप आने वाली जनरेशन को पढ़ाइए, इस जनरेशन को पढ़ाइए। इनफैक्ट जो घर में लोग हैं, अक्षर ज्ञान तो वो भी ले सकते हैं ना, मम्मी को अपने, आप बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अपनी मम्मी को आप लिखना सिखाओ, अपनी मम्मी को ABCD KKKK सिखाओ, और आप उनको साइन करना सिखाओ, ताकि वो कल को बैंक में जाते हैं या बस में बस लेने जाते हैं तो वो पढ़ पाए, उन्हें किसी को पूछना नहीं पड़े कि वो क्या लिखा है, कहाँ साइन करना है, कैसे साइन करना है, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाए, उनके साथ कोई गलत नहीं कर पाए। तो आप अपनी माँ को भी पढ़ाइए, आप अपने बहन को भी पढ़ाइए, आपके घर में जो लोग नहीं पढ़े हैं, भले उम्र में बड़े हैं, अक्षर ज्ञान ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी है ना मोनिका
1: जी, बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस मुहिम को आप सब आगे लेकर जाएंगे हमारे साथ साथ। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: लौट कर आ गए हम कार्यक्रम युवा मंच में और दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्कूल को ही बीच में छोड़ देने से क्या होता है। वैसे अनुभव जो स्कूल छोड़ते हैं उनको भी है, उनके माता पिता को भी है, उनके अड़ोसी पड़ोसी और परिवार वालों को भी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत ऐसी बात है कि सब कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब भाई किसी के दोस्त सारे अगर स्कूल छोड़ के बैठे हैं खेल रहे हैं तो बच्चे को भी लगता है कि मैं भी खेलूं, मैं क्यों जाऊं, रोज़ मुझे टीचर मारती है डांटती है, ये करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो क्यों मैं, मेरे दोस्त कितना इन्जॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी अपना मस्ती कर रहे हैं, जो कर अपने दिन में खुश हैं, तो मैं भी क्यों ना खुश रहूं, मेरे साथ ये। लेकिन अब बात यह है दोस्तों, ऐसे में उस समय वो बच्चा तो नादान है, छोटा है, लेकिन माता पिता को उन्हें बहुत बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी ही है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम टॉप ही करो, एकदम परसेंटेज 90 आ जाए 80 आ जाए, लेकिन पढ़ाई करो, समझो और आगे बढ़ो। और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा जीवन इससे अफेक्ट होता है। और मोनिका क्या लगता है आपको इस बारे में? और
1: जी बिल्कुल आपने सही कहा, जब मैं छोटी थी और ऑफकोर्स जो भी बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि पढ़ाई से छुटकारा हो जाना चाहिए, बस खेल कूद होनी चाहिए और मज़े होने चाहिए। लेकिन अभी हमें लगता है कि नहीं, पढ़ाई का, शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब हम देखते हैं हमारी एज के कुछ बच्चे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ विदेश में जाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, तो अभी हमें शिक्षा का महत्व पता चलता है। हम छोटे रहते हैं तो नादान रहते हैं, और एज अ पेरेंट हमें तो पता है इम्पोर्टेंस, तो हमें बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर बच्चों का मोटिवेशन, बच्चे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है।
0: पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और दोस्तों अगर हम बात करें कि कुछ आपको अगर डेटा आपके साथ शेयर करना चाहे, तो दोस्तों एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई जो कि डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने कराई, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त 2023 की। 2023 को 9 अगस्त को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जागरण में, और दोस्तों उसमें बताया गया कि उन्होंने एक स्टडी की थी और जिसमें उन्हें ये पता चला कि जो रूरल इंडिया है, अगर हम बात करें गाँव की बात करें, कई ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल तक भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों के माता पिता हैं 78% और लड़कों के 82 यानी 82%। यानी लड़कों के माता पिता अभी भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों के माता पिता हाँ अवेयर हैं, ग्रेजुएशन कराना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कंपैरिजन में कम है। लड़कियों की पढ़ाई को अभी भी महत्व कंपेरेटिवली लड़कों से कंपेयर किया जाए तो कम मिलता है। और ये जो स्टडी हुई यानी जो रिसर्च हुई, ये ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने करवाई, और ये रिसर्च जो 6 से 16 साल तक के बच्चे होते हैं गांव में, रूरल कम्युनिटीज़ में, उनके माता पिता से पूछा गया था, बात की गई थी, और करीब 20 स्टेट में ये रिसर्च कंडक्ट की गई। तो दोस्तों जब ये रिज़ल्ट आता है तो एक ये भी एहसास होता है कि हाँ पहले से हालात बहुत बदल गए हैं, लेकिन अभी भी एहसास होता है कि अभी भी लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना लड़कियों की शिक्षा को मिलता है ना
1: जी।
0: तो दोस्तों ज़रूरी है कि हम ये बातें जानें, और अगर हम ड्रॉप आउट की इस वक्त बात कर ही रहे हैं, टोटल जो ड्रॉप आउट है, अब उसकी बात करें तो ड्रॉप आउट रेट जो है कि लड़कियों के जो छोटी बच्चियां होती है उनमें ज़्यादा है, और इसी रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, 35%। आप सोचें 35%। और आप अगर लड़कों की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल ये रेट ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों में हो ही नहीं रहा, लड़कों में नहीं हो रहा, लेकिन लड़कियों में अभी भी ज़्यादा है। यानी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लड़की सिर्फ शादी करके दूसरे घर नहीं जाएगी, बल्कि उसका जीवन भी उतना ही, उम्र वो जीने वाली है उतना ही, वो ज़रूरी है उतना ही, वो समाज का हिस्सा है उतना। और सोचिए, एक लड़की, कहते हैं ना कि भाई एक लड़के को पढ़ाते हैं तो एक लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, ये कहावत है
1: जी।
0: और आप कुछ कहना चाहोगे, आपने जो पढ़ा, जो इस बारे में विषय में समझा?
1: जी वैसे आजकल लड़कियां लड़कों से आगे ही है हर क्षेत्र में। हम स्कूल में भी देखते थे कि जो टॉपर्स रहते थे और आजकल यूनिवर्सिटी टॉपर्स मोस्टली लड़कियां रहती है और लड़कियां किसी के मामले में कम नहीं है. कहीं कहीं पे लड़कियों ने दिखा दिया कि लड़कों से कम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आज भी ऐसे लड़कियों की शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता है. हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम लड़कों वाले लड़कियों वाले दोनों काम कर लेते, तो एक अच्छा लगता है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं,
0: अपने माता पिता को भी संभाल सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत पड़े तो हम मदद कर सकते हैं, चाहे ट्रेन का टिकट करना हो, कुछ सामान खरीदना हो, कुछ भी करना हो
1: जी.
0: तो लड़कियां गाड़ियां चलाती हैं, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, तो अगर वो शिक्षित नहीं होती तो वो संभल कैसे होती
1: जी.
0: और दोस्तों जब भी बात शिक्षा की आती है तो मुझे लगता है एक प्रश्न सबके मन में आता ही है, और वो ये भी अभी भी हमें ये ज़रूर लगता है कि पढ़ा के क्या होगा. अगर मान लो काम वही करना है जो हमारे माता पिता कर रहे हैं तो पढ़ के क्या फ़र्क पड़ जाएगा.
1: नहीं, पढ़ने से तो बहुत फ़र्क होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं. सिर्फ पढ़ाना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कमाई का साधन नहीं है, बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो पढ़ाई से बहुत फ़ायदे होते हैं.
0: अब पता है मानेगा एक प्रश्न ये ना, छोटे छोटे बच्चे गांव में, एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पास के ही, और उन बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मतलब स्कूल, अगर मान लो आपको स्कूल से क्या, स्कूल जाने से क्या होगा. तो उसमें से एक छोटी सी लड़की थी, वो लड़की ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 6-7 साल की थी शायद. तो उस लड़की ने बोला कि अगर मुझे खाना भी बनाना है तो अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगी ना तो मैं कुछ नया नया और बना पाऊँगी, मुझे पता चलेगा और कहाँ कहाँ क्या बनाते हैं, कैसे मैं पढ़ पाऊँगी, कैसे कैसे बनाते हैं. तो सिर्फ जो यहाँ बनता है, जो हम खा

0: को समझ रहे हैं कि वो जो जीवन जी रहे हैं उसी को बेहतर कर सकते हैं अगर वो शिक्षा हासिल कर लें तो।
1: जी, आपको एक बात बताऊंगी। एक्चुअली मैंने तो वैसे कॉमर्स किया है, पर अचानक से मुझे ऐसे इंटरेस्ट आया कि साइंस की बुक होती है जो NCERT जो UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनकी मैंने साइंस की बुक पढ़ी थोड़ी सी, और मुझे इतना सारा नॉलेज मिला उसमें से कि कौन सी चीज़ों में विटामिन्स मिलते हैं, कौन सी चीज़ में एनर्जी मिलती है, और जो जैसे कि आपने कहा जो खेती करते हैं उन्हें उस क्षेत्र में भी बहुत सारा नॉलेज मिला। मैंने एक ही किताब पढ़ी और इतना नॉलेज अगर मिल रहा है तो पूरी की पूरी अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप कितने ज़्यादा शिक्षित हो जाओगे और वो आपको काम में आएगा। आप कैसे जीना है, अच्छे से अपने आप को कैसे रखना है, आप हम पढ़ाई क्यों करते हैं उसके पीछे कारण है ना। पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी करेंगे डिग्री मिल गई उसके लिए, हमें उसमें से सीखने को मिल रहा है। अगर वो प्रथा चलती आ रही कि पढ़ाना है तो उसमें से फ़ायदा हो रहा है, तभी हम पढ़ाई को शिक्षा को इतना महत्व दे रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखो आपने वो बुक पढ़ी इसलिए कि आपको जानकारी मिले, आपको एग्जाम नहीं देना था वहाँ पे, स्कूल की किताब नहीं थी आपकी, तो नॉलेज जहाँ से मिले आपको काम ही आएगी एक ना एक दिन, आपको वो मदद ही करेगी कभी ना कभी। खाली नहीं जाती कोई भी चीज़ अगर आपने सीखी है तो। ये कहता है हमारे बड़े बूढ़े हमें समझाते आए हैं, कहते आए हैं इस बात को। और मोनिका, क्योंकि हमारे शो भी ख़त्म होने वाला है थोड़े समय में, आपने कुछ NIOS के बारे में भी पढ़ा है और उपाय सॉल्यूशंस की भी अगर बात करें तो आप क्या सोचते हो?
1: जी, जो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत साल हो गए हम और हमने स्कूल छोड़ दिया था, हमने 4th to 8th grade पढ़ाई की थी, और हम क्या हम फिर से पढ़ सकते हैं, क्या हम फिर से स्कूल जा सकते हैं और कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए खुशखबर है कि हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हो। और उसका सॉल्यूशन ये है कि एक उसके सॉल्यूशन है कि एक NIOS जैसे कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूट है, सरकार भारत सरकार ने जारी किया है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ओपन स्कूलिंग कहा जाता है, एक ये ऑप्शन है। उसके अलावा जिन बच्चों ने हाल ही में स्कूल छोड़ा है और अभी स्कूल जाने की एज में है वो स्कूल जा भी सकते हैं, तो वो रेगुलर स्कूल्स में जाके भी फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है वो NIOS के थ्रू जा सकते हैं। हर एक स्टेट का ओपन स्कूलिंग का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। मैंने एक्चुअली सर्च किया था ये, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है वो जनरल है, और
0: यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान।
1: जी, और एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है,
0: इग्नू जिसे कहते हैं।
1: जी, और उसके अलावा काफ़ी स्टेट्स हैं जिनके अपने अपने NIOS हैं, ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बेंगलोर में भी अपने अपने ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इतनी व्यवस्था आई है, मतलब आप कभी भी पढ़ना चाहो, कभी भी वापस शिक्षा प्राप्त करना चाहो तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, टीचर्स होते हैं उनसे।
0: जैसे आपने इग्नू वगैरह की बात करी और ऐसे कॉलेजेस की बात की, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी वो होती हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन करते हैं, यानी आप 12th कर चुके हैं, आप उसके बाद की पढ़ाई होती है। NIOS की बात कर रहे हैं हम, वो ओपन हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो ड्रॉप आउट जिन्होंने स्कूल में किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो ओपन लर्निंग कर सकते हैं। मतलब आपको रोज़ स्कूल नहीं जाना है, आपको किसी पर्टिकुलर जगह एडमिशन नहीं, लेकिन हाँ आप वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं और आपके पास वो डिग्री वो आपको आ जाता है कि एक क्लास आपने पास कर ली है। तो अगर आप किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो सबसे अच्छा है स्कूल जाना, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र निकल गई है या कुछ और मुश्किलें अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। ये लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है पूरी दुनिया का, आप सोचें कितना बड़ा ये कार्य चल रहा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के अंडर आता है, और आप अगर इस बारे में जानना चाहें तो दोस्तों आप nios.ac.in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, nios.ac

0: ac.in।
1: जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी। लोगों को, कुछ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि, ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत साल निकल जाएंगे पढ़ने में, लेकिन NIOS का, ओपन स्कूलिंग का एक फ़ायदा होता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। आपकी, आपको किस क्षेत्र में पढ़ना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, वो अपने उसके हिसाब से आपका प्लान बनाते हैं, और आपका पढ़ाई भी आपकी स्पीड आपके ऊपर है, आपको कितनी स्पीड से पढ़ना है। तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, अगर आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए तो वो भी पॉसिबल है। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है।
0: और दोस्तों, अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी चाहिए तो एक टोल फ्री नंबर भी है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर है 1800 1800 9393। नंबर मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 1800 1800 9393। तो ये नंबर भी है जहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, और आप पढ़ाई अपनी पूरी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जाते जाते भी हम यही दरख्वास्त करेंगे आप सभी से, अगर आपके आसपास कोई है जो स्कूली शिक्षा अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उन्हें भी मोटिवेट कीजिए। उनको जिस तरह से मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए। वैसे तो हम एक दूसरे के लिए कितना कुछ करते हैं ना, बर्थडे होता है तोहफा लेकर आते हैं, कुछ और उसको खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को शिक्षा का उपहार दिया है दोस्तों, तो उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता। समझ लीजिए, आपने उसे जीवन का नया उपहार दे दिया है। तो शिक्षा पूरी करने में किसी न किसी की मदद ज़रूर कीजिए। अगर हम एक एक की भी मदद करेंगे तो हम, समझ लीजिए, भारत की मदद कर रहे हैं, पूरे अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और ये कर्तव्य तो हमें निभाना है मिलकर। आप जाते जाते मोनिका कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी, मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, और कोई उम्र नहीं होती है शिक्षा सीखने, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मर्यादा नहीं रहती है। आप किसी भी उम्र में, आप चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो फिर से, तो आप कभी भी कर सकते हो, वापस कंटिन्यू कर सकते हो।
0: जी, तो ज़रूर कीजिए आप।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बिल्कुल, अपनी जिंदगी को बचाना और किसी और के जीवन को भी सवारना, ये हम सभी का कर्तव्य है। और जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ये अगला गीत लेकर आने से पहले, गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप सुन रहे हैं उड़ान। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आई हूं, और आपके लिए बेहतरीन कुछ चीजें लेकर आई हूं। उनमें से है कुछ कहानियां, कविता और साथ ही साथ अमेजिंग जानकारी। तो जुड़े रहिएगा उड़ान के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कर्म
1: जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। तो वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं उड़ान के साथ। मैं हूँ आपके दोस्त मोरा। तो चलिए अमेजिंग जानकारी के साथ जोड़ लेती हूँ और ये राखी की कहानी से ही जोड़ती हूँ। जी हाँ, 28 तारीख को रक्षाबंधन का बेहतरीन सा त्यौहार है और हम सभी का प्यारा सा त्यौहार। और इस त्यौहार में जहाँ राखी से एक वादा निभाया जाता है, वहीं पर भाई इस राखी के बदले में हमें सुरक्षा, स्टेबिलिटी ये प्रदान करता है और विश्वास प्रदान कराता है। राखी के बारे में ये बात बड़ी सुंदर है। मैं पहले रंग बिरंगे धागों का हिस्सा बनी थी, फिर एक कारीगर ने मुझे बड़े प्यार से बनाया। किसी ने मोती लगाया तो किसी ने चमकीले सितारे से सजाया। इस तरह मेरा रंग बिरंगा रूप अभी सामने बनकर आया। जहाँ राखियों की जो सफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ बनाने तक जुड़ी नहीं है, बल्कि ये कई दूसरी राखियों के साथ दुकान में पहुँचने की भी है। रोज़ बच्चे मुझे देखते हुए खुश तो होते, काश कोई मुझे चुन ले, यही राखी सबसे पहले सोचते हैं। सचमुच वहाँ पर रखी राखी भी कई बार इसी विषय पर तो सोचती होगी। लेकिन राखी के इस खूबसूरत त्यौहार के साथ साथ आज आई डोनेशन फोर्थ नाइट, एक्चुअली कल 25 तारीख को आई डोनेशन फोर्थ नाइट प्रारंभ हुआ है और इसी से जुड़ी भिन्न भिन्न जानकारियाँ अभी मैं उड़ान कार्यक्रम में लेकर आ रही हूँ। काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, ज़रूर ध्यान से सुनिए इस कार्यक्रम को और आई डोनेशन के विषय पर पूरी बातें जरूर जानें।
2: अच्छा विषय है, नया विषय है और नेत्रदान से संबंधित बहुत अधिक जागरूकता की कमी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं बताऊं कि मुझे भी ठीक से नहीं पता कि नेत्रदान पखवाड़ा कब मनाया जाता है। शायद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, शायद 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। यह इस बात का प्रमाण है कि नेत्रदान कि रेटिना खराब है या ऑप्टिक नर्व खराब है या आंखों में किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या है तो नेत्रदान से समस्या सोल्व हो जाएगी, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। और बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं, मनीष जी नेत्रदान करने से नहीं हो जाएगा क्या आपका, जबकि मैं उन्हें बताता हूँ कि रेटिना खराब है मेरी, तो भी पूछते हैं पलट के कि क्या नेत्रदान से नहीं हो जाएगा यदि कोई आई डोनेट कर दे। तो तब मैं उन्हें बताता हूँ कि

0: नेत्रदान का सिर्फ और सिर्फ एक मात्र अर्थ है कॉर्निया का दान। यदि किसी की कॉर्निया खराब हो गई है तो नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया का दान होता है और उसमें आंखें ठीक हो सकती हैं। और उसमें भी यदि मान लीजिए किसी की ऑप्टिक नर्व बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ऑप्टिक नर्व बिल्कुल खराब है, ऐसे में यदि किसी का कॉर्निया खराब और कॉर्निया बदल भी दिया जाए तो भी शायद विजन वापस नहीं आएगा क्योंकि ऑप्टिक नर्व बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो इसमें बहुत कुछ जानकारी की आवश्यकता है और डॉक्टर पूरा चेक करके ही बताएंगे डॉक्टर कि भैया आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो भ्रांति नंबर वन है कि नेत्रदान मीन्स संपूर्ण नेत्रदान नहीं होता, सिर्फ कॉर्निया का दान होता है। अब अगली बात यह है कि नेत्रदान कॉर्निया दान, तो कॉर्निया जो दान की जाती है तो किन व्यक्तियों को कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है? जिन व्यक्तियों की कॉर्निया खराब हो जाएगी जाहिर सी बात है उन्हें आवश्यकता पड़ेगी। और कॉर्निया कैसे खराब होती है तो कई सारे कारण होते हैं कॉर्निया खराब होने के। इंजरी, चोट लग जाना, बच्चों में यह काफी देखा जाता है और बड़े भी हैं। कोई भी यदि एक्सीडेंट हो जाएगा मान लीजिए और कॉर्निया डैमेज हो गया है तो ऐसे केस में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कॉर्निया और भी कई कारण हैं जिनसे खराब होता है। मान लीजिए कि मेल न्यूट्रिशन है ना, जिसे हिंदी में कुपोषण कहते हैं, विटामिन ए की कमी है या और भी यदि हमारे शरीर में पौष्टिक विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह नहीं है, उससे यदि खास होते विटामिन ए, तो कुपोषण की कमी से यदि कॉर्निया खराब हो जाए तो भी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। या फिर किसी भी अन्य कारण से, तीसरे चौथे पांचवे कोई भी कारण हो सकता है जिससे कॉर्निया खराब है, तो फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। जिस व्यक्ति को कॉर्निया की आवश्यकता है वो जो नजदीकी आई बैंक है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में आई बैंक हो या फिर कोई प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट हो, जहां पर भी आई बैंक है वहां पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। और रजिस्ट्रेशन के बाद जब उनका नंबर आएगा तब उनको बुला लिया जाएगा कि अब आपका नंबर आ गया है, अब अपना कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करवा लीजिए। लेकिन इसमें प्रश्न यह उठता है कि जो आई बैंक है वह किस तरह निर्धारित करेगा कि भाई किसको पहले कॉर्निया की आवश्यकता। ऐसा नहीं कि यदि मैंने अपना नंबर पहले लगा दिया है तो पहले मेरा ही नंबर आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आई बैंक ने अपनी प्राथमिकताएं प्रायोरिटी तय कर रखी है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दोनों आंखें खराब है तो उसका नंबर पहले आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसकी एक आंख खराब है दूसरी आंख ठीक है उसका दसवां नंबर है, और एक व्यक्ति जिसकी दोनों आंखें खराब है उसे कॉर्निया चाहिए, उसका बीसवां या पचासवां नंबर है, तो इस बीसवें या पचासवें नंबर वाले व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि जो दसवें नंबर पे उसकी वो कम से कम एक आंख से तो देख रहा है, तो इस कारण से जिसके दोनों आंखें खराब उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, उसका नंबर यदि पीछे भी हो तो। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं बच्चों को प्राथमिकता पहले दी जाती है, और बच्चों में भी जो बच्चों की दोनों आंखें खराब है उन्हें प्राथमिकता पहले दी जाती है। इस तरह से एक लंबा चौड़ा सिस्टम है जिसके आधार पर प्राथमिकता तय की जाती है। ये तो हो गया। और फिर जब हमारा टर्न आएगा तब हमारा ऑपरेशन किया जाएगा, कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाएगा, और सरकारी हॉस्पिटल में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल मुफ्त होता है। और जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर 5,000 रुपए तक की सहायता, 5,000 से अमाउंट घटिया बढ़ गया हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सरकारी सहायता भी उन इंस्टीट्यूट को दी जाती है जो प्राइवेट हैं और जो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ताकि उनको कुछ आर्थिक सहायता मिल सके प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, और ताकि वो कॉर्निया पेशेंट का ठीक से ट्रीटमेंट कर सके। और सरकारी हॉस्पिटल में तो खैर मुफ्त में इलाज होता ही है। और कॉर्निया एक बार ट्रांसप्लांटेशन हो जाए उसके बाद पेशेंट को 1 वर्ष तक बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है, आंख में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई दूसरे तरह की समस्या ना आ जाए, पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। बीच बीच में रेगुलर चेकअप कराना पड़ता है। और साथ ही साथ प्रश्न यह आता है कि क्या सभी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? मैक्सिमम केसेस में कॉर्निया जो बदला जाता है तो सफल रहता है, क्योंकि कॉर्निया में खून नहीं होता, कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होता है, इसलिए एक व्यक्ति की कॉर्निया जब दूसरे व्यक्ति में लगाई जाती है तो वह प्रायः सक्सेसफुल ही रहता है। हाँ, कभी कभी यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर मान लीजिए हमने एक मृत व्यक्ति की आंख की कॉर्निया किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी में लगाई है, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति की बॉडी पहले व्यक्ति के मृत व्यक्ति की आंखों की कॉर्निया को एक्सेप्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम होती है। प्राय जो बॉडी होती है वो कॉर्निया को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि इन्फेक्शन हो जाए, हम साफ सफाई का ध्यान ना रखें, रेगुलर चेकअप ना करवाएं तो फिर हो सकता है कि हमारी दृष्टि वापस ना भी आए, है ना। और
1: तो आपने सुना ना किस प्रकार कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन से कई बार लोगों को नजर भी आ जाती है, और जिन्हें कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी नजर नहीं आती उनमें से ये व्यक्तित्व जरूर थे जिनको रेटिनाइटिस पिगमेंटेसा हुआ होगा और जिसकी वजह से उन्हें नजर कभी नहीं आने वाली। लेकिन जिनकी कॉर्निया खराब है उन्हें कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से नजर आने की उम्मीद जरूर है। आगे बढ़ते हैं, एक बेहतरीन सा गीत आप तक पहुंचाते हैं, और खास ये गीत जो है आई डोनेशन थीम पर ही है।

0: अंधेरा मिटाने चल पड़े हैं, दीप से दीप जलाने निकल पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप सुन रहे हैं उड़ान। केवल भाई की रक्षा की बात नहीं करते हैं ये राखी, पेड़ों की रक्षा, नदियों को साफ रखना, जानवरों का ख्याल रखना और अपने बड़े बूढ़ों परिवार का सम्मान करना, ये भी राखी का संदेश है। सोचिए जरा, एक साधारण हाथ से बनी राखी तैयार करने में कितने कारीगरों की मेहनत लगती होगी। बिल कई ऐसी खूबसूरत राखियां होती हैं जो कलाइयों में बांधने पर उसकी मेहनत का उस समय तो ख्याल नहीं चलता, लेकिन हाँ, उसे देख देख कर हम ज़रूर सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत से कोई एक चीज तैयार होती है। राखी सिर्फ एक सजावटी धागा नहीं बल्कि विश्वास, जिम्मेवारी का भी प्रतीक है। पेड़ों की रक्षा इस रक्षाबंधन में ज़रूर निभाएं और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। आप सुन रहे उड़ान, रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। एक छोटा सा ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते।
1: ये तंबाकू क्या होता है?
2: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
1: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
2: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
4: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: रामू बहुत ईमानदार और सीधा साधा होता है। वहीं रामू का एक बेटा था जिसका नाम योगेश था। वो बहुत चालाक था। इसके अलावा योगेश को जानवरों से बहुत लगाव था। वो नहीं चाहता था कि लोहार का बेटा लोहार ही बने, और इसलिए रामू हमेशा योगेश को लेकर चिंतित रहता था। इसी तरह एक दिन रामू योगेश से बात करता है।
1: तो बेटा, तुमने कुछ सोचा है, क्या करना चाहते हो, या फिर तुम ऐसे ही जानवरों के पीछे अपना समय बर्बाद करोगे?
2: बापू, आपको लगता है कि मैं समय बर्बाद करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता।
1: बेचारे जानवर अपना दर्द किसी से बांट नहीं सकते। जो जानवर किसी कारणवश जख्मी हो जाते हैं या फिर बीमारी से पीड़ित होते हैं, मैं तो बस उनकी सहायता करता हूँ, तो इसमें भला समय बर्बाद कैसा?
3: बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही भलाई का काम कर रहे हो, लेकिन इससे दाल रोटी कहाँ चलने वाली है। इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ, हमारा पुश्तैनी काम सीख लो।
0: इसी तरह रामू को लाख समझाने पर भी योगेश लोहार का काम सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। वो अक्सर पास के जंगल में जाकर अपने दोस्त हाथी से बात करता था। इसलिए रामू से कहा सुनी होने के बाद वो जंगल चला जाता है और अपने दोस्त हाथी से बात करता है।
2: आखिर तुम ही बताओ, जिस काम में मन ना लगे वो काम करना चाहिए।
1: दोस्त, भले तुम बेजुबान हो, लेकिन कितनी सफाई से तुमने मुझे जवाब दे दिया। और एक मेरा बापू है जो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है, जब देखो पीछे पड़ा रहता है।
2: अरे, ये किसने किया?
1: फिक्र मत करो, मैं अभी ये तीर निकालता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस मुझे थोड़ा समय लगेगा।
0: ठहर जाओ।
1: राजकुमारी आप?
0: हाँ मैं, ये मेरा शिकार है, इसे ही मेरे हवाले कर दो।
1: क्या आपका शिकार है?
2: माफ करें राजकुमारी, भगवान ने आपको हर चीज से परिपूर्ण किया है, उसका इस्तेमाल सही काम पर करना चाहिए। यूं बेजुबान पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती है? जिसे आप बना नहीं सकते हैं, उसे बिगाड़ने का आपको कोई हक नहीं है।
0: योगेश की बातें सुनकर मानो राजकुमारी की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ करना अजनबी, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी आंखों से गुरूर का पर्दा हट चुका है। क्या मैं इस भले इंसान का नाम जान सकती हूँ?
2: कहने को तो मेरा नाम योगेश है, लेकिन सब मुझे लोहार का बेटा बुलाते हैं।
0: इसके बाद योगेश और राजकुमारी में दोस्ती हो जाती है। दोनों अक्सर जंगल में ही मिलते थे, और समय बीतने के साथ साथ दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन योगेश राजकुमारी का इंतजार करता है, पर उस दिन राजकुमारी नहीं आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं था। योगेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर वो राजमहल जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही राजकुमारी उससे मिलने आ जाती हैं। उस दिन राजकुमारी बहुत दुखी थी।
2: राजकुमारी, आप मुझसे मिलने क्यों आई हैं? क्या हुआ, मुझसे कुछ भूल हुई है क्या?
0: योगेश, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, मैं यही बताने आई थी।
2: शादी नहीं कर पाऊंगी? क्या मतलब, महाराज ने कुछ कहा है?
0: नहीं, बाबा तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन।
2: लेकिन क्या? कुछ तो बोलिए राजकुमारी।
0: बाबा हमेशा की तरह सभा में गांव वालों की समस्या सुन रहे थे, मैं भी वहीं थी, तभी वो आता है।
1: कौन हो तुम, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
4: महाराज, मैं दूर देश से आया हूँ, और मैं एक जादूगर भी हूँ। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्या यूं चुटकियों में सुलझा देते हैं, क्या आप मेरी समस्या दूर कर पाएंगे?
1: ठीक है, बताओ, हम पूरी कोशिश करेंगे।
4: ये हुई ना बात महाराज। ठीक है, अब सुनिए, मुझे आपकी बेटी यानी राजकुमारी बहुत पसंद है, जिस कारण मुझे रात में नींद नहीं आती है, अगर आप मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दें तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी।
5: बदतमीज, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम पहली बार हमारी सभा में आए हो, इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। इससे पहले हम क्रोधित हो जाएं, चले जाओ यहाँ से।
4: क्रोधित? महाराज, अगर मैं चाहूँ तो आपकी सहमति के बिना ही राजकुमारी से शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता।
5: तुम्हारी इतनी जरूरत? सैनिकों, बंदी बना लो इसे। दुष्ट, ये तुमने क्या किया इनके साथ? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जान से मार देंगे।
4: ठहरिए महाराज, ऐसा गलती से भी मत सोचना। और एक और बात बताऊं, ये सब तो अभी सिर्फ बेहोश हैं, और होश में सिर्फ मैं ही ला सकता हूँ। और अगर अगले 7 दिन तक ये होश में नहीं आए तो फिर इन्हें कोई भी होश में नहीं ला सकता। लेकिन महाराज, आप चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, बिल्कुल पहले जैसा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी समस्या दूर करनी होगी, इसलिए आप ठीक से सोच विचार कर लीजिए। तब तक मैं आपके महल के एक कोने में पड़ा रहूंगा।
6: और कल 7वां दिन है, कल मैं उस जादूगर से शादी करने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी प्रजा पर कोई भी विपत्ति आए।
2: राजकुमारी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आप देखते रहिए कि मैं उस दानव को कैसे सबक सिखाता हूँ।
6: लेकिन योगेश, वो बड़ा खतरनाक है।
2: होगा खतरनाक, लेकिन चालाक नहीं।
4: महाराज, ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शादी के बाद मैं सारे सैनिक और दरबारियों को ठीक कर दूंगा।
2: ठहरिए महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? कौन हो तुम और हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। माफ करें महाराज, लेकिन मैं एक आम नागरिक हूँ, इसलिए मुझे ये जानने का पूरा अधिकार है कि आप अपने साम्राज्य की बागडोर किसे सौंपने जा रहे हैं, इस दानव के हाथ में।
4: ए बच्चे, तुझे पता भी है कि तू क्या कह रहा है? और तू पहले ये बता, तू है कौन?
2: मैं हूँ लोहार का बेटा योगेश, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और सुनो दानव, मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम कायरतापूर्वक राजकुमारी से शादी कर रहे हो।
4: क्या कहा, कायरतापूर्वक? ये तुझसे किसने कहा?
2: किसी को कुछ कहने की जरूरत है क्या? ये तो सब जानते हैं।
4: नहीं, ये सच नहीं है।
2: ठीक है, तो अपनी शक्ति का परिचय दो। अगर मैं तुमसे हार जाऊंगा तो मैं ये मान लूंगा कि लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलते हैं। मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। और अगर तुम हार गए?
4: ये तो संभव ही नहीं है।
2: फिर भी मान लो अगर तुम हार गए तो?
4: तो फिर तू जो कहेगा मैं वही करूँगा।
2: ठीक है, अगर तुम हार गए तो राजकुमारी से शादी किए बिना सबको ठीक करके यहाँ से दूर कहीं चले जाओगे, और फिर दोबारा किसी भी राज्य में नहीं जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, शक्ति प्रदर्शन बिना जादू के होना चाहिए।
4: ठीक है बच्चे, शक्ति प्रदर्शन होगा, वो भी बिना जादू के। इसके लिए तो मेरी भुजाएं ही काफी हैं। चल बता क्या करना है।
2: महाराज, कृपया आप अपने हाथी को बुलाइए, हम दोनों एक एक करके हाथी के साथ लड़ेंगे। जो जीतेगा वो राजकुमारी से शादी करेगा, और जो हारेगा उसे तो पता ही है कि क्या करना है।
0: इसके बाद राजा के हाथी को लाया जाता है। सबसे पहले योगेश हाथी से लड़ता है,

0: मजीद गया।
1: ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, असली शक्ति प्रदर्शन तो मैं दिखाऊंगा, वो भी इस हाथी की जान एक बार में ही लेके।

0: दानव दर्द से छटपटाता है और चिल्लाते हुए कहता है,
1: बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझे अपनी हार स्वीकार है, बचाओ मुझे।
0: हार स्वीकार करते ही हाथी दानव को छोड़ देता है। फिर शर्त के अनुसार दानव सैनिकों तथा दरबारियों को ठीक करके महल से चला जाता है और महल में खुशियां लौट आती हैं।
2: योगेश, हम जीत गए, योगेश हम जीत गए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो, तुमने तो हाथी को भी हरा दिया।
3: राजकुमारी, ये मेरा प्रिय दोस्त है, तो भला मुझे जीतने के लिए इसे तो हारना ही था। वो दानव ताकतवर के साथ साथ जादूगर भी था, इसलिए मैंने उसे हराने के लिए बल का नहीं छल का सहारा लिया। शाबाश बेटा शाबाश, तुम्हारी चतुराई से मेरी बेटी ही नहीं ये राज्य भी बच गया। हमें गर्व है अपनी बेटी पर, जो तुम जैसे लड़के को उसने अपना हम सफर चुना है।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नन्ही सी गुड़िया। वेल नन्ही सी गुड़िया, आपका तो दिन आने वाला है क्योंकि रक्षाबंधन का ये आपका प्यारा त्योहार 28 तारीख को है। दोस्तों, राखी का ये खूबसूरत त्योहार रेडियो मधुबन आपके साथ भी बिताना चाहता है। यदि आप आसपास हैं और रेडियो मधुबन के पास आकर आप राखी बंधवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। रेडियो मधुबन का ये स्टूडियो आपके ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण में ही मौजूद है, तो आप आइए और रक्षाबंधन का ये त्यौहार रेडियो मधुबन के साथ जरूर मनाइए। बल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा करती हूँ ठीक शाम 6 बजे। लेकिन तब तक खूबसूरत गीतों के साथ, एक और छोटी सी कहानी के साथ आपको एंटरटेन जरूर करती हूँ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

शक्तियों से वीरता, ज्ञान और तपस्या की जन्मभूमि रही है। हिमालय की तराई में बने आश्रमों से लेकर नदियों के किनारे बसे गुरुकुलों तक हर ओर ज्ञान और संस्कृति का दीपक जलता था। इन्हीं गुरुकुलों में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहां आचार्य वरुण देव अपने शिष्यों को केवल शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाते थे। उसी गुरुकुल में एक बालक आया, उसका नाम था अभिनव। अभिनव का शरीर कमजोर था, चेहरा सरल और मासूम। वह जब अन्य विद्यार्थियों के साथ अभ्यास करता तो अक्सर पीछे रह जाता।

0: धनुष की डोरी खींचने में उसके हाथ कांपते, कुश्ती के दांव पेंच में वह धराशायी हो जाता, उसकी चाल धीमी और आत्मविश्वास डगमगाता रहता। गुरुकुल के अन्य विद्यार्थी मजाक उड़ाते, देखो ये तो तिनके जैसा है, हवा चली तो उड़ जाएगा, इससे युद्ध क्या होगा, ये तो बैल के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। ये बातें अभिनव के दिल में चुभती थी। वह अक्सर सोचता, शायद मैं किसी काम का नहीं हूं, भगवान ने मुझे कमजोर बनाया है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन की बात है, गुरुकुल के सभी शिष्य धनुष बाण का अभ्यास कर रहे थे। विशाल लकड़ी के निशान पर तीर चलाना था। सभी शिष्य अपने अपने तीर मार रहे थे। राजन, जो गुरुकुल का सबसे तेज शिष्य था, उसने निशाने पर ठीक बीचों बीच तीर मारा। सबने उसकी प्रशंसा की। फिर बारी आई अभिनव की। उसने कांपते हाथों से धनुष उठाया, तीर चढ़ाया। जैसे ही डोरी खींची, हाथ कांप गए और तीर पास खड़े पेड़ से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। सभी शिष्य हंस पड़े। देखो, यही है हमारा कमजोर अभिनव, इससे तो गिलहरी भी डरकर नहीं भागेगी। अभिनव का चेहरा झुक गया, आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, सचमुच मैं सबके सामने बेकार हूं, मुझे यहां क्यों रखा गया है। शाम को जब सब विश्राम कर रहे थे, वह अकेला नदी किनारे बैठा था। उसने चुपचाप पानी में अपना चेहरा देखा और बुदबुदाया, हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। अगर मैं दूसरों जैसा होता तो शायद लोग मेरा मजाक ना उड़ाते। उसी समय आचार्य वरुणदेव वहां आ पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स अभिनव, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। अभिनव ने आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुजी, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, साधारण हूं, मुझसे कभी कोई महान काम नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैं जीवन में असफल ही रहूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया और बोले, वत्स, याद रखो, मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं होती, बल्कि उसके आत्मविश्वास से होती है। अगर तुम स्वयं पर विश्वास कर लो तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अभिनव ने संकोच से पूछा, लेकिन गुरुजी, आत्मविश्वास आएगा कैसे, जब लोग रोज मजाक उड़ाते हैं तो मेरा विश्वास टूट जाता है। गुरुजी बोले, सुनो वत्स, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। जब तुम स्वयं से कहोगे मैं कर सकता हूं, तभी दुनिया भी कहेगी तुम कर सकते हो। गुरुजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो और हर दिन इसे देखकर याद रखना। जैसे यह छोटा बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही तुम्हारा आत्मविश्वास भी समय के साथ बढ़ेगा। ये वचन अभिनव के दिल में उतर गए। कुछ दिनों बाद राजा का दूत गुरुकुल पहुंचा। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी शिष्य आश्रम के सामने रखे गए विशाल पत्थर के शिलाखंड को हिला देगा, उसे राज्यसभा में विशेष स्थान मिलेगा। सभी शिष्य उत्साहित हो उठे। पहले राजन आगे बढ़ा, उसने पूरी ताकत लगाई पर पत्थर जरा भी न हिला। फिर एक एक कर सभी ने प्रयास किया, कोई सफल न हुआ। अब बारी आई अभिनव की। वह पीछे हटने ही वाला था कि गुरुजी की आवाज गूंजी, वत्स अभिनव, याद रखो, यह शक्ति की नहीं, आत्मविश्वास की परीक्षा है, जाओ और प्रयास करो। सभी शिष्य हंस पड़े, ये तो हाथ लगाते ही गिर पड़ेगा। लेकिन अभिनव ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अगर गुरुजी ने मुझ पर विश्वास किया है तो मुझे भी स्वयं पर विश्वास करना होगा। उसने हाथ रखे, पूरी शक्ति लगाई, पत्थर नहीं हिला। लेकिन सबने देखा कि अभिनव गिरा नहीं, उसका चेहरा चमक रहा था। गुरुजी ने कहा, यही पहला कदम है आत्मविश्वास का, जब तक तुम प्रयास कर रहे हो तुम हार नहीं सकते। उस दिन से अभिनव ने ठान लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। वह सूर्योदय से पहले उठकर अभ्यास करता, धनुष बाण का रोज अभ्यास करता, शरीर को मजबूत करने के लिए लकड़ी के गट्ठर उठाता। अभिनव शांत रहा, उसने दृढ़ स्वर में पुकारा, रुको। हाथी कुछ पल के लिए थम गया, फिर अभिनव ने चतुराई से पास पड़े लकड़ी के गट्ठर को आग लगाई और रास्ते के किनारे रख दिया। हाथी आग देखकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। पूरी सेना हक्की बक्की रह गई, जो कार्य सबको असंभव लगा था वह अभिनव ने अपने आत्मविश्वास से संभव कर दिखाया। युद्ध समाप्त हुआ। राजा ने अपनी सभा में अभिनव को बुलाया।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस एक मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कितना सुंदर लगता है, और जब प्रोग्राम का नाम सुनते हैं तो खुशी में झूमते हैं, क्योंकि जिस गांव और जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी भूल नहीं पाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालयों की मिलित सहयोग से बच्चों का टैलेंट को, प्रतिभा को, भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए विद्यार्थी विकास में इस तरह कार्यक्रम करते हैं। सरकार का जो मंच है, आसपास गांव और अंचल में जो हमारा टैलेंट प्रतिभा है और गांव का इतिहास, गांव का रीति रिवाज, संस्कृति, विकास जन जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी है, सिरोही जिला के रेबदर ब्लॉक में आज आपका पास कुछ कवरेज रखने जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको विदित है एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। तो आज अवरोध से बहुत दूरस्थ जगह में पहुंचे हैं, कोई उल्हाना न दे जी हमारे पास ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन हमारा आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी तक आया नहीं। इस उल्हाना को दूर करने के लिए रेडियो मधुबन पूरे सिरोही जिले में सभी गांव और अंचल को कवर करने के लिए प्रयास रहते हैं। तो इस संदर्भ में हम रेबदर तहसील के मंडार के पास नगानी राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे। देर किस बात की, बच्चों का आवाज को आज बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है सही में सुनने लायक है, और उनको एक मंच देना चाहिए, जो रेडियो मधुबन आज एक मंच एक स्टेज दे रही है, जिसका चलते बच्चे अपना भागीदारी निभाएंगे। आपको बारी बारी सभी प्रस्तुतियां सुनने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे महात्मा होते हैं, बच्चे देश का भविष्य है, और बच्चों को इस तरह कार्यक्रम में प्रोत्साहन देते हैं, और इसका श्रेय तो माता पिता और विद्यालय को जाता है। विद्यालय का सभी सभी स्टाफ और प्रधानाचार्य इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाते हैं। कोई प्रस्तुति हो चाहे नहीं हो, फिर भी प्रस्तुतिकरण हो जाता है, अचानक में जाते हैं, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो देर किस बात की, सभी को स्वागत करते हैं, लेकिन सभी अपना अपना नाम, कहाँ से और कौन सा क्लास में और विद्यालय का नाम जरूर बताएं, तब हमें पता चलेगा कि हमारा ये कार्यक्रम कहाँ से रिकॉर्डिंग हुई और कौन बच्चे बोल रहे हैं। जब इस तरह बच्चों का आवाज सुनेंगे तो आवाज ही उनका पहचान होगा। जब माता पिता, अभिभावक, दोस्त लोग और शिक्षकगण जो सुनेंगे, ये तो हमारा बेटी का आवाज है, ये हमारा तो गुड़िया का आवाज है, तो पहचान लेंगे। तो सभी रेडी बच्चे? ओके, तो शुरू करेंगे। पहले एक मिनट साइलेंस में प्रभु याद में कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। ओके, शुरू।
1: मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं नागानी की रहने वाली हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागानी है। मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ।
2: मेरा नाम सेजल कुंवर है, मैं नागानी की रहने वाली हूँ और क्लास 9th में पढ़ती हूँ।
1: हम दोनों मिलके एक प्रस्तुत करना चाहते हैं।

0: अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी।
1: धन्यवाद।

0: मरैना वतन पर जाफिदा होना, प्रभु हम को शिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नाम का साथ इतना सुंदर प्रस्तुति दी, और देखते देखते बच्चों का अंदर में उमंग उत्साह जागृत हुई, जिसका चलते इस कार्यक्रम सुंदर रूप में हो पा रहा है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

हमें सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

तो श्रोता मित्र, ग्रामवासी और खासकर हमारा अंचलवासी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और विद्यालय के सभी बच्चे और स्टाफ भी शाम को इस कार्यक्रम को सुनते हैं जब उनको हम लिंक भेजते हैं और सुनने का प्रक्रिया बताते हैं, चाहे नेट का माध्यम से, चाहे आपका माध्यम से, चाहे एप्लीकेशन का माध्यम से, चाहे एफएम का माध्यम से, फेसबुक में, यूट्यूब में सुनते हैं। तो पुनः स्वागत करते हैं और एक ग्रुप को, चाहे सिंगल हो चाहे ग्रुप में, अपना आवाज को सुनाते हैं। तो नाम का साथ फिर से बात को रखते हुए सभी अपना अपना नाम, क्लास और बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं वो भी बताएं तो हमें खुशी लगेगा, क्योंकि बच्चों का अंदर में इस तरह जुनून, साहस, बिना झिझक से अपना आवाज को बुलंद करते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, क्योंकि हृदय का जो संगीत है सुर, लय और ताल का साथ प्रस्तुतिकरण होता है, और उनको जो मौका चाहिए था आज वो मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारा आवाज का पहचान कराने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब आते हैं तो बच्चे बढ़ चढ़ कर लेते हैं और एक दूसरे से सीख जाते हैं भी। तो देर किस बात की, लेते हैं उनसे सुनने के लिए, हमारा श्रोता मित्र इंतजार कर रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुति।

क्या बताऊँ तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने दस पूजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खा।

0: धन्यवाद।
1: क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, क्योंकि बच्चों का उमंग और स्वर लय का साथ इस तरह जो संगठन में व एकल में कर पाते तो धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का पात्र भी है और इसका श्रेय तो माता पिता गुरुजन को जाता ही है। और क्या कहे, बच्चे तो मुस्कुरा रहे हैं तो सही है, आप लोग इतना मेहनत करते हैं और कैसे कैसे सीखते, कोई बोलते हैं हम मोबाइल से सीख जाते हैं, कोई बोलते हमारा परिवार में हमारा भाई गाते हैं, कोई कोई कहते मेरा मम्मी माताश्री भी इस गीत को सिखाने में मदद करते हैं, तो धन्यवाद का पात्र ही है क्योंकि आभार प्रकट करते हुए और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। आज आप जो सुन पा रहे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम नागाणी राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय रेबदर का आवाज, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक। फिर से आपको स्वागत करते हैं, सभी श्रोता मित्रों को भी धन्यवाद देते हैं। अपना कार्यक्रम को सुंदर रूप में हर जगह में सुनते हैं, क्योंकि एफएम के माध्यम से सुनते तो है ही, इसका साथ साथ प्ले स्टोर से अपना आवाज को सुनने के लिए रेडियो मधुबन आपको डाउनलोड करते हैं, जिसका चलते हमें भी खुशी होता है कहीं पर भी हो। लेकिन इंटरनेट का माध्यम से और प्ले स्टोर का माध्यम से भी सुनते हैं, तो सुनते हैं और एक प्रस्तुति सभी को स्वागत करते हैं इस तरह कार्यक्रम को सजाने के लिए। और जब उनका मम्मी पापा उनका दोस्त लोग सुनते हैं, तो रास्ता में उनको जब देखते हैं उनका दोस्त लोग, तो शिक्षकगण, अरे क्या आवाज आपका था जो रिकॉर्डिंग किए थे, जो प्रस्तुतिकरण किए थे, तो उसमें बहुत जी जान लगाकर आपने इस कार्यक्रम को सजाया है, तो आप तो बहुत चमक रहे हैं। तो चमकेगा, क्योंकि अपना आवाज को जब सुनते हैं तो दूसरे सुनाते तुम्हारे आवाज में दम है। तो चलिए और एक प्रस्तुति के लिए सभी रेडी हैं, सुनते हैं।
1: मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं नागानी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
2: मेरा नाम श्रुता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ, मैं नागानी में रहती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है।
1: हम दोनों एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं।

रहे तारों को झूमे तिरंगा, झूमे हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा, झूमे हाँ तिरंगा, तारों को झूमे तिरंगा।

0: रंग की चमेली पटरानी लागे, मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। ना भावे मैंने माखन मिर्ची अब ना कोई मिठाई, मारे जीव दया ने भावे अब तो आराम मिलाई। वृष भानु की लाली तो गुड़दानी लागे, मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, राधा राधा नाम रटते जो नर हाडिया, तिनकी बांधा दूर कर रे राधा नाम राम, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और हमें लगा है इसे बच्चे जब कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो अपना सपना को फलीभूत करते हैं, क्योंकि बच्चों को जो आवश्यकता था आज रेडियो मधुबन दे रही है, जिसका चलते बच्चे सुंदर रूप में अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में और कुछ छात्र हैं और अपना अपना आवाज को अपना हिसाब से ना ज्यादा ना कम प्रस्तुतिकरण करते हैं और रेडियो मधुबन को भी इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से खुश करा देते हैं। हमारा जो ईश्वरीय परिवार और रेडियो परिवार इस कार्यक्रम को सुनते हैं, एडिटिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, जो आपके पास पहुंचता है। तो देर किस बात की, और एक प्रस्तुति सुनाएंगे, सभी नाम और कौन सा क्लास और क्या बनना चाहते हैं वो बताएंगे। तब तो पता चले हमारा श्रोता मित्र को, हो सकता है हमारा श्रोता मित्र का कोई रिलेटिव भी सुन रहे होंगे तो वो भी लगेगा, उसको फोन करके बताएंगे, अरे गुड़िया तुम्हारा आवाज हम सुना। ऐसे जब फीडबैक मिलता है तब बच्चों का अंदर में एक साथ एक साहस और मन बल बढ़ता है। ओके, रेडी, 1 2 3 शुरू।
1: नैना जो मिले है सरकार से, ऐसा मुस्कुराया श्याम प्यार से, मुझको

लुभाए, दिल को चुराने का हुनर तुझको आए, बंसी बजा के तू पंसी फसाए, कायद

0: क्या जब जाना से दिल लगाया खाटू। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और हमें लगा है इसे बच्चे जब कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो अपना सपना को फलीभूत करते हैं, क्योंकि बच्चों को जो आवश्यकता था आज रेडियो मधुबन दे रही है, जिसका चलते बच्चे सुंदर रूप में अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर।
2: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल शूद्र का चरना और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: सभी ने एक गीत सुना, बच्चों का आवाज को भी सुने, तत्पश्चात इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए सभी उपस्थित हैं और एक का बाद एक प्रस्तुति आपका पास हम रखने जा रहे हैं और बच्चों को भी खुशी हो रहा है। हमें कोई पहचाना जो आज रेडियो के कार्यक्रम का माध्यम से हमारा आवाज को जन जन तक पहुंचा रहा है और सरकार का जो मंशा है, आसपास जो गतिविधि, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, ऐसे ओपन राउंड में उनको लेते हैं, जिसका चलते बच्चे आगे जाकर हो सकता है कंपटीशन जब होगा तब भी ये बच्चों को हम याद करेंगे, देर किस बात की। और एक प्रस्तुति के लिए उपस्थित है तो नाम का साथ कहाँ से और कौन सा क्लास जरूर बताइए।
1: मेरा नाम संजना राजपूत है, मेरा गांव नागानी है और स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागानी ब्लॉक रेवदर।

0: मेरा नाम जानवी राजपूत है, क्लास 11th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणी।
1: मेरा नाम रवीना कुमारी प्रजापत है और मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ और इस विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है।
2: मैं शिवानी कुमारी हूँ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागरणी से हूँ, 11वीं क्लास की स्टूडेंट।

क्या खूब क्या खूब, कितना सुंदर रूप में और स्वर लय ताल का साथ अपना भाव और भावना को प्रकट करते हैं। कोई भाषण में भी आगे रहते हैं, क्योंकि निबंध में बच्चे प्रस्तुतिकरण करते हैं, जब वो एग्जाम आता है या कोई मंच मिलता है, चाहे अगस्त 15 हो, चाहे जनवरी 26 हो, चाहे ऐसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अपना भाव और भावना को भाषण के माध्यम से यानी स्पीच का माध्यम से भी प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो धन्यवाद देते हुए और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। और खास कर आज आप सब सुन पा रहे रेबदर तहसील के नगाणी राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों को, उनको भी खुशी लगता है जो आपका फीडबैक उनका पास पहुंचता है, तो वो भी झूमते हैं और उनको एक शक्ति मिल जाता है। तो देर किस बात की, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओके, सभी को धन्यवाद देते हैं। ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं अंतिम प्रस्तुति की ओर। खासकर अंतिम इसलिए कहना पड़ता है, समय का पाबंदी को देखते हुए हमें जाना भी होगा रिकॉर्डिंग को। ऐसे तो बच्चे रिकॉर्डिंग में आगे रहते हैं और वंस मोर कहते, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए ये अंतिम प्रस्तुति आपके पास हम रखने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों को वेलकम करते हैं, उनमें उत्साह दिलाते हैं। तो फिर से सुनिए और एक प्रस्तुति।
1: नमस्कार, मेरा नाम संगीता कुमारी चौधरी है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागानी है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ।
2: नमस्कार, मेरा नाम किरण कुमारी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
1: हम दोनों मिलकर एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। गलती हो तो क्षमा करें।

0: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान सानिया की जान का मोह आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, जंग की घड़ी के तुम नुहार दो। आन बान सानिया की जान का उदाहरण एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवंत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। विश्व की पुकार है ये भागवंत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। गौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड हो, जो लड़ सका है वह महान है।
1: क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुति है और हमें खुशी है इस तरह कार्यक्रम को सजाने के लिए तत्पर रहते हैं। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं आज का कार्यक्रम को जिन्होंने सहयोग दिया, और उनके सहयोग से जो बच्चे जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम को रंगारंग कर दिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे, चाहे देशभक्ति गीत हो, चाहे भक्ति का गीत हो, चाहे प्रार्थना सत्र में जो गीत जाते हैं वो संगीत हो, चाहे कोई मोटिवेशनल सॉन्ग हो, सभी ने अपना अपना अंदाज से ना ज्यादा ना कम प्रस्तुतिकरण किए हैं। बस पुनः सभी को होलसेल सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह कार्यक्रम को आप लोग सजा दिए हैं सुंदर रूप में, हेल्दी वेल्दी हैप्पी और मजबूत से कार्यक्रम को सफल बनाए। तो आप सबसे लेते हैं इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। आप सब सुन पा रहे थे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सुन रहे हैं, तो सभी को धन्यवाद देते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव।

0: हेलो
1: नमस्कार भाऊ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार भुरीला जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया और खुशी और आनंद के साथ, मंगलाचरण के साथ में हूँ सर।
0: क्या बात है, वाह, इतने सारी चीजें एक साथ
1: में मिल करके इतनी खुशी और बढ़ जाती है। क्या बात करो, दाल में नमक, नमक में दाल।
0: सही बात है,
1: घुल दिया। वैसे हम आपके साथ में घुल कर मिल कर रहते हैं।
0: क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: दूर के रहते हैं लेकिन लगते खा रहे हैं, और चाय पीते हैं तो लगते मीठे हैं।
0: वाह, और मीठा
1: की वाणी आ जाती है हमारे को, क्या बात करते हो, शायद चांद लग जाते।
0: अरे वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: समुद्र के बीच में कमल का फूल खिलता है, वैसे कलिया खिल जाती है।
0: क्या बात है, वाह वाह।
1: आज का गाना है सर, बंगले आजम, प्यार किया तो डरना क्या।
0: क्या बात है, प्यार किया तो
1: गाना हो जाएगा तो क्या बात करते हो। मेरे साथी है प्यारे प्यारे, उनका नाम है सुरेश जी, बुरा राम जी, और मदन भाई, और उनका क्या नाम है, एक का नाम क्या,
0: सुभाष भाई, सुभाष भाई,
1: हाँ सुभाष भाई, मेरे प्यारे लाल है वो। वो उनका नाम मैंने बदल दिया, प्यारा लाल लगा दिया उनका।
0: अच्छा,
1: वो कभी कभी मिल जाएगा ना, वो उनको कहने लगे प्यारा लाल जी आपको याद करे थे।
0: बिल्कुल,
1: बुरा लाल जी, बुरा लाल जी याद करे थे जो।
0: उन्होंने कल भी आपको याद किया था, उन्होंने सबको कल खास याद।
1: मैंने सभी को मेरा प्यार और नमस्कार, और आपको भी
0: जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो की केन हो, और आज आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आपका खास पसंदीदा शो खुशी के नगमे, दिल की बातें, और मैं हूँ आपका दोस्त केवल। जी हाँ दोस्तों, शाम की शुरुआत होती है और हमारे भुरीलाल जी का कॉल और उनकी प्यारी सी बातें और उनके साथ की वो हंसी मजाक ना हो शुरुआत में तो आजकल मज़ा ही नहीं है। थैंक यू सो मच भुरीलाल जी आपका हमें कॉल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज है 26 अगस्त की ये ढलती हुई शाम, और आबू पर्वत यानी कि आबू की ठंडी हवा है, और ढलते सूरज की सुनहरी किरणें जैसे दिन भर की भागदौड़ के बाद मन को एक सुकून की आगोश में समेट रही हो। जब शाम ढलती है तो शहर के शोर कम लगते हैं और दिल की आवाज़ थोड़ी साफ सुनाई देने लगती है। इसलिए तो हमारा ये सफ़र खुशी के नगमे, और इसमें आज का खास कोना है दिल की बातें। चलिए फिर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे करते हैं हम पहले बातें। हेलो,
2: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
2: बस अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, भुरीलाल जी आके गए, आपकी बातें भी सुन रहे। कल मैं आपसे नहीं जुड़ पाया था
0: जी, मैं वही सोच रहा था कल
2: क्या था। कल मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल घर पे था, मैं दुकान पे था और घर पे फोन चल रहा था, आधा घंटा फोन चला।
0: अच्छा,
2: तो शायद मेरा टाइम भी खत्म हो गया, तो मैंने सोचा चलो आज तो छुट्टी रख लेंगे, कल बात करेंगे।
0: कोई बात नहीं,
2: तो कल मैं कार्यक्रम पे नहीं सुन पाया कल पूरा।
0: हाँ, कल हमने दादी प्रकाशमणि को ये दिन को समर्पित किया था, और उनके
2: 19 गए थे पाठशाला में हमारे, वहाँ भी
0: जी
2: दादी जी को याद करके अच्छा एक श्रद्धांजलि दी थी दादी जी को।
0: जी
2: प्रकाशमणि दादी को तो कौन नहीं जानता है, क्योंकि कई सारे देशों में इसके प्रकाश चलाया है
0: जी,
2: ज्ञान का
0: जी,
2: और बहुत सारे इसके जो महावाक्य भी बहुत अच्छे होते हैं, एक अच्छा गुण धारण करने के लिए वो हर दम बोलते रहते हैं अच्छे बातें
0: जी।
2: चलो आज के दिन की भी सभी मित्रों को आपको शुभकामनाएं सर,
0: आपको भी सेम।
2: हमारे भुरीलाल जी है, बुरा राम को भी हमारा राम राम है, हमारे वो दया राम जी है, हमारे मदन भाई है, हमारे कई श्रोता मित्र हैं,
0: हमारे फिरोज भाई ने भी कल याद किया था, फोन किया था फिरोज भाई ने भी बहुत समय बाद, उन्होंने कहा कि बहुत समय बाद हमने भी याद किया है रेडियो को, फिरोज खान जी हमारे,
2: क्योंकि हमारे कई सारे मित्र हैं लेकिन सभी सारे मित्र नहीं जुड़ पा रहे हैं
0: जी,
2: 5-7 मित्र ही जुड़ रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जुड़ जाएंगे,
0: धीरे धीरे हो जाएगा।
2: तो हमारे सभी साथियों को नमस्ते सर, और बस अच्छा गाना भी आज एक गाना भी मैंने सुना है
0: जी, बताइए
2: कि वो गाना है हरियाली और रास्ता का।
0: हाँ,
2: वो टाइटल गीत ही है उसका। हाँ,
0: ये
2: शायद मुझे अभी बोल नहीं याद आ रहे हैं,
0: ये हरियाली और ये
2: रास्ता, बस मीठा गाना, अच्छा गाना है।
0: जी बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं आपको ये गाना हम आपके लिए पेश करें, और आप बिल्कुल से इसे सुनिए रेडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई आपका कॉल करने के लिए हमें। जी हाँ दोस्तों, तो हम जहाँ बात कर रहे थे आज के सफ़र की, और हाँ जी आज के जो मौसम की हम बात कर रहे थे, तो मौसम बारिश जैसे नहीं है, तो दिल की बातों में एक छोटा सा सवाल आपके लिए है, आखिरी बार आपने खुद से इत्मीनान से कब बात की थी? खुद से इत्मीनान से कब बात की थी? हम पूरे दिन में दूसरों की सुनते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन कई बार अपने ही दिल की बात सुनना भूल जाते हैं। कभी कभी शाम को इस वक्त बस दो मिनट शांति से बैठकर अपने आप से पूछना चाहिए, तू कैसा है, यानी कि मैं कैसा हूँ। खुशी कहीं बाहर ढूंढने की चीज़ नहीं है। जब हम अपनी की छोटी छोटी बातों में मुस्कुराहट तलाश लेते हैं, किसी पुराने दोस्तों को बिना किसी वजह फ़ोन कर लेते हैं, या बस एक कप चाय हाथ में लेकर एक हसीन शाम निहार लेते, तो वही सच्चे मायने में खुशी के नगमे बजने लगते हैं, है ना दोस्तों? ऐसा होता है। अगर आज आपके दिल में भी कोई बात, कोई पुरानी याद, या फिर किसी अपने के लिए ढेर सारा प्यार है, तो बस उसे आज महसूस कीजिए और आइए इस सुकून भरे महफिल में घोल देते हैं संगीतमय नगमे जो सीधे आपके दिल तक पहुंच जाए। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर ये प्यारे प्यारे नगमे। और सबसे पहला नगमा ही आपके लिए हम पेश करते हैं, तो बने रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बहुत ही प्यारा गाना सुना, आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ। आज मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा। जब भी बात हम अपने भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एरा का जिक्र करते हैं तो 1951 का दशक या 1950 का ये दशक ऐसा तस्वीर सामने लाती है जहाँ सादगी भी थी और जज्बातों की गहराई भी। और जब साल 1955 में राज कपूर साहब की फिल्म आवारा आई तो उसने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि रूस, रशिया तक में लेकर चीन तक तहलका मचा दिया। आज की शाम बात उसी ऐतिहासिक फिल्म के बारे में हम कर रहे हैं जहाँ शैलेंद्र जी ने लिखे इस गीत को, और जब मुकेश जी की मखमली आवाज़ ने शंकर जयकिशन जी के लाजवाब संगीत का साथ मिला तो ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये एक पूरे दौर का पहचान बन गया। अगर हम इस गाने के बोल को गहराई से समझे, जहाँ राज कपूर साहब के किरदार राजू समाज के ताने बाने से अलग था, अलग पड़ा हुआ था, और वह कहते थे कि भले ही दुनिया मुझे आवारा समझे, भले ही मैं टूटे हुए तारे की तरह भटकता रहूं, लेकिन मेरे अंदर जीने की ललक और मस्ती ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि जब राज कपूर साहब इस गाने की शूटिंग कर रहे थे तो वो चाहते थे कि इसे एक अनोखा आवारापन और आज़ादी झलकनी चाहिए गाने से। इस गाने में जो एरकॉर्डियन और मैंडोलियन, मैंने आपसे पहले भी एक बार एरकॉर्डियन के बारे में बताया था कि इस एरकॉर्डियन और मैंडोलियन की धुन आप सुनते हैं उसे दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को अपना दीवाना बना दिया। और रूस यानी कि जब रूस की बात करें तो मैं ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि वहाँ के लोग राज कपूर जी को देखते ही स्ट्रीट पर आवारा है गुनगुनाने लगते थे। एक तो है ये आवारा हूँ और एक वो गाना था मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर। जी हाँ दोस्तों, तो वहाँ से रूस में रशिया में राज कपूर साहब जी इतने फेमस हो गए कि जिसे देखो वो राजकुमार जी के स्टाइल में रहते थे। तो ये जादू था उस दौर के सिनेमे का, जहाँ सादे शब्दों में भी दिल को छू लाने वाला पैगाम छुपा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो चले बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। जो हमारा अगला नगमा है, हमारी फरमाइश भूरीलाल जी की हम पूरी करते हैं। गाने का बोल है प्यार किया तो डरना क्या, उनकी ये फरमाइश सुनते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: दोस्तों वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर खुशी के नगमे, दिल की बातें। हमारे साथ हमारे रेडियो पे कोई जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो,
1: ओम शांति, गुड इवनिंग भाई जी।
0: ओम शांति सुभाष भाई, बढ़िया है, हम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हमारे दोस्त बुरीलाल जी आ गए
0: जी,
1: हमारे दोस्त सुरेश भाई जोटाना वाले आ गए
0: जी, बिल्कुल।
1: अभी मदन भाई आएंगे
0: जी,
1: और भूपत भाई कहाँ छुप गए, बहुत दिनों से आवाज आई नहीं है। तो भूपत भाई भी बहुत इंटरेस्टेड है,
0: okay.
1: पुराने श्रोता है।
0: अच्छा,
1: तो प्लीज वो अगर सुनते होगे तो प्लीज भूपत भाई आपका आवाज सुनने को हम बहुत इंतजार कर रहे हैं। और भाई ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है।
0: शुक्रिया भाई जी।
1: दोस्तों की बहुत अच्छा चल रहा है, और दोस्तों की फरमाइश भी अच्छी आ रही है
0: जी।
1: तो सभी मदन भाई वगैरह, बुराराम भाई, बुरीलाल जी, सभी हमारे दोस्त, सभी को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार, और ओम शांति भाई जी।
0: ओम शांति सुभाष जी, और सभी की तरफ से आपको भी ढेर सारा प्यार नमस्कार, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे सुभाष जी पुणे से, और उनको भी हमने बहुत दिल से शुक्रिया किया, थैंक्स किया, और उन्होंने सभी को जो भी हमारे श्रोता सुन रहे, खास करके भूपत जी को भी वो याद कर रहे हैं। तो भूपत जी अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर से रिप्लाई दे और कॉल करें हमें 9414151415 पर, और शायद एक कॉल है हमसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, सुनते हैं उनसे। हेलो,
2: पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: ओम शांति फिरोज भाई, कैसे हैं?
2: बस एकदम अच्छे हैं, और आज तो ईद उन मिलाद उन नबी है
0: जी। ईद की आपको खूब खूब शुभकामनाएं।
2: और हमारे मेरे गांव में आज तो जुलूस भी निकला था
0: जी भाई जी,
2: और जगह जगह पर वो अपने सबील थी
0: जी,
2: पानी की
0: जी।
2: तो बहुत ही, और पुलिस का भी पहरा था।
0: अच्छा,
2: हाँ, तो बहुत तीन चार तो विलियस गाड़ी आती, तीन चार विलियस गाड़ी थी, ऊंट गाड़ी थी, ऐसे पब्लिक भी बहुत थी।
0: अच्छा, हाँ, तो आज के दिन तो में क्या खास?
2: हेलो,
0: हाँ जी,
2: तो आज हर्ष उल्लास से अच्छी तरह से ईद उल ये अपना ईद मिलाद उन नबी मनाया, इनका जो जन्मदिन था आज।
0: अच्छा,
2: मोहम्मद पैगम्बर साहब का
0: जी, बिल्कुल। तो बहुत ही फिर से आपको फिर से एक बार दिल से शुभकामनाएं ईद की, और आज के दिन में क्या खास होता है ईद का, आप अगर हमें हमारे सभी श्रोताओं को सुनाएंगे बताएंगे तो।
2: आज के दिन ईद का दिन का ऐसा होता है कि जो हमारे जितने भी पब्लिक आती है उनको खाना खिलाते हैं
0: जी,
2: और बच्चे लोग के लिए दूध, जो जन्मदिन है तो जन्मदिन में वो खीर बनाते हैं दूध की
0: जी।
2: हाँ, तो खीर खिलाते हैं, फिर बाद में हमारे जो जोहर की नमाज होती है 2 बजे की, 2 बजे के बाद में फिर हमारा जुलूस निकलता है।
0: ओके जी, ओके, ठीक है, तो बढ़िया है। थैंक यू सो मच सुरेश जी। और आज की आपकी कोई फरमाइश गाने की?
2: आज मेरी फरमाइश है अपने ये हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब का जो जन्मदिन है, इसके ऊपर कोई कवाली हो तो।
0: चलो ठीक है, कोशिश करते हैं हम कोई कवाली उसके ऊपर में आपको सुनाते हैं। थैंक यू सो मच फिरोज जी, बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन। ओम शांति। यहाँ दोस्तों, तो हमारे सुरेश जी, सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इन्होंने बहुत ही प्यारा हमें एक कहा है कि आप हमें बहुत प्यारा सी कवाली सुनाइए आज के दिन के खास ईद के मौके पर। तो कोशिश करते हैं उन्हें प्यारे से कोई कवाली सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी हमने गाना सुना प्यार किया तो डरना क्या, हाँ इससे पहले कोई शायद और गाना लग गया था मुझे, लेकिन सुरेश भाई ने बीच गाने में उन्होंने मुझे करेक्ट किया, शायद कोई और गाना लगा जिसमें प्यार किया तो डरना क्या, चुप चुप के दारू, जो कि हम ऐसे बजाते नहीं हैं, बट फिर भी उसके बाद हमने उसको दूसरा गाना बजाया, जब प्यार किया तो डरना क्या, चुप चुप आहे भरना क्या। जी हाँ दोस्तों, जब बात हम मुगले आजम की कर रहे हो, भारतीय सिनेमा के इतिहास का भव्यता, जुनून और सच्चे प्यार की बात होती है, तो सबसे पहले नाम जो जहन में आता है वह है निर्देशक के आफिस साहब की साकार फिल्म मुगले आजम। करीब 9 साल की अथक मेहनत के बाद 1960 में रिलीज हुई यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमा नहीं बल्कि कला का एक अमर दस्तावेज था। और जब मुगले आजम का जिक्र हो तो उस ऐतिहासिक शीश महल की चमक और अनारकली के उस बेबाक अंदाज को कैसे भूला जा सकता है। शकील बदायूं जी के लिखे इस गीत के नौशाद साहब का कालजाई संगीत मिला और लता मंगेशकर जी की आवाज़ ने इसे अमरता पिला दी। पर्दे पर जब मधुबाला जी ने अनारकली बनकर शहंशाह अकबर यानी कि पृथ्वीराज कपूर जी की आंखों में आंखें डालकर ये गाना गाया तो वो हिंदी सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित गाना बन गया। और दोस्तों आपको आप जानते भी होंगे कि जब भी हम कभी कोई अंताक्षरी खेलते या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो ये गाना हमेशा सभी के मुंह पे सबसे पहले आता है, प्यार किया तो डरना क्या। और कोई भी ऐसी चीज़ें होती है जब आप अपने किसी खास दोस्त के साथ भी बैठे होते हो और ऐसी कोई प्यार की बातें होती है तो सबसे पहले उसे यही ताना मारा जाता है, भाई प्यार किया तो डरना क्या, अब तो तुमने प्यार कर ही लिया है, है ना, ऐसी चीज़ें होती है। जी दोस्तों, शकील साहब का ये संदेश कितना पावन है कि दिल में सच और मोहब्बत का वास होता है और जहाँ ईश्वर का निवास हो वहाँ डर की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस गाने में एक और बेहद दिलचस्प किस्सा है कि कहाँ यह भी है कि आसिफ साहब ने इस एक गाने की शूटिंग के लिए उस दौर में लाखों रुपए खर्च करके असली कांच का विशाल शीश महल सेट बनवाया था। जब आप गाना देखते हैं तो मधुबाला जी का अक्स सैकड़ों शीशों पर एक साथ झिलमिलाता नजर आता है, जो भारतीय सिनेमा के अद्भुत कलाकारी का नमूना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर से एक और नगमे की तरफ। हमारा जो अगला नगमा है, सुरेश जी ने हमें इसे फरमाइश के रूप में दिया था, ये हरियाली और रास्ता। सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक दोस्तों। और अभी आपने जो गाना सुना रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, मैं हूं आपका दोस्त केवल। और ये जो गाना था बहुत ही प्यारा, बॉलीवुड की पहली मल्टी स्टारर फिल्म माना जाता था, जिसमें बलराज सानी, राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना और शर्मिला टैगोर जैसे दिग्गजों ने एक साथ काम किया है। लॉस्ट एंड फाउंड जैसे ये बात हम कहते हैं, इस फिल्म का एक खुशहाल परिवार के भूकंप की वजह से बिछड़ना और सालों बाद मिलने की कहानी थी, जिसने हिंदी सिनेमा में बिछड़े हुए भाई बहनों वाली कहानियों को नया दौर शुरू किया था। संगीतकार रवि जी और गीतकार साहिल लुधियानी जी की जोड़ी ने इस फिल्म में ऐसे ऐसे संगीत दिए हैं जो आज भी 60 साल के बाद भी उतना ही ताज़ा लगता है। साहिल लुधियानी जी ने लिखे इस गीत के बोल हमें ज़िंदगी को जीने का एक नया बहुत ही बड़ा फलसफा सिखाता है कि हमारा पास कल क्या था उस समय बदलने नहीं सकते, और आने वाले कल कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। इंसान अक्सर बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंताओं में अपना आज गवा देता है, लेकिन यह गाना कहता है कि असली जिंदगी सिर्फ इस पल में नहीं, जो भी है आपके सामने है। जो खुशी आज आपके पास है, अपने आपके साथ है, उनके साथ इस पल का आनंद लीजिए। जिंदगी की खूबसूरती इस बात में है कि हम बिना किसी डर के वर्तमान में पूरी शिद्दत से जिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज एक सुबह की खबर आई है कि तिब्बत की तरफ ऊपरी इलाकों में ज़्यादा बारिश होने के कारण से बाढ़ आई, और बाढ़ का वो पानी नेपाल में घुसते हुए नेपाल की कई गांवों को अपने चपेट में लेकर के वहां पे तहस नहस किया। काफ़ी लोग वहां पे अभी भी लापता है, गुमशुदा है, और ये कहा जा रहा है कि वो बाढ़ का पानी बहुत ही जल्द इंडिया में भी, बिहार और वहाँ के कुछ इलाकों में भी घुसने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी चीज़ें होती रहती है, प्राकृतिक आपदाएं चीज़ें होती रहती है, तो जो भी अपने साथ है अपनों का साथ खुशियाँ बांटे। और ये शो ही है खुशी के नगमे, दिल की बातें, जहाँ आम खुशियाँ बांट रहे हैं और दिल की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके पास भी ऐसा कोई खुशी के नगमे हो तो आप हमें ज़रूर से अपनी फरमाइश के रूप में दे सकते हैं, हम ज़रूर से उसकी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए उसे प्ले करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। हमारे फिरोज़ भाई ने आज अपने ईद के खास दिन की बात कही, तो उनके लिए हमने छोटा सा ये गाना पेश कर रहे कोशिश है, उन्हें ये पसंद आएगा। और फिरोज जी, खास आपके लिए सुनते हैं, ये रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हमने बहुत ही प्यारा ये जो कवाली हमने सुनी, कोशिश की हमने फिरोज़ भाई की कि हम उनकी फरमाइश ये आज के दिन की खास हम पूरी कर सकें, और काश हम आशा करते हैं फिरोज़ जी को ये पसंद आई हो। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, लेकिन उससे पहले हम आपसे लेते हैं विदाई। फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते, कोशिश करेंगे आपसे अगले हफ्ते फिर मिले, और ठीक इसी समय 8 बजे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो, बिकॉज जो अगला कार्यक्रम है वो है स्वस्थ। हमें दीजिए छुट्टी, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। दोस्तों, जब भी हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही चीज समझ में आती है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। कभी कभार हम ये जरूर कह देते हैं कि मौसम की वजह से ऐसा हुआ, या फिर हमारे घर में ये बीमारी परंपरा से चली आ रही है कि भाई हमारे घर के सदस्यों को थी, पूर्वजों को थी, इसलिए हमें भी है। ये चीजें कभी कभार तो समझ में आती हैं, मगर जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी मोटी चीजें जो हम देखते हैं, गड़बड़ियां होती हुई नजर आती हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी कभार लोग ये बात भी कह देते हैं, अरे शायद ये चीज पहले पता होती तो मैं ये गलती करता ही नहीं। ये भी चीज सुनने को मिलती है। अब रेडियो मधुबन पर यही कोशिश की जा रही है कि ऐसी गलतियां जो प्रायः हम करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को बीमार करते हैं, उनसे तो कम से कम बचने के लिए हम अपने प्रयास करते रहें और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करें। सहज स्वास्थ्य में स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हमें इस विषय पर राय देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये कहते हैं कि सही जानकारी के अभाव में मनुष्य गलतियां कर लेता है और जब उन गलतियों का दंड उसे भुगतना पड़ता है या उसका फल जब उसे खाना पड़ता है, तब वो व्यक्ति समझता है, अरे मुझे अगर इस बात की सही पहचान होती है, सही समझ होती तो शायद मैं ये गलती करता ही नहीं। अब ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के बारे में सही जानकारी लेने की जब बात कही जाती है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल सी बात है, इन सब चीजों के बारे में हमें तो पता ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद ही होती है, ऐसे भी कई लोग कहते हैं। और वही कुछ लोग ये भी बात कहते हैं कि पारंपरिक रूप से हम पीढ़ी दर पीढ़ी इन स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को लेते आए हैं और सिर्फ अभी ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में यूं कहें कि लोग उस जानकारी को दरकिनार करते आए हैं और इसकी वजह से भी स्वास्थ्य में गड़बड़ियां हो रही हैं और ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, ऐसा कहा जाता है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं?
1: जानकारी जीवन में बहुत जरूरी है, सही जानकारी और भी जरूरी है, मगर सबसे जरूरी बात जो है कि जो जानकारी आपको मिली है उस जानकारी का प्रयोग आप अपने जीवन में कर पाए। जैसे बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि छोटे बच्चे को कहा जाता है ना, प्लग में उंगली मत डालो, करंट लग जाएगा। तो ये जानकारी उस बच्चे के पास है कि अगर हम प्लग में उंगली डालेंगे तो करंट लग जाएगा, मगर तब भी कुछ बदमाश बच्चे उंगली जरूर डालते हैं और तेजी से करंट लगता है। या माता पिता अपने छोटे बच्चे कहते हैं, अरे आग से दूर रहो, जल जाओगे, मगर अब मानने को तो कहते नहीं है, बाल मन है, मानेगा तो है नहीं। तो एक इंग्लिश में कहा जाता है, नॉलेज इज पावर। तो उस पावर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है भैया। जो चीज परंपरागत तरीके से परिवारों में चली आ रही है वो आरोग्य की कुंजी है। जो आपकी दादी नानी, जो आपके चौके में भोजन बना रही थी, जो आपके दादा नाना आपको खिला रहे थे, वो बहुत ही जरूरी था। खासकर भारतीय परिवेश में मैं ये कहूंगा, विदेशी परिवेश में हो सकता है जो वो खा रहे थे और जिस चीज का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया वो आगे चल के मालूम चला कि बहुत हानिकारक है, मगर आप अगर भारतीय परिवेश में देखिए तो जो भी हमारे पूर्वजों ने खाया पिया, हिले डुले, व्यायाम किया, वह उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला। अभी बड़ा एक अजीब सा वाक्या मेरे सामने हुआ कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जिम में मुझे बुलाया गया और जब मैं वहां प्रवेश कर रहा था तो मेरे पीछे से एक करीब 65 साल के एक बुजुर्ग आए और उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या यहाँ पे मिट्टी है जिसमें हम कुश्ती लड़ सकते हैं? तो जिम वाले का, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुश्ती नहीं है, यहाँ मशीन से आप अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्या लकड़े का बल्लम है? अच्छा मुझे भी इस बात कही नहीं, तो बोला अरे उससे उठा के वर्जिश की जाती है। और उस 60 साल का बच्चा मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि उस 60 साल के व्यक्ति ने जो जिम में जो जानकारी दे रहे थे उसने कहा जरा चलो आओ हमारे साथ दंड मार के दिखाओ। और जो जिम के ट्रेनर साहब थे वो उतना दंड नहीं मार पाए जितना उस 55-60 साल के उस व्यक्ति ने दंड मार दी। आज लोग बॉडी बनाने की बात करते हैं, भोजन बनाने की बात करते हैं। मैं सबको कहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं या जो मजदूर आपके अगल बगल काम कर रहे हैं या जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, आप उनकी बॉडी देख लीजिए, एकदम सिक्स पैक, वेरी गुड एब्स, वेरी गुड शोल्डर देख लीजिए। आप उनका भोजन देखिए भैया, वो रोटी के साथ या तो चना या गुड़ या वो सब्जी जो खा रहे हैं उसके बाद वो स्वीट्स मिठाई की जगह गुड़ खाते हुए दिखेंगे। वो जब अपने काम का ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी ले। आज हम और आप बोल रहे हैं कि अंकुर चना खाना चाहिए, वो एक अपने कहते हैं पोटली में चना बांध कर मूंगफली बांध के लाते हैं। और कहते ना लोग महंगा महंगा प्रोटीन खरीद रहे हैं, महंगा महंगा वो खा रहे हैं, वो बेसिक न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोटीन जो है वो मूंगफली से और चने से ले ले रहे हैं, और एक्सरसाइज उनका काम है उसकी वजह से ले रहे हैं, और वो बहुत अच्छे फिट हैं भैया, बहुत अच्छे फिट हैं। तो आपको जो जानकारी मिली है अपने घर में वो जान, और स्पेशली भारतीय परिवेश में फिर बोलूंगा, वो जानकारी बहुत अच्छी है, आपके लिए बड़ी अच्छी है, और उसका प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर करिए।
0: जब इन बातों को सुनते हैं तो बहुत सारे लोग जो अपने घर में जो पारंपरिक रूप से जो जानकारी वो सुनते आए हैं, जिन चीजों का उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जो ज्ञान मिला है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आज जब हम इन सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो बीमार पड़ना और आसान होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे और आप ये कह रहे थे कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सिर से लेके पैर के नोक तक हर एक अंग को प्रभावित करता है। आपने आंखों का उदाहरण दिया था कि आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है जिसकी वजह से व्यक्ति आंखों से अंधा हो सकता है अगर वो डायबिटीज की सही जांच न करवाए और इसका इलाज न करवाए। वैसे ही आपने ये कहा था कि किडनी और अलग अलग अंगों पर इसका असर होता है, वैसा आपने बताया। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये हमारे शरीर के दूसरे दूसरे अंगों पर प्रभाव डालने के लिए इसको कोई लंबा समय चाहिए या कभी भी हो सकता है, और शरीर के अंगों पर प्रभाव डालता है तो ये कब डालता है, ये भी लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है।
1: श्री भैया, मैं अपने श्रोताओं को एक और बात बोलना चाहूंगा आज कि हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो आपको सजग बनाने के लिए दे रहे हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं। और अगर आप सजग रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और यदि आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप उसको कैसे बढ़ने न दिया जाए और कैसे आपके परिवार के लोग उससे बच पाए इसकी जानकारी देना चाह रहे हैं। डायबिटीज की जो हमने बात की उसमें जिन चार अंगों के बारे में कल हमने बात की कि आंख के बारे में हृदय, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी मतलब हृदय पर, और डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब नसों पर। और महिलाओं में एक चीज और बोलना चाहूंगा या पुरुषों में भी कि एक कंधा जाम हो जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था अपने पुराने लेक्चर में कि डायबिटीज कुछ करता नहीं है, वो चोरों के जो झुंड है उसका सबसे छोटा चोर है जो सिर्फ ताला तोड़ना जानता है, और वो ताला तोड़ के आपके शरीर में, अगर वो ताला तोड़ता है तो जैसे कोई चोर ने दुकान का ताला तोड़ दिया है और जो चाहे उसके अंदर घुस जाए, इसी तरीके से डायबिटीज वो चोर है जो आपके शरीर का जो है वो ताला तोड़ देता है और जो बीमारी चाहे उसके अंदर घुस जाए, वो इस तरह से आपके शरीर को नुकसान करता है। कब हुई ये अगर हमको नहीं मालूम चला तो थोड़े दिनों बाद जब वो किसी न किसी अंग को परेशान करने लगता है तब उस अंग के डॉक्टर के पास या उस बीमारी को हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग को मालूम चलता अरे हमको डायबिटीज हो गई होगी। तीन जो सबसे तो कॉमन लक्षण है या जो सबसे साधारण लक्षण है वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। ये तीन चीज जो तीन सिम्टम सबसे ज्यादा कॉमनली मरीज को मिलते हैं, पहला कि उसको पेशाब बहुत होने लगती है, उसको बार बार जो है वो पेशाब करने या यूरिनेशन करने के लिए जाना पड़ता है, और उसकी रात की नींद भी है वो भी डिस्टर्ब होती है और उसको रात में भी पेशाब करने जाना पड़ता है। कभी कभार उसको सडन जो है वो मतलब वो कहीं बैठा होता है तो सडनली एक बड़ी तेज पेशाब आती है, वो जैसे कहता है भागो नहीं तो पैंट में हो जाएगी, इस तरह की अर्जेंसी उसको होने लगती है। दूसरा कि जब आपको बहुत पेशाब होगी तो आपको बहुत ज्यादा पानी की जो है वो जरूरत महसूस होगी, तो आप हद से ज्यादा पानी पीने लगेंगे, आप बहुत ही पिएंगे और आप बहुत ज्यादा पेशाब करेंगे। और तीसरा जो आप परेशान होंगे वो होगा कि आप इतना पेशाब कर रहे हैं, इतना पानी पी रहे हैं और वो जो चीनी है वो आपके कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पा रही है, तो आपकी जो कोशिकाएं हैं उनको थकान लगेगी, तो वो बार बार कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है तो बार बार वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि भाई हमको तो भोजन ही नहीं मिल रहा है, भोजन ही नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति ज्यादा खाना खाने लगता है। और एक लक्षण और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं खा बहुत रहा हूं पर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है और मुझे बहुत पेशाब आ रही है और मुझे बहुत ज्यादा पानी पीने का मन कर रहा है। तो यदि ऐसा कोई भी लक्षण जिसमें बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, आप बहुत ज्यादा पेशाब कर रहे हो, आपका बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही हो, बहुत ज्यादा भोजन करने के बाद भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा हो, आपके चश्मे का नंबर बार बार बढ़ रहा हो, आपके कंधे जाम होते चले जा रहे हो, बहुत दर्द हो रहा हो, तो कृपा करके हो सकता है कि ये डायबिटीज हो, तुरंत आपको जाकर एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना जो रक्त की जांच होती है शुगर के लिए, चीनी के लिए, उसको तुरंत कराना चाहिए। जहां तक हम लोग ने चार बीमारियों की कल बात की और उसके पहले के एपिसोड में बोला था कि ये सर से लेके पैर तक सब चीज को असर अपना दिखा सकता है, तो ये आपको सर के ऊपर आपको भयंकर डैंड्रफ आपके बालों में कर सकता है, आपको ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। अच्छा, बेहोश क्यों होंगे? क्योंकि हमारा दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से चलता है, हमारे दिमाग को कोई और भोजन नहीं चाहिए, वो सिर्फ ग्लूकोज को ही अपना भोजन मानता है, और जब हमारे को इंसुलिन कम होने लगता है तो हमारे जो दिमाग की कोशिकाएं हैं उसके अंदर ये ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है, और जब वो ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है तो जो व्यक्ति है उसके दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो भी मरने लगती हैं, और क्योंकि वो हमारे दिमाग को भैया दो चीजें हमेशा चाहिए, एक ऑक्सीजन और दूसरा ग्लूकोज, तो ये दोनों चीजें में से अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन या ग्लूकोज हमारे दिमाग को नहीं मिलेगा तो ये तुरंत अपना असर दिखाने लगेगा। आप देखिए कि अगर आदमी सांस पानी के अंदर नहीं ले पाता है और जैसे ही वो अगर स्विमिंग पूल या समुन्द्र में जाता है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो छटपटाने लगता है, तुरंत बाहर आता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलती है वो परेशान हो जाता है और सिग्नल देता है भाई तुरंत बाहर निकलो, सांस लो। तो आप नोटिस भी किए होंगे भैया कि हम लोग जब तरन ताल में या स्विमिंग पूल में तैर रहे होते बाहर निकलते हैं तो एक बार बड़ी गहरी सी सांस लेते हैं करके, क्योंकि वो जो हवा है वो तुरंत हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन देती है, और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन के बाद जो चीज चाहिए वो शुगर है, और जहां शुगर हमारे बॉडी में गड़बड़ाता है तो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं मरने लगती हैं और हमारे ब्रेन में स्ट्रोक भी हो सकता है। मैंने बताया बहुत प्यास लग सकती है, आंख की आपको बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपकी जो पसीना है वो भी महकने लगता है और वो एक अलग सा महक आपको महसूस होती है और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके अगल बगल वाले बोलते हैं अरे तुम कुछ अलग तरह से महक रहे हो, एक अजीब सी महक आ रही है तुम्हारे में। तो सोचिए वो शुगर जो शरीर में नहीं जा पा रहा है वो भी हमारे शरीर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है और हमारी इवन हमारा जो स्वेट है पसीना है वो भी अलग तरह से महकने लगता है। हमारा हृदय की मैंने बात की कि हमारे हार्ट डिजीजेस के हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं, हमें त्वचा रोग हो सकता है, हमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमारी शरीर में कोई जिस इन्फेक्शन का नाम लीजिए वो हमें हो सकता है क्योंकि खूब सारा भोजन है बैक्टीरिया वायरस फंगस के लिए, तो वो खूब अच्छे से घूम टहल रहे होते हैं। हमको बहुत थकान लग सकती है। अब लोग पूछेंगे भाई चीनी तो है ही, तब थकान क्यों लग रही है? क्योंकि वो चीनी या जो शुगर हमारे रक्त संचार में चल रहा है वो कोशिकाएं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। तो हाई ब्लड शुगर एंड लो इंट्रा सेलुलर शुगर हो जाता है, मतलब खून में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, कोशिकाओं में चीनी की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा थकान होने लगती है।
0: लोग सब जब आप इस बात को बताते हैं कि खून के अंदर तो चीनी की मात्रा है मगर कोशिकाएं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं या वो कोशिकाओं के अंदर वो चीज जा नहीं रही है, तो प्रश्न उठता है कि जब चीनी है और वो खून के अंदर है और वो कोशिका के अंदर नहीं जा रही है तो फिर उस चीनी का होता क्या है? क्योंकि वो चीनी इस्तेमाल नहीं हो रही है, कोशिकाएं उसका उपयोग नहीं कर रही है, तो वो चीनी होगा क्या उसका?
1: वो चीनी हमारे शरीर में किसी काम की नहीं रहती है। और आप ये व्यथा समझ लीजिए कि आप समुन्द्र में आपकी नाव चल रही है और आप पानी से घिरे हुए हैं मगर आप उस पानी को पी नहीं सकते, तो जो कोशिकाएं हैं वो चीनी से घिरी हुई हैं मगर इंसुलिन नहीं है तो वो कोशिका के अंदर नहीं जा पा रहा है। अब अंदर नहीं जा पा रहा है तो वो रक्त में बढ़ता चला जाएगा, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो जगह जगह से बाहर निकलना शुरू करेगा और सबसे कॉमनली वो हमारे पेशाब के रास्ते वो बाहर निकलता है। ये करीब 30-35-40 साल पहले जब ब्लड शुगर की जांचें बहुत कॉमन नहीं थी और बहुत जगह पे जब मेडिकल फैसिलिटी पहुंची नहीं थी तो डायबिटीज की डायग्नोसिस करने के लिए एक ये बात बोली जाती थी कि जहां आप पेशाब करते हैं वहां पे चींटी या कीड़े तो नहीं आ जाते हैं, इतना शुगर हमारी बॉडी के बाहर निकलने लगता है। और जब ये शुगर बाहर निकलता है सोचिए कि वो इतना ज्यादा हो गया है कि वो यूरिन के रास्ते आपके बाहर निकल रहा है और वो बाहर जो कीड़े मकोड़े चींटियां हैं उनको बुला रहा है, तो आपके शरीर के अंदर जो होंगे कितने बैक्टीरिया कितने वायरस कितने फंगस घूम रहे हैं उनको कितना अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड देगा जिससे वो भयंकर मल्टीप्लाई करके आपको बीमार कर दे। तो शुगर की बीमारी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अकेली ऐसी बीमारी है जो सारे के सारे अंगों को असर करती है। एक और बड़ी बात है कि इसको कहा जाता था कि जब मेडिकल में पढ़ाई कराई जाती थी पहले तो दो तरह की बीमारियों में सारी बीमारी बांटी गई थी, एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, मतलब जो एक छुआछूत से होगी और दूसरी जो आप छू भी दीजिए तो नहीं होगी। आप सोचिए कि पहले जो अगर मेरे श्रोतागण सुन रहे होंगे कि पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता अरे इसको कोढ़ है इससे दूर रहो, या इसको टीबी हो गई है इसको बाहर दूर भेजना है। अब आप ये देखिए कि कहीं कोई कोढ़ या लेप्रोसी उसकी बात ही नहीं कर रहा है, इवन ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं या वो मेडिकल लोग बात कर रहे हैं मगर आप कॉमनली आम जनमानस में इसकी बात नहीं हो रही है। हम बात क्या कर रहे हैं? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और अस्थमा, चारों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चारों जो आपको हो सकती हैं और चारों जो आपके शरीर को खराब कर सकती। और पहले हम सारा यही दिमाग कोविड, सबको याद होगा कितनी बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज आई थी, एक से दूसरे को हो सकता है, चलो सबको बंद कर दो, कोई नहीं बाहर निकलेगा, कोई कुछ नहीं होगा। भैया कोविड ने लोगों को बहुत बीमार किया मगर उस समय लोगों ने अच्छा खाया क्योंकि ऋतु के अनुसार आप ट्रांसपोर्टेशन बंद था तो लोकली फ्रूट वेजिटेबल मिल रहे थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, तो पॉल्यूशन कम हो गया था और आदमी घर पे बैठा हुआ था, खाली था, तो एक्सरसाइज कर रहा था, वर्जिश कर रहा था, ठीक कर रहा था, अपने आप को ज्यादा अच्छा ठीक रख रहा था और टेंशन बहुत कम हो गया था क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे, आदमी लोग के ऑफिस बंद हो गए थे, तो लोग अपने घर में थे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो समस्याएं थी वो कम होने लग गई थी। तो अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे से रहेंगे और अच्छा एक्सरसाइज करेंगे तो हो हमारी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें भी हमको आराम मिल जाएगा।
0: ये बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आ रही है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी जो छुआछूत से नहीं फैलने वाली बीमारियां हैं, इसके बारे में अगर हम थोड़ी जागरूकता रखते हैं तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज आवश्यकता है कि हम सजग बने अपने स्वास्थ्य के प्रति और जो बीमारियां हो रही हैं उसके कारण को समझें और उसके लिए स्वास्थ्य के तरफ कदम बढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए कुछ करें। आज समय को देखते हैं रुकना होगा, मगर आज डायबिटीज के विषय में बहुत ही पुख्ता जानकारी आज हासिल हुई है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी डायबिटीज के चिन्हों के ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप अधिक मात्रा में पानी पी रहे हैं या बार बार पेशाब के लिए जा रहे हैं, जहां पेशाब करते हैं वहां पर अगर चींटियां या मकोड़े आते हैं, जो ये बताता है कि आपके पेशाब के रास्ते बहुत सारी चीनी निकल रही है अपने शरीर से, तो आप डायबिटीज के मरीज हो सकते हैं और आपको तुरंत इलाज के लिए या डायबिटीज के इस बीमारी का पता करने के लिए खून पेशाब की जांच करवानी चाहिए और डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। आज के सेहत स्वास्थ्य में यही रुकते हैं। आज आप सभी श्रोता मित्रों को इतनी नई जानकारियां डॉक्टर मोदी जी ने दी, इसके लिए आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही। जो जानकारी सुनी है उस पर अमल करना जरूरी है। ध्यान देना शुरू करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ रेडियो के पास। परी और मनी दीदी आ गए आपका फेवरेट शो को लेकर।
2: हाँ बच्चों, और उस फेवरेट शो का नाम है सपनों की सैर। और हम बातें कर रहे हैं रक्षाबंधन पर्व के बारे में, क्योंकि आजकल मार्केट में, कहे बाजार में, घरों में राखी की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। और 28 को रक्षाबंधन का त्योहार भी है और घर में बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां भी बन रही है।
1: हाँ मनी दीदी, मिठाइयों का नाम सुनकर तो मुँह में पानी आ गया।
2: हाँ, इस पर्व का तो हमेशा इंतजार रहता है, और खासकर बहनों को।
1: बिल्कुल मनी दीदी, क्योंकि बहनों को गिफ्ट जो मिलता है भाइयों से।
2: हाँ, और वो गिफ्ट भले चाहे जो भी हो, लेकिन वो भले छोटा हो, लेकिन वो भाई ने अपने इतने प्यार से अपनी बहन को दिया है, इसलिए उस गिफ्ट का भी विशेष महत्व होता है।
1: तो बच्चों, इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में सुंदर सी राखी बांधती है और उसके सुख, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती है।
2: हाँ, और भाई अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने और उसका साथ देने का संकल्प लेता है।
1: रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं है बच्चों, बल्कि ये हमें प्रेम, सम्मान, सहयोग और एक दूसरे की देखभाल करना भी सिखाता है।
2: सही कहा परी। तो बच्चों, राखी का धागा प्यार का, रिश्ता है विश्वास का, भाई बहन यूं साथ रहे, हर पल हो एहसास प्यार का।
1: तो चलो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
2: रेडियो मधुबन 107।

बैठो रेडियो के पास और वॉल्यूम लाउड कर लो। कहानी शुरू कर रही है परी। बच्चों, एक धनवान बुढ़िया थी। एक बार उसने एक नामी चित्रकार से अपना चित्र बनाने के लिए कहा। चित्रकार ने उसे चित्र बनाने के लिए कई दिनों तक मेहनत की। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो चित्रकार ने उस महिला को अपने स्टूडियो में चित्र दे

देखने के लिए बुलाया। इससे बुढ़िया बहुत खुश हुई। वो चित्र देखने के लिए चित्रकार की स्टूडियो पहुंची। अपने साथ अपने कुत्ते को भी ले गई। बुढ़िया ने चित्र अपने कुत्ते को दिखाते हुए पूछा, टॉमी डार्लिंग देखो ये तेरी मालकिन है। बच्चों, कुत्ते ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। धनवान बुढ़िया ने चित्रकार की ओर मुड़ते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए ये चित्र, मेरा चतुर कुत्ता इस चित्र में मुझे पहचान ही नहीं सका। बच्चों, चित्रकार तो बहुत व्यवहार कुशल और बुद्धिमान था। वो अमीरों की इस तरह की सनक से भली भांति परिचित था, तो उसने नम्रता पूर्वक कहा, मैडम आप कल फिर आइए, कल मैं इसे इतना स्वाभाविक रूप दे दूंगा कि ये चित्र आपकी शक्ल सूरत से हूबहू मिलता जुलता बन जाएगा। फिर आपका टॉमी इसे देखकर दुम हिलाना शुरू कर देगा और इसे चाटने लगेगा। बच्चों, दूसरे दिन बुढ़िया फिर अपने कुत्ते को लेकर चित्रकार के स्टूडियो पहुंची। सोचो बच्चों क्या हुआ होगा। कुत्ता चित्र को देखते ही अपने दुम हिलाता हुआ दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे चाटने लगा। बुढ़िया तो देखकर पुलकित हो गई। उसने कहा, वाह कितना खूबसूरत चित्र बनाया है आपने, मेरे टॉमी को ये पसंद आया, इसलिए मुझे भी ये पसंद है, लाइए इसे बांधकर मुझे दे दीजिए। चित्रकार ने चित्र के लिए एक मोटी रकम मांग ली और महिला ने खुशी खुशी पैसे अदा कर दिए। बच्चों, सोचो वो चित्र क्या होगा, बहुत ही सरप्राइज वाली बात है। जब बुढ़िया चित्र लेकर चली गई तो चित्रकार को तो बहुत हंसी आई। उसने पहले वाले चित्र में कुछ भी बदला नहीं था, उसने उस चित्र पर केवल मसालेदार गोश्त का टुकड़ा लेकर रगड़ दिया था, बस। बच्चों, गोश्त की महक नाक में जाते ही कुत्ता चित्र को चाटने लगा। देखा बच्चों कितनी सुंदर युक्ति चित्रकार ने रची। और कहानी हमें समझाती क्या है, सूझबूझ से काम लेने पर बिगड़ी बात भी सुधर जाती है ना बच्चों। तो इसीलिए हमेशा कोई ऐसी परिस्थिति या समस्या आए, सूझबूझ से काम लेना। तो चलो अब क्या करना है, सुनेंगे ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

तो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, हम पढ़ रहे हैं तेनालीराम की अनोखी दुनिया से एक नई कहानी जिसका शीर्षक है मृदुभाषिता। और इसमें पिछली कड़ी में हमने सुना था कि महाराज कृष्णदेव राय बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन उनके दुख का एक कारण था और वह था उनका दामाद। उनको ये जानकारी मिली कि उनकी पुत्री इतने सुयोग्य वर ढूंढने के पश्चात भी दुखी रहती है, तो महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक महोत्सव आयोजित कर अपनी पुत्री और दामाद को इस अवसर पर बुलाया। फिर आगे क्या हुआ चलो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। नियत तिथि को महाराज कृष्णदेव राय के आमंत्रण पर उनके बेटी दामाद विजयनगर पहुँचे। महोत्सव तो उन्हें बुलाने का बहाना था। महाराज ने बेटी दामाद के आगमन के बाद महोत्सव को स्मरणीय बनाने के लिए राज्य भर के कलाकारों को जुटाया। आनंद की मानो हर ओर वृष्टि हो रही थी। महाराज ने बहुत गंभीरता से अपने दामाद के कार्यकलापों का अध्ययन भी किया। उन्हें अपने दामाद में कोई कमी दिखाई नहीं दी। महोत्सव के समापन के बाद उन्होंने अपनी पुत्री से दुखी रहने का कारण जानना चाहा। तब पुत्री ने बताया कि वो अपने पति के कटु वचनों से आहत होती है। ऐसे तो उसके प्रति उसके पति का व्यवहार ठीक है, मगर वह कड़वा सच बोलने का अभ्यासी है। उसके इस अभ्यास के कारण उससे सभी घबराते हैं। तो महाराज को पुत्री की पीड़ा का कारण समझ में आ गया। दूसरे दिन महाराज ने अपने दामाद को स्नेह पूर्वक बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा, पुत्र अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, राजकाज संभालते वर्षों बीत चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह महीने दो महीने के लिए आ जाया करो, ताकि इस राज्य के बारे में भी तुम्हें आवश्यक ज्ञान हो जाए। महाराज की बात सुनकर उसके दामाद ने बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय भाव से कहा, ससुर जी वृद्ध तो सभी होते हैं, जो जन्मा है वह हमेशा शिशु तो नहीं रहेगा, बड़ा होगा और अपना दायित्व संभालेगा और एक दिन वृद्ध भी होगा और मरेगा भी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अपने दायित्व के निर्वाह के लिए

माँ की ये आदत सुधरेगी भी या नहीं तो वो जानेंगे हम अगली बार। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। आज तो भाइयों का दिन है, बहनों ने बड़े प्यार से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी है और रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया। और हमने शुरू से ही अपने सपनों की सैर कार्यक्रम में भी इसके बारे में बातें की, रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में। तो अब पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका भी तो जवाब जानना है ना। तो परी, आपने क्या पूछा था पिछली कड़ी में?
3: बच्चों चेक कर लो अपना जवाब। हमने पूछा था, जंगल का राजा कहलाता, धारीदार शरीर दिखाता, भारत का राष्ट्र पशु है महान, बताओ उसका प्यारा सा नाम।
2: और उसका नाम है टाइगर। तो जिन बच्चों ने भी सही जवाब दिया है उनके लिए ढेर सारी तालियां।
3: तो बच्चों आज

0: फिर कोई पहेली नहीं है क्योंकि रक्षाबंधन आने वाली है, तैयारियां तो हो ही रही है। इसलिए आप अपने भाइयों को या अपनी बहन को जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो हमें वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दीजिए। नंबर तो आपको याद ही है,
1: 9414151415।
0: हाँ तो हम फिर अब करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट,
0: गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.

आप सुनने जा रहे हो प्रभा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना आपकी अपनी उषा के साथ। आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे से विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही और आपको देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। चलिए एक शक्तिशाली विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का शक्तिशाली विचार इस प्रकार है, खुशी अनमोल औषधि है। खुशी अनमोल औषधि है। चलिए आज के विचार का विस्तार करते हैं। खुशी हर उम्र के हर वर्ग के व्यक्ति को चाहिए। आज मनुष्य खुशी को बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों, वैभवों, क्लबों, होटलों, पर्यटन स्थलों में ढूंढ रहा है। वास्तव में खुशी अंतर मन में छुपी हुई है, वो बाजार में मिलती नहीं। अगर संतुष्ट रहे तो खुशी गले में सजे हुए हार बरोबर है। खुशी के खत्म होने के 100 कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। खुशी को कायम रखने के लिए सदा सर्व को खुशी दे, फिर हम भी खुश रह सकते हैं। खुशी देने से खुशी मिलती है, दुख देने से दुख मिलता है। जो देंगे वही मिलेगा, यह एक नियम है। खुशी अनमोल औषधि है, यह हमारे जीवन को अनमोल बनाती है। तो ये हुआ आज का पावरफुल विचार, जिसको जरूर हम धारण करेंगे। और चलिए अब सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: You are listening to Sister Dipti from Johannesburg, South Africa, and you are listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. This has been heard on www.radiomadhuban.in. I'm in South Africa, but you can tune into this wherever you are in the world and stay tuned into this wonderful fragrance.
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको घरेलू नुस्खे देते हैं। अगर पित्ती उछलती हो तो आप क्या करेंगे? चलिए इस प्रॉब्लम में आप 10 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम गुड़, 200 ग्राम पानी में उबाल करके छान करके पिलाइए। इससे बार बार उछलने वाली पित्ती ठीक हो जाएगी। 10 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम गुड़, 200 ग्राम पानी में उबाल करके छान कर पिलाइए। इससे बार बार उछलने वाली पित्ती ठीक हो जाएगी। अगला नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। चने यानी कि चने का आटा होता है ना, बेसन, बेसन से बने मोतियों का लड्डू पर काली मिर्च डालकर खाइए। इससे पित्ती ठीक हो जाएगी। बेसन के बने मोतियों के लड्डू पर काली मिर्च डाल करके खाइए, इससे भी पित्ती ठीक हो जाती है। और भी आप सुनेंगे अगला नुस्खा। पित्ती या छपा की निकलने पर देसी घी और सेंधे नमक को मिला करके मालिश करिए, फिर कंबल ओढ़कर पसीना लीजिए, पित्ती मिट जाएगी। पित्ती या छपा की निकलने पर देसी घी और सेंधे नमक को मिला करके मालिश करिए, फिर कंबल ओढ़कर पसीना लीजिए, पित्ती मिट जाएगी। लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। हींग को घी में मिला करके मालिश करने से भी लाभ होता है। हींग को घी में मिला करके मालिश करिए, इससे भी लाभ होगा। इस तरह पित्ती की प्रॉब्लम में आपको राहत मिलेगी। पित्ती तो आप समझ ही गए होंगे, जिसको हम पस्तोई भी बोलते हैं, शरीर से पस्तोई निकलती है ना, तो इसको पित्ती कहते हैं। तो चलिए, ये सारे ही नुस्खे अच्छे हैं और आप इनको आजमा सकते हैं अगर पित्ती की प्रॉब्लम हुई, पस्तोई की प्रॉब्लम हुई तो। अब सुना देते हैं आपको एक अच्छा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

प्यारे श्रोता बंधु, आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी बीच में ही गीत गाने लगी है, भजन गाने लगी है। तो इन दो लाइनों का अर्थ आप साथ ही साथ समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। जी हाँ, खुशनुमा जीवन में ये दो लाइनें मैंने इसलिए गुनगुनाई है कि कभी कभी लोभी इंसान जो होता है ना, कभी कभी उसके ऊपर भी कहते हैं कि सवा शेर जो मिल जाता है ना, कहते हैं कि सारा लोभ धुला रह जाता है। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर शेर से सवा शेर मिल जाए तब पता चले कि हम कितने गहरे पानी में। इसी तरह जो लोभ लालच करता है उसको भी अगर मात देने वाला मिल जाए ना, तो उसकी हालत देखने वाली होती है। तो कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि कंजूस न खाता है न खर्च करता है, उसकी तीसरी गति होती है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, लोभी और लालचियों का भी यही हाल होता है। बहुत लोभ करके पेट को काट काट करके पैसे जोड़ते हैं, एक पैसों का भी दान नहीं करना, और अपने परिवार को भी बहुत ही कंजूसी से चलाना, जबकि अच्छा खासा पैसा है फिर भी हर चीज में कंजूसी करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, इकोनॉमी से चलना चाहिए, बचत करिए, आप बहुत ही सावधानी से चलिए। लेकिन ये तो नहीं हुआ कि भाई हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 के 100 हम बचा सकते हैं या 100 में से 90 बचा सकते हैं। नहीं, देखिए कुछ लिमिट होती है हर चीज की। कहते हैं कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से थोड़े दान पुण्य के भी निकालने हैं, घर परिवार के खर्च के लिए भी निकालना है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी निकालना है और बचत के लिए भी निकालना है। 4 हिस्से होने ही चाहिए, तभी हम खुशनुमा जीवन जी पाएंगे। अगर हम 100 में से 90 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे और 10 रुपये खर्च करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि हमारी किस तरह हालत होती है। और फिर जब कोई ठग हमें ठग लेता है तो हम अपने किस्मत पर फिर रोना शुरू कर देते हैं कि हाय रे, ये मैंने क्या किया। तो इसी बात पर प्यारे श्रोता बंधु, एक मुझे कहानी याद आ रही जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक सेठ ने मार्ग में जाते हुए एक खजूर का पेड़ देखा जिसमें मीठी मीठी और मोटी मोटी खजूर लगी हुई थी। खजूर देख करके लाला जी के मुंह में पानी आ गया। वो सेठ कौन थे? लाला जी। लाला जी के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। खाने की इच्छा हुई तो वो पेड़ पर चढ़ गए। खजूर खाने के बाद जो ही उतरने के लिए धरती की तरफ देखा, त्यों ही सेठ जी का शरीर कांपने लगा। आप सभी जानते होंगे कि खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है। तो लाला जी ने सोचा कि यदि कहीं उतरते समय इसके नीचे गिर पड़ा तो हड्डियों का भी कहीं पता नहीं लगेगा। ऐसा विचार करते हुए वह थर थर कांप रहा था और खजूर खाने की इच्छा करने वाले अपने मन को बार बार धिक्कार रहा था। इस प्रकार सोच विचार करते हुए बहुत समय तो वहीं पर बीत गया। फिर लाला जी ने सोचा कि इस प्रकार पेड़ पर कब तक बैठा रहूंगा, इसलिए भगवान को याद किया। भगवान के सामने संकल्प रखा कि हे भगवान, अगर मैं इस पेड़ से नीचे आराम से उतर गया तो 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा, भोजन करूंगा। जब वह पेड़ पर से आधा नीचे आया, फिर उसने पेड़ से उतरना शुरू कर दिया। जब पेड़ पर से आधा नीचे आया तो फिर नीचे की तरफ देखा और सोचा, फिर कहा भगवान से कि हे भगवान, अब मैं 100 को नहीं 50 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। प्यारे श्रोता बंधुओं, वह सेठ जो जो पेड़ के नीचे उतरता रहा, त्यों त्यों जिमाने वाले ब्राह्मणों की संख्या भी कम होती जा रही थी। अंत में जब वह आराम से पेड़ के नीचे उतर आया ना, तो उसने सोचा कि केवल 2 बिंदी ऊपर की हटानी पड़ेगी, इसलिए घर पहुंचते ही 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। ऐसा करने से न तो प्रतिज्ञा ही भंग होगी और न अधिक खर्चा ही करना पड़ेगा। यह विचार करता हुआ सेठ घर चला गया और दूसरे दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को खोजने लगा जो कम से कम भोजन करने वाला हो। अब उसका नियम हो गया था कि कोई ब्राह्मण उसकी दुकान के आगे से निकलता, उसी के आहार के बारे में पूछता। बेचारे सरल स्वभाव
वाले ब्राह्मण जितना भोजन करते उससे कहीं अधिक कर देते थे, इस कारण से वे भोजन नहीं कराता। एक दिन एक धूर्त ने विचार किया कि क्यों न इस लालची लाला को लूट करके अपने घर का काम चलाया जाए। ये विचार करके वह तिलक लगाए और तिलक लगा दिया स्वयं के और पंडितों जैसा स्वरूप बना करके लाला की दुकान के सामने से निकला। त्यों ही सेठ जी ने उसे विद्वान ब्राह्मण समझ करके प्रणाम करते हुए कहा, पंडित जी आपकी खुराक कितनी होगी? उसने कहा, इससे तात्पर्य। सेठ जी ने कहा, पंडित जी आप तो बुरा मान गए, तात्पर्य वात्पर्य कुछ नहीं, यूं ही पूछ लिया था, क्रोध न कीजिए महाराज। लाला जी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, यजमान हम ब्राह्मण लोग शत्रु पर भी क्रोध नहीं करते, फिर आप जैसे सज्जनों पर तो अप्रसन्न ही क्यों होने लगे? भाई आप हमारे भोजन के बारे में पूछना ही चाहते हैं तो लीजिए, मैं आपके सम्मुख अपना आहार बताता हूँ। सुनिए, अधिक से अधिक आध पाव आटा, आधी छटांग दाल और 6 मासा घी, बस इतना भोजन 24 घंटे के लिए पर्याप्त है। सो भी जितना आपको बताया है सारा नहीं, इसमें से कुछ भाग गऊ के लिए और कुछ काक तथा कुत्ते के लिए निकाल दिया करता हूँ। यदि सारा भोजन कर लूंगा तो फिर वेद जी को बुला करके चूर्ण लेते हुए 48 घंटे पेट के दर्द में कराते हुए व्यतीत करना पड़ेगा और दक्षिणा तो हम किसी से लेते ही नहीं। इतना सुनते ही लाला जी का मन आनंद के मारे भर गया और उनका मन खिल उठा और मुस्कुराते हुए लाला जी ने कहा, पंडित जी कल आपका निमंत्रण है, सो आप घर आकर के इच्छा के अनुसार रसोई बना करके भोजन कर लेना। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप समझिए कि लाला जी इस बात से खुश हो गए और धूर्त को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। अब आगे क्या हुआ होगा लाला जी के साथ, क्या उस धूर्त ने कहे के अनुसार भोजन किया या फिर अभी नहीं बताऊंगी। एक गीत सुनाने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि उस धूर्त ने लाला जी के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह भोजन खाया और किस तरह लाला जी को लूटा। तो चलिए सुन लीजिए एक गीत, गीत के बाद आप धैर्यता रखिएगा, जरूर आपको सारी बात बताएंगे, पूरी ही कहानी सुनाएंगे, लेकिन एक गीत के बाद। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: लोभ लालच से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, जब ये बात जानता है तो छोड़े क्यों न फिर। चिंता चित्ता है जो जिंदा जलाती है, चिंता चित्ता है जो जिंदा जलाती है, खुशी छीन कर शोक के घुट पिलाती है, खुशी छीन कर शोक के घुट पिलाती है। तो प्यारे श्रोता बंधु, किस सुनने से पहले आपको मैं बता रही थी कि किस तरह लोभी इंसान को कभी सवा शेर जो मिल जाता है ना, तो सचमुच उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे मैंने आपको लाला जी के बारे में बताया कि लाला जी किस तरह खजूर के पेड़ पर चढ़े और खजूर खाने के लालच में चढ़ तो गए, लेकिन उतरना उनके लिए भारी हो गया। फिर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे और 100 ब्राह्मण जिमाने की मन्नत मांगी, फिर 50, फिर 25। लास्ट में जब वो नीचे उतर गए धरा पर, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को जिमाने की मन्नत पूरी करनी चाहिए कि चलो एक ब्राह्मण को जिमा देते हैं, वो भी इस तरह का कि सबसे कम खाता हो। और एक धूर्त ने सोचा कि चलो बहुत सारे ब्राह्मण को लाला जी ने पूछ लिया है, अभी इनका नहीं हो रहा है सेट, तो चलो अब लाला जी को लूटते हैं। तो इस तरह उस धूर्त ने खाने की मात्रा बहुत कम बताई। तो चलिए और भी मैं आपको आगे बता रही हूँ कि लाला जी के साथ क्या हुआ। लाला जी ने तो निमंत्रण दे दिया, तो फिर सेठ जी क्या करते हैं, लाला जी अपने घर का पता भी दे देते हैं और लाला जी अपने घर पर आते हैं और सेठानी को कहते हैं कि कल एक पंडित जी अपने घर भोजन करने आवेंगे, सो उन्हें जिस वस्तु की इच्छा हो ना दे देना, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें अपने घर आकर किसी बात का कष्ट उठाना पड़े। सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी, उसने लाला जी के मुख से धर्म के काम के लिए ऐसी दिल खोलकर बातें आज पहली बार ही सुनी थी, अतः उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन लाला जी तो दुकान पर चले गए। उसके बाद लगभग 9 बजे पंडित जी सेठ जी के घर गए और सेठानी से अपने जिमाने के बारे में पूछताछ की। तब सेठानी ने अपने हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए कहा, पंडित जी महाराज, लाला जी ने मुझसे कह दिया है, अतः आप प्रेम पूर्वक इच्छा अनुसार भोजन करिए, जो आपको चाहिए वे सभी आपकी आज्ञा अनुसार आपके पास पहुंच जाएंगे, इसलिए चौके में चल करके रसोई बनाने का कष्ट कीजिए। सेठानी की ये बात सुनकर प्रसन्नता से फूले हुए पंडित जी ने कहा, बस अभी तो केवल 10 सेर आटा, 2.5 सेर मेवा, 7.5 सेर घी और 10 सेर बूरा ला दीजिए, बुरादा ला दीजिए। जब हलवा लड्डू पूरी तैयार हो जाएगा ना, तो फिर साग मसाला पापड़ और दही मंगवा देना। पंडित जी के कहने की देर थी, सेठानी ने सब सामान मंगवा दिया। प्यारे श्रोता बंधु, इतनी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि पहले के जमाने में पंडित लोग अपने हाथ से बना करके खाते थे, किसी के भी घर का खाना नहीं खाते थे, वो सूखा सामान लेते थे और सूखा सामान अपने हाथों से बना करके उन्हीं ही के घर में खाते थे। तो इस तरह पंडित जी ने इतने सामान की डिमांड की। अब पंडित जी की रसोई भी तैयार हो चुकी थी, क्योंकि सेठानी जी ने सारा ही सामान भिजवा दिया था, तो पंडित जी ने रसोई तैयार कर दी थी। और फिर जब सारी रसोई तैयार हो गई ना, तो फिर पंडित जी ने क्या किया, अपने स्त्री और बाल बच्चों को सभी को बुला लिया और सभी ने मिलकर के प्रेम पूर्वक भोजन किया और जो कुछ सामान बाकी बचा उसे उनके हाथ घर पहुंचा दिया। जब ये धूर्तराज घर जाने लगा ना, भोजन करने के बाद जब ये धूर्तराज घर जाने लगा, तब उसने सेठानी जी को बुला करके कहा, सेठानी जी, भगवान आपको सदैव आनंद दे और आपको दिन दुना रात चौगुना लाभ हो, अब दक्षिणा दिलाने का और कष्ट कीजिए। सेठानी ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा में क्या दिला दिया जाए, तो उसने कहा, लाला जी इस समय होते तो 1 सोने की मोहर जरूर दे देते, अब आपकी जो इच्छा हो सो दे दीजिए। उसकी ये बात सुनकर के सेठानी ने झट से 2 मोहर दे करके विदा किया। रात को जब सेठ जी घर आए तो सेठानी ने ब्रह्म भोजन का इतिहास सुनाया तो वह हाय कह करके पलंग पर गिर पड़ा। कौन? सेठ जी। इसके बाद उसने भाग्य को धिक्कारते हुए और सेठानी की मूर्खता पर दुख प्रकट करते हुए कहा, अरे पगली, तूने क्या किया जो ब्राह्मण पर इतना खर्च करके मुझे दिन दहाड़े लुटवा दिया। सेठानी ने कहा, मेरा इसमें क्या अपराध है? आप ही की तो आज्ञा थी कि उन्हें जिस वस्तु की इच्छा हो सो दे देना। सेठानी की ये बात सुन सेठ ने क्रोध करते हुए कहा, अरे तुझमें घर की भी फिक्र नहीं थी? मैंने ये थोड़े ही कहा था उसे 50 आदमियों का भोजन का सामान देकर उसे 2 मुहर दक्षिणा में दे देना। हाय, वह तो जिस समय दुकान पर आया था आधा पाव आटा, 1 छटांग दाल और 6 मासा घी मेरे भोजन के लिए अधिक से अधिक होगा और दक्षिणा लेने के लिए सर्वथा इनकार करता था। इसलिए तो मैंने उसे निमंत्रण दे करके जिमाने के लिए कहा। तो प्यारे श्रोता बंधुओ, सेठानी को अब पता लगा कि लाला जी कल क्यों दिल खोल करके बातें कर रहे थे, परंतु जो कुछ होने वाला था वह तो हो गया। अब आप समझ सकते हो कि ज्यादा कंजूसी कितनी भारी पड़ती है, ज्यादा लोभ लालच कितना भारी पड़ता है। लाला जी ने भी कहां 100 ब्राह्मणों को खिलाने की बात की, फिर 50 पर आए और फिर 1 पर अटक गए और 1 ब्राह्मण भी ऐसा कि जैसे मरियल मिले और खाने में न के बरोबर खाए। तो कहते हैं कि लोभ का थोब निकलता ही है, लोभ को कभी थोब नहीं मिलता। तो लोभी इंसान कभी न कभी जब उसके ऊपर सवा शेर का पाला पड़ता है ना, तो इस तरह की हालत होती है जिस तरह लाला जी के साथ हुई। तो खुशनुमा जीवन में मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि प्यारे श्रोता बंधु, 1 रुपये कमाते हो तो 25 पैसे अपने ऊपर खर्च करिए, 25 पैसे की बचत करिए, 25 के दान दक्षिणा दीजिए और 25 का अपने घर परिवार पर खर्च करिए। बाकी आप सोचोगे कि नहीं, 1 रुपये में से 90 पैसे मुझे जमा करना है, 10 पैसा खर्च करना है, तो फिर किसी न किसी माध्यम से वो धन हमारा जाता ही है। इसलिए पेट को मत काटिए, पेट को भूखा रख करके आप अपने आप पर कंजूसी करके आप पैसा इकट्ठा करेंगे तो किसके लिए, किसके लिए करेंगे? कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सपूत है तो वो खुद बना लेगा प्रॉपर्टी, और अगर पुत्र कपूत है तो आपका जमा किया हुआ भी खो देगा। इसलिए आप अपने वर्तमान को सुधारिए, भविष्य की चिंता मत करिए। थोड़ा सा बचाना जरूरी है, वो आप समझदारी से चलिए, लेकिन अपने पेट को आंटी दे करके, मतलब कहते हैं कि लिमिट से ज्यादा कंजूसी करके अगर आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर तनाव तो बना रहेगा ना, दुख ही दुख होगा, खुशियों का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा, क्योंकि परिवार दुखी तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। और जब हम भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखते हुए आराम से जीवन जिए और जो हम कमा रहे हैं अच्छी तरह उसका खर्चा करें, परिवार को खुश रखें, तो सचमुच परिवार खुश तो स्वयं भी खुश, और इस तरह खुशियां बनी रहेगी। तो चलिए अब सुन लीजिए फिर से एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Hi, I'm Priyanka Chopra, and I'm truly blessed to share an incredible relationship with my parents. I just wonder, you know, the love, trust, the kind of feeling that you have for your own family. Can you feel like that for anyone and everyone else? Can you treat every single human being that you come across with that same love and trust? Well, that's what the Brahma Kumaris teach you, to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling, with that same kind of love.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में आप सभी का वेलकम है। आइए आज बनाएंगे आशियाना के किचन में तल साकड़ी। तो चलिए, तल साकड़ी के लिए सामग्री इस प्रकार है, वैसे तो बहुत कम है, फिर भी लिख लेना अच्छी बात है। तो 500 ग्राम तिल ले लीजिएगा, ठीक है, 500 ग्राम लेना है तिल। फिर आप 350 ग्राम ले लीजिए गुड़, ठीक है, और घी ले लीजिए एक चम्मच। बस इतनी सी सामग्री है जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। 500 ग्राम तिल लेना है और 350 ग्राम ले लीजिएगा गुड़ और घी ले लीजिए एक चम्मच। बस तो अब चलिए कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, तिल को सेक लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लाल हो जाए ना तब तक आप तिल को सेकिए, हिलाते रहिएगा। एक अगर हिलाएंगे नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं तिल की क्या कंडीशन होगी, इसलिए हिलाते हुए सेकिए, हल्के लाल कलर के हो जाए बस। फिर आप तिल को एक बर्तन में निकाल दीजिए, फिर डालिएगा गुड़, गुड़ का पाया बनाइए, ठीक है। गुड़ भी हल्का लाल कलर का हो जाए, आपको लगे कि गुड़ अच्छी तरह पिघल गया है और हल्का सा लाल हो गया है, तो फिर उसमें आप डाल दीजिए तिल। तिल डाल करके गैस बंद कर दीजिए और अच्छी तरह दोनों को मिक्स कर दीजिए, तिल और गुड़ को। फिर जो घी लिया है वो घी आप लगाइए एक थाली में। थाली में घी लगा करके जो हमने तिल और गुड़ का पाया तैयार किया है, इसको आप इस मिश्रण को डाल दीजिए एक थाली में, जिसमें अपने हमने घी लगाया है उस थाली में आप डाल दीजिए और कटोरी की मदद से अच्छी तरह चारों तरफ फैला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह फैला दिया है, फिर थोड़े से ठंडे हो जाए तो उसको आप चाकू की मदद से काट लीजिए, चिक्की की तरह काटना है। तो इस तरह तिल साकड़ी हमारी तैयार है। आप चाहे तो बेलन से बेल भी सकते हैं, पर बेलन से बेलने के लिए हमको दोनों को थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा, तिल को थोड़ा सा ज्यादा डार्क करना पड़ेगा और गुड़ को भी ज्यादा डार्क करना पड़ेगा, तभी आप बेलोगे ना तो वो कड़क हो पाएंगे। और अगर थोड़ा सा लाइट सेकोगे तो इस तरह आप थाली के अंदर जमा दीजिए, फिर चाकू से काट दीजिए और ठंडा होने के बाद आप सारे पीस को निकाल करके एक डिब्बे में भर दीजिए। तो इस तरह तिल साकड़ी बनाई जाती है। चलिए, तिल साकड़ी तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसी तरह की एक और अच्छी सी आपको रेसिपी सिखाने वाली हूँ, लेकिन एक गीत के बाद। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में गीत सुनाने से पहले आपको सिखा रहे थे तिल साकड़ी। आइए अब बनाते हैं तिल के पापड़। ठीक है, तिल के पापड़ भी बहुत ही इजी है। आप तिल के पापड़ में बस शक्कर चाहिए, तिल चाहिए और बस कुछ भी नहीं चाहिए। शक्कर और तिल, ये दो चीजें चाहिए। अब इसमें आप क्या करेंगे कि कितना लेना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि शक्कर आप जैसे कि दो छोटे चम्मच शक्कर लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर दो छोटे चम्मच ही तिल लेना है, तो बराबर मात्रा चाहिए। 500 ग्राम तिल तो 500 ग्राम ही शक्कर ले लीजिए। ठीक है, तो सामग्री खाली दो है, तो साथ ही साथ मैं आपको पापड़ कैसे बेलना है वो भी बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, गैस चालू करके कढ़ाई को रखिए और दो छोटे चम्मच शक्कर डाल करके चम्मच से हिलाइए। शक्कर अच्छी पिघल जाए, अच्छी तरह पिघल जाए, हल्की सी लाल कलर की हो जाए, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर आपके पापड़ डार्क बन जाएंगे। इसलिए हल्के से लाल कलर की हो जाए फिर आप तिल डाल दीजिए। इसमें कच्चे तिल डालना है, सेकना नहीं है, ठीक है, तो कच्चे तिल डाल दीजिए और अच्छी तरह उसको हिला दीजिए। जब शक्कर और तिल एकदम मिक्स हो जाए तो बस आप गरम गरम को आपके प्लेटफॉर्म पर ही डालिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म को एकदम स्वच्छ और साफ आप पोंछ लीजिए और पोंछ करके वहाँ पे घी लगा दीजिए। घी लगा करके आप इस तरह जो हमने पाया तैयार किया है ना तिल और शक्कर का, वो आप नीचे डाल दीजिए और उसको दोनों हाथों से गोल गोल घुमाइए। लुआ तैयार होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा गर्म है तो हाथ जलेगा, तो रह के घुमाइए, एक साथ में नहीं घुमाना है। फिर आप जब वो गोल गोल लुआ की तरह तैयार हो जाए बस फिर आप बेलन से बेलिए। पहले थोड़ा धीरे धीरे बेलिए क्योंकि गर्म ज्यादा है ना, तो एकदम जोर लगाओगे तो बेलन के भी चिपकेगा और पापड़ टूट जाएगा। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आप पहले तो बेलन चलाइए। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि अब हमारा ये जो लोहा है थोड़ा सा बढ़ गया है और ठंडा हो गया है थोड़ा सा, तो फिर आप जोर लगा करके फटाफट फटाफट बेलते जाइए। आप चारों तरफ घूम जाइए अगर लोहा नहीं घूमता है तो, और बस जब उसकी कैपेसिटी होगी तब तक वो बढ़ेगा, फिर एकदम ठंडा हो जाएगा तो फिर आप उसको नहीं बेल पाओगे, फिर तो वो टूट जाएगा। इसलिए गरम गरम को इस तरह बेल लीजिए, फिर आप पापड़ को रख दीजिए थाली में, फिर दूसरा पापड़ भी इसी तरह तैयार कर लीजिए। इसमें आप इकट्ठे पापड़ तैयार नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि साथ में ही आपने पाया कर दिया और साथ में बनाने जाओगे तो एक पापड़ दो पापड़ तो बना दोगे, बाद में वो ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप बना नहीं पाओगे। इसलिए एक एक पापड़ का ही आप इस तरह पाया तैयार करिए और एक एक पापड़ को बनाइए। बहुत ही पतले और सॉफ्ट बनते हैं ये पापड़ और आप आराम से, मतलब बाजार से भी नहीं खरीदना पड़ेगा, नहीं तो बाजार से खरीदते हैं तो चिपचिपे भी होते हैं और ज़्यादा मीठे होते हैं, तो किसी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता है, और घर पे तो हम अपने इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। तो चलिए, तिल साकड़ी भी तैयार है और पापड़ भी हमारे तैयार है, तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप पापड़ रखिए, तिल साकड़ी रखिए और तुलसी पत्र भी रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। देखिए अगर इस तरह की चीजें आप बना करके रखते हैं तो 15-20 दिन महीने भर कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जब चाहे तब आप नाश्ता कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी भर सकते हैं, कभी भी जब इच्छा हो जाए तब भी हम बना करके खा सकते हैं। तो चलिए अब भले आप भोग लग गया है तो आराम से अब आनंद लीजिए तिल साकड़ी और तिल के पापड़ का, और साथ ही साथ सुनिएगा एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: रहे, रेडी मनोवन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन,
2: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। बीमारियों में कारगर मिट्टी चिकित्सा, कई बीमारियों में कारगर मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी के द्वारा हम किस तरह चिकित्सा कर सकते हैं, कितनी ही बीमारियों में कारगर सिद्ध हो चुकी है मिट्टी, तो आइए इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मिट्टी में सर्वाधिक अवशोषण क्षमता होने के कारण मिट्टी प्रबल कीटाणुनाशक है। मिट्टी में विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु एक्टिनोमाइसिटेस पाया जाता है, जिसका आचरण प्रतिरक्षी जीवों की तरह होता है और इस बैक्टीरिया की गति सर्वाधिक होती है। मिट्टी में इस जीवाणु की अधिकता इसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है। जब मिट्टी में पानी डाला जाता है ना, तो इस जीवाणु की गति 20 गुना बढ़ जाती है। मिट्टी चिकित्सा पद्धति में साफ व 12 घंटे भीगी हुई मिट्टी का प्रयोग भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे कि सूजन। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की सूजन आ गई है तो उस जगह मोटी मिट्टी की पट्टी 25 मिनट लगा करके सूजन को तेजी से कम किया जा सकता है। यदि सूजन शरीर के अंदरूनी हिस्सों जैसे अल्सर, लीवर, लीवर ऑफ सिरोसिस, प्लीहा वृद्धि, यकृत वृद्धि है, तो सुबह व शाम 2 बार मिट्टी पट्टी का प्रयोग बेहद लाभकारी है। गांठ या फिर रसोली, इसमें शरीर के किसी भी हिस्से में अगर अंदर की गांठ हो, खास करके स्तन, बच्चेदानी, मलद्वार, पेट वगैरह वगैरह में, तो पहले आप गर्म सेक दे करके 1 इंच मोटी चिकनी मिट्टी की पट्टी 30 से 45 मिनट तक सुबह शाम रखिए। गांठ स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगेगी। कैंसर गांठ में भी यह प्रभावी है। कब्ज, पेट रोग, कब्ज, एसिडिटी, अपच, कोलाइटिस, गैस्ट्रिक रोग हो, उस स्थिति में पहले पेट का गर्म सेक दे करके तुरंत 1 इंच मोटी मिट्टी की पट्टी रखने से अंदर जमा मल उखड़ने लगता है और आंतों को बहुत आराम मिलता है। आंखों के रोग, ब्लाइंडनेस, आंखों का विजन कमजोर, रेटिना कमजोर, धुंधलापन वगैरह वगैरह, इन सभी रोगों में आंख पर सीधी मिट्टी रखने से आंखों को आराम मिलता है। माइग्रेन या सिर दर्द होने पर भी आंखों को आराम मिलता है। मिट्टी चिकित्सा का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि मिट्टी साफ गहरे गड्ढे से ली गई हो। मिट्टी को प्रयोग में लाने से पहले 10-12 दिन धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए। विशेषज्ञ की निगरानी में ही इसका उपयोग करना है, तो इस तरह मिट्टी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है अगर हम सावधानी से यूज करते हैं तो। चलिए, ये तो हुई मिट्टी के लिए जानकारी, और मिट्टी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किस तरह की मिट्टी लेनी है। तो अब आपको सुनाते हैं एक गीत, क्योंकि समय हो चुका है गीत सुनाने का, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, चलिए जानने योग्य बात आपको बता रहे हैं। पसीना बताएगा सेहत का हाल। हेल्थ एक्सपर्ट ने एक डिवाइस बनाया है जिसे कलाई में पहना जा सकता है। इस डिवाइस में ऐसे सेंसर है जो हमारे शरीर के पसीने का विश्लेषण करके किसी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। दिल की धड़कन व अन्य जानकारियां देने वाले तो कई रिस्ट बैंड थे, लेकिन पसीने के विश्लेषण से बीमारी का पता लगाने वाला यह पहला रिस्ट बैंड होगा। इससे बीमारियों का पता आरंभिक अवस्था में लगा सकेंगे। अब मैं आपको आज के अनमोल वचन सुनाना चाहूंगी। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, आपकी एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अब प्यारे श्रोता बंधुओं, मैं अपना स्वरचित भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, क्षमा गणी सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। हो आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा। आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कैयन आयो हाथे। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कैयन आयो हाथे। अरे अंत समय आयो जब थाने यमदूत मारे लाते। अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा। अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। थारी मारी कर कर के या जिंदगी सारी खोई। थारी मारी कर कर के या जिंदगी सारी खोई। अरे इस जीवन में सब ही पराया अपना है ना कोई। अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा। अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। चार दिनों की जिंदगानी में कर ले आछो काम। चार दिनों की जिंदगानी में कर ले आछो काम। हाथों से कर ले काम, मुख से भज ले प्रभु का नाम। अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। कर जा रे कर जा, नी तर मर जा रे मर जा। अणी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे कर जा। हो आनी मनक जमा रमे आयो रे, कुछ कर जा रे।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God, and friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते हैं वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर, no, we don't fear God. Then there's a second good reason why we have not understood God, because friends, more than 80% of the war that is fought today is directly or indirectly in the name of God. चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, have we really understood God? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली ALI, तो रमजान में है राम RAM. दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल DIL, तो रमजान में है जान ZAN. अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। तो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट वी कैन एस्टैब्लिश विद द ऑलमाइटी गॉड, एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाएगा।

0: जब कबूतर को पता चलता है कि बिल्ली उसके पास आ गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे बिल्ली गायब हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है बाबू। वैसे हम लोग कभी कभी यही तरीका अपनाते हैं, समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे वो खत्म हो जाती है? घर ऑन एयर के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राठौड़ परिवार बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर होती है एक नॉक। कौन पूछने पर गेट से जवाब आता है, पुलिस। अब यहाँ कबूतर है राठौड़ परिवार और बिल्ली है पुलिस। चलिए देखते हैं कि अब कबूतर करता क्या है।
1: बड़े भैया, गेट मत खोलिए, मैंने सीरियल में देखा है, पुलिस एकदम से आती है अंदर और बिना कुछ बताए हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर बहुत मारती है।
2: अरे अरे, तो आप गेट मत खोलिए, आपको ले गए तो हमारा क्या होगा?
3: अरे, पुलिस वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी को भी ले जाएं, और मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या किया है?
4: एक काम करते हैं, तुम लोग सब चुप हो जाओ, उनको लगेगा घर पे कोई नहीं है तो सब वापस चले जाएंगे।
5: माँ, ऐसी थोड़ी होता है, आप
4: चुप कर किशन, जेल जाना है क्या?
6: माँ, आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। बड़े भैया, आप बैठिए, भाभी घबरा रही है, मैं देखता हूँ और आप लोग जरा शांत हो जाइए।
7: भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
6: ठीक है, चलिए।
4: नहीं वीरेंद्र, रुक। अरे रुक बेटा।
6: माँ, आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा।
8: हम नजदीकी पुलिस थाने से आए हैं, हमें विजय की तलाश है।
7: आपका मतलब विजय दीनानाथ चौहान है?
8: आप पुलिस वाले से मजाक कर रहे हैं?
7: सॉरी सर, मैं नर्वस होता हूँ तो मजाक निकल जाता है।
8: ठीक है ठीक है, आप मेरी बात का ठीक से जवाब दीजिए, विजय कहाँ है?
6: जी, विजय नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता।
8: देखिए, हमें पता चला है यहीं रहता है। एक आरोपी को छुपाना कानूनन जुर्म है, इसलिए जल्दी बताइए विजय कहाँ है।
6: सर, हम सच कह रहे हैं, यहाँ कोई विजय नहीं रहता।
8: देखिए, हमारे पास प्रूफ है, विजय कुशवाहा आधार कार्ड डिटेल्स हैं, उसमें यहीं का एड्रेस दिया हुआ है।
9: अरे, ये तो अपना विजय है।
8: हाँ हाँ, पकड़े गए, मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे। कौन विजय, अब कहते हो अपना विजय?
6: नहीं नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये तो हमसे पहले इस मकान में रहता था, तो इसलिए ये एड्रेस पड़ा होगा। इसकी पोस्ट आती है कभी कभी यहाँ, तो लेने आ जाता है बस।
8: कोई और आपके एड्रेस पे 5 साल से अपनी पोस्ट पार्सल मंगा रहा है, आपने कुछ नहीं कहा?
7: ये लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं।
8: सर, मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
6: नहीं सर, हमें लगा वो तो हमारा दोस्त है।
10: सर, हुआ क्या है ये तो बताइए।
8: देखिए, विजय ने बड़ा बैंक फ्रॉड किया है।
0: कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मुसीबत आ ही जाए तो फिर समझदारी ही तो काम आती है। आपका आईडी प्रूफ आपका प्रमाण है, ध्यान रखिए कि आपके नाम, नंबर या एड्रेस का कोई और इस्तेमाल ना करे। अब पुलिस अपने विजय, मेरा मतलब है कि विजय को तो पकड़ ही लेगी, बैंक में जो फ्रॉड किया है, लेकिन क्या राठौड़ परिवार की समस्या कम होगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा।
11: मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, हमसे हंस खेल के बात करने वाला वो विजय फ्रॉड निकला।
12: रागिनी दीदी, पहली बार सही बात बोली है आपने।
11: पहली बार तो क्या कहना चाहती है शांति, क्या मैं हमेशा गलत बात कहती हूँ?
10: भैया, ये हमारी बहने ही है ना, कहीं मंदिर से तो उठा कर नहीं लाए थे इन दोनों को?
11: किशन, तू तो पिटेगा मुझसे।
12: दीदी, आपसे और मुझसे दोनों से।
11: रुक, अभी बताती हूँ।
12: पकड़ो दीदी, पकड़ो इसको, बहुत मजाक बनाता है हमारा।
10: अरे कोई बचाओ मुझे इन दोनों से, कोई छोड़ के आओ इनको वापस मंदिर में।
11: तुझे तो मंदिर में भी नहीं रखेंगे, रुक।
1: मारो दीदी, मारो मारो।
4: अरे क्या कर रहे हो तुम तीनों, बच्चों की तरह लड़ रहे हो।
13: थोड़ा लड़ने तो इन्हें अंबिका, बड़े होकर भी बचपन जी लेना चाहिए कभी कभी। घर की रौनक इस मीठी प्यार वाले झगड़े से ही तो है। और देखो ये लोग इस बहाने एक तो हो गए ना,
2: इसलिए तो मैं भी प्यार से झगड़ती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें।
4: बड़ी बहू तू तो इतना खुश कर देती है कि खुशी के साथ मेरा बीपी भी बढ़ जाता है।
3: वैसे चंद्रावती तुम तो बचपन में बड़ी शांत थी, तुम्हारी माताजी ने बताया था मुझे, कहीं शादी के लिए झूठ तो नहीं कह दिया था।
2: मैं तो सच में बड़ी शांत थी, अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। और ये आपकी बहनों को देख लीजिए।
10: बड़े भैया आप तो बहुत लकी हैं।
13: हाँ बिल्कुल, हमारी बड़ी बहू ने आते ही इस घर को संभाला, इस घर को एक करके रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो चंद्रावती 23 साल की थी और गजेंद्र 26 का, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बहू पर ज्यादा थी। शादी होते ही एक लड़की से सब ऐसे उम्मीदें लगा लेते हैं जैसे एकदम से वो बदल जाए, अपनी उम्र से भी बड़ी होकर व्यवहार करने लगे और वही लड़के को छूट दे देते हैं, बस इसलिए कि वो एक लड़का है। इसलिए मैं तो सच में मानता हूँ मेरी बहू तो बहुत सयानी है।
2: थैंक यू पिताजी।
0: चलिए कोई तो समझा कि बहू भी एक आम लड़की ही तो है जिसे अपनी सहेलियों से बात करना पसंद है, जिसकी आंखों में अपने भी कुछ सपने हैं। उसी लड़की को शादी की रस्मों के बाद एकदम से सब जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है और कहीं चूक हो जाए तो उसे बुरी बहू का खिताब दे दिया जाता है। उसकी गलतियों पर ताने कसने की जगह प्यार से समझा कर गले लगाकर तो देखिए, देखिए कि कैसे वो बहू बेटी बन जाती है। हाँ वैसे बहू से याद आया कि राठौड़ परिवार की छोटी बहुरानी राजकुमारी जी नजर नहीं आ रही। हो समझ गया, राजकुमारी जी किचन में है।
4: कुमारी ये क्या कर रही हो? अरे ये कढ़ाई जमीन पर क्यों गिरी हुई है और ये दो तरफ से मुड़ी हुई क्यों है?
14: मासा मैं तो आपने जो कहा था बस वही कर रही थी।
4: मैंने क्या कहा तुझे?
14: आपने तो कहा था मासा कि राजकुमारी हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, जा इसे बदल कर कुकर ला।
4: तो तूने कढ़ाई को हथौड़े से तोड़ दिया?
14: हाँ मैं तो इसे कुकर बना रही थी मासा।
4: राजकुमारी बेटा मैंने कढ़ाई को दुकान से बदल कर लाने को कहा था।
14: ओ तभी मैं सोचूं कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, फिर मासा ने मुझे कुकर बनाने को क्यों बोला? लेकिन फिर मैंने सोचा मासा ने बोला है कि कढ़ाई को बदल के कुकर ला तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
1: आपको क्या लगता है भाभी इंजीनियर बर्तन बनाते हैं?
14: हाँ मतलब वो पास वाली दुकान पे जो छोटू है ना वो इंजीनियर ही तो है, बर्तन ठीक करके देता है सारे वो।
1: भाभी वो उसके पापा की दुकान है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
14: ओह अच्छा अच्छा अच्छा अब समझी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शुरू में ही सिखा देते हैं बर्तन बनाना।
4: बेटा अच्छा हुआ तू इंजीनियर नहीं बनी, वरना सारे इंजीनियर दरिया में कूद जाते।
7: हमारी भाभी कितनी भोली है ना?
11: हाँ भोली भी है और भाली भी,
1: जैसी भी है हमारी है।
7: मैं बहुत लकी हूँ मासा कि इस परिवार का हिस्सा हूँ।
0: ऐसा आज्ञाकारी देखा है आपने कि कोई कढ़ाई को कुकर बनाने की कोशिश करने लगे। वैसे हर परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और यही तो जिंदगी का मजा है। जैसे चाट होती है ना, थोड़ी खट्टी, आहा, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी, हर स्वाद होता है। ऐसे ही जिंदगी में हर कोई हमारे जैसा सोचने बोलने और करने लगे तो फिर बोरिंग ना हो जाएगी लाइफ? हाँ तो चलिए आप और हम लोगों में छुपी खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, आपका साथ निभाने और राठौड़ परिवार की कहानी सुनाने फिर आऊंगा अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिएगा हमारा, क्योंकि भाई ये राठौड़ परिवार है, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है यहाँ।
15: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कितना सुंदर लगता है, और जब प्रोग्राम का नाम सुनते हैं तो खुशी में झूमते हैं, क्योंकि जिस गांव और जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी भूल नहीं पाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालयों की मिलित सहयोग से बच्चों का टैलेंट को, प्रतिभा को, भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए विद्यार्थी विकास में इस तरह कार्यक्रम करते हैं। सरकार का जो मंच है, आसपास गांव और अंचल में जो हमारा टैलेंट प्रतिभा है और गांव का इतिहास, गांव का रीति रिवाज, संस्कृति, विकास जन जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी है, सिरो जिले के रेबदर ब्लॉक में आज आपका पास कुछ कवरेज रखने जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको विदित है एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। तो आज अवरोध से बहुत दूरस्थ जगह में पहुंचे हैं, कोई उल्हाना न दे जे हमारे पास ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन हमारा आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी तक आया नहीं। इस उल्हाना को दूर करने के लिए रेडियो मधुबन पूरे सिरोही जिले में सभी गांव और अंचल को कवर करने के लिए प्रयास रहते। तो इस संदर्भ में हम रेबदर तहसील के मंडार के पास नगानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे। देर किस बात की, बच्चों का आवाज को आज बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों का अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, सही में सुनने लायक है, और उनको एक मंच देना चाहिए, जो रेडियो मधुबन आज एक मंच एक स्टेज दे रही है, जिसका चलते बच्चे अपना भागीदारी निभाएंगे। आपको बारी बारी सभी प्रस्तुतियां सुनने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे महात्मा होते हैं, बच्चे देश का भविष्य है, और बच्चों को इस तरह कार्यक्रम में प्रोत्साहन देते हैं, और इसका श्रेय तो माता पिता और विद्यालय को जाता है। विद्यालय का सभी सभी स्टाफ और प्रधानाचार्य इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाते हैं। कोई प्रस्तुति हो चाहे नहीं हो, फिर भी प्रस्तुतिकरण हो जाता है, अचानक में जाते हैं, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो देर किस बात की, सभी को स्वागत करते हैं, लेकिन सभी अपना अपना नाम, कहाँ से और कौन सा क्लास में और विद्यालय का नाम जरूर बताएं, तब हमें पता चलेगा कि हमारा ये कार्यक्रम कहाँ से रिकॉर्डिंग हुई और कौन बच्चे बोल रहे हैं। जब इस तरह बच्चों का आवाज सुनेंगे तो आवाज ही उनका पहचान होगा। जब माता पिता, अभिभावक, दोस्त लोग और शिक्षकगण जो सुनेंगे, तो हमारा बेटी का आवाज है, ये हमारा तो गुड़िया का आवाज है, तो पहचान लेंगे। तो सभी रेडी बच्चे? ओके, तो शुरू करेंगे। पहले एक मिनट साइलेंस में प्रभु याद में कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। ओके, शुरू।
1: मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं नागानी की रहने वाली हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागानी है। मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ।
2: मेरा नाम सेजल कुंवर है, मैं नागानी की रहने वाली हूँ और क्लास 9th में पढ़ती हूँ।
1: हम दोनों मिलके एक प्रस्तुत करना चाहते हैं,

0: अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी।
1: धन्यवाद।

0: मरना वतन पर जाफिदा होना, प्रभु हम को शिखा देना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नाम का साथ इतना सुंदर प्रस्तुति दी। और देखते देखते बच्चों का अंदर में उमंग उत्साह जागृत हुई, जिसका चलते इस कार्यक्रम सुंदर रूप में हो पा रहा है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

तो श्रोता मित्र ग्रामवासी और खास कर हमारा अंचलवासी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और विद्यालय के सभी बच्चे और स्टाफ भी शाम को इस कार्यक्रम को सुनते हैं जब उनको हम लिंक भेजते हैं और सुनने का प्रक्रिया बताते हैं, चाहे नेट का माध्यम से, चाहे आपका माध्यम से, चाहे एप्लीकेशन का माध्यम से, चाहे FM का माध्यम से, फेसबुक में, यूट्यूब में सुनते हैं। तो पुनः स्वागत करते हैं और एक ग्रुप को, चाहे सिंगल हो चाहे ग्रुप में, अपना आवाज को सुनाते हैं। तो नाम का साथ फिर से बात को रखते हुए सभी अपना अपना नाम, क्लास और बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं वो भी बताएं तो हमें खुशी लगेगा, क्योंकि बच्चों का अंदर में इस तरह जुनून, साहस, बिना झिझक से अपना आवाज को बुलंद करते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, क्योंकि हृदय का जो संगीत है सुर, लय और ताल का साथ प्रस्तुतिकरण होता है। और उनको जो मौका चाहिए था आज वो मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारा आवाज का पहचान कराने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब आते हैं तो बच्चे बढ़ चढ़ कर लेते हैं और एक दूसरे से सीख जाते हैं भी। तो देर किस बात की लेते हैं उनसे सुनने के लिए, हमारा श्रोता मित्र इंतजार कर रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुति।

जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने दस पूजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खा।

0: धन्यवाद।
1: क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, क्योंकि बच्चों का उमंग और स्वर लय का साथ इस तरह जो संगठन में व एकल में कर पाते तो धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का पात्र भी है और इसका श्रेय तो माता पिता गुरुजन को जाता ही है। और क्या कहे, बच्चे तो मुस्कुरा रहे हैं तो सही है, आप लोग इतना मेहनत करते हैं और कैसे कैसे सीखते, कोई बोलते हैं हम मोबाइल से सीख जाते हैं, कोई बोलते हमारे परिवार में हमारा भाई गाते हैं, कोई कोई कहते मेरा मम्मी माताश्री भी इस गीत को सिखाने में मदद करते हैं, तो धन्यवाद का पात्र ही है। क्योंकि आभार प्रकट करते हुए और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। और आप जो सुन पा रहे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम नागानी राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय रेबदर का आवाज, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक, फिर से आपको स्वागत करते हैं। सभी श्रोता मित्रों को भी धन्यवाद देते हैं, अपना कार्यक्रम को सुंदर रूप में हर जगह में सुनते हैं, क्योंकि एफएम का माध्यम से सुनते तो है ही, इसका साथ साथ प्ले स्टोर से अपना आवाज को सुनने के लिए रेडियो मधुबन ऐप को डाउनलोड करते हैं, जिसका चलता हमें भी खुशी होता है कहीं पर भी हो। लेकिन इंटरनेट का माध्यम से और प्ले स्टोर का माध्यम से भी सुनते हैं तो सुनते हैं, और एक प्रस्तुति सभी को स्वागत करते हैं इस तरह कार्यक्रम को सजाने के लिए। और जब उनका मम्मी पापा उनका दोस्त लोग सुनते हैं तो रास्ता में उनको जब देखते हैं उनका दोस्त लोग तो शिक्षकगण, अरे क्या आवाज आपका था जो रिकॉर्डिंग किए थे, जो प्रस्तुतिकरण किए थे, तो उसमें बहुत जी जान लगाकर आपने इस कार्यक्रम को सजाया है, तो आप तो बहुत चमक रहे हैं तो चमकेगा, क्योंकि अपना आवाज को जब सुनते हैं तो दूसरे सुनाते तुम्हारे आवाज में दम है। तो चलिए और एक प्रस्तुति के लिए सभी रेडी है, सुनते हैं।
1: मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं नागानी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
2: मेरा नाम श्रुता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ, मैं नागानी में रहती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है।
1: हम दोनों एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं।

लहरा के जो तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे, तारों को जो तिरंगा मैं तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ में आँच ना आए मैं तो पुकार लेना, बलिदान का बहाना मैं बार बार कर देना।

मऊ टेंगला आजाद रहे आबाद रहे तारों को झूमे तिरंगा झूमे हाँ झूमे तिरंगा तारों को हाँ झूमे तिरंगा झूमे हाँ तिरंगा तारों को झूमे तिरंगा।

माने कारू कारू यमुना जी पानी लागे, यमुने कारू कारू यमुना जी पानी लागे, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना वन में धूम मचा में बसरे चोरी, बज धाम राधा की रज धानी लागे, रज धानी लागे, मीठे रस सी भरिए राधा रानी ला।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में और कुछ छात्र हैं और अपना अपना आवाज को अपना हिसाब से ना ज्यादा ना कम प्रस्तुतिकरण करते हैं और रेडियो मधुबन को भी इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से खुश करा देते हैं। हमारा जो ईश्वरीय परिवार और रेडियो परिवार इस कार्यक्रम को सुनते हैं, एडिटिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, जो आपका पास पहुंचता है। तो देर किस बात की, और एक प्रस्तुति सुनाएंगे। सभी नाम और कौन सा क्लास और क्या बनना चाहते हैं वो बताएंगे, तब तो पता चले हमारा श्रोता मित्र को। हो सकता है हमारा श्रोता मित्र का कोई रिलेटिव भी सुन रहे होंगे, तो वो भी लगेगा, उसको फोन करके बताएंगे, अरे बेटा तुम्हारा आवाज हम सुना। ऐसे जब फीडबैक मिलता है तब बच्चों का अंदर में एक साथ एक साहस और मनबल बढ़ता है। ओके रेडी, 1 2 3 शुरू।
1: नैना जो मिले है सरकार से, ऐसा मुस्कुराया श्याम प्यार से, मुझको दीवाना कर गया,

कोलुम्बाए दिल को चुराने का हुनर तुझको आए, बंसी बजा के तू पंसी फसाए, कायद

0: सभी ने एक गीत सुना, बच्चों का आवाज को भी सुने, तत्पश्चात इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए सभी उपस्थित हैं और एक का बाद एक प्रस्तुति आपका पास हम रखने जा रहे हैं और बच्चों को भी खुशी हो रहा है। हमें कोई पहचाना जो आज रेडियो के कार्यक्रम का माध्यम से हमारा आवाज को जन जन तक पहुंचा रहा है और सरकार का जो मंशा है, आसपास जो गतिविधि, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, ऐसे ओपन राउंड में उनको लेते हैं, जिसका चलते बच्चे आगे जाकर हो सकता है कंपटीशन जब होगा तब भी ये बच्चों को हम याद करेंगे। तो देर किस बात की, और एक प्रस्तुति के लिए उपस्थित है। तो नाम का साथ, कहाँ से और कौन सा क्लास, जरूर बताइए।
1: मेरा नाम संजना राजपूत है, मेरा गांव नागानी है और स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागानी, ब्लॉक रेवघर।
2: मेरा नाम जानवी राजपूत है, क्लास 11th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागानी।
3: मेरा नाम रवीना कुमारी प्रजापत है और मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ और इस विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है।
4: सियानी कुमारी हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागानी से हो, 11th क्लास की स्टूडेंट।
5: बना है दिन ये आज का,

क्या खूब क्या खूब, कितना सुंदर रूप में और स्वर लय ताल का साथ अपना भाव और भावना को प्रकट करते हैं। कोई भाषण में भी आगे रहते हैं, क्योंकि निबंध में बच्चे प्रस्तुतिकरण करते हैं, जब वो एग्जाम आता है या कोई मंच मिलता है, चाहे अगस्त 15 हो, चाहे जनवरी 26 हो, चाहे ऐसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अपना भाव और भावना को भाषण के माध्यम से यानी स्पीच का माध्यम से भी प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो धन्यवाद देते हुए और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनत रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और खास कर आज आप सब सुन पा रहे रेबदर।

के नगाने राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों को, उनको भी खुशी लगता है जो आपका फीडबैक उनका पास पहुंचता है, तो वो भी झूमते हैं और उनको एक शक्ति मिल जाता है। तो देर किस बात की, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओके, सभी को धन्यवाद देते हैं। ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं अंतिम प्रस्तुति की ओर। खासकर अंतिम इसलिए कहना पड़ता है, समय का पाबंदी को देखते हुए हमें जाना भी होगा रिकॉर्डिंग को। ऐसे तो बच्चे रिकॉर्डिंग में आगे रहते हैं और वंस मोर कहते, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए ये अंतिम प्रस्तुति आपके पास हम रखने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों को वेलकम करते हैं, उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो फिर से सुनिए और एक प्रस्तुति।
1: नमस्कार, मेरा नाम संगीता कुमारी चौधरी है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागानी है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ।
2: नमस्कार, मेरा नाम किरण कुमारी है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
1: हम
2: हम
1: दोनों
2: दोनों
1: मिलकर
2: मिलकर
1: एक
2: एक गीत
1: गीत प्रस्तुत
2: प्रस्तुत
1: करना
2: करना
1: चाहते
2: चाहते
1: हैं।
2: हैं।
1: गलती हो तो
2: तो
1: क्षमा
2: क्षमा करें।
1: करें। अच्छा।

0: मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवंत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। विश्व की पुकार है, ये भागवंत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। गौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड हो, जो लड़ सका है वह महान है।
1: क्या बात, क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुति, और हमें खुशी है इस तरह कार्यक्रम को सजाने के लिए तत्पर रहते हैं। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं आज का कार्यक्रम को, जिन्होंने सहयोग दिया, और उनके सहयोग से जो बच्चे, जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम को रंगारंग कर दिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे, चाहे देशभक्ति गीत हो, चाहे भक्ति का गीत हो, चाहे प्रार्थना सत्र में जो गीत गाते हैं वो संगीत हो, चाहे कोई मोटिवेशनल सॉन्ग हो, सभी ने अपना अपना अंदाज से ना ज्यादा ना कम प्रस्तुतिकरण किए हैं। बस पुनः सभी को, होलसेल सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह कार्यक्रम को आप लोग सजा दिए हैं सुंदर रूप में, हेल्दी वेल्दी हैप्पी और मजबूत से कार्यक्रम को सफल बनाए। तो आप सबसे लेते हैं इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। आप सब सुन पा रहे थे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सुन रहे हैं, तो सभी को धन्यवाद देते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, खासकर विद्यार्थी विकास में बच्चों का आवाज, नगानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को।

0: is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
1: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
2: Thank you. Om Shanti.
1: Om Shanti. Welcome to Going Beyond. Sister, I was just thinking the other day, we were speaking about comfort zone and
2: control.
1: So I found two more C's, criticism and comparison. Criticism and comparison, especially from childhood, it's very painful. It disturbed me a lot. It changed my whole personality. I was very thin, sensitive person. Thin in the sense, muscular though. And in those days, people used to think that tough guys with thick cheeks and a lot of fat and a big tummy and like that. Probably I was two times more stronger than them. They used to call me sissy. So when I grew up, I said, I'm going to have mustache. Then I went for bodybuilding and then for karates and kushtis and all that. And they called me this, you know. And they used to compare me with the other guys. Look at that guy. Same age. Look at him, how tough and good he is. What are you doing? Why are you so thin? Are this silly kind of comparisons. Mm-hmm. Silly kind of criticism. Of course, not by my mother or father. They were beyond. So I was just thinking of these two things. A lot of parents I've seen today compare and criticize. What I mean is the parents.
2: Criticism and comparison begins from childhood, hurts when we're children, but hurts always. At any age, criticism and comparison is not comfortable for anybody. And the illusion is that the one who's being criticized is going through the pain. This is fine. But the one who is criticizing is also in pain.
1: How?
2: Because the energy that is getting created is not comfortable. It's an energy of agitation, an energy of rejection, an energy of anger, an energy of even fear that they will listen to me.
1: And so disliking that person.
2: Absolutely. So we need to understand that damaging, yes, but not only for the person who's being criticized. In fact, the person who is being criticized can equip himself to protect himself from the criticism being received. But the one criticizing will always suffer the damage. Always, because they are creating that energy of criticism, which has all these negative emotions. We always think that criticism is done by people who are intelligent, who are strong, who are powerful, even wise, because they know more. You know, whatever, like for a child, parents know more, teachers know more. So it's taken as a sign of it's good to criticize. That's how it's perceived, that it's good because they're wise, they know more, they're more powerful, and that's why they're doing it for the good of the other person.
1: So what is the difference in correcting somebody and criticizing? Another C.
2: Yes.
1: Conclusion.
2: Yes.
1: Correcting.
2: Absolutely. So that we need to check the one who is criticizing would be able to understand what's the energy they feel. And the one who's receiving it would also know what is the energy they are receiving. Mm. Let's say, like you said, somebody says to you, you're too soft, you're too quiet, you should be more extrovert. Now, somebody could say this as very good piece of advice. And somebody could say it as criticism. But the one saying it would also know what they're feeling. And the one receiving it comes to know very fast what it is. Is it just advice or is it criticism? That's why the subtle checking is always, how am I feeling inside? Is it comfortable? Someone can give me advice and can keep on saying the same thing to me every day, but I'm not getting disturbed by it. They're giving me advice. But if I feel a little uncomfortable energy, then it's because the one who's giving it to me is not giving it with the right energy. So checking is there. Checking is not here.
1: But criticism is never given with good, nice energy at all.
2: No, like you said, if a parent is saying something which is good for the child.
1: But that's not criticism. That's correcting somebody or advising somebody.
2: Yeah, but sometimes it's hurting the children. So we will need to be careful. Are we correcting or are we criticizing? Because sometimes the one doing it will say, I'm just doing it for their good. I'm saying it so that they know. They know, they understand, and they learn. But the one who's receiving it is experiencing tremendous amount of pain.
1: Yeah, I used to say, let him feel bad, so what? I did it for his good.
2: Yeah.
1: If he's feeling bad, so what? Let him cry.
2: Now here, look at the line. I did it for his good, let him feel bad.
1: And let him cry.
2: Good and bad, both cannot be happening together. You're talking about doing it for his good, but let him feel bad. If he's feeling bad, he cannot do anything good. This is very important.
1: If he's feeling bad,
2: yeah,
1: he cannot do any good. Neither I am doing good.
2: You're anyways feeling bad. Anyone who's criticizing is creating turbulent energy inside. But even the one who's receiving it, you want him to do good. But to do good, I have to first feel good. And if I'm feeling hurt, whatever I try, things might work out fine, but you can't call it a good result because it was not done with a good seed, with a good intention, with a good feeling. So let's shift our focus from the doing part to how is the other person feeling about what I'm saying to them. Focus changes.
1: But sister, somebody can feel just, if even if you tell him the soft word, then what about that? It's just like saying that even if you give them cold milk, they'll say, oh, it's too hot then.
2: Yeah, it's just important with what vibration it was sent. It's just never ever possible that you've sent the right vibration, but the other person got hurt.
1: Sure.
2: Absolutely. It's just that we might not be aware. We might not be aware that we are being critical. We might not be aware that we are being very judgmental. We might feel that we... That's why it's very subtle and it's important to respect what the other person is feeling. If another person says, I was hurt by what you said, then we really need to check. Yes, there was something, even though it was very little in the intention, but the intention was to criticize. And that's why the other person has felt it. So checking of the one who is criticizing, checking of the one who is being criticized, and then understanding that damage to both, and breaking this belief system that criticism is good. One thing is criticism, and another word is critic. Now, let's say something is happening, and I'm a critic there in respect of the role of a leadership or a parent or whatever. So it's a critic. And one is to criticize, like you have for films. You have a film critic, but yet today we are seeing that a lot of film critics
1: criticize.
2: And the actor can feel it, that this was not a critic for my film. They were criticizing my personal thing. There's a difference, you know, it's a very subtle thing, because a critic will only be talking about the quality of the work, the product, and the criticism will be hitting it to the person. And then the person can feel it. So parent, teacher, friends, team leader, we need to be critics. We review the quality, the studies, the way of working of a child, everything. Review, give our feedback. But criticism is when it hurts the person. Because one is to say, this was not done right, or this was wrong. And the other thing is to say, you are wrong.
1: You don't know how to do it.
2: Two things are
1: different. No matter how much I teach you.
2: So you don't know how to do it also could be fine. But the other thing is you are wrong.
1: See, You're always wrong.
2: It's like if you're doing something here. Let's say there's something in your hand again and it falls. I said, what you did was wrong. But one thing is you are wrong.
1: But critic it accidentally is, happened.
2: Critic is what you did was wrong, and criticism is you are wrong. And then below that is
1: okay.
2: Bad boy, good girl. You know these words that we
1: so
2: have
1: here
2: started
1: you
2: using.
1: To say the deed.
2: The deed
1: is
2: has
1: wrong.
2: To be separated
1: from the
2: from
1: doer.
2: The person. Yes, and the doer can feel this. So we have to be very, very careful while we are giving the feedback, whether it's a good feedback or sometimes not a very good feedback. Are we giving the feedback to the task or are we giving the feedback to the person? Separate. This is detachment, because otherwise it's criticism is like violence. You know, at the Brahma Kumaris, we talk of this very, very subtle violence, which can happen through thoughts and words. You know, one is violence through actions, and so everybody's talking about non-violence and peace. But so much of violence happening throughout the day through thoughts and words. And this is violence, because we're literally lashing out at the other person.
1: I really like this line, huh? Criticism is violence.
2: Yeah, because it will hurt you more than what a slap could hurt you. Physical violence today, gone tomorrow. Pain today, gone tomorrow. Even wounded physically, pain today, gone tomorrow. Healed completely, forgotten day after. But criticism, wound, very deep, and just seems to getting deeper and deeper and deeper, and then very difficult to forgive and almost impossible to forget, because the scars are so very deep. So we need to be very careful that are we negatively reacting towards the person, or are we proactively working towards creating a right environment, the right task, the right way of working. And that's why it's very important to appreciate the person and then give the feedback on the task.
1: Give an example on this.
2: Let's say, it's very beautifully done at the Brahma Kumaris. I can just share with experience how it's done and how the founder started it almost 75 years before. Because when so many brothers and sisters came together and living together, doing different kinds of tasks, tasks which they had never done before. So a lot of them doing things for the first time. So obviously mistakes. Obviously certain things not done the right way. Sometimes even yes, that people are not very sincere or not putting it enough hard work. But then what the founder used to do was first appreciate them for the qualities that they have.
1: Yeah.
2: For the other tasks which they do very well. So by the time what you do is you're preparing the person, and the person's self-respect is enhanced. The person has the power now to execute the next line which we're going to tell them.
1: Okay, so first you prepare them, give them a lot of power.
2: Yes, love.
1: Love.
2: Right, and build up the self-confidence. So basically they're ready now. Otherwise, if I get hurt when I receive that feedback, I'm not ready to execute it because I don't have any power left to execute it. And especially because it's coming repeatedly and very often from a lot of people. And very soon, listening to people's criticism, I start criticizing myself. And once I become self-critical, what we saw the other day, self-talk, then there's no end to it. Because at least I can run away from people who criticize me. But how to run away from my own self? And then my whole internal conversation becomes very, very critical. And that is deep wound. Lot of pain will not get healed. So consciously as a parent, and then of course in every relationship.
1: That's a very nice line. You said, I can run away from people who criticize me. But what do I do when I start criticizing my own self? How can I run away from myself?
2: True.
1: And how does this habit become, I start believing people?
2: Yes, because they not only said it to me, they also send it with that energy. And all the energy that I receive because I don't know how to transform energy. You know, when somebody sends energy to us, it's simple law of energy. When vibrations are reaching us, there are three things we can do with vibrations, with any form of energy. One, receive it means absorb it. You consume that energy. Second, you reflect it back to them. So if you criticize me, I criticize you. Reflect that energy back to them. Absorb it means you criticize me, I consume it, get hurt, pain, self-critical.
1: And somewhere in the mind you start believing it also?
2: It's because I've consumed that energy, means I've accepted that energy. And the third thing we can do to energy is transform the energy.
1: How?
2: Which means you may be critical to me, but I know myself and I approve of myself. I'm working towards making changes and towards doing things better, but I know I'm working, I'm better. And I understand that this is your sanskar of being critical. So you have sent me negative energy, but I have transformed it by understanding myself. You were not able to understand me, which I want from people around me. But at least I can understand myself. And so I transform negative energy, which I'm getting from people around me, to positive. This can be done with any form of energy. It's either absorb their, let's say somebody shouts at me, absorb their anger, feel hurt. Otherwise, reflect it back, shout back at them. And third, transform.
1: But sister, you cannot transform always because I've heard people saying that anybody else says this to me, I don't mind. But when you said it, Suresh, I start crying, I feel bad because you mean a lot to me.
2: Yes.
1: Then how will that person transform?
2: It's because I'm able to transform with some people, but I'm yet not using that with everybody, especially to people who I'm very closely attached to. I'm not using the formula everywhere. That's all. We know the formula. It's just that we're using the formula with some people. Let's say if somebody on the road criticizes me, I know how to transform it, which means I know how to transform it. But I don't use the same formula at home because I said to feel hurt is natural. So another formula would come in, and that formula would not let me use my previous formula of being able to ignore what the other person has said and be able to see myself and understand myself.
1: No, I have that formula, sister. I have that formula. But when I value a person very much, when that person says, my formula I don't feel like using, I said, you too, Brutus.
2: If I value the other person, and then if I respect the other person, then I respect the other person's opinion too. And if I respect the other person's opinion, then let me just take what they have said and see whether I really need to do it. But it's not just valuing the opinion. I have also just received very heavy energy from there. It's that energy which is hurting. If the same person would have said the same thing with a different vibration, things would have been totally different. It's not about what is being said. It is about how it is being said.
1: Not necessarily. However you say, I can take it bad because maybe that's my weakness. Maybe supposing I do not like to be called fat. You're fatso from childhood.
2: Right.
1: And you may call me with lot of love. But you know that hurt which is there within me from 20 years, 30 years, 40 years, that suddenly comes up now. And I say, you are also calling me?
2: No, it can never happen like that.
1: Why?
2: People may say it with a lot of love, but they're not thinking with that much of love. They are critical. If somebody is really not critical inside, they're absolutely stable and they're saying it, it's a healing for the past hurt. A lot of people may have said it to me in the past and there may be a wound. But if somebody comes and says the same thing to me with a different vibration, leave alone, you know, the same hurt is getting triggered again. It's a healing on my past wound. But we are not able to sense the vibrations. We can only see how we feel. People say things with a lot of love.
1: Yeah, I understand. You know, in my family, one of the young girls one day was crying. I asked her what happened. And she said that one of my brothers shouted at her. And I met that brother, and I said, why you make her cry? Don't use such words for her. He says, what about Guga? I mean, they call me. What about Suresh Oberoi? When he tells you, why don't you cry then? Why do you do that with me? He said, when Suresh even beats me up, I don't mind. Let him do what he wants. I love him.
2: Same thing.
1: I don't mind his. And a lot of staff also say to my wife, we don't mind, sir, when he gets angry with us. We like it. She says, you like it, what do you mean?
2: Right.
1: I mean, this is a fact, what are you talking about?
2: Yes.
1: This has happened with my staff, my drivers or my other people cook. They say, we don't mind, sahab. And this is a fact I've seen, that even sweetly, the other people say, so now I understand what you mean, that you were sending energy first, then your sound.
2: Words.
1: So they know my energy.
2: Yeah, and you're sending energy continuously, words once in a while. You know, people are on our mind continuously.
1: This I never realized.
2: Yeah.
1: You mean to say throughout the day, throughout my life, I'm always giving them so much of love.
2: Absolutely. It's
1: okay.
2: No, not only just giving, it's like you're watching your staff working. They are doing a lot of things, your children, relatives, everybody. What are you thinking about them continuously? So a lot of people can speak very sweetly when they have to say it. But most of the time when they're thinking about people, they're very critical. And that critical energy is radiating to those people throughout the day. And then when the word is said, they just can't feel that it's good for them. Because they've already been receiving a lot of that critical energy. Criticism need not be always through words. It's a lot to do with how we are feeling about the other people inside. And even comparison, same thing. Both can be very, very damaging. These are two habits which, if we keep a little attention, I'm not to criticize and not to compare anybody with anyone else. I want to motivate them. I want to share with them what is a better way of doing something. Take them as an individual and say to them, this is it. You can do it like this. But the minute I say, look at them, look how he does it or she does it, I've just told them, you're not good compared to the other person.
1: But it becomes a habit, sister.
2: But then its habits are meant to be changed. That's all that it is. Habits are meant to be changed when they're not getting the right results, especially between children. When parents are comparing between siblings, it can have a long-term impact between a parent-child relationship, between the sibling relationship, and the self-esteem of that individual who was compared to somebody else.
1: And you yourself,
2: of course,
1: so
2: are creating
1: much of negativity inside
2: you. So let's all, we have to remember, spirituality teaches us a very beautiful thing. Each one is a soul, pure, beautiful, with a lot of original sanskars, which are very lovely, beautiful. Each soul has them. And some now acquired sanskars. So look at the originality of the soul, and give them feedback for what they're doing now. So respect to the soul, feedback to the task.
1: Respect?
2: To the soul. You know, the problem why it was happening? They are wrong, they did this. They are wrong, they are behaving like this. So it was disrespect to the soul.
1: Oh.
2: Now it is, they are beautiful. She's a lovely soul. Pure.
1: But
2: even if I can't see that purity right now, even if the acquired sanskars are absolutely
1: you mean to say I am a pure soul irrespective of what I do and what not do. So I should see that in everybody.
2: Absolutely.
1: That he or she, this is a pure soul.
2: Right.
1: But
2: doing this right now, or even behaving like, let's say for example, if you're getting angry, and say you're an angry person, always getting angry, always shouting at everybody, then my consciousness is you're an angry soul. You're not a nice soul. You're hurting people. This is criticism. And the spirituality will shift the consciousness to originally peaceful soul. Peaceful soul who's forgotten that he's actually a peaceful soul and so is getting angry right now. And now say, you know what? This anger is very damaging for you and for people around you. Difference. Because the vibration that will go will be different. The word can be very stern if you want. But the vibration's gone and done the work of giving respect understanding that this soul has just shifted from his original quality, has forgotten the original quality, but is a very beautiful soul. And that's why Raj Yoga, the first fundamental thing is soul consciousness. Look at every individual in their true nature.
1: Look at every individual
2: in their true nature.
1: In their true nature.
2: Not what they have acquired today, not even the sanskars that they have acquired today. Even those are acquired. The mistakes they are making, the tasks that are going wrong are of course acquired.
1: Why can't we say that? Even I have acquired so many things in during lifetimes.
2: Absolutely.
1: Even I have so many mistakes.
2: Exactly.
1: When I was that age, I also did so many mistakes.
2: Yeah, but when we're talking to other people, we're rarely thinking about ourselves. That is the thing. So soul consciousness is something which we can practice the whole day. And when we do this comparison with other people, you know, between two people, there again we need to remember the two individual souls. Even if they are my children today, same environment, same parents, same sanskars we've given them, then we need to remember they're coming from two different pasts. Even as parents, when we have this habit of comparing between two children, we need to remember they're two unique souls. Yes, today they're in the same environment, same set of parents, we're giving them same sanskars.
1: Even
2: if they're twins. But they come from two different pasts and they're carrying two different karmic accounts. They have created different sets of sanskars in the past. And so even if everything is the same today, they too are going to be totally different. And if we try to make one like the other, we're only creating a conflict, because then that one will neither become like the other and neither will retain his originality, because he will go into this cycle of pain and low self-esteem, lose his own qualities. So it's important to just take the individual, understand he's carrying a lot of past karma. So take that individual child. That's why we shift from criticism and comparison to understanding the person. Why are they behaving like this? Something in the past? Something in the childhood? Or maybe something in the very, very distant past, which is the past birth sanskars. So we're going beyond criticism and comparison to understanding the soul. That yes, this soul is carrying past sanskars, and that's why they behave like this, and then helping them to heal their own sanskars, not forcing them to change their sanskars.
1: Helping them to understand themselves also.
2: And then heal their sanskar. So that would create the right energy for somebody to transform.
1: Wonderful, sister. Shall we do a little small meditation on this, if you have some time on this?
2: Let me look at everyone around me, doing things their way, behaving in a way that comes comfortable to them. I, the detached observer, can see that things are not right. Behavior is not right. And I want to say it to them. But let me be careful. Feedback on the task, on the acquired sanskar and behavior, but love and respect to the soul and the original qualities of the soul. Let me take care of the energy I create before saying it to them. They are pure, peaceful souls, beautiful, perfect and complete, have forgotten their original nature. And my role is to recognize that original beauty and empower them to emerge that beauty again. Love and understanding is the way. Om Shanti.
1: Om Shanti.
2: Criticism depletes the energy of the one being criticized and also of the one criticizing. The criticizer creates emotions of rejection, anger, and fear of what if they don't listen to me. Criticism creates hurt in the one who is being corrected. When someone is hurt, they can follow our instruction, but they are not feeling nice, and hence we cannot say it was for their good. Critic is giving feedback for the deed, and criticism is thinking negatively for the doer. Separate the action from the person and give suggestion only for what they have done. Appreciate the person's qualities and the other tasks that they do. Build their self-confidence and then give them the feedback on the task which has gone wrong. When we are hurt or angry, the feedback goes with the negative vibration and therefore not comfortable for the other. When we are stable and give the same feedback, it is only a feedback. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 0999974455.
3: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार. नमस्ते. हाय. हेलो. कैसे हैं दोस्तों? आज एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हम राही. तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम भी मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है हमेशा की तरह. और इस प्रोग्राम के माध्यम से कई बार हम कोशिश करते हैं ना कि जो डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो सोसाइटी में जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमारे दिव्यांग साथियों को, दृष्टिबाधित साथियों को, और खासकर शादी ब्याह के मामले में कितना सपोर्ट होता है, नहीं होता है, क्या वो कैसे उस पर जो है आगे बढ़ते हैं, ये सब हम बताने की कोशिश करते हैं. लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं वो ये सब काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं. और इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो श्रोताओं, तो एक शो आया करता था सत्यमेव जयते, जिसको मशहूर अभिनेता आमिर खान साहब होस्ट किया करते थे. तो उस शो पर भी आज के हमारे मेहमान आ चुके हैं. और इसके अलावा केवल इतना ही नहीं है, अभी तो अब मैं बोलूंगा तो पूरा प्रोग्राम उनकी जो अचीवमेंट्स है उसको बताने में ही निकल जाएगा. लेकिन आज हम उनसे खुद से भी सुनेंगे. वो दो दो कंपनीज के फाउंडर हैं, CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत के पहले IT प्रोफेशनल हैं आज के हमारे मेहमान. तो चलिए, आप में से बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जो है वो जानते होंगे. आज हमारे बीच में श्रीमान कृष्णकांत माने जी और उनकी श्रीमती जी प्राजक्ता जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं. तो कृष्णकांत सर और प्राजक्ता मैम, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है.
4: शुक्रिया.
5: शुक्रिया. और हमें भी बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया. तारीफ और तारुफ दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
3: क्या बात है सर, तारीफ और तारुफ तो मुझे लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है अभी तो. अब मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए कृष्णकांत सर आप खुद जो है अगर बताएंगे आपकी जर्नी, आपकी डिसेबिलिटी, आपकी अचीवमेंट्स, तो शायद अच्छा लगेगा.
5: अच्छा, तो शुरुआत में एक चीज मैं बताना चाहूंगा
3: जी.
5: और ये मतलब मैं बहुत जगह पे कई प्लेटफॉर्म्स पे बता रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा भी ये सही जगह पे पहुंचेगा. सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, वो ये एक शब्द से हो रहा है जिसे कहते हैं दिव्यांग.
3: जी जी जी.
5: हम कोई हमारे पास कोई दिव्यांग नहीं है. हम सुपरमैन नहीं, ना मैं उड़ सकता हूँ, ना मैं डूब के पानी में रह सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ. तो मतलब मैं मेरे अचीवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ, कोई भी जो विकलांग व्यक्ति है, देखो हर इंसान में कुछ तो विकलांगता होती है. तो मैं ब्लाइंड के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि ब्लाइंड पर्सन कैन बी अ साइंटिस्ट, ही कैन बी अ लॉयर, ही कैन बी अ थीफ, वो जान बचाने वाला डॉक्टर हो सकता है, वो जान लेने वाला खूनी हो सकता है, वो मिलिट्री में IT ऑफिसर हो सकता है, वो टेररिस्ट हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है, वो फ्रॉड करने वाला हो सकता है, या फिर वो बड़ा कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है. तो
3: क्या बात है?
5: यार as good or as bad as any other person. तो दिव्यांग दिव्यांग कहके कुछ तो हम लोग अलग है ये बताने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है.
3: जी.
5: मैं हंसी मतलब एक जोक के तौर पर बताता हूँ, अगर हम लोग हमारे पास दिव्यांग है तो आज पूरे दुनिया में सारे अच्छे जगह पे केवल और केवल हम लोग ही होने चाहिए ना.
3: बिल्कुल.
5: थोड़ी ना होता है. तो हम उतने ही अच्छे या उतने ही बुरे होते हैं जितने पापी सब लोग होते हैं।
3: Exactly.
5: तो रही बात मेरी तो मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आई एम एन आईटी प्रोफेशनल। मेरे से पहले कुछ लोग ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे प्रोग्रामिंग किया करते थे, जैसे फॉक्सप्रो डिवाइस वगैरह बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज है, बल्कि मैंने उन जैसे लोगों से ही थोड़ा इंस्पिरेशन लिया है, जैसे हरीश कोटियन भाई है और बहुत लोग हैं थोड़े फोर। बट एज अ कंप्लीट ब्लाइंड आईटी प्रोफेशनल मैं पहला ही निकला देश में जो फ्रंट एंड बैक एंड उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन सिस्टम आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर के डिजाइन बनाने से लेके सब कुछ करना, जिसे आईटी प्रोफेशनलिज्म कहते हैं ना, आईटी प्रोफेशनल, तो वैसे मैं पहला था। और उसके बाद मैंने ऑफकोर्स मेरा ग्रेजुएशन पहले मैंने इकोनॉमिक्स में किया, चूंकि कभी पॉसिबल नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना, लेकिन उसके बाद जब फैसिलिटीज आई तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने बाकी सब अरेंजमेंट करके, और फिर ऑब्वियसली बाद में सब कुछ हुआ। एंड देन मैं कई जगह पे पहले जॉब भी कर चुका हूँ, यहाँ तक कि आईआईटी में भी था, उसके बाद होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में मैंने काम किया, ऐसे बहुत जगह पे। और फिर उसके बाद मेरी खुद की फाउंडेशन भी है, डिजिटल फ्रीडम फाउंडेशन। और अभी जो सबसे लेटेस्ट बात है वो है कि मैं एक बुकमैटिक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज देते हैं, और अभी अभी मैंने एक मेंटोर प्राइस करके कंपनी चालू किया। मेंटोर प्राइस इज मेंटोरिंग यू टू गेट एंटरप्राइज रेडी, जो आजकल के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आईटी फील्ड से निकलते हैं या जो अभी एग्जिस्टिंग है लेकिन उनको अभी जॉब चेंज है या नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उन लोग को वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू गेट, मतलब खुद का पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग कोर्सेज चलाते हैं, और हम लोग सिर्फ सिखाते नहीं, हम लोग वी मेंटोर देम, तो इसलिए हम लोग ने इसका नाम रखा मेंटोर प्राइस। तो हाँ यही है बस मेरे बारे में।
3: क्या बात है सर, ये तो मुझे लगता है अभी भी इसमें भी बहुत कुछ तो रह गया होगा। क्या बात है, तो आप विजुअली इंपेयर्ड बाय बर्थ हैं सर या बाद में हैं?
5: हाँ एक्चुअली मैं जब मतलब पैदा हुआ तब मेरे अंदर थोड़ी दृष्टि थी, कुछ 5-10% विजन था।
3: Okay.
5: तो कुछ तो मेरे माँ की प्रेगनेंसी में कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हुए थे जिसके वजह से रेटिना पे मेरे इफेक्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बता ही दिया था कि जैसे 3-4 साल के हो जाएंगे ओबेसिटी बढ़ेगी तो रेटिना पूरा चला जाएगा।
3: ओके
5: okay. तो वैसे ही हुआ, सो आफ्टर दैट आई लॉस्ट आई सेट बट आई डेवलप्ड माय ओन विजन।
3: गुड गुड गुड गुड। थोड़ा सा सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी प्लीज बताएं हमारे सुनने वाले।
5: आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मतलब काफी मध्यम वर्गीय फैमिली थी। मेरे पिताजी सीमेंस में काम करते थे, एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर।
3: ओके।
5: मेरी माँ शीज अ होम मेकर, मतलब वो घर पे ही रहती थी। मेरी बहन है जो डाइटिशियन है, मतलब जो आहार तज्ञ जिसे कहते हैं।
3: यस यस।
5: तो उन्होंने जसलोक हॉस्पिटल से VRS ली है, वो खुद ही प्रैक्टिस करती है। और बस, और मतलब वही ऐसे ही घर था हमारा, साधारण घर था, बस वो हम दो हमारे दो वाला। हाँ, आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड।
3: गुड, वेरी नाइस। तो आपकी एजुकेशन वगैरह कौन से स्कूल से हुई सर?
5: हाँ, ये भी एक बात है कि मेरे माँ और पिताजी का ये मानना था, मेरी बहन मेरे से 3 साल बड़ी है
3: जी।
5: तो जो स्कूल में वो पढ़ती है, बिकॉज शी इज साइटेड, तो उनको लगता था उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो काफी मतलब उसके लिए मशक्कत करनी पड़ी। और तभी ये इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं था, मेरे टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं
3: जी।
5: उसके बावजूद भी कोशिश करके आखिर इंग्लिश मीडियम किंग जॉर्ज करके एक स्कूल है दादर में जो इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के अंडर आती है, उनको कन्विंस करके बतौर एक्सपेरिमेंटल केस मुझे उन्होंने जूनियर केजी में ले लिया, लेकिन वो तुरंत ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि मैं तो बच्चा था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी कुछ लोग कहते कि तभी कुछ बहुत लोग कहते थे कि आपका बेटा बहुत ब्रिलियंट है, वो कर पाएगा करके। तो फिर उसके बाद आगे ये हो पाया, तो मैं साइटेड स्कूल में ही था, मतलब मैं कभी ब्लाइंड स्कूल गया नहीं, तो इंग्लिश मीडियम किंग जॉर्ज हाई स्कूल में मैं था।
3: अच्छा, आप हमेशा मतलब जो है साइटेड बच्चों के साथ ही आपने एजुकेशन।
5: हां हां बिल्कुल बिल्कुल।
3: ओके ग्रेट। चलिए तो अब थोड़ा सा प्राजक्ता मैम से भी बात कर ली जाए। मैम, आप भी अपने बारे में बताएं, और आप तो मतलब जो है साइटेड है, तो आप भी अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं।
4: वैसे मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ।
3: यस मैम।
4: मैंने भी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने 6 साल मैंने कंपनीज में काम किया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, और अभी हम दोनों दो कंपनी के को फाउंडर्स है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एडुटेक।
3: ओह गुड, क्या बात है। और कब से जानती है मैम आप कृष्ण सर को?
4: वैसे तो मैं बहुत आई थिंक 2010 या 11 से मैं जानती हूँ उनको. उनको सुपर एडॉल करके एक बड़ा अवार्ड होता है आईबीएन नेटवर्क से.
5: हाँ, आईबीएन नेटवर्क का सुपर एडॉल. यंग टेक्नोलॉजी अचीवर्स जो होते हैं, जो डिसेबल्ड भी होते हैं, या उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ अगर अच्छा किया तो उनको अवार्ड दिया जाता है आईबीएन नेटवर्क के.
6: ओके ओके.
4: तो तभी से मैं इनको पहचानती हूँ. उसके बाद उनके बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स आते थे तो मैं पहचानती थी उनको. फिर वो एक दिन मेरे कॉलेज में आए थे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में लेक्चर देने. तभी मैंने तभी ज्यादा जानकारी हुई उनके साथ. फिर हम दोनों ने बातें करना शुरू किया फेसबुक पे. उसके बाद जैसे मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो वैसे हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी, सामाजिक कुछ प्रश्न और ऐसे ही म्यूजिक के बारे में बहुत बातें करते थे. तो जैसे मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मैंने इनको पूछा था कि अभी मैं आके क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन से टेक्नोलॉजी में जाऊँ, मैं डेवलपर बनूँ, टेस्टर बनूँ या सर्वर साइड पे काम करूँ. तभी उन्होंने मुझे ऑफर किया था उनके कंपनी में काम करने के लिए. तो मैं एज अ इंटर्न मैंने ज्वाइन किया था. तभी से बहुत हमारी फिर हम बहुत एक दूसरे को मिलते थे, रोज मिलते थे, रोज बातें होती थी, तो उससे प्यार बढ़ गया.
6: क्या बात है. लेकिन मतलब पहली बार कब आया दिल में कि मतलब ही कैन बी माय लाइफ पार्टनर, ये कब पहली बार आपके दिमाग में आया?
4: वैसे पहली बार मैं ऐसा कुछ पता नहीं मुझे कैसा कुछ टाइम है या वो.
6: ओके.
4: हम लोग जैसे भी पहले से भी बहुत बातें करते थे जब मैं कॉलेज में थी.
6: ओके.
4: तो बहुत टेक्नोलॉजी के ऊपर तो होता ही था, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजों पे बातें होती थी हमारी. और जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो और ज्यादा नजदीक मतलब पर्सनली बातें होती थी.
6: राइट.
4: उसमें से हम लोग को पता चला कि हमारे छंद, हमारे जो विचार है, हमारा हमारी खुशियाँ सारी एक ही है. मतलब बहुत ही हम लोग बहुत सिमिलर विचार करते हैं. तो ऐसा कर करके फिर पता चला कि अरे हम एक दूसरे के लिए बने हैं. फिर
5: हाँ, दैट इज द राइट वर्ड. हम एक दूसरे के लिए बने हैं, काइंड ऑफ जिसे सोलमेट्स कहते हैं ना. क्योंकि कोइंसिडेंटली आपको बताऊं, हमारे बचपन की शरारतें भी एक जैसी, हम लोग को मालूम ही नहीं था ये. मतलब आई कुडंट इवन इमेजिन इन माई ड्रीम्स की हम लोग वही चीजें के लिए पनिश किए जाते थे हम लोग हमारे घर पे, जो सेम सेम है. भी चोरी अंगूर खाया करती थी और मैं भी चोरी करके बहुत ज्यादा अंगूर खाया करता था, तो हमको डांट पड़ती
6: थी.
5: उसे भी क्लासिकल में मुझे भी पसंद है, वो भी पूरी टेक सेवी थी, मैं भी टेक सेवी था. और हमारे जो सोशल इसके तरफ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सेम था. तो आई थिंक इट वॉज अ नेचुरल प्रोसेस की वो, मतलब मैं ये कह सकता हूँ हम लोग में प्यार नहीं होता तो ताजुब था ऐसा. मतलब इतने हम लोग ऐसे
6: क्या बात,
4: हम लोग नहीं तो कौन ऐसा.
6: तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इनके कॉलेज में जाना भी इसीलिए हुआ कि आप लोग जो थोड़ा सा एक जो डिस्टेंस था ना वो भी खत्म हो जाए.
5: हाँ, उसके लिए शायद हुआ होगा वो, बिकॉज़ उसके बाद तो हम लोग की बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई. मतलब दूसरे तीसरे ही दिन उसने मुझे बोला कि अरे आप वही बातें करते हो जो मैं हमेशा सोचती हूँ, तो कितनी अच्छी बात है करके.
6: क्या बात है. लेकिन प्राजक्ता मैम, कभी कोई आपको बैरियर नहीं लगा जो जो मतलब आम सोसाइटी में जो बातें होती हैं दरअसल वीआई को लेकर के, आपको कभी नहीं लगा ऐसा कुछ भी?
4: बैरियर का आप अगर बोलोगे तो आपको पता है मैं साइटेड हूँ.
6: राइट.
4: ओके. मैं मतलब मेरे पूरे मतलब इतने साल में मैंने किसी विजुअली इम्पेयर्ड आदमी से या औरत से मैंने कभी
6: बात नहीं की,
4: मतलब कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं.
6: हुआ ही नहीं जी.
4: हाँ, अलावा कृष्णकांत सर
6: जी.
4: तो जब ही मैंने जैसे ज्वाइन किया इंटर्नशिप, ओके, तो तभी मुझे कुछ कुछ एक्सेसिबिलिटी होती है, तो वो मुझे कुछ कुछ मतलब मुझे नहीं पता थी, ओके, कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो यूजुअली हो जाता है. जैसे कि अगर मैं कुछ चीजें दिखा रही हूँ तो थोड़ी सी एक्सप्लेन करना, अगर हम लोग एक साथ चल रहे हैं तो अगर कोई मोड़ आया तो उनको बताना. तो इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट कि नहीं आपको अगर साइटेड में और वीआर में कुछ फर्क लगे तो वो वैसे कुछ हुई बैरियर ऐसा नहीं लगा था. लेकिन यस, कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी सीखनी तो पड़ी, लेकिन फिर ऐसे कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं था.
6: आपने वो चीजें सीखने के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया एक्चुअली?
4: सीखने के लिए खुद को प्रिपेयर किया मतलब कैसे होता था कि हम दोनों एक साथ काम करते थे, ओके, तो कभी कभी ऐसे होता था कि ये स्क्रीन रीडर ऑन करते थे तो मैं देखती थी ये कैसे काम कर रहे हैं, तो मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा था.
6: ओके.
4: उसके बाद हम लोग मीटिंग्स के लिए एक साथ जाते थे, वर्कशॉप्स के लिए एक साथ जाते थे. तो कैसे बताना है, कभी बताना है. तो और हम लोग में, हम दोनों में एक ऐसा हुआ था कि हम दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया था तभी से. तो उनको पता ही चलता है, जैसे कि अगर मैं थक गई हूँ तो मैंने कुछ फटक से नहीं बोल दिया तो उनको पता चलता है कि नहीं आगे जाके हम लोग को उतरना है या चढ़ना है. तो एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन तो हम दोनों में बना.
6: क्या बात है.
4: मतलब मैं कहना चाहती हूँ, मतलब बहुत अभी इसके पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था तभी भी मुझे मतलब बोलना था कि एक्सेसिबिलिटी ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं होता. जैसे कि अभी हमारी मदर टंग है मराठी,
6: right.
4: आप हिंदी में बात करें और अभी ये प्रोग्राम हम लोग को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है तो हम लोग को मतलब जारी सा है कि हम लोग को हिंदी में ही बात करें.
6: राइट.
4: तो दिस इज ऑल्सो एक्सेसिबिलिटी फॉर समवन.
6: एग्जैक्टली.
4: अभी मैंने आपको मतलब ऐसा कहा, देखो वहां पे कुछ तो है, ऐसा बोल के किसी को कुछ नहीं समझ में आने वाला, वो साइटेड है, डम है या कोई भी है. तभी आपको थोड़ा सा प्रिसाइज होना है, देखो वहां पे मैंने बॉटल रखी है. तो ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं होता है, यू हैव टू जस्ट बी प्रिसाइज.
6: गुड, दैट्स वेरी नाइस. केके सर.
5: हाँ बोलिए.
6: मैम ने तो बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर थे, लेकिन आपके आपका तो इतनी मतलब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने बहुत जगह मेंटोरशिप भी की है, सेमिनार्स भी लिए हैं, इतने लोगों के साथ काम किया है, तो आपके लाइफ में तो बहुत से लोग आए होंगे.
5: लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, सही बात है, और आते रहेंगे और आते भी थे. लेकिन कैसा होता है ना कि
6: डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा ना प्राजक्ता मैम के लिए कि नहीं रहा.
5: डिसाइड करना उनके लिए मुश्किल होता है जिनको खुद को नहीं पता रहता है कि उनको क्या चाहिए. तो ऐसा होता है ना कि अपने को मालूम रहता है कि लाइक एज यू राइटली सेड एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, हमारा एक माइंडसेट बना रहता है और हमें मालूम रहता है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट इन अ लाइफ पार्टनर. और कई बार ऐसे हो जाता है कि मतलब कई लोगों को ढूंढना पड़ता है, लेकिन कई लोगों के अपने आप ऐसे जैसे जिग्सॉ पजल का एक पीस दूसरे पीस से अट्रैक्ट हो जाता है. तो हमको पता है पहले ही अपने दिमाग में ये इमेज बनी रहती है कि अपने को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए या यू नो माय वाइफ शुड बी लाइक दिस. ओके. जनरल एक व्यू रहता है एंड होता है कि कुछ चीजें मिल जाती है, कुछ चीजें नहीं मिलती है. लेकिन हमारे बारे में ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट जैसा मैंने सोचा था, लाइक द मोर आई स्पेंड टाइम विद हर, जितना ज्यादा हम टाइम बिताते थे और हम लोग मतलब वो इंटर्न थी तो हम लोग कोडिंग एक साथ, प्रोग्रामिंग एक साथ करते थे, तो प्रोग्रामिंग करना कम और गप्पे बहुत मारते थे हम लोग. वो इतनी ब्रिलियंट थी और इतनी ब्रिलियंट है कि जो आम आदमी 4 घंटे में काम करेगा वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में कर देती थी. तो
6: क्या बात है.
5: एंड बिकेम एन एडवांटेज कि चलो बचे हुए टाइम में हम लोग गप्पे मारेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं. और उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी बातें करते थे. ट्रैवलिंग का हम लोग दोनों को शौक है, पहाड़ों पर समंदर का शौक है, तो सारी बातें आती थी, सारी की सारी बातें. और चीज जो फाइनली मतलब मेरे दिमाग में आई, कैसा होता है कि रिलेशन में जितना खुश रहना होता है उतना ही जरूरी होता है खुश अपने लाइफ पार्टनर को देखना.
6: राइट.
5: कई ऐसी छोटी मोटी इंसिडेंट्स हुई जिसके वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे साथ रहती है तो बहुत मुअत्तर होती है, बहुत खुश होती है वो. इसमें मेरे जबान पे उर्दू के शब्द आ जाते हैं क्योंकि मैं लिखता भी हूँ उर्दू में, इसलिए तो.
6: अरे वाह, बहुत खूब, बहुत.
5: तो ऐसा हुआ कि मिसाल के तौर पर एक बार उसको कुछ बुखार वगैरह कुछ था एंड शी वाज सिटिंग होम. मुझे मालूम है इसको हारमोनियम वगैरह बहुत पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है. तो एक अच्छा बुक मेरे पास था जिसमें पूरा हारमोनियम के बेसिक्स और उसको किस तरह से बजाना है, किस तरह उसको ट्रीट करना है. तो मैंने उसको वो बुक भेजा एंड सडनली शी फेल्ट सो नाइस, सो वेल, जहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसको पूछा, अरे क्या हो गया, तू तो ऐसे मतलब थोड़ी मुरझाई हुई लग रही थी, एकदम खिल कैसे गई. तो मतलब ये एक मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ऐसे कुछ एग्जाम्पल से मुझे मालूम पड़ा कि सिर्फ मैं खुश हूँ नहीं, मैं उसको खुश देख भी पा रहा हूँ मेरे वजह से. तो अगर मेरे वजह से इतनी खुश हो रही जितने उसके वजह से मैं हो रहा हूँ, तो मतलब वो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऐसा एक पॉइंट आ गया कि लाइक हमको मालूम ही पड़ गया कि लाइक हम लोग शादी करेंगे, मतलब मालूम ही पड़ गया.
6: ग्रेट. अच्छा सर, आपने भी कहा आप लिखते भी हैं, तो मैम के लिए क्या लिखा आपने, बताओ.
5: वो आई थिंक मैम आपको बताएगी क्या क्या लिखा है या क्या क्या लिखा है.
6: आप बताइए जरा मैम. चलिए
5: मैम बताइए.
4: मैं मेरे फैमिली के साथ केरला घूमने गई थी.
6: ओके.
4: और हम लोग मतलब उतना बात नहीं कर रहे थे तभी.
6: ओके.
4: नेटवर्क के इश्यूज थे, तो थोड़ा सा मतलब होता था अरे मुझे इनसे बात करनी है, लेकिन होता है ना वो स्टार्टिंग के फेज में कि आपको बहुत अच्छा लगता है वो प्यार का पहला नशा वाला,
5: हाँ बराबर
4: वैसा ही सेम
6: क्या बात है बिल्कुल वो पहला एहसास
4: यस यस यस तो तभी एक मतलब 10 दिन के बाद में आ गई तो इन्होंने मुझे एक उनकी लिखी हुई डायरी दे दी, मतलब उन्होंने कुछ
5: चुनिंदा गजलें और कविताएं,
4: हाँ गजलें और कविताएं तो उन्होंने अभी तक जो लिखी थी उनकी एक बुक बनाई है उन्होंने, मतलब
6: ग्रेट क्या बात,
4: हाँ उन्होंने मेरे लिए एक डायरी में लिखी, अभिजीत नाम है उनका, उन्होंने मेरे लिए डायरी में लिखी थी और वो मुझे वो पारिजात करके वो बुक का टाइटल है जो मेरा नाम है प्राचा,
6: क्या बात है वाह,
4: तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिए तो अभी और हम लोग उसमें ऐड कर रहे पोएम्स एंड गजल्स, तो अभी कुछ सालों में हम लोग उसको
5: मतलब हुआ ये था कि वो बुक तो उसको मिला था लेकिन उसके पहले भी उसके पिछले ही दिन जब वो वापस आ रहे थे केरला से, मैं कोंकण में था, ये कोंकण रेलवे केरला से कोंकण होते हुए मुंबई आती है, तो मैं वहां पर कोंकण में था मेरे दोस्त के घर पे एंड आई सरप्राइज मैं उसके ट्रेन में चढ़ गया बीच में,
6: ओ क्या बात है वाह व्हाट अ कोइंसिडेंट, अरे गजब, हां फिर
5: तो फिर आने के बाद मैंने वो बुक उसको गिफ्ट की एंड उस दिन पहली बार मैंने मतलब खुशी के आंसू क्या होते हैं वो मैंने पहली बार देखे हुए,
6: वाह क्या बात है, तो इतनी सारी आपने जो पोएट्री की है जो मैम को सबसे ज्यादा पसंद हो कोई दो लाइनें अगर याद आ रही हो अभी,
4: बहुत अच्छी अच्छी कविताएं
5: मैंने एक्चुअली बहुत सारी कविताएं लिखी है उसको शायद मेरी मशवरा करके एक कविता थी जो उसको पसंद आई थी कि हर वक्त हर सवाल का जवाब देना लाजिम नहीं होता, मोहब्बत के कारोबार का हिसाब देना लाजिम नहीं होता, होता नहीं दोस्ताना हर फूल इस्तकबाल का, हर गुलाब के बदले गुलाब देना लाजिम नहीं होता, ये माना की मेहमान नवाजी तहजीब तो है लेकिन हर महफिल में मेहमान को शराब देना लाजिम नहीं होता,
6: वाह वाह क्या बात,
5: खुदा है इस जहान में तो जानता है निसार, निसार ये मेरा तखल्लुस है, और खुदा है इस जहान में तो वो भी जानता है निसार कि हर शब को महताब देना लाजिम नहीं होता, सो हर नाइट जो मून वाली नाइट है वही ब्यूटीफुल है जरूरी नहीं मूनलेस नाइट होती
6: है, यस यस यस क्या बात वाह, अच्छा कृष्ण सर एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ ऑलमोस्ट पूछता हूँ, पहला प्रपोज किसने किया?
5: अरे बाप
4: उसके भी एक कहानी है
6: और मुझे मैम की हंसी से पता लग गया कि वाकई में कोई कहानी है,
5: बहुत बहुत बहुत ही मतलब अभी लोग बोलेंगे यार ये फिल्म की कहानी बता रहे हैं रियल लाइफ की कहानी बता रहे हैं, ये था
6: जी
5: और इसलिए जानबूझ के मैंने वो कविता वो उसमें भी एक कविता इन्वॉल्व है मैंने वो नहीं कही
6: जी
5: नहीं मतलब बस वो उसके लिए ही है ऐसा है,
6: आपको लग रहा था ये क्वेश्चन आएगा ही

0: बनता है। तो
1: जी
0: वैसे ना हर नाइट में चैट हम लोग बात करते थे,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: मैं एंड में इसको पूछता था डू यू लव मी विल यू मैरी मी, तो वो हर लैंग्वेज में मुझे यस बोलती थी।
1: अच्छा
0: तो ऐसे फन मजाक मजाक में चलता था, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कभी तो ये हो, और मैं कोशिश कर रहा था। तो शी यूज्ड टू से नहीं नहीं नहीं मैं बोलूंगी बोलूंगी, कभी तो बताऊंगी मेरे मन में क्या, लेकिन सस्पेंस है करके। तो एक कुछ तो अराउंड ठीक एक हफ्ते पहले वो सस्पेंस मैंने क्रैक कर दिया, मतलब उसने ज्यादा हिंट, जरूरत से ज्यादा हिंट दे दी। उसका बर्थडे होता है 26 दिसंबर को,
1: ओके,
0: तो उस दिन ये होने वाला था, ये मुझे मालूम पड़ गया। तो एक अच्छा बंगलो मैंने रिसोर्ट बुक करके रख दिया पूरा का पूरा।
1: वाह।
0: तो मेरे फ्रेंड्स के मदद से, अभिजीत जो बताया वो मेरा कलीग भी है और मेरे साथ रूममेट था, वो केरला से था। तो हम लोग ने जाके गुपचुप वो सब बुक कर लिया, और ट्रेन से आते आते आई रोट अ पोयम, मैंने लिख दी, कार्ड है अभी भी उसके पास वो। तो हुआ ये कि अभिजीत वो स्माइलिंग, मतलब वो हंस रहा था जब मैंने उसको वो कविता दी, और बोला ये कार्ड पे लिखना और मेरे लिए कुछ गुलाब लेते आना करके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या माजरा क्या है करके। हुआ ये कि 26 तारीख को जब मतलब शाम को जब वो प्रोग्राम हुआ, काइंड ऑफ एंगेजमेंट का एक तरह से प्रोग्राम बोल सकते हैं, प्रपोजल क्या, पूरा एंगेजमेंट ही था हमारा, वो एक तरह से पूरे उसके बर्थडे के दिन प्लान था। तो मैंने उसको वो कार्ड और वो पोएम गिफ्ट किए और गुलाब गिफ्ट किए। उसके बदले में मालूम है मैम ने क्या किया?
1: जी।
0: ऐसा कोइंसिडेंस था, मैम ने भी एक पोएम लिखी थी, वो भी गुलाब और कार्ड लिखे। ये दोनों की चीजें मेरे दोस्त को पता थी जो ऑर्गेनाइज करा था, बेचारा उसकी हालत खराब की, अभी मैं क्या बोलू। ये मामले में भी ये लोग दोनों एकदम सेम है कि दोनों को भी नहीं मालूम एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए पोएम लिख रखी है
1: क्या। और मैम को रिसोर्ट वाली बात पता थी?
0: नहीं नहीं, पूरा सरप्राइज।
2: क्या बोलते, क्वालिटी है सरप्राइजेस देना।
1: क्या बात है, कभी शौक तो नहीं लगा सरप्राइजेस से?
2: शौक नहीं लगा, क्योंकि मुझे पहले इसमें पता चला कि ये बहुत अच्छे अच्छे से अलग अलग से सरप्राइज देते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा तो होने ही वाला है।
1: क्या वेरी, मतलब एक तरह से पता तो आप दोनों को ही था कि होने वाला क्या है, लेकिन बस वो है कि पहले आप वाला मामला था,
0: फॉर्मलाइज करना था।
1: प्राजक्ता मैम, आपकी फैमिली के लिए थोड़ी इतना इजी रहा होगा ये सब?
2: बिल्कुल भी नहीं।
1: बताइए जरा क्या कहानी रही वो जब उन्हें पहली बार पता चला?
2: पहले दिन से ही नकार थी वो, उनको मतलब पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, उनकी कामगिरी के बारे में पहचानते हैं उनके काम, और उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो वो काम करते हैं उसके बारे में, जैसे वो इंसान है उसके बारे में। लेकिन उनको नहीं एक्सेप्ट हुआ रहा हमारा मैरिज।
1: ओके।
2: वो ही था कि
1: क्या बोलते थे वो,
2: मतलब वो ये कि आप मतलब एक्चुअली वो लोग जो बोलते थे उसका सारा चीज हम लोग करते हैं अभी, और अभी कैसे बताऊं। जैसे कि उनका रहता था कि आप आपका सौंदर्य वो कैसे देख सकता है।
1: बताइए, बहुत कॉमन बात है ये सब जगह की। जी
2: यस, के बाद उनका होता है
1: वो आपको फील कैसे करेंगे और ये सब चीजें, मतलब ना
2: था कि देखो आपको, फिर आपको तो मतलब ट्रैवल करने का, ये देखो आप दुनिया इतनी खूबसूरत है, कैसे दिखा सकता है
1: जी,
2: ऐसे सारे बहुत सी बातें थी।
1: आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी।
2: हाँ यस एग्जैक्टली, ये तो मैं भूली गई थी कि नहीं फिर आपको खुद का कुछ इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, आपको स्वतंत्र से कर नहीं सकते हो, फिर आपको उनके पीछे ही जाना होगा, ऐसे वैसे बहुत थी। लेकिन उसके आंसर्स भी मैं आपको बताती हूँ, वो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी।
2: एक लड़की होती है जिसको ऐसे बोलता है ना कि सजना धजना बहुत बहुत पसंद है,
1: पसंद है, राइट।
2: कि हम लोग हमारे जो समाज में लड़कियां आती है, हम लोग पहला मतलब हमारी भी बेटियां होगी कुछ होगी या कुछ हमारे फैमिलीज में होती है, तो हम लोग उनको फ्रॉक लाते हैं, सब कुछ मतलब उनको सजाते जाते हैं।
1: राइट राइट।
2: तो वो जो मेरे इसमें मेरे लाइफ में किसने बहुत अच्छा किया रहेगा ना, मुझे सजाया है मेरे पति ने।
1: वाह क्या बात है।
2: यस, मैं ये बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि मुझे सजाया है मेरे पति ने, उसने मेरे लिए सारे सारे टाइप्स के ड्रेसेस लिए है। अगर मैं कहती हूँ अरे नहीं यार अभी नहीं, ये टाइम पे नहीं लेते कुछ, तो वो मुझे जबरदस्ती लेके जाके वो मतलब चीज लेता ही लेता है।
1: क्या बात,
2: वो अलग सी बात है। फिर
1: वेरी नाइस।
2: यस, कुछ कुछ ड्रेस पैटर्न्स मुझे नहीं पता होते कि अच्छा ये इसको ऐसा कहते हैं क्या, ये ऐसा होता है क्या, तो मुझे बताते हैं तभी मैं हाँ ये आपको कैसे पता चला।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: बात जो होता है कि जैसे कि पार्लर में

0: जाना बहुत शौकीन होती है लड़कियां,
1: राइट राइट राइट
0: ऐसा होता था हाँ ठीक है जाऊंगी नहीं जाऊंगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझे हमेशा कंपलसरी नहीं नहीं नहीं नहीं तुझे जाना ही है, वो अपॉइंटमेंट बुक करने से वहां तक मेरे साथ आने तक वो मेरे साथ रहते।
1: ओह वाओ
0: जो पार्लर्स में रहती है औरत है उनको भी इतना यूजुअल हो गया, अरे सर नहीं आए क्या, सर को कुछ
1: और शुरू में होता होगा भाई जेंट्स कैसे आ रहे हैं।
0: नहीं, वो यूपी सेक्स पार्लर हम लोग में इसलिए जानबूझ के चूज, हम दोनों का एक साथ ही सब कुछ हो सकता।
1: ओके गुड गुड गुड गुड गुड
0: हाँ
1: गुड
0: पहले मैं एक लेडीज पार्लर में जाती थी लेकिन उसको भी बहुत अच्छा लगता था। अरे हाँ मुझे पता है आप क्यों आई हो, आपका बर्थडे है नहीं तो केके सर का बर्थडे है नहीं तो कुछ, उन्होंने ही भेजा होगा आपको पैम्पर करने के लिए। सेकंड जो है कि आप घूम नहीं सकते हो, ये खूबसूरती देख नहीं सकते हो, तो लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे घूम के आए हैं।
1: लोगों को
0: वैसे
1: सच में
0: तो
1: पता
0: ये लोगों को सच में पता नहीं कि हम लोग मतलब वैसा देखा जाए तो सारा देख लिया ना, हम लोग ने
1: एक्चुअली
0: पहाड़
1: कैसा
0: देख
1: है
0: लिया
1: ना
0: है,
1: कि
0: हम लोग ने समुंदर देख लिया है।
1: पता इसलिए नहीं कि हम लोग ज्यादा फोटोज वगैरह डालने में, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए हम नहीं घूमते। और हाँ, नहीं
0: ये
1: घूमते
0: एक मामले में कई बार कपल्स में एक छोटा सा इशू हो जाता है कि या तो लड़का बहुत फोटो सेवी और शो ऑफ वाला होता है, लड़की शांत रहती है, या लड़की एकदम यार मैं फोटो डालूंगी सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम उस पे 2-10 मिनट में, लड़का वो बोलते हैं ना हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या मिर्जा गालिब की गजल है।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: ये मामले हमारे मामले में ये भी नहीं, हम दोनों भी ऐसे हैं कि यार खुद के खुशी के लिए कर रहे यार, हनीमून जा रहे हैं खुद के खुशी के लिए जा रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं, इसलिए वो बराबर बोल रहे हैं लोगों को नहीं मालूम कहाँ कहाँ घूम
1: क्या
0: चुके।
1: बात,
0: वैसे तो हम लोग ने पहाड़ देख लिया है, समुन्दर देख लिया है, जंगल देख लिया, नदी
1: वाह
0: देख लिए, झरने देख लिए, सब जगह पे हम लोग हो गया।
1: ग्रेट ग्रेट।
0: आपको जो पिक मैंने भेजी थी वो मेरे हनीमून से थी उत्तराखंड में,
1: हाँ
0: वहां की थी, वहां आजू बाजू में पूरा बर्फ था, क्योंकि चूंकि नेत्रहीन लोग भी इसको सुनते रहेंगे, 12,500 फीट पे तो वो एक शंकर का मंदिर है तुंगनाथ करके, मतलब वो देखने में बहुत अच्छा है। वैसे एक्चुअली हम दोनों नास्तिक है ये मैं बता देता हूँ पहले, भगवान का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जिनके मतलब लाइफ में ऐसा हो गया कि अभी सच में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उनके लिए ऐसा साइकोलॉजिकल रिलीफ की कोई है, कोई हमारा शायद कुछ करेगा उम्मीद है, उस कॉन्सेप्ट से भगवान का कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसलिए हम लोग जो मानते हैं उनका कभी इंसल्ट नहीं करते, लेकिन हम दोनों नास्तिक है।
1: वेरी
0: तो
1: गुड
0: मंदिर बहुत अच्छा है, तो वो चढ़ गए हम लोग, पूरा चढ़ गए थे, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है और मतलब इससे डिफिकल्ट क्लाइंब, वो बारे में भी प्राजक्ता आपको बताएगी बाद में। तो
1: जी।
0: वहां गए हम लोग, भूटान में गए थे, वहां तो 13,000 फीट तक थे हम लोग
1: ओ
0: समुन्दर में, मतलब मैंने एक बार ऐसी सरप्राइज के लिए गोवा में उसके लिए बोट बुक किया था, बहुत कुछ हुआ था ये सब। तो हम लोग घूमते क्यों नहीं घूमेंगे भाई, सब जगह घूमते हैं।
1: क्या बात है। तो मतलब तो पानी के अंदर और पहाड़ के ऊपर सब जगह होकर के आ गए आप लोग, क्या
0: अभी
1: बात।
0: सबमरी की जगह बाकी है नीचे पानी।
1: अभी आज जो है मैम आपकी फैमिली सेटिस्फाइड है या अभी भी कुछ है ना उनको प्रॉब्लम।
0: जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग बहुत ही सेटिस्फाइड।
1: वेरी गुड वेरी
0: हाँ
1: गुड।
0: ऐसा है कि आपने अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आप कभी भी खुश नहीं होती थी लाइफ में, इतना खुश तो आपको कोई नहीं रख सकता था।
1: क्या बात है।
0: तो जिनके थोड़ी सी है विरोध उनका है ही, कुछ दिन में वो भी समझ
1: वो
0: जाएंगे।
1: भी समझ जाएंगे। एग्जैक्टली
0: देखो कैसा है, ये आज की बात नहीं है, मतलब ये मैं किसी फैमिली के को ब्लेम नहीं करूंगा।
1: जी
0: कैसा है कि अभी हम लोग जैसे ट्रेन में वगैरह भी सफर करते हैं या जर्नीज में वगैरह, तो मुझे दो तरह के ज्यादातर लोग मिले हैं, या तो उनको लगता है हम लोग भाई बहन है बिकॉज वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि यह कपल है, या अगर समझ में आया तो फिर ये रहता है अरे आपने कितना बड़ा काम किया एक अंधे के साथ शादी करके दया
1: अरे
0: की।
1: बाप रे बाप।
0: बस ये
1: जी
0: दो ही तरह के लोग मुझे ज्यादातर मिले हैं, मतलब जो जनरली लोअर टू
1: हाँ
0: मिडिल
1: कि
0: क्लास।
1: आप तो देवी हैं, आपने बहुत अच्छा काम
0: हाँ, इसलिए और मतलब एक
1: किया
0: विशिष्ट समाज के लोग भी ये बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ये बोला जाता है, मतलब जो लोअर टू मिडिल ग्रुप के जो लोग रहते हैं,
1: है।
0: मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कई बार, मतलब तब तक मेरी शादी हुई नहीं थी, कई बार लोगों ने ये पूछा कि यार तुम लोग तो मतलब शादी कैसे करोगे, क्यों नहीं करेंगे, तो अरे तुम लोग तो देख नहीं पाते हो, तो आप तो लैंगिक संबंध भी नहीं कर पाओगे ना, तो कैसे ये सब, मतलब इतना लेवल तक इग्नोरेंस है लोगों के बारे में आज।
1: बताइए बताइए आज भी, जबकि आप मतलब एक डेवलप्ड सिटी कह सकते हैं वहां रहते हैं आप।
0: हाँ वहां पे भी ये सुनाई देता है, हालांकि मैं कोई कोंकण में कई गांव में वगैरह गया हूँ या घाट साइड में भी गया हूँ ना, तो वहां भी उन्होंने ना ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उधर भी ये सब होता है, उधर भी अरे रे बेचारा ऐसे सब होता है, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग मतलब मुझे सिटी के लोग पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव करते हैं कि कुछ तो बड़ा अजूबा देख लिया और यू नो। तो हम लोग भी यही अगर ट्रेन में वगैरह जाते रहते तो कई बार ये मतलब इंसिडेंट हुआ है कि लोग ऐसे पूछते हैं या अरे क्या आपका भाई है या मुझे कहते हैं आपकी बड़ी दीदी है, कभी कभी मैं उनका बड़ा भाई बन जाता मतलब
1: भी ऐसा कभी ऐसा हुआ कि सर आपने कहा और गैस कीजिए जरा और गैस कीजिए जी
2: थोड़ा बोल्ड सा इनको बोला था
1: जी।
2: कि हम लोग कभी भी बाहर जाते तो अभी तो मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ
1: जी
2: और हम दोनों साथ रहते ऑलमोस्ट
1: जी जी जी
2: करना होता है तो हम दोनों को एक साथ करने में बहुत आनंद होता है तो हम लोग एक साथ ही करते हैं
1: जी।
2: तो आपका भाई है क्या
1: ओ
2: देख रहे हो ना मेरे गले में मंगलसूत्र
1: है
2: देख रहे हो ऐसा नहीं कि आज ही अचानक से हम दोनों आपके सामने आए हैं
1: जी।
2: तो मैंने सोचा को बोला देखो अभी हम लोग एक साथ इतना हाथ पकड़ के एक साथ चल रहे हैं इतने अच्छे से बात कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत जोक्स होते हैं सब कुछ होता है हम लोग हंसते हैं सब होता है तो मतलब मैंने सोचा ठीक है अभी ऐसा कोई पूछेगा ना उनके सामने किसिंग करना स्टार्ट कर देंगे अभी हम लोग भाई बहन है
1: क्या करेंगे सही है बिल्कुल सही बिल्कुल सही है।
2: और मेरे साथ इतना उल्टा है कि कैसे होता है कि अभी देखो मैंने जैसे बोला कि ये मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े लेता है ड्रेसेस लेता है तो हम लोग जाते हैं एक साथ घूमने कपड़े खरीदने कुछ भी खरीदना होता है तो हम लोग एक साथ जाते हैं तो मैं उनके लिए लेती हूँ ये मेरे लिए लेते हैं तो मॉल्स पे जैसे बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमते हैं वैसे हम लोग घूमते हैं
1: वेरी गुड
2: यस। तो उसमें कैसा रहता है अरे आप उनको क्यों बोल रहे हो अरे आप इनका उनको क्यों घुमा रहे हो अरे आप उनको हाँ उनको तकलीफ क्यों दे रहे हो अरे तो इनमें अरे आपको क्या प्रॉब्लम है मेरा बॉयफ्रेंड है मेरे साथ घूम रहा है क्यों ना घूमे वो
1: सही है
2: ये कपड़े चॉइस करे क्यों ना वो मेरे कपड़े चॉइस करे।
0: आज आज सुबह की बात बताता हूँ हम लोग फिश मार्केट गए थे अभी हम कोंकण के एंड शी इज एन एक्सेलेंट कुक बाय द वे
1: गुड वेरी नाइस
0: मैंने लाइफ में इतनी अच्छी कुक और मतलब उसमें टेस्ट भी रहता है और प्यार भी रहता है ये अलग बात है लेकिन इतना अच्छा कुकिंग करते तो हम लोग फिश लेने गए थे मार्केट में भीड़ थी मैं मानता हूँ भीड़ थी और किसी ना किसी को अड़ंगा होगा तो पीछे से एक औरत बोल रही थी इसके बारे में अरे क्यों इसको लेके आई है मार्केट में इसको लेके आने की क्या जरूरत थी इतना मतलब ये अड़ंगा हो रहा है तो मैं पीछे मुड़कर बोला क्यों आपके पति आएंगे तो भीड़ नहीं होंगे क्या मेरी वजह से भीड़ क्यों
1: सही है सही
0: है वही दिखा आपको जिसके वजह से भीड़ हो रही है
1: जी जी जी
0: ये सब गलत बात है मतलब ये होना नहीं चाहिए और थोड़ा मतलब अभी गवर्नमेंट वगैरह तो ठीक है इसलिए मैंने पहले ही बोला ये दिव्यांग बोल के और जले पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है पर अभी फैसिलिटीज है जैसे अभी बसेस में वगैरह फ्रंट सीट रहती है रिजर्व फॉर हैंडीकैप ये कोई सिंपथी नहीं है ये इसलिए किया गया है ताकि हमको उतरने में आसानी रहे और हम लोगों के लिए मुसीबत
1: ना बने वही मैं पूछने वाला भी था आपसे सर कि ये जो जो जितने भी ये शब्दावलियां हैं जितने भी वर्ड्स हमारे लिए यूज किए जाते हैं इन पर भी आपने काफी कुछ बोला है मैं जानता हूँ चाहे डिफरेंटली एबल हो चाहे स्पेशल एबल हो या फिर जो है दिव्यांग पर अभी आपने कहा आप क्या मानते हैं ये सारी जो मतलब जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये मतलब क्या सोसाइटी यूज करके क्या दिखाना चाहती है और अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए सही वर्ड
0: अकॉर्डिंग टू मी सही वर्ड होना चाहिए जो एक्चुअल मतलब मेडिकल टर्म है ना उसको अगर आप डिसेंटली बोले अभी विजुअली इम्पेयर ठीक है विजुअली इम्पेयर है तो विजुअली इम्पेयर है यू नो तो जो है वो फैक्चुअल बोले क्योंकि मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होती है क्योंकि मेरे कुछ ब्लाइंड फ्रेंड्स मतलब जो बने हैं वो तरह का प्रॉब्लम होता है और दोनों भी चीजों में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होता है और उसमें से एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया है या तो एकदम ऐसे इग्नोर करेंगे और बेचारा बेचारा करके एंड दे विल लुक डाउन अपॉन ब्लाइंड पीपल ये क्या करेगा ये तो ऐसे ही फालतू में है कोई बेचारा ऐसा होता है या फिर अजूबे की तरह देखेंगे अरे ये तो स्पेशल है एकदम ही लाइक ब्लाइंड होते हुए भी कंप्यूटर यूज करता है ब्लाइंड होते हुए भी ये कर रहा है वो कर रहा है ये दोनों में से एक चीज होती है और मेरे ख्याल से ये दोनों भी चीजें होना बहुत हार्मफुल है। अभी आप शादी की हमराही के बच्चों की बात कर रहे हो अगर कोई मैं अगर अजूबा हूँ या ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ आई वुड अ गर्ल लाइक टू मैरी क्योंकि उसको तो इंसान चाहिए यार उसको कोई सुपरमैन या ये सब फिल्में वगैरह ठीक है इंसान चाहिए जिसके साथ वो झगड़ा कर सके हमारे भी झगड़े होते हैं हमारे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारा भी प्यार होता है सब कुछ होता है कोई किसी को सुपर ह्यूमन नहीं चाहिए तो मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है कि लोगों को लगता है अरे कितना ये तो बाप रे अजूबा ही हो गया जैसे कॉन्फ्रेंस में वगैरह जाता हूँ तो कुछ लोग आके ऐसे ही मिलते हैं तो ये उसी वजह से या तो आप उनको डिसेबल्ड कह के थोड़ा सा मतलब ये करते हो दिव्यांग कह के उनकी जरा ज्यादा हाइप क्रिएट करते हो तो दोनों भी नहीं होना चाहिए जो है वो है अभी मैं बोलता हूँ मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा बेस्ट वर्ड है विजुअली चैलेंज्ड,
1: क्योंकि
0: ये देखना यही मेरे लिए चैलेंज है। बाकी मेरे लिए लाइफ में कोई चैलेंज नहीं, उतने ही चैलेंजेस है जितने बाकी लोगों के लिए होते हैं।
1: जी एग्जैक्टली,
0: एक चैलेंज है जो मेरे लिए सॉल्व करना नामुमकिन है, जो बाकी लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास है, वो है आई साइट। उसके अलावा क्या है? और जो अभी प्राचकता कह रही थी थोड़ी देर पहले, ये अभी वो बताने वाली बात है नहीं, अभी वो मैं उसके लिए ड्रेसेस वगैरह लाता हूँ, ये करता हूँ। देखो जो मैंने शुरुआत में बोला कि वन ऑफ द मेजर थिंग जिसके वजह से मैंने मतलब ये सोचा हाँ मैं इसके साथ ही शादी करूंगा, ये मतलब कभी कभी मैं मजाक में बोलता था, या आयरनी है कि मैं नास्तिक होते हुए ये बोलता हूँ, मैं इसको बोलता था तू ना मेरे पिछले जन्म की प्रेयसी रही होगी शायद से। मिले है करके।
1: जी जी जी।
0: ये क्यों हुआ? बिकॉज मैं देख पा रहा था कि आई वॉज एबल टू मेक हर हैप्पी, और किसी को हैप्पी करना और किसी के जीवन में हैप्पीनेस लाना इज वेरी ब्यूटीफुल। ये सब उसी बातों का, तो हैप्पीनेस फील करना या हैप्पीनेस देना या एक दूसरे का के कंपनी में खुश होना, इसके लिए कहाँ आई साइट की जरूरत है?
1: एग्जैक्टली
0: जरूरत नहीं है इसके लिए।
1: जी जी जी जी जी। क्या अभी प्राजक्ता मैम आपकी लाइफ मतलब कोई भी सुनेगा तो लगेगा अरे वाह यार व्हाट अ आइडियल कपल, मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी लाइफ में?
2: अभी इसके बारे में मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि देखो कि अभी तो मेरा पति तो विजुअली चैलेंज्ड है,
1: राइट,
2: लेकिन मेरे बाकी सारे लोग विजुअली चैलेंज या कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं।
1: जी।
2: मेरे उनके साथ भी कुछ मतलब कुछ बातों में ये हो जाती है, मुझे कुछ पसंद आता है, कुछ चीजें मेरी उनको पसंद नहीं आती, दूसरों की नहीं आती है, मेरे पति के साथ भी ऐसे होता रहता। हम लोग ना बातें करके ये सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग हमेशा बोल सकते हैं। अभी देखिए अगर आपने हमें इनवाइट किया, अगर कुछ हम लोगों को कुछ दिक्कतें आती थी तो आपको बताते थे, आपको रिक्वेस्ट करते थे कि सर ऐसा नहीं करते, ऐसा करके देखते चलेगा, आप ही कुछ दूसरा रास्ता,
1: कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकालते हैं, राइट?
2: एग्जैक्टली। तो वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है लाइफ में सब सबके साथ और सब मतलब सब कुछ आप दूसरों को समझा के बात करके सॉल्व हो जाए।
1: गुड।
2: और कैसा है कि देखो आपको एक दूसरे के साथ रहना है, आपको एक दूसरे का रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है या वो बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो चैलेंज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको सॉल्व करना है या उस पे ही अटक के आपको रोना थोड़ा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें।
0: मतलब आपको पहले शुरुआत यहाँ से करनी है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है या नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना है, देन टॉक अबाउट इट।
1: यस।
0: सॉल्व करना है, देन तो सॉल्व करना है, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है?
1: तो फिर वो प्रॉब्लम है ही नहीं फिर तो।
2: उसको अभी आपको सॉल्व करना।
1: तो के सर ये सत्यमेव जयतेमय जाने का कैसे हुआ आपका?
0: वो एकदम संक्षेप में बताता हूँ, एक्चुअली ये सुपर आइडल से ही लिंक्ड है, जो मैंने बोला कि सुपर आइडल अवार्ड मुझे मिला था
1: जी,
0: आईबीएन नेटवर्क ने मतलब बड़ा प्रोग्राम रखा था और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अवार्ड मिले थे। सो एज एन यंग अचीवर, क्योंकि तब तक मैंने टॉकिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी काम किया था जो ओपन सोर्स है, जो लिनक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चलता है
1: जी,
0: तो उस पे काम किया था। फिर काफी कुछ मैं रूरल एरियाज में भी काम करता था, मेरी फाउंडेशन वगैरह ये सब, तो वो अवार्ड मिला था। और उस अवार्ड के मतलब देने के टाइम वो जो फंक्शन था, तभी आमिर खान आए थे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। और मैंने एक बात कही थी जिसके वजह से वो उनके बाद दिमाग में रह गए और जिसके वजह से ही रिमेम्बर्ड मी काइंड ऑफ फॉर सत्यमेव जयते, वो ये थी कि तभी थ्री इडियट्स रिलीज हुआ था तो, और उसके पहले तारे जमीन पे हो चुका था, उन्होंने पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, वैसे वो बहुत अच्छे एक्टर है और बहुत चूजी है फिल्म्स के बारे में,
1: भले 3 साल में एक फिल्म करनी है लेकिन अच्छी करनी है।
0: इसलिए थोड़ा सा मैं धूम 3 वगैरह जब हुआ तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, बट एनीवेज सबको थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो सारे अवार्ड विनर्स है ये सब तारे जमीन पर है, दे आर ऑल द स्टार्स ऑन द फ्लोर।
1: यस।
0: तो मैं जब स्टेज पे गया और जब मैंने अवार्ड लिया तो मुझे बोला गया कि आप 2 शब्द कहिए करके, एक्चुअली 2 शब्द कोई नहीं कहता, 2 से बहुत ज्यादा कहते। तो मैंने बोला कि थैंक्स कि आपने अप्रिशिएट किया हम सबको, और आप जो कह रहे हैं कि हम तारे जमीन पर है, बट आई थिंक मोर देन दैट आई वुड वांट टू बी वन ऑफ द इडियट्स, बिकॉज दैट इज द वे यू सॉल्व प्रॉब्लम्स।
1: यस यस यस।
0: वो उनको बहुत खुश, वो कुर्सी से उठ के मेरे नजदीक आ गए थे वो टाइम पे, ही हैड लाइक दैट थिंग वेरी मच, और वो याद रख लिया। तब जब सत्यमेव जयते का डिसेबिलिटी वालों का एपिसोड हुआ तब मुझे बुलाया गया था। लेकिन मैं ज्यादा जिक्र वो सुपर आइडल्स का इसीलिए करते रहता हूँ, सत्यमेव जयते बस ओके, लेकिन ये सुपर एडल्ट का जो अवार्ड था वो मेरे लिए बहुत जरूरी था, मेरे लिए नहीं ये समाज के लिए जरूरी था कि जो दृष्टिहीन इंसान है वो क्या क्या कर सकता है। बिकॉज देखो ऐसा है कि जो साइटेड लोग है वो साइटेड लोगों के लिए भी काम करते हैं और ब्लाइंड लोगों के लिए भी करते हैं। जो ब्लाइंड होते हैं वो अपने आप के लिए लोगों के लिए करते ही करते, लाइक ब्लाइंड कम्युनिटीज एक दूसरे को हेल्प करते हैं और करना भी चाहिए। मेरा कहना हमेशा से ये था, और बहुत सारे विजुअली डिसेबल्ड विजुअली चैलेंज लोगों से मेरे इस मामले में थोड़ी सी अनबन भी होती रहती है। भाई मेरा दिल इतना बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि मदद के हकदार और मदद के जरूरतमंद सिर्फ ब्लाइंड नहीं होते, जो ब्लाइंड नहीं होते उनको भी कई तरह की मदद लगती है। सो माई हार्ट मस्ट बी वेरी बिग, मैं सिर्फ ये नहीं सोचू कि सिर्फ ब्लाइंड है करके मैं उसको हेल्प करूंगा। तो ब्लाइंड होके भी अगर कोई इंसान साइटेड लोगों के लिए भी कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली दैट गेट्स अप्रिशिएटेड। तो वो सुपर आइडल में थोड़ा उजागर किया गया था, इसलिए मैं ज्यादा लोगों को सुपर आइडल के एपिसोड ही देखने को बोलता हूँ, बिकॉज उसमें वो उजागर किया गया था। और ये मेरा हमेशा से मानना है कि डोंट लिमिट योर सेल्फ, अगर आप मतलब ब्लाइंड और आप करना चाहते हैं कुछ अच्छा तो वो ब्लाइंड के लिए अच्छा करना या साइटेड के लिए अच्छा करना ये सोचो मत। जैसे अभी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, उनका तो एकदम स्ट्रिक्ट ये है कि ब्लाइंड है वो लोग, कि वो लोग करेंगे तो साइटेड लड़की से, या साइटेड अगर लड़की है तो साइटेड लड़के से ही शादी करेंगे। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बुरी बात है। अभी क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग कहेंगे हाँ आपका हो गया करके आप बोल रहे हैं। तो पता है कि जो सोच के मतलब हमको कुछ सोशल कॉज करके करना है करके ब्लाइंड आदमी के साथ शादी करते हैं, ऐसी लड़कियां भी
1: वो उसमें फिर सिंपैथी आ जाती है कहीं ना कहीं,
0: सिंपैथी और खुद को ग्रेट बनाने की बात हो जाती है। उससे अच्छा तो ब्लाइंड ब्लाइंड शादी करे तो क्या प्रॉब्लम,
1: क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली। और मैं तो मानता हूँ कि जहाँ आपका दिल करता है वहाँ होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ब्लाइंड हो चाहे साइटेड हो,
2: कैसा भी हो।
0: तो मैं मानता हूँ दो ब्लाइंड करेंगे तो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं समझ सकता हूँ और मैंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखे भी होते हुए, लेकिन उनको प्रॉपरली अवेयर करके उनको चीजें समझा के किस तरह से पब्लिक में रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता।
1: आप तो टेक से भी हैं सर, अभी टेक्नोलॉजी ने तो कितना इजी कर दिया है ना सब कुछ, आप खुद भी जानते हैं ये बात।
0: बिल्कुल। तो इसलिए मेरे लिए मानना है कि भाई जो भी है ना ऐसा है कि डू इट फॉर अदर्स एंड डोंट सी। अभी मुझे बहुत लोग पूछते हैं आप अच्छा आपकी कंपनी कितने ब्लाइंड लोगों को आपने जॉब दिया, मेरा ये कहना भी अगर
1: मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था एक्चुअली, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए कि अपने आप तो सक्सेसफुल हैं, विजुअली चैलेंज कम्युनिटी के लिए आप क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं।
0: एक्चुअली मेरा एक बहुत बड़ा प्लान मन में चल रहा है, लेकिन कोई मुझे इस चीज के लिए पता नहीं क्यों आगे नहीं आ पा रहा है, समझ की कमी है या वही प्रॉब्लम है कि लोग ये समझ रहे कि मैं अजूबा हूँ और मैंने किया तो और कोई कर
1: और भी कर लेगा। एग्जैक्टली
0: मुझे नहीं मालूम ये क्यों लोग नहीं सुन पा रहे हैं, मैं इतने देर से चिल्ला के बोल रहा हूँ। देखो मैंने कुछ एक दो ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और कुछ कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक एकेडमी बने जिसमें ब्लाइंड इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेसिफिकली बनाए, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि आपको पता है कोई ब्लाइंड आदमी अच्छा खासा दिखता है, पहली बात तो अच्छा खासा नहीं दिखे तो छोड़ दो, लेकिन अच्छा खासा दिखता है तो लोगों को ये समझता है ये कमार है। आज थोड़ा सिचुएशन सुधर गया, आज लोगों को मालूम है कि ब्लाइंड इंसान कमाता है। पता है वो क्या पूछते, अच्छा म्यूजिक में हो आप गाना वाना गाते हो क्या। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब कोई ब्लाइंड आदमी अच्छा खासा दिखे तो पूछे अच्छा इंजीनियर हो क्या। आई वॉन्ट टू सी दैट डे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड इतनी कॉमन बन जाए कि किसी को अजूबा ना लगे।
1: लगे बिल्कुल सही।
0: मेरे पास एक पूरा प्लान रेडी है और इसके लिए पूरा एक एनजीओ लेवल पे या किसी भी तरह सेक्शन 25 या कोई कंपनी की तरह से ये किया जा सकता है कि इनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए, यहाँ तक कि इंटर्नशिप के लिए मल्टीनेशनल्स में भेजा जाए, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स है अच्छे मल्टीनेशनल्स में।
1: वेरी गुड।
0: अभी मल्टीनेशनल में वो लोग थोड़ी ना जॉब के लिए जा रहे हो तो इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, अगर इंटर्नशिप में आप खुद को प्रूव करते हो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अच्छा अभी प्रूफ तो हो गया तो अभी आप उनको जॉब क्यों नहीं देते, तो भी जॉब दे दो उनको भी, प्रोग्रामिंग करने दो उनको भी, वो सारे चैलेंजेस फेस करके आगे आने दो।
1: Exactly.
0: इंजीनियरिंग फील्ड में आने दो, बिकॉज देखो इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग ये होता है, प्रोग्रामिंग इज अ ब्रेन वर्क, प्रोग्रामिंग में आंखें नहीं लगती है। मैं
1: नहीं लगती है,
0: साल से कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ।
1: देखो लोग सोचते हैं उल्टा, बिना आंखों के प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती है।
0: ये जो छुटपुट एक दो प्रोग्रामर्स बने हैं, आपने अभी और एक प्रतीक का जिक्र किया, इससे कुछ नहीं होने वाला है।
1: जी,
0: कुछ नहीं होने वाला। मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिवली एज अ मोमेंट कहिए, एज अ रेवोल्यूशन कहिए, या एज अ कंपनी या एज अ व्हाटएवर, ये मैं चलाना चाहता हूँ।
1: इन टोटल सुपर 30 की तर्ज पे कुछ होना चाहिए।
0: एग्जैक्टली। और मैं, मेरे पास टैलेंट है, मैं जानता हूँ क्या करना है, मेरे पास प्राजक्ता जैसी, उसको मैं प्राजक्ता कहते नहीं, लोगों को लगता है मैंने शादी के बाद उसका नाम बदल, इसको रानी कहता हूँ मैं प्यार।
1: क्या बात है,
0: क्वीन लिटरली वो इतनी मतलब हर चीज में रहती है। मेरे पास अच्छे लोग है, मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज है, होना यह है कि इसको एक तरह से फंड करके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना, और ये मेरी बहुत जमाने से ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ काम किया ट्रू विजन

0: आपके प्रोजेक्ट पे अगर आपने गूगल किया ट्रू विजन एलकॉट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु आपको मिल जाएगा।
1: yes,
0: yes. इसका एक तरह का पायलट किया गया और सक्सेसफुल भी हो गया, ब्लाइंड बच्चों को जॉब्स भी मिले। केरला में मैंने इनसाइट करके एक सेंटर है उनको मैंने काफी कंसल्ट किया है। आई वॉज अ कंसल्टेंट टू ब्राजीलियन एंड मलेशियन गवर्नमेंट ऑल्सो। पर फिर इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब मेरे जैसा इंसान होते हुए भी ये नहीं हो पा रहा है, बिकॉज शायद अभी भी वही लोगों को लगता है कि मैं दिव्यांग हूँ, मेरे पास कुछ तो दिव्य शक्ति है और मैं ये कर पाया और कोई कर नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। एंड सेम अप्लाइज टू मैरिज ऑल्सो, कि ऐसा नहीं एवरी कपल कैन बी एन आइडियल कपल। आपने आइडियल कपल कहा ना, सब लोग हो सकते हैं, ऐसी कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकते। अभी है हमें इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग है, कोऑर्डिनेशन है, हम दूसरे से प्यार करते हैं, बियॉन्ड एवरीथिंग हम लोग एक दूसरे के।
1: प्रॉब्लम तो अभी दूसरी है ना सर, एक्चुअली सोसाइटी समझे तब ना ये सारी बात।
0: आई थिंक अभी धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो अजूबा वाली बात है वो बहुत जल्दी निकल जानी चाहिए, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पहले वो गरीब बेचारा था, अभी एकदम ऊपर चला गया, पहले एकदम नीचे था, अभी तो एकदम मतलब किसी को देखते हैं कुछ अच्छा काम कर रहा है, कोई बड़ा लॉयर बन गया, कोई लॉ फर्म में गया, कोई आईडीबीआई जैसे बैंक में गया, और ये सोचते अडोर करते जिसको जिसको ये बोलते हैं ना, कुछ तो एक उसको वर्ड है, मतलब बोलते हैं ना कि इसका कुछ तो इतना हाइप करके रखते कि अरे बाप रे, तो कुछ तो अनयूजुअल चीज हो गई। कई बार करती है तो वो स्टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से। वी आर जस्ट लाइक एनी अदर पीपल।
1: अब मीडिया ये सब चीजें पहुंचाने के लिए ना मीडियम हो सकता है हमारे लिए सर।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो ये गाना बजाने वाला मैटर भी आपको मैं बता दूं, ज्यादातर के ये हिंदी फिल्म्स का ही नतीजा है कि हमेशा एक नेत्रहीन इंसान को ऐसे बतौर गाना बजाने वाला ही दिखाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड कॉर्पोरेट दिखाते हो कोई फिल्म में, आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड बंदे को आईटी प्रोफेशनल दिखाते हो, आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड बंदे को सिक्योरिटी एनालिस्ट दिखाते हो या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिखाते हो या इकोनॉमिक्स दिखाते हो, कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर क्यों नहीं दिखाते हो? आप एक ही चीज दिखाओगे तो जनता तो वही देखेगी
1: ना, आईएएस दिखाएंगे ना लॉयर दिखाएंगे।
0: ये सब हुआ है, ये हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है, दिस इज नथिंग न्यू। पर ये मतलब ये मेरा फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। बीच में वो ऋतिक रोशन वाली भी कोई फिल्म आई थी,
1: हाँ काबिल,
0: मतलब मेरा उसके भी ऊपर ऑब्जेक्शन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सबका ऑब्जेक्शन है राइट।
0: मैंने उसका ट्रेलर और ओवरव्यू देखा लेकिन आई डिड नॉट लाइक द स्टोरी।
1: गुड, वेरी गुड सर। आप तो मुंबई में रहते हैं ना, और इंडस्ट्री तो मुंबई में है।
0: यस,
1: और आपके कॉन्टेक्ट्स भी हैं जैसा आपने कहा, तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए ना।
0: मैंने बोला कुछ लोगों के साथ, पर उनका ये कहना है कि अगर हम लोग एक्सी क्या है ना, ये पुशिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रहे हैं सर। वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमने इस तरह से दिखा तो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जनता ये कह रही है कि आपने कुछ दिखाया तो हम लोग देखेंगे लेकिन आप दिखाते, दिस इज द प्रॉब्लम। वो बोलते नहीं, जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, वो लोग फिल्म को फ्लॉप कर देंगे, हम लोग को आपको इस तरह से ही दिखाना पड़ेगा।
1: क्या मतलब है, अब वही बात है, अब क्या कहा जाए इस पर, तो वो उनका एक्सक्यूज है मुझे तो यही लगता है कि, और कुछ नहीं है।
0: और ये न्यू इंडस्ट्री में क्यों, अभी ना आई टेल यू, इतना एक सुंदर वो है, आपको पता है शायद से गाना, वो फिल्म कोई तो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रफी और लता का गाना है, उसमें तो बॉय तो साइटेड थी, क्या लड़की ब्लाइंड है, वो क्या है एक मंदिर है वाला गाना
1: जी जी
0: है ना, वो बादल कैसा होता है तेरे आंचल जैसा होता है
1: जी।
0: तो आप अगर एक कपल दिखा सकते हो जिसमें लड़का ब्लाइंड नहीं है, लड़का साइटेड है, लड़की ब्लाइंड है, वो मस्त में एकदम ऐसे रोमांटिकली जा रहे हैं, व्हाट हैज हैपेंड, वेयर इज एवरीथिंग लॉस्ट, आई डोंट नो।
1: कहीं ना कहीं ये भी तो होता है कृष्ण सर की जो ब्लाइंड वेमेन उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा है ऐसा लगता है, खासकर मैट्रिमोनियल के इश्यूज।
0: I don't know. मतलब हो भी सकते हैं, मुझे सीरियसली नहीं मालूम ये मामले में, और
1: सोचना चाहिए ना इस पर भी हमें,
0: सोचना पड़ेगा। मतलब मेरे आप शायद सही बोल रहे हो, बिकॉज स्टैटिस्टिकली अगर मैं सोचूं तो मेरे पहचान में ब्लाइंड मेन मैरिंग साइटेड वुमेन बहुत ज्यादा है, लेकिन वाइस वर्सा मेरे पास ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है।
1: वही सर, वही हमारे इस प्रोग्राम में भी ज्यादा एग्जांपल्स इनफैक्ट नहीं है दरअसल,
0: तो वो है मतलब स्टैटिस्टिकली मेरे भी जान पहचान में कोई है नहीं ज्यादा। There was one couple, लेकिन वो खैर सेपरेट हो गए बाद में। कुछ
1: कुल मिलाकर के ये है कि अभी हम सबको मतलब आप जैसे बोल रहे हैं, आप बहुत सालों से लोगों को बोल रहे हैं चेंज के लिए, लेकिन अब हो नहीं रहा है। कुल मिलाकर सबको मतलब यूनाइट होना पड़ेगा सर इन सब चीजों के लिए।
0: यूनाइट होना पड़ेगा, एंड आई विल टेल यू दैट इज द रीजन मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मतलब एज प्रोजेक्ट एज माई वाइफ, बिकॉज हम लोग ये बात को ज्यादा कभी एग्जैजरेट भी नहीं करते। अभी आपके साथ इंटरव्यू देना है करके ये सब बातें निकली, वरना हमारे लिए ना वेरी फ्रेंकली डजंट मैटर कोई ब्लाइंड है कोई साइटेड। इसीलिए वो बात उस दिन मेरे एक दोस्त को मैं और प्रोजेक्टा दोनों भी समझा रहे थे कि अरे ब्लाइंड ब्लाइंड भी शादी करेंगे, अगर दिल की बात है तो प्रॉब्लम क्या है, तो मतलब ये आना चाहिए, व्हाट इज द बिग डील यार। हाँ तो ब्लाइंड है और साइटेड है तो कई बार तो प्रोजेक्ट का करेस्पॉन्ड करके लोगों के साथ बताती भी नहीं है कि मैं ब्लाइंड हूँ. They don't even know, क्योंकि उसको तो कामकाज संभालना होता है कंपनीज का. ये कि क्या मैटर करता है, ये चेंजेस हम लोग को खुद से आनी चाहिए अंदर से. और हम लोग जब आजू बाजू में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के, तो अब धीरे धीरे लोगों को नहीं एक्सेप्ट होने, मतलब इट्स अ स्टार्ट, इट्स फार फ्रॉम, मतलब जब 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिल गया तो ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि 1933 में जब भगत सिंह को हैंग किया गया, जिस दिन उसी दिन से चर्चे चलते थे कि हाँ अब इंडिया का फ्रीडम दूर नहीं है, अभी शुरुआत हो गई है, नाउ इट्स गोइंग टू हैपन समथिंग.
1: 1931
0: जी. वो टाइम से जब लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस अब तो इंडिया को फ्रीडम मिलनी ही मिलनी है, चाहे 10 साल में हो या 5 साल में हो, जो भी हो, लेकिन मिलेगी जरूर,
1: मिलेगी,
0: वो एक कॉन्फिडेंस. तो अब मुझे वो लगने लगा कि सुबह की पहली गिरने बस अब गिरना शुरू हुई है. बिकॉज कई बार मुझे और प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस आया भी है कि पीपल हैव नॉट मेड एन इश्यू एट ऑल, उनको मालूम है, मतलब वो देख रहे हैं कपल है, सो व्हाट. कई बार ऐसा भी हुआ है, अच्छे भी एक्सपीरियंसेस है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अप्रिशिएट ही किया.
1: अच्छा के सर, अभी आपने कहा कि वो अच्छी कुक है, हाँ. आपने कुछ सीखा कि नहीं पकाना?
2: सीखा कि
1: और कभी कुछ खिलाया कि नहीं?
2: खिलाया कि नहीं, अरे बाप रे.
1: के सर ने आपको कुछ खिलाया कि नहीं?
2: अरे बहुत सारी चीजें.
1: अच्छा. कुक करके?
2: हाँ, मतलब कैसा है कि मैंने जैसे बताया कि हम दोनों को एक साथ सारी चीजें करनी बहुत पसंद है, तो वैसे हम लोग खाना भी एक साथ पकाते हैं. मतलब आपने अगर मुझे पूछा होता कि इनके साथ आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या करने को पसंद है, तो मैं कहती थी कि खाना बनाना.
1: क्या बात.
2: हम लोग ये शादी के बाद वो मेरे साथ खाना बनाता है किचन में,
0: बर्तन मांजना वगैरह सब
2: वो सब करता था. मैं फिर जो चॉप करना है वो मैं करती हूँ फिलहाल अभी.
1: तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हमारे श्रोता सुन रहे सोच रहे होंगे कि वहाँ भी टेक्नोलॉजी ले आए होंगे आप.
2: नहीं. तो अभी मुझे मिक्सर लगाना है तो वो मिक्सर ग्राइंडर लगा के देता है. ये जो लहसुन का छिलका निकालना है वो सब करके देता है. सब्जी धोने का काम उसका होता है.
1: चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं प्राजक्ता मैम आपसे, देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है ना. सवाल एक जवाब है.
2: ओके.
1: अच्छा बताइए, कृष्ण सर का फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है?
2: लिनक्स. मतलब उसके नाम के आगे ही लिनक्स नाम है.
1: वहां भी किया गया. हाँ, उनकी फेवरेट टेक कंपनी?
2: टेक कंपनी मतलब उसके खुद की टेक कंपनी उसकी फेवरेट रहेगी.
1: नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा
2: ओपन सोर्स में बहुत सारे बहुत अच्छी कंपनीज ने काम किया है, जैसे कि ओरका सॉफ्टवेयर है जो उसने खुद ने पहले स्टार्ट किया था, इट इज अ टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वो उसकी फेवरेट
0: रहेगी. सन माइक्रोसिस्टम.
2: मतलब उसने इनिशिएट किया था ये प्रोजेक्ट, जैसे
1: वेरी नाइस.
2: लिनक्स पे जो आता है ओरका करके टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वो उसने स्टार्ट किया.
1: अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे प्रोजेक्ट मैम, उनके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन?
2: जो मतलब अच्छे से काम कर रहे. आई थिंक
0: हम लोग उस पे ज्यादा बात करते नहीं है, लेकिन ये आई थिंक शी नोज, मैं बोलूंगा तो उसको समझेगा. लाल बहादुर शास्त्री.
1: मुझे पता है कि आप लोग बात नहीं करते, तभी तो ये क्वेश्चन आया मेरे जहन.
2: लाल बहादुर शास्त्री.
1: क्या सही कह रहे हैं क्या सर?
0: बिल्कुल 100%.
1: ओ क्या बात है, यहाँ तो कुछ चीटिंग हुई है लग रहा है. अच्छा चलिए अभी आपकी बारी है कृष्ण सर.
0: हाँ.
1: इनकी मैम की फेवरेट फिल्म बताइए.
0: फेवरेट फिल्म?
2: ऐसे हम दोनों फिल्म देखते नहीं हैं.
1: अभी तो क्वेश्चन ही तो तभी आया है.
0: आप लोग दोनों ने एक साथ देखी वो फिल्म से मैं बता सकता हूँ, थ्री इडियट्स.
2: हाँ, मतलब मुझे खुद, हम दोनों नहीं देखते, मतलब मैं खुद से भी पहले बचपन से भी नहीं देखती.
1: सभी का होता है, लड़की होगा.
2: नहीं, मेरा रेड है.
1: ओ रॉन्ग हो गए आप तो भाई.
2: मतलब रेड कलर का कुछ खरीदा नहीं है.
1: जी जी जी. चलिए तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके. और अभी अगर आप दोनों के मन में कोई ऐसी बात हो जो रह गई हो, हम नहीं पूछ पाए हो, तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो अब प्रोग्राम के बिल्कुल एंड की तरफ आ गए.
0: मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जो मतलब पहले भी मैंने बहुत बार बोली है कि
1: जी.
0: जब आप किसी से प्यार करते हो तो खुश रहना और उसके साथ खुश होना, जब वो बात होती है ना, बाकी सारी बातें, कितने भी उसमें झगड़े हो, कितना भी कोई प्रॉब्लम हो, कितने भी मुसीबतें आए, कुछ नहीं. एट द एंड योर लव एंड योर म्यूचुअल हैप्पीनेस इज व्हाट मैटर्स. और हम दोनों में वो सबसे बड़ी वही चीज है, और वो एक चीज है जो जिसके लिए आंखों की जरूरत होती है.
1: एक तरह से ये आपका मैसेज है सबके लिए। जी मैम बताएं।
2: कैसा था, मेरी माँ एक बहुत सा सीधी साधी औरत है, बहुत भोली है, मतलब ऐसा कोई रहता नहीं है लाइफ मतलब दुनिया में, लेकिन वो एक्सेप्शन है। मतलब ये मुझे भी पहले एक्सेप्ट नहीं होता था कि इतनी सीधी साधी क्यों है, ऐसी क्यों है, भोली क्यों है, उसको बहुत ये करती। लेकिन उसने मुझे सिखाया कि सच्चे दिल से प्यार करना चाहिए, किसी को भी करो पूरे सच्चे दिल से प्यार करो, और मतलब आपको भी वो मिल जाता है। मतलब आप कितने भी कहो कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सी औरतों का ये कंप्लेंट रहता है, बहुत सी लोगों का ये कंप्लेंट रहता है, नॉट ओनली औरतें।
0: हाँ।
2: लेकिन आप जब सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, आपको भी सच्चे दिल से प्यार करने वाला मिल जाए। और प्यार एक चीज है कि वो हमेशा प्योर रखो, उसमें कुछ मिलाओ मत।
1: क्या बात, वाह,
2: बहुत प्योरली प्यार करो।
1: वेरी नाइस, वेरी गुड।
2: शादी के टाइम पे ये सोचो कि मुझे दूसरे को साथ देना है, ना कि मैं सिर्फ समाज को दिखाने के लिए शादी कर रहा हूँ, या कोई रिचुअल है कि शादी करनी ही चाहिए,
1: करनी ही चाहिए।
2: Exactly. ये नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत आप प्रिपेयर हो कि आप दूसरे को साथ दे सकते हो, तभी मतलब होता है ना पूरा उसका अर्थ एक होता है।
1: क्या बात, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आज आप दोनों ने हमको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की, रेडियो मधुबन के इस प्लेटफॉर्म पर आए, और उम्मीद है आपके इस प्रोग्राम से हमारे श्रोतागण बहुत कुछ सीखेंगे। तो एक बार फिर आपको थैंक यू दोनों को, केके सर और प्राजक्ता मैम, और श्रोताओं ये था आज का हमारा हमराही प्रोग्राम। रेडियो मधुबन सुनते रहें श्रोताओं, और कॉल करें 94-14-15-14-15 पर। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।
3: ओम शांति। वेलकम टू टुडेज़ एपिसोड ऑफ मास्टर्स ऑफ चेंज। If we don't change, we don't grow. And if we don't grow, we aren't really living. And to help us live and lead a better life, today we have with us Sister Anna from Greece. Welcome, Sister.
4: Thank you very much for inviting me to be with you.
3: It is our pleasure. And why don't you start by telling us something about your journey and how it all started?
4: I'm born in Greece, and from a young age, there has been this interest in finding a higher meaning in life, truth. Actually, I mentioned that I am from Greece because Greece is an ancient country, and it is the Greek philosophers that are known because of their search for truth. And somehow, this happened to be my own journey as well. There was a very strong yearning to understand why I'm here, what is all this world about. And when I was 9 years old, my mother passed away. She was also my teacher. So at this very young age, you face a truth that somehow we keep hiding under the carpet.
3: Mm.
4: Which means that we all know that there's going to be an end. And actually, every second, there is an end. Even our body changes constantly. What was there a second before, it's not here now. So there is constant change, and change means end. And we all know that at some point, the body is going to finish. But when you come face to face with this truth at this age of 9, where there's no logic and just feelings, and it leaves something in you. And although I happen to have a very good family and an excellent father that gave us a lot of love, somehow this fact made me feel that what is the importance of whatever I'm going to achieve in my life, since it's going to have an end, and even my body, or I'm going to finish. So in other words, you know, when you have something, the most valuable thing, but you know it's going to be for a short time, it loses its value. If I give you now the Kohinoor diamond, if I pronounce it well, but I know you know what diamond I'm talking about, and I give it to you for 1 minute, how much value is going to have for you. No value, because you see the beginning and the end, and you don't have the time to put any label, mine or I, to identify with these.
3: Correct.
4: So the same thing with us, with the body. But because we happen to use it for a longer time and we forget its beginning and its end, it becomes so important for us. So this incident in my life reminded me of how no value everything in this physical world has. So you are left with questions. So these questions were always within me. I was trying to find some answers, but I was very young. And so I had an outgoing nature, and this gave me the possibility to forget. I was very happy with my relationships as a teenager, with my family. I had a good life. But later, something happened that I couldn't put under the carpet anymore.
3: What happened?
4: Yes. So I was around 25 years old, and I had just finished my academic studies. I studied philosophy, Greek philosophy mostly, and Greek literature. And one of the reasons was, again, trying not only to find a diploma in order to have to earn my livelihood, but because I was hoping that I would find some answers through the Greek philosophers that the whole world believes that they have some truth. Definitely, many of the things I learned have some truth. Like all philosophies, all religions, if you have the sharp eye to see the essence, you can find, and you can benefit if you also want to follow. But what I found was not enough. I had many more questions. And mostly, I didn't get any clear aim about what can I do in order to apply the truth. I didn't find tools that would help me to apply whatever truth was there, and I accepted that it was really
3: there around what you were learning through
4: right.
3: Looking at different religions and whatever truth was there around you. There was no way to apply it.
4: I didn't search in religions through my studies, through my academic studies. So I studied philosophy and literature, and I came out from my studies with, yes, a diploma, but disappointed because I hadn't found answers. But the answers found me. How? One morning, I remember it so vividly, as if it was 5 minutes ago. I was in my apartment in Athens, and I was reading an extract from some philosophical texts, spiritual texts that happened to come to my hands, and the essence of them was that truth, or the nature of truth, is what does not change. And truth is love. And then God is truth. God is love. And when I was reading this, and it was not the first time that I had come across similar ideas, I felt my attention being pulled, without me making any effort, towards my head. Somehow, I would say somewhere here, at the center of my forehead, and some voice or some experience was telling me, or was making me realize, that I am the source of these thoughts. I am not this body or this physical world. Somehow all the physical aspects, starting with my room and then my body, started fading away. They were not so important anymore. As if another world came in the picture, a world that was always there, but subtle and invisible. And it had escaped my attention, in the same way it has escaped the attention of the 8 billion plus people that are on the planet. So it's like I saw that there is someone who was always there, and now I realize that this is the real self, the real I. And this I understood, is the inner world, the source of the inner world, the feelings, the thoughts, the understanding, the memory, all these faculties that we all know that they exist. We all experience them, but no one helped us to understand how they work, from where they come. We haven't put our attention in this invisible reality, neither through our parents, maybe because they don't know, or teachers or educational systems, because probably they also don't know. But this experience came to me in such a vivid, I mean, such a real way that changed my life. And it was not only that, this is the beginning of the story. So I realized that I am a subtler being than this physical form. And then, I don't know how much time I was in that beautiful experience, but a more beautiful experience came in the picture. As I was lost in this experience, I feel another presence, as if a source of light. I would say light, but it's not the physical light, but light is the closest of this physical world to describe something that is beyond this world. And it's not about the form and the light as much as it is about the qualities that I was feeling that were coming from this presence. I felt as if I met someone that I had forgotten. But this someone was perfect, so lovely. There was this feeling that I was in front of someone that didn't have any body. It was not the body that was lovely, but the quality of loveliness. This being so gentle, accepting me totally, totally. I could be, and I was, whatever I was, but as if it didn't matter if I was the best or if I was the worst, or with our human standards, it didn't matter. And the feeling was that I and this being, the two of us, were so close, and it was only us and nothing else except silence. And the whole scene was as if it was eternal. There wouldn't be an end to it. There was no time. There was no feeling of time. And at the same time, it's not that I looked right or left, but I was feeling that planet Earth was somewhere there, as if I was totally beyond this physical world, let alone my room, the whole world. And everything there was changing. But the only thing that was not changing was where I was with this being. And it is as if I got answers to my existential agonies, to my questions, because I always didn't like changes, because you feel insecure a little bit, especially when it was coming to feelings. Because we see how easy it is for relationships to change from love to hatred, from friendship to enmity, or what many changes, from peaceful, being peaceful to being peaceless. And I was wondering, what out of all of this is real? Because one moment I feel this, and the second moment I feel something exactly the opposite, and both of them feel real, and both of them I have allowed to define me, to say I am peaceful, I am peaceless. Why one second I'm peaceful, next moment I'm peaceless? Who am I really in all of this? So it is as if I got the answer that in the physical world there will always be changes. And it felt as if it was a performance. And in a performance, you have to have changes. You have to have ups and downs in the feelings to have the entertainment of it. But the reality is on the backstage. And on the backstage, nothing changes. And what doesn't change is the best. Because I felt love. I felt happiness. And I feel, actually, it's not that I felt. I'm the same one now. That scene has changed.
3: Yeah.
4: So I, and it's not only me, we are love, all of us. We are, even if we kill each other on the stage, still our nature is love, but we have forgotten it. So we are love, we are happiness, we are peace, we are security, but we have to experience who we are to feel these qualities that come as the natural nature of the self.
3: Correct. Very beautifully explained that it doesn't feel like that it happened with you all these years before, because I, as you explained, I was feeling that you're experiencing it now and you're sharing it with us. So all this happened, you were fully awake, like you had your eyes open while these experiences were going on.
4: Totally awake. I had just finished my juice. I remember all the details. Fully awake after some physical exercises, some hatha yoga. At that time I had started some hatha yoga,
3: yeah,
4: for the first time in my life. Everything is very accurate in our lives, and our spiritual awakening, I think, is also very accurate. Because coming from a philosophical background where you are trained or you have the comfort, the capability of questioning.
3: Yeah.
4: Perhaps if I hadn't had this experience, I would have been deceived by this habit of all the time questioning how, what. We all have this habit anyways at this point of time. We are all overthinking, over-asking, and we don't know how to be still, how to apply the things that we already know. We come up with more questions, more theories. So having this experience, it was one-way journey. There's no way that I would go back into my previous life, because it is as if I found exactly what I was looking for. It is as if I took the introductory of Raja Yoga course that I came across later in silence by God Himself. Because later I understood that this presence, this being, is the same being that we all look for as humanity in different ways, but not necessarily in the right way. A few days later, a couple of days later, I was given the address of the Brahma Kumaris Raja Yoga.
3: Couple days
4: center.
3: Later to that experience.
4: Yeah, yeah. And I was not familiar with spirituality, with religions. In fact, because I have always been a perfectionist in my life, when different friends or colleagues in the university would approach me to try and make me join their interests, their parties, there was a subconscious reaction, although I was feeling guilty that I was not doing anything for the world, for humanity, and they were doing, but I was thinking that if I am to dedicate anything of my life for a purpose, I have to be sure it is 100% pure. And I could see how much ego was involved in all these efforts. So I was given the address of the Brahma Kumaris Meditation Center. So I went there, and I went there 2 weeks after I had this experience. This experience stayed with me for 2 weeks, and 2 weeks after, it was Monday, I wake up and I feel that this power that had been with me and was making me feel the happiest person in the world. And more than anything else, I was feeling fearless, because I had some fear about death. Because when I faced the death of my mother, this left something within me. And because I didn't have the wisdom or the logic or whatever to handle in the right way, it became a big thing in my mind. I couldn't accept that at some point I will be buried now I understand that I can never be buried because I'm not the body. The body will be buried, but the body is part of this physical world. It's not me. I'm just visiting it. These things now are very clear, not as theory, as an experience after experimenting with all these aspects, that not all of them are new. Some aspects that the Brahma Kumaris share are new, but many of them we have come across, but who is practicing them, who is feeling them? And this is what actually I very much appreciate in the knowledge, in the teachings of Raja Yoga Meditation. It gives you the tool to go from the theory and from the head to the experience, to the heart. So yes, after 2 weeks, when that experience started leaving me, I felt as if this experience left me in order for me to do something so that, later understood, so that I can be the master of this experience. Not that someone was merciful and gave me this insight and this experience, and it's not in my hands, but I was left with a glimpse of what is perhaps reality and truth, but then I had to do something to know more about it and how to have it constantly, to be it constantly.
3: So the experience was diminishing in the 2 weeks, what you experienced. In the 2 weeks, it was fading away?
4: In the 2 weeks, was constant.
3: Yeah.
4: My friends that met me or my relatives would say, you're not the same person. Something has happened to you. I was speaking about love. I was speaking about happiness. I was on the top of the world, so happy. And this is the potential of all of us. I just had a glimpse of that. 2 weeks after, exactly Monday morning, in the space of an hour, maybe a couple of hours, I left that this power was leaving me. And there's no way that I could live without this, without feeling these higher feelings. And so, this is where I remembered the address that I was given, and I called the same day, and I felt some, that I would find something there. And I went the next day, and as soon as I entered the center, it felt so, as if I was at home, very lovely feeling, but the experience started emerging again. It is as if I was guided so clearly that you are in the right place. So I met what we call a teacher, and I say what we call because we are all students here. And this person, Brother Anthony, started asking some questions. I told him why I was there, that I had this experience. And in the first meeting, he gave me the first 3-4 classes, introductory class of Raja Yoga. The second meeting, the other 3-4, and that's it. It was so dramatic.
3: It's usually a 1 week course, which was over for you in 2 days because of the experience that you had.
4: Because of the experience, and in fact, if you ask me what I remember, I don't remember much, but I remember something about perfection, that there is golden age and the perfection in relationships, because this is what I was looking for. So, in fact, all of us look for the same thing. All of us look for God. I hadn't put the name God, because we all have our own filters that come from the limited, you know, religions that or societies that we are brought in. And I was not looking for God as such, but I was looking for the qualities of God. And I think all of us, even the most atheists, look for God, but they're so lost and so lost we don't realize it. Because what are we looking for when we want money? Are we going to eat the money or the gold? We want a nice house to feel secure, to invite our friends and share love. But God is the source of the absolute security, or knowledge makes us realize that we are secure, knowledge that comes from God. God is the source of knowledge. Or we look for love. God is the source of absolute love, absolute happiness. So we look indirectly and unconsciously for the qualities that God is in the 100%. So when I realized this, I realized it, that what I was doing in my life, whatever I was doing, is in order to experience some drops of all of this, and now I have found

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज 27 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात बच्चों को समझाई है कि बच्चे अब देह अभिमान को मिटाना है, और मिटाएंगे कैसे? तो बाबा कहे उसके लिए देही अभिमानी बनना पड़े। अभ्यास करो आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का, क्योंकि सतयुग के अंदर भी देही अभिमानी स्थिति देवताओं की होती है। ज्ञान नहीं है, इसीलिए देह भान जरूर रहता है कि हम शरीरधारी है, परंतु देह अभिमान नहीं रहता है। ये संगम पर ही निराकार बाप आकर के बच्चों को देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनना सिखाते हैं। बाबा कहते ऐसी कोई यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं है जहां पढ़ाने वाला भी आत्म अभिमानी हो और पढ़ने वाले भी आत्म अभिमानी हो। ये एक ही यूनिवर्सिटी है जहां बाप हमें रूहानी ज्ञान दे करके कैसे आत्मनिश्चय करके आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है वह सिखाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसीलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्य की समझ से बाहर है, कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मूंझो मत, बाबा कहते बच्चे मूंझो मत, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है, मुख्य बात है याद की। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसीलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है, ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता है कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते हैं कि आत्म अभिमानी हो बैठो, यह एक ही बाप समझाते हैं और किसको कहने आएगा नहीं, यह युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है, आत्मा ही अभी पतित बनी है फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है, बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। निराकार बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे ना। जो महिमा है तो वो महिमा प्रैक्टिकल कर्म में आई है, तभी तो वो टाइटल मिला है, वह है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूं, नॉलेजफुल हूं, मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। जैसे जैसे नॉलेज को समझते जाएंगे धारण करते जाएंगे, तो बाबा के धारण करने के लिए आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं
जहां सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। बाप तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं, बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। इस दुनिया में सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्माभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। हमने ये चोला धारण किया है और जब चोला पुराना होता है तो चोला छोड़ना है, इतना देह भान तो रहता है ना। यह ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है, आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की। स्थापना किस चीज की? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना। और फिर पुरानी दुनिया हेल, नर्क का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी ये महाभारी महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए। बाबा आते हैं, बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। ज्योतिष लोग आदि बताते हैं कि जो स्टार्स महाभारत के समय थे वही आकर फिर से मिले हैं। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत का उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। बाबा सिखाते भी है, हर एक बात लिखो तो कैसे लिखनी है। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स आदि को भी जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु, बाबा कहते अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा ये नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है, रूहानी नॉलेज को स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि अब 84 जन्म का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा ना सके, नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते हैं। पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते।
गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया, बाप ने समझाया है, वापस कोई भी जाता नहीं है। सब एक्टर्स यहाँ ही है, अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद है। मनुष्य को पता नहीं है बौद्ध क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है वह सब इस समय तमोप्रधान है। तमोप्रधान से सतोप्रधान कल्प पहले भी बने थे, बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी है यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये ज्ञान कैसा है? राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते हैं, क्रिएटर बाप है। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, उसका पाठ स्थापना का है ही नहीं। श्री कृष्ण कहो वही विष्णु है, तो विष्णु का पाठ तो पालना का है। तो फिर गीता है स्थापना के लिए, नई सृष्टि की सर्जना के लिए, अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना के लिए। तो श्री कृष्ण का ये पाठ ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हें समझाना है, क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है, ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूं। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते ही है कि हे पतित पावनाओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। पतित पावन आओ, तो पतित हो गए हैं तो भगवान को पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना पड़े। बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात कि नई सृष्टि का पहला पत्ता श्री कृष्ण है। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहां गर्भ जेल में रहते हैं तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे, अंजाम करते हैं। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही है, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। चोरी करते हैं फिर पकड़े जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर चोरी करते फिर पकड़े जाते, तो जेल बर्ड्स कहते हैं। बाहर निकलते रहते हैं फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसीलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है यह है रावण राज्य, वहां तो यह बातें होती ही नहीं। वह है ही राम राज्य, वहां न गर्भ जेल है और न वहां वह जेल होती है। न गर्भ जेल है न वह जेल होता है। यहां तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पाठ है भारत का। उत्थान और पतन विशेष भारत का मुख्य पाठ है। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए कि कितना समय अलग रहे, बहुकाल माना कितना समय।
तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुकाल से अलग रही है? पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है पाठ बजाने, अभी वह देवता है नहीं जो राज्य करके जाते हैं। उन्हों के चित्र निशानियां रहती है। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म हो तो हेवन बनता है, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुण वाला देवता बनना पड़े। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। फिर मूत पलिती मनुष्य है ना। भगवान उवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है। बाबा अंतिम समय का वर्णन कर रहे हैं ताकि हम बच्चों को मानसिक रूप से पहले से तैयारी करा रहे हैं कि विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं है, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ नहीं करते। यह तो कितना भारी ऑपरेशन है, सारी दुनिया का कितना भारी ऑपरेशन है। तो बाबा कहिए तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल, एकदम मैली दुनिया है, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना। मनुष्य तो समझते हैं बहिष्त में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे, अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं, साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आगे कब आए हो? कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले मिले थे। क्या कहते बच्चे? हाँ बाबा, आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था? बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्होंने घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो उच्च पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है, ये श्री कृष्ण के दो गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। नरक के गोले को लात मार रहा है और हाथ में स्वर्ग का गोला है, तो बाबा कहे दो गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है।
क्या क्लियर दिखाया है? स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नर्क तरफ लात है। तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को भूलना, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे, बुद्धि योग बल से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना, अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे, नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो। बाबा भी वहां रहते हैं, हम तुम वहां जाएंगे जहां बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती है, अच्छा घर तो याद पड़ता है ना, वह है शांति धाम, वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते अभी फिर आया हूं तुम्हें देने। बाबा कहते अभी मैं फिर आया हूं तुमको देने। कितने बार तुमने राजाई ली और गंवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, और फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान समझने में कोई विघ्न नहीं, याद करने में ही विघ्न पड़ते हैं, तो इसी में ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है, महारथी भी बनना है, महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो बल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था जब ट्रांसफर होना होता है। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होता है, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेंगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा, ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं? दुनिया में मनुष्य किसी का खून कर देता फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसीलिए बाप कहते गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसीलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरी पॉइंट, अर्थ सहित अपने को आत्म बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना, जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता, जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसीलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज है। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग लग नहीं सकती। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ। अच्छा,